एक तो ईर्ष्या, दूसरा वेज थॉट्स, ये क्रोध को ले आता है। क्योंकि वेज थॉट्स है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। क्रोध का एक शब्द निमित्त बनता है, क्रोध उत्पन्न होने का। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। और वह एक शब्द है क्यों, यह क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो, इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल गीत गाए। कौन सा गीत गाए? दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कह की भाषा खत्म करके बोलना है तो कमाल बोलो। क्यों नहीं, कमाल, कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, कि जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी। स्टार्टिंग में बाबा के जगत अम्बा छोटे छोटे बच्चों को यही कहती थी कि कह की भाषा नहीं करो। कह ज्यादा कौन करता है, कह ज्यादा कौन करता है, कौवा करता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी क्यों, क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। ये मम्मा सिखाती थी छोटे बच्चों को। भाषा का परिवर्तन हो सकता है। अब बाबा पुनः पूछते, क्या ये भाषा का परिवर्तन हो सकता है? कह नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी, यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी, प्रत्यक्षता वाली। देखो शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? आप सभी ये क्रोध का अक का फूल अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। बाबा कहते पसंद है ना, पसंद है। अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, इसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, हाथ उठाया अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही है दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। इतना बाबा मोटिवेट कर रहे हैं कि हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है। कितना बाबा अश्योर कर रहे हैं, बाप दादा आपके साथ कंबाइंड है। कहते हो ना, साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो
तो बाप दादा कंबाइंड है उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत। बाबा को जो दे दिया उस अमानत में ख्यानत आ गई, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है क्योंकि मेरी नहीं है। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, जो दूर बैठे भी बाप दादा को देख रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हो, संकल्प भी कर रहे हैं, तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अर्थात क्रोध से कितना विघ्न खड़ा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ये दान में दे दिया, संकल्प कर लिया, तो सभी सेंटर निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टेंस दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रालब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है। समय आपका टीचर नहीं है, समय से पहले हमें करना है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिटकी मिलती है, कितनी छोटी होती है, वरदान का कार्ड मिलता है तो कितना छोटा होता है, उसमें ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ, मानो पुरुषार्थ करते करते कुछ भी हुआ, तो ओके के बीच में लाइन लगाना, ओके कैंसिल कर देना, जैसे लाइन लगा के उसको कैंसिल किया। इजी है ना? इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, ज्यादा बार हुआ हो क्रोध, ज्यादा बार हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो लाइन लगाते जाना, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी, इसमें नंबर वन कौन। फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। ना, पदम पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं, बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ,
अच्छा मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, दो शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। मम्मा ने ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी ऐसे बने, हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके, तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितने वारिस तैयार हुए हैं चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा आदि में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है, तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है, जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, जैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। आज का व्यक्ति इशारा है
सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मन मत देह अभिमान पने की मत शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती है। श्रीमत में जब मन मत देह अभिमान पने की मत शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती है। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। अच्छा, आज विशेष सूचना है कि मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास, आज मास का तीसरा रविवार है, सभी भाई बहने संगठित रूप में एकत्रित होकर साय 6:30 से 7:30 बजे तक अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप के स्वमान द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को अपने शुभ भावना और शुभ कामना की शक्तिशाली किरणें देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।

0: ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें देह से न्यारा होने का बहुत सुंदर डायरेक्शन दिया है, क्योंकि ऐसे विधि होने से ही हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं, हम बहुत पवित्र बन जाते हैं, हम योगयुक्त रह सकते हैं, हम विदेही स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐश्वर्यपन, विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है जो जानना परम आवश्यक है। ऐश्वर्य, हम बार बार अभ्यास करेंगे, अपने देह को देखो और संकल्प करें, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति स्वरूप मणि हूँ, मैंने तो इस देह में प्रवेश किया है। तो स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करना, मैं आत्मा स्तन में आई हूँ, मैंने इसका आधार लिया है, ऐसी फीलिंग में रहना, यह है बॉडीलेस स्टेज, है शरीरीपन। इससे हमारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, चित्त गहन शांति की ओर चलने लगता है, हम डीप साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, हम इससे परम धाम की स्वीट साइलेंस का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हमें बहुत बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास के बाद और योग करते करते हम बन जाते हैं आत्माभिमानी, अर्थात आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, हम उनका स्वरूप बन जाते हैं, चित्त पूरी तरह से निर्मल बन जाता है, भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं, हमारे सभी संकल्प महान और पवित्र हो जाते हैं, हम प्यार की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, शांति के भंडार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और संपूर्ण सुखों की अनुभूति में रहते हुए परम आनंद की फीलिंग में रहते हैं, और बन जाती है हमारी विदेही स्थिति, अर्थात योग युक्त स्थिति, जिसके लक्षण होंगे हम उपराम होंगे, अनासक्त होंगे, निर्मोही होंगे, न्यारे और प्यारे होंगे, निर्भय होंगे, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, कहीं भी कोई आसक्तियां नहीं रहेंगी, इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, अपने आनंद में ही आनंदित रहेंगे, त्याग और वैराग्य की प्रत्यक्ष चेतन प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। ये देही अभिमानी स्थिति विश्व का कल्याण करने वाली है। जब हम नेचुरल रूप से आत्माभिमानी हो जाएंगे और हमारी दृष्टि केवल आत्मा पर जाएगी, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब हम चेतन चमकते हुए तेजस्वी सितारे इस संसार में बहुत चमकेंगे, हमारा प्रकाश चारों ओर के अंधकार को दूर करने लगेगा और भक्तों को मस्तक में चमकती हुई ज्योति का दीदार होने लगेगा। तो हमें मेहनत करनी है, चलते फिरते कर्म करते हुए शरीरी होने की, आत्माभिमानी होने की, विदेही होने की। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत ही सुंदर हो सकती है। सारा दिन हम देखते हैं, बीच बीच में 10 बार कुछ दिन तक अभ्यास कर लें, मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, लिखेंगे तो भी आंखों द्वारा देखेंगे, ये एक अभ्यास ही काफी हो जाएगा। इसके अभ्यास से हमें फील होगा, ये नैन मेरी खिड़कियां हैं और मैं आत्मा इनके पीछे बैठकर इन नैनों के द्वारा बाहर के दृश्य निहार रही हूँ। तो आइए आज सारा दिन हम इस सुखद फीलिंग में रहें और अतिंद्रिय सुख का अनुभव करें, क्योंकि भगवान वाच है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो आज सारा दिन का अभ्यास ऐसा दीदीपन और मैं आत्मा परम पवित्र मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें पूरे देह में ब्रेन में फैल रही हैं और कर्म इंद्रियों को शीतल कर रही हैं और साथ में जब दूसरों को देखेंगे तो मस्तक में चमकती हुई मणि। ओम शांति।
1: अभी बजे हैं सुबह के 6। शांत।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, कहा जाता है, मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस जब आप स्टार्ट करें, जब आप अच्छे कर्म करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, तो हो सकता है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो आपको ताना भी दे सकते हैं। हाँ, बहुत बड़े आ गए काम करने वाले। लेकिन दोस्तों, दुनिया बदलती है। जब आप दृढ़ता से उसी मार्ग पर डटे रहेंगे, तो वो लोग आपको सर झुकाएंगे, नमन करेंगे, और तभी हमारे अंदर का देवत्व जो है वो उनके सामने आएगा। और ऐसे ही हमारे अंदर का देवत्व जागृत करने के लिए और गुडनेस की एक्ट करने के लिए और क्या करना है, इसके बारे में सुनाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले रेडियो मधुबन की तरफ से हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति जी, और सभी मेरे रेडियो मधुबन के श्रोतागण को बहुत बहुत सुप्रभात, शुभकामनाएं। आपने शेर तो बहुत अच्छा सुनाया
0: जी,
1: और शेर सुनने के बाद 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये जब बात कहते हैं, तब मुझे ये लगा कि बहुत बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, अरे वाह क्या बात कही, 700 करोड़ अच्छे काम, और उसकी शुरुआत करने के लिए हम दूसरों की तरफ देखते हैं। इसलिए नजर बदलनी चाहिए और काम खुद से शुरू करना चाहिए। इसलिए ऐसे कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है।

0: सरकार है किसकी।
1: बिल्कुल,
0: यह सरकार है किसकी। 26 जनवरी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, गणतंत्र दिन हम धूमधाम से मनाते हैं और फिर बोलते हैं तिरंगा लहराते हैं, और एक दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी वहां देखिए तो हर किसी का भाव मन भाव विभोर हो जाता है, राष्ट्रभक्ति झरने लगती है
1: जी,
0: और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होके हर कोई मन से दृढ़ संकल्प करता है ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। लेकिन वो संकल्प हमारा टिकता है,
1: लेकिन वो संकल्प हमारा 16 अगस्त और 27 जनवरी तक भी कभी कभी नहीं टिकता। ऐसे दिखाई देता है कि उस दिन, उन दो दिनों में जो हम राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, उन दो दिनों में देशभक्ति की भावना हर दिल में जागृत होती है, लेकिन अगर 365 दिन वो जागृत रहती है,
0: ये हमें बदलना है
1: जी।
0: जागृत नहीं रहती या रहती ये अभी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि ठीक है उसका उत्तर है नहीं रहती। आपने जो प्रश्न पूछा कि जागृत रहती है या नहीं, उसका उत्तर शायद नहीं आ सकता है, कई लोगों का हाँ भी आ सकता
1: बिल्कुल
0: है। लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर जागृत कई लोगों को लगता है नहीं है तो हम कर तो सकते हैं। कोई भी चीज मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। देखिए, हम जब स्वर्णिम भारत का सपना देखते हैं तो क्या है, वो अच्छे दिन है कि नहीं, और ये अच्छे दिन अगर हमें लाने हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के तरफ सिर्फ ना देखेंगे लेकिन हमारा भी हाथ बटाएंगे। उसमें मुझे हमेशा एक उदाहरण याद आता है श्री कृष्ण जी का। देखिए, गोवर्धन पर्वत उठाना है यह संकल्प था श्री कृष्ण जी का
1: जी,
0: और बालकृष्ण थे, उन्होंने संकल्प लिया गोवर्धन पर्वत उठाना है, और अपने गोप गोपी जो साथी है उनको कहा कि यह गोवर्धन पर्वत उठाओ। जैसे उन्होंने संकल्प दिया तो बाकी सब गोप गोपियों ने मान लिया कि हां पर्वत उठ सकता है। किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कृष्ण जी को, क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा पर्वत है वो उठेगा। कोई उनके ऊपर हंसा भी नहीं कि ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी उठ सकता है,
1: और वो भी एक उंगली से।
0: और श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अपनी एक करांगुली है उसको लगाइए, और बाकी लोगों को कहा अपनी अपनी लकड़ियां लगा दो। तो अगर हमारे यहां देश के पंत प्रधान जो है, प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जो है, वो अगर संकल्प करते हैं कि हमारे भारत को, मेरे भारत को फिर से अच्छे दिन लाना है, तो कम से कम मेरी एक संकल्प की लकड़ी तो वहां लगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: एक मेरा अच्छा काम जो एक्ट ऑफ गुडनेस, 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस, मैं तो बोलता हूं सब, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, और यहां तो मोदी जी भारत को अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ भारत की बात नहीं है, अगर भारत को अच्छे दिन आते हैं तो इनडायरेक्टली सारे विश्व को आते हैं, क्योंकि भारत जो है, मेरा भारत सिर्फ महान नहीं है लेकिन भारत का जो राष्ट्रगीत है, जब यह राष्ट्रगीत मैं सुनता हूं भारत भाग्य विधाता, तब मेरे मन में आता है कि यह राष्ट्रगीत बनाते समय क्या भावना होगी, यह भारत भाग्य विधाता कैसे बन सकता है। और फिर मुझे याद आया कि सिर्फ भारत में अच्छे दिन आएंगे तो भारत के अच्छा नहीं हो, भारत में अच्छे दिन आएंगे तो सिर्फ भारत का अच्छा नहीं होगा, सारे विश्व का अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, और इसीलिए ही हम कहते हैं सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। अर्थात सर्व का भला हो, सर्व सदा सुखी।

रहे, सर्व को अच्छी काया मिले, इसमें सर्व आ जाता है। ये सर्व क्या है और स्व क्या है, इसके बारे में दोस्तों हमें सोचना चाहिए और उस सोच को कर्म में बदल देना चाहिए, लेकिन उसके बारे में चर्चा करें एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सब दोस्तों का ब्रेक के बाद अमृतधारा प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ता है। इसलिए ही जब हम सर्व के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो ये स्व का जो अच्छा चिंतन है, स्व चिंतन जो अच्छा रहता है, तो अपने आप ही हमारे साथ वो ईश्वरीय शक्ति, वो परम शक्ति, वो श्रेष्ठ ताकत भी जरूर मिलती है। क्योंकि एक कदम हमारा 100 कदम भगवान के, ऐसे कहा जाता है। ज्ञानेश्वर जी, आपका क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल सही कहा, एक कदम हमारा और 100 कदम भगवान के। लेकिन वो एक कदम हमारा आगे बढ़ना चाहिए।
1: कभी कभी क्या होता है कि एक कदम हमारा, ये पहला वाला चरण हम भूल जाते हैं और 100 कदम भगवान के यही चरण हम ध्यान में रखते हैं,
2: और इसलिए हम आंखें बंद कर देते हैं और भगवान को कहते हैं आ जाओ और बचाओ
1: जी।
2: लेकिन अगर हम एक कदम चढ़े और वो एक कदम है दृढ़ता का, वो एक कदम है संकल्पों का, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। मन से अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत आता है। और इस देखो 700 करोड़ लोगों ने अगर ये मन में ठान लिया कि ये मैं एक, मेरा एक काम जो है, मेरा एक नेक काम, मेरा एक नेक संकल्प, मेरा एक शुभ संकल्प अगर अच्छा है तो ये विश्व परिवर्तक हो सकता है। और सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में अच्छे दिन आएंगे, सुवर्ण युग आएगा। ये संकल्प अगर मैं मन में करता हूं, आप गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंसान हो यही काफी है।
1: हम सब भगवान के बच्चे हैं यही काफी है। और इसके लिए दोस्तों दृढ़ता के साथ निश्चय की भी जरूरी है। अगर हमारे पास उतना निश्चय है तो जरूर हम उस निश्चय को कर्म में ला सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, हमारी बात चल रही है अहिल्या के ऊपर।
2: बिल्कुल।
1: अहिल्या जो है, उस अहिल्या ने श्री रामचंद्र का पदस्पर्श होने के बाद क्या अनुभव किया होगा और इस बात से हमें प्रभु रामचंद्र क्या बताना चाहते हैं?
2: दो चीजें हैं ये रामायण की। जब अहिल्या की कथा मैं सुनता हूं या पढ़ता हूं तब मुझे दो चीजें नजर आती है। एक तो है अहिल्या सालों से, सालों तक उनका इंतजार कर रही है कि कब प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और उनका चरण स्पर्श मुझे होगा।
1: इस बात में मुझे ऐसा लगता है ज्ञानेश्वर जी कि जब बुरी बात हमारे ऊपर आती है ना, तो छोटा सा समय भी सालों जैसा लगता है। भले अहिल्या ने सालों साल इंतजार किया भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपका क्या ख्याल है, जब हमारे ऊपर कोई कड़ी परिस्थिति आती है, जब बुरी फेज या जिसको हम बैड फेज कहते हैं वो आती है, तो वो दिन जल्दी कटते नहीं है? शायद मुझे लगता है कि अहिल्या के लिए भी ऐसे ही हुआ होगा।
2: और भी एक उसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम मुक्त चिंतन करते हैं। आप जैसे आपने एक सोच सामने रखी है, वैसे और एक सोच हम शेयर कर सकते हैं हमारे श्रोतागण के साथ। देखिए, हम जो युगों की संकल्पना लेके चर्चा कर रहे थे, सतयुग त्रेता युग जिसे हम स्वर्ग जैसे कहते हैं, उसके बाद एक संकल्प जो है गलत संकल्प आ गया। वो गलत संकल्प है परखने की शक्ति। अहिल्या को जो श्राप मिला था गौतम ऋषि से, वो इसलिए मिला था कि अहिल्या ने, वो इंद्रदेव जो थे वो गौतम ऋषि के भेष में घर में आए थे और अहिल्या उनको पहचान नहीं पाई, वो गलती हो गई
1: जी।
2: और ये गलती की सजा जो है वो गौतम ऋषि ने उसे दी और वो पत्थर बुद्धि बन गई। उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगती है। देखिए, अहिल्या की कथा है और सीता जी की भी कथा है। अभी देखो सीता जी जब वो तो बाद में हम देखेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन सीता जी भी रावण को पहचानने में परख शक्ति कम हो गई और उनको परिणाम भोगने पड़े और वो लंका में उठा के लेके गए। यहां अहिल्या का हो क्या हो गई पत्थर बुद्धि बन गई। तो ये द्वापर युग जो है सतयुग और त्रेता युग तक हमारी बुद्धि पारस थी, क्या अच्छा क्या बुरा, बुरा तो था ही नहीं, जो कुछ था वो अच्छा था। फिर क्या हो गया द्वापर में हमारे संकल्प दूषित हो गए, संकल्प पतित हो गए और धीरे धीरे धीरे हम पत्थर जैसे बनते गए। बुद्धि जो है पारस बुद्धि थी वो पत्थर बुद्धि जैसे बनते गए
1: जी।
2: फिर जैसे गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को उस श्राप दिया, पहले श्राप दिया पत्थर बन जाओगे, फिर अहिल्या ने बताया कि ठीक है आपने श्राप दिया लेकिन कोई तो उस श्राप दो। ऐसी कथाएं जितनी हम कथाएं सुनते हैं पहले श्राप होता है, पहले ताला होता है, फिर उसकी चाबी भी हो जाती है। वैसे वो उस श्राप जो है वो उन्होंने बताया था कि राम जी आएंगे वनवास में और फिर आपको चरण स्पर्श करेंगे और आप वापस आएगी। वैसे हमारी जो पारस बुद्धि जो थी संगम युग जो है तब राम जो है आत्माओं का राम, वो अगर परमात्मा जो है वो हमें आके स्पर्श करता है, हमारे बुद्धि को स्पर्श करता है, तब यही पत्थर बुद्धि जो है वो पारस बुद्धि बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी परखने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि अगर हमने उसको भी नहीं परखा तो वैसे कि वैसे हम पत्थर रह जाएंगे। और इसीलिए शायद मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि हमने पत्थरों की पूजा करना शुरू किया। और इसलिए कहा जाता है कि पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो मूर्ति बन जाता है लेकिन इंसान रोज मंदिर में जाता है फिर भी पत्थर ही पत्थर रह जाता है।
2: क्योंकि मुझे ये लगता है कि पत्थर को तराशा जाता है तो फिर वो भगवान बन जाता है और इंसान तराशने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको तराशता है तो वो चिल्लाते रहता है और इसलिए वो भगवान का दर्शन करने के लिए रोज मंदिर में जाता है। अगर वो खुद को तराशने की कोशिश करे, खुद को तराशना कैसे है, भले आप छिन्नी और हथौड़ा लेके मत बैठिए लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे आप सुबह उठते हो, हमने जैसे वो श्लोक का देखा, वैसे अगर सुबह उठते हो तो आईने के सामने बैठ जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपना मेकअप करते रहो।
1: अच्छा, मतलब आपका ये ख्याल है कि हमारे भाई बहनें सब उठने के बाद मेकअप शुरू करें। अभी अभी तो आपने कहा था कि करों का दर्शन करें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, अभी आप मेकअप कह रहे हैं।
2: कराग्रे वसते लक्ष्मी, करों का दर्शन होने के बाद करों का काम तो होना चाहिए। वो करों का काम जो है वो मेकअप है और वो मेकअप जो है आप सुबह उठने के बाद आईने के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन वो जो आईना है वो आईना कौन सा है?
1: मन का आईना है।
2: तोरा मन दर्पण कहलाए, वो मन दर्पण जो है मन का जो आईना है उसमें खुद को देखो और फिर हम ये देख सकते हैं कि मेरी आंखें ठीक है, मेरी आंखों में आंसू है या हांसू है, आंखों में आंसू है या मुस्कुराहट है, मेरे होठों में बोल मधुर है या कड़वे है। हर चीज हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं है तो उसको मेकअप, मेकअप का अर्थ ही क्या है, टू मेक अप, जो कमी है वो भरनी है। अगर वो ऐसे हम मेकअप करते रहेंगे तो फिर अपने आप जो कमियां है वो भरती जाएगी।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको यह मेकअप करने के लिए न कोई ब्यूटी पार्लर जाना है, न कोई मेकअप का सामान दुकान से अभी अभी खरीदना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास वो सामान ऑलरेडी है और दर्पण भी हमारा है, वो भी भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तब दर्पण के साथ भेजा है। तो उस मन रूपी दर्पण में ये बहुत सुंदर मेकअप करते रहो, जो कभी मेक डाउन होगा ही नहीं, और इस मेकअप से खुद भी मुस्कुराओ और उनको भी मुस्कुराओ। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं. रेडियो दुबन 90.4 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो.

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मेकअप भी करते रहो और मेकअप भी कराते रहो। कैसा लगता है, आपने कुछ मेकअप किया? अभी जो ब्रेक था उसमें भी मैं समझती हूँ हमारे कोई प्यारे भाई बहनों ने थोड़ा सा मेकअप जरूर किया होगा। ज्ञानेश्वर जी, हमारे भाई बहन, हमारे श्रोतागण मेकअप करके तैयार है, अभी आगे क्या करना है?
2: आगे जो करना है वो आपको करना है।
1: अच्छा,
2: देखिए, जैसे हम 7 बिलियन एक्ट्स की बात किया, हमने मेकअप की बात की, तो ये मेकअप आपने जो कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम खुद का मेकअप करने के बजाय दूसरों का मेकअप करते हैं।
1: अच्छा, दूसरों का भी मेकअप करना हमें आता है?
2: हम हमेशा दूसरों का ही मेकअप करते हैं क्योंकि कमियां दूसरों की निकालते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं और अपना मेकअप ऐसा ही रह जाता है।
1: ओ, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर हम दूसरों का मेकअप करेंगे तो। दूसरे तो अच्छे बन जाएंगे और हम तो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे।
2: और इसलिए, और दूसरों को अलाउ भी नहीं करते हमारा मेकअप करने के लिए।
1: ओ,
2: ये जैसे देवताओं की आपने जो स्टोरी सुनाई थी बीच में, वो मुझे याद है कि देवताएं जो थे और असुर जो थे, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। वो विष्णु जी के पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप देवताओं को ज्यादा फेवर करते हो, असुरों की तरफ देखते ही नहीं हो। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप हमारे घर दोनों खाना के लिए आ जाओ। असुरों को भी बुलाया, देवताओं को भी बुलाया और कहा कि आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, बिना मुड़े आप खाना खा सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था।
1: लेकिन शर्त भी बड़ी अजीब थी।
2: बड़ी अजीब थी। और उसके बाद में क्या हो गया?
1: उसके बाद असुरों को पहले खाने के लिए बुलाया गया और शर्त तो दोनों के लिए ही थी। जब असुरों ने उस शर्त के अनुसार खाना खाना चाहा, तब बिचारों का हाल बेहाल हो गया। इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी, सामने बहुत सुंदर 36 प्रकार का भोजन भी था, लेकिन अगर वो हाथ ही मोड़ नहीं सकते तो फिर खाएंगे कैसे? और इसीलिए आधे पेट से भूखे प्यासे वैसे ही उठ गए और इतना ही नहीं, सारा खाना जो है वो भी बिखर गया। लेकिन जब फिर विष्णु जी ने कहा आपका हो गया है, अब देवताओं को बुलाओ, और जब देवताओं को बुलाया तब वो आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाते रहे और असुर जो है वो देखते रह गए। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरों को खुद अपना मेकअप करने को अलाउ करना, ये कहानी यही बात बताती है।
2: बिल्कुल। देखिए, अगर हम हमारा खुद का मेकअप नहीं कर सकते तो हम दूसरों का करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमें दूसरों को भी अपना मेकअप करने के लिए अलाउ करना है।
1: मतलब ये एक इसमें अच्छाई मुझे नजर आ रही है कि अगर हम दूसरों के मेकअप करने के पीछे पड़े हुए हैं,
2: बिल्कुल,
1: तो भी कोई बात नहीं।
2: सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद का मेकअप खुद करें।
1: हाँ।
2: लेकिन हमें आदत पड़ी है कि हमें दूसरों का मेकअप करना है, तो फिर हमारा मेकअप करने के लिए दूसरों को भी हमें अलाउ करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा।
1: और एक बहुत सुंदर बात मुझे मेकअप से अभी ध्यान में आई, क्योंकि एक औरत होने के नाते भले ब्यूटी पार्लर में हम नहीं गए हैं लेकिन मालूम तो सब रहता है। तो जब कोई ब्यूटिशियन मेकअप करती है, हमारी बहनें, हमारी माताएं इस बात का अनुभव ही करती होगी कि या होगा कि जब कोई हमारा मेकअप करता है तो मेकअप मन मेकअप करता है, तब हम बहुत शांति से बैठते हैं हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं देते, ऐसा करो वैसा करो, हम शांति से बैठते हैं और वो ब्यूटिशियन या वो मेकअप मैन जो है वो मेकअप करता है। क्योंकि ज्ञानेश्वर जी आजकल तो भाइयों का भी पार्लर्स निकले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसे
2: बिल्कुल।
1: नहीं, पहले जमाने में तो सिर्फ बहनें जो थी वो पार्लर्स में जाती थी, आजकल हम बोर्ड देखते हैं, मैं

0: ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई बड़े बड़े कोई हस्ती है वो गाड़ी में बैठी है और वो पूछती है क्या हो गया। फिर उनका पीए जो है वो बोलता है साहब जी ये जो ट्रैफिक जाम हो गया है क्या हो गया, देखो तो देखते हैं कि एक पेड़ जो है वो रास्ते पे गिर गया है
1: और बहुत बारिश भी है,
0: बारिश बहुत तेज है और हर कोई बोलता है ये सरकार क्या कर रही है।
1: और कोई कोई तो अपने सिर को हाथ लगाते हुए पूरा का पूरा मतलब निराश होकर बैठ जाते हैं।
0: कोई निराश होकर बैठा है,
1: गाड़ी से उतरते नहीं,
0: गाड़ी से कोई उतर नहीं रहा है और एक दूसरे को कोसते रहते हैं या सरकार को कोसते रहते हैं। ये सब होने के बावजूद हॉर्न बजाते रहते हैं, नॉइज बढ़ाते हैं, शोर शराबा करते हैं,
1: या तो पुलिस की राह देखते
0: राह देखते हैं या कोई दूसरा कोई आए और ये पेड़ उठाए। तब एक छोटा बच्चा आता है और वो जो पेड़ है वो उठाने की कोशिश करता है। पहले तो सब लोग हंसते हैं, एक छोटा स्कूल जाते हुए बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपना प्रयत्न छोड़ता नहीं। और ये देखने के बाद और उसका जो मित्र है स्कूल जाने वाला बच्चा, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और जब चार पांच बच्चे इकट्ठे आते हैं और कोशिश करते हैं तो
1: बड़े भी आने लगते हैं
0: और देखते देखते वो पेड़ जो है इतना बड़ा पेड़ है वो रास्ते से हट जाता है।
1: इसीलिए ज्ञानेश्वर जी कहा जाता है साथी हाथ बढ़ाना,
0: बिल्कुल,
1: एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये जो आप बोझ की बात कर रहे हैं, आपने जो श्री कृष्ण ने करांगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की बात की, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर भी जो ये बोझ है या कहो ये कलियुग का जो दुखमय पर्वत जैसा है, जो पर्वत जैसा लगता है, वो पर्वत भी सबके एक एक उंगली से और भगवान को साथ लेकर हम उठाएंगे तो ये पूरा पर्वत उठ जाएगा और यहाँ ही वो हेवन, वो जन्नत, वो स्वर्ग जरूर आ जाएगा जिसका इंतजार हर एक करता है।
0: बिल्कुल। और वो देखिए वीडियो क्लिप में भी एक छोटा बच्चा है और जो श्री कृष्ण की जी कथा सुनते हैं वो भी एक बच्चा है, वो प्रेरणादायी बन जाता है। वीडियो क्लिप में जो बच्चा दिखाया है और वहां श्री कृष्ण जी बच्चा होते हुए भी प्रेरणादायी हो जाते हैं। तो ये प्रेरणा हमें छोटा हो या बड़ा हो ये नहीं, उसकी उम्र नहीं देखनी है, लेकिन हमें प्रेरणा लेनी है और ये प्रेरणा से हम जिंदगी तो बदल सकते हैं, युग भी बदल सकते हैं और सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर। ये प्रेरणा देने का काम अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा ज्ञानेश्वर जी हमारे स्टूडियो में आकर कर रहे हैं और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम हमारे सारे भाई बहने कर रहे हैं, हर एक कर रहा है। दोस्तों ये प्रेरणा जब हर एक के दिल में जग जाएगी और ये प्रेरणा का स्रोत सुनते सुनते आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बन के लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे तो कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ हो, कलयुग का पहाड़ हो, वो जरूर उड़ जाएगा। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो में

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों का ब्रेक के बाद फिर से सहर्ष स्वागत है। ज्ञानेश्वर जी, मुझे एक बात का चिंतन मन में चल रहा है जो मैं आपको पूछे बिना रह नहीं सकती। वो ये कि अहिल्या जो है, जो पत्थर बन गए, जिसको श्राप मिल गया, वो श्राप इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने पति को नहीं पहचाना, उसकी परख शक्ति कम हो गई। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन इंद्र जो है, वो इंद्र जी अहिल्या को चाहते थे, ऐसे मैंने सुना हुआ है। इस कहानी का जो मूल है, स्रोत, वो ये। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने महान स्वर्ग का पद जिनके हाथ में है, इतना ऊंचा स्थान जिनका है इंद्र पद, तो ऐसे इंद्र जी अहिल्या को चाहते थे, ये थोड़ा अटपटा लगता है।
1: बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, और ये प्रश्न जो है वो हर एक के मन में आ सकता है। मेरे भी मन में आया था, जब भी मैं अहिल्या की कहानी जब भी मैं पढ़ता था, कब जब भी सुनता था या टीवी में सीरियल देखता था, तब मुझे ये प्रश्न हमेशा बचपन से आता था कि ये जो कहानी बनाते हैं, शास्त्रों में जो कहानी है, उसके ऊपर जब मैं प्रश्न हमारे बुजुर्गों को पूछता था या खुद को पूछता था, तो उसका सही तरीके से उत्तर नहीं मिलता था। एक तो क्या करते हैं, अगर हमें मालूम नहीं है तो हम, अगर समझो हमारे बच्चे हैं और हमें ये प्रश्न पूछते हैं, अगर हम उनको सही उत्तर नहीं दे सकते तो हम बोलते हैं ऐसे उल्टे सुलटे सवाल नहीं बोलना है, जो मैं बोलता हूं वो सुनो, और फिर बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन सवाल तो सवाल ही रह जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा वो स्वाभाविक है, और मुझे ये लगता है कि देखिए, अहिल्या तो मनुष्य जाति की है, अहिल्या ने जो गलती की वो मनुष्य योनि की है, और उसने गलती की, भले वो देव ऋषि पत्नी थी, गौतम ऋषि तपस्वी थे, अहिल्या भी तपस्वी थी, और उसने गलती की, लेकिन इंद्रदेव जो है वो तो देवताओं के राजा है, सिर्फ देवता नहीं है, देवताओं के राजा है। तो ये कहानी के पीछे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने ये रामायण लिखी, कुछ ना कुछ भावना होगी। और मैं अगर ये हमेशा देखूंगा कि जो कथा ये है, एक तो क्या करते हैं हम, कथा सतवचन महाराज करके जैसी की तैसी ले लेते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या जो छोटे आजकल के युवा है या बच्चे हैं या और कोई आदमी है जो बुद्धिमान खुद को समझता है, वो इन टोटो पूरी तरह से उसको खारिज कर देता है
0: जी।
1: ये बोलते हैं पुराण में जो कथा है, शास्त्रों में जो कथा है, वो मनगढ़ंत कहानियां है, उसमें कोई अर्थ नहीं है
0: जी, या तो अंधश्रद्धा कहते हैं,
1: अंधश्रद्धा कहते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे का भाव जानने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कहानी मुझे कुछ ना कुछ जचती है। अभी उसके ऊपर जब मैंने चिंतन किया तब मुझे ये लगा कि देखिए, इंद्रियों का राजा आत्मा जब जो है, जब इंद्रियों का राजा बनती है, इंद्रियों के आकर्षण से परे, जब आत्मा इंद्रियों का राजा बन जाती है तब वो देवता बन जाती है। और यहां तो इंद्रदेव जो है वो देवताओं के राजा है, लेकिन हमेशा देखिए इंद्रदेव का पद जो है वो निश्चित नहीं है,
0: उनको हमेशा शक रहता है कि मेरा पद कभी चला न जाए,
1: क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी है कि अगर किसी ने तपस्या की और तपस्या फलीभूत हो गई तो वो पद ले सकता है। तो पद पोजीशन है, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में या बड़ी बड़ी कंपनी में जो अपनी पोजीशन है, प्रमोशन मिलने के बाद एक पद होता है, समझो चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर में एक्स वाई जेड कोई भी है तो वो पद पा सकता है, और बाकी लोगों का प्रमोशन होते रहता है, वो रिटायर हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वैसे ये इंद्र पद है, इसलिए इंद्र देव के बजाय इंद्र पद कहते हैं, और दूसरा वो हासिल कर सकता है। अभी उसमें अगर इस तरीके से अगर ये कथा को मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि इंद्रियों के आकर्षण से परे, जब मैं जाता हूं तपस्या करना क्या है, तपस्या करना है इंद्रियों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है
0: जी।
1: और ये विजय प्राप्त करते समय अगर उसमें मैं यशस्वी हो गया, उसमें मैं
0: काबिल हो गया
1: या मुझे उसमें
0: जीत पाई,
1: हासिल किया, ये जीत मैंने हासिल की, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की कला या जीत मैंने हासिल की, तो मुझे इंद्रपद मिल सकता है। इंद्रपद मीन्स ए पोजिशन। अभी ये पोजीशन करने के लिए अगर इंद्रपद मिलना है तो उसमें क्या क्या कठिनाई आ सकती है। जब मैं तपस्या के लिए बैठता हूं तो मेरे मन में बुरे संकल्प आ सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: मेरे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, और ये नकारात्मक विचार है वो श्राप के रूप में मुझे, मेरे तपस्या को भंग कर सकते हैं
0: और मेरा इंद्रपद जो है वो चला जाएगा।
1: तो अभी ये जब टेक्निकल शब्द है उसको काव्य में फिट नहीं होते। जब मैं कोई काव्य रचता हूं, क्योंकि ये काव्य महाकाव्य है, ये तो सिंपल काव्य नहीं है, महाकाव्य है, इसलिए ऐसे महाकवि, ऐसे तपस्वी, ऐसे ऋषि वो कुछ ना कुछ संदेश वो काव्य से देते हैं। और मुझे लगता है ये अहिल्या की जो कथा है उसका संदेश जो दिया है वो ये है कि मुझे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है।
0: इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि हम सब अहिल्या है, या हमारे मन में, हरेक के मन में अहिल्या छिपी हुई है।
1: बिल्कुल, हम सब अहिल्या है
0: जी,
1: और अहिल्या है, तप करते हैं, और इंद्र जो है, इंद्र कोई इंद्रदेव जो है, वहां की कथा का इंद्रदेव तो है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में देखे तो इंद्रदेव जो है वो अलग अलग प्रकार के भेष लेके, ये जो हमारे पास संकल्प आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो अलग अलग तरीके से आते हैं
0: जी,
1: अलग अलग भेष बदल के आते हैं, अलग अलग चेहरों से आते हैं, और वो नकारात्मक संकल्प जो है वो हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम परीक्षा पास हो जाते हैं तब हमारा गायन हो जाता है, और अगर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, तब हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं।
0: और अहिल्या जैसी इतनी महान हस्ती जो पतिव्रता थी, जो स्वप्न में भी नहीं ये हो सकता कि वो अपने पति को नहीं पहचानेगी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन फिर भी उसके हाथ से भी यह छोटी सी भूल हुई जिसका बहुत बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ा। वैसे ही मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, हम भी कभी कभी खुद को बहुत विद्वान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है जिंदगी में, लेकिन कब किस प्रकार से ये माया रूपी रावण जो है, या हमारी परख शक्ति जो है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हम उसमें फेल होने की संभावना है।
1: एकदम सही कहा आपने। और ये इंद्रदेव मीन्स इंद्र रूपी, इंद्रिय रूपी आकर्षण जो है, हमारे इंद्रियों का आकर्षण जो है, वो आकर्षण हमें कहीं ना कहीं फंसा देता है
0: जी।
1: चाहे वो मोह हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, कौन से रूप में आए वो पता नहीं चलता। और उसी समय हमें अलर्ट होना है, उसी समय हमें देखना है कि हमारा कोई ऐसे मायावी व्यक्ति या मायावी विचार हमारे मन में ना आए, और हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए उनको षड रिपु कहा जाता है, रिपु अर्थात शत्रु, और शत्रु तब हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है जब हम शत्रु को नहीं पहचानेंगे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास जो शुद्ध संकल्प है, उन शुद्ध संकल्पों को सदा करते रहना है, उन शुद्ध संकल्पों के द्वारा अशुद्ध संकल्प या जो इंद्रियों की जो आसक्ति है, उस आसक्ति पर विजय प्राप्त करना है, तभी हम भी ऐसे ही महान बन जाएंगे। दोस्तों, अब समय है वाणी को विराम देने का। इसके साथ ही हम आपसे बार बार यही बताते रहेंगे कि इस अमृत धारा का जो महान स्रोत है, वह स्रोत हजारों तक पहुंचाने के लिए आप भी इसका एक हिस्सा बन जाओ। अब फिर से मिलते रहेंगे अमृत धारा के द्वारा। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एकाग्रता की चर्चा विद्यार्थियों के लिए हो रही थी और जिसमें मेडिटेशन की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोगों ने सुनी, सीखी, इनका अभ्यास आपने अवश्य किया होगा। जब एकाग्रता की हम बात करते हैं तो इसके साथ एक जुड़ी हुई और बात सामने आती है जो विद्यार्थी वर्ग की आज विशेष समस्या बनती जा रही है, और वो है स्मरण शक्ति की कमी। पढ़ते तो बहुत अच्छा है बच्चे, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई बच्चे साथ साथ पढ़ते पढ़ते भी भूलते जाते हैं। पाठ पढ़ा और पीछे का सा पाठ होता जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ते पूरे साल हैं लेकिन जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां जाकर के भूल जाते हैं। तो स्मरण शक्ति का ह्रास या स्मरण शक्ति का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थी वर्ग के सामने, और जहां कहीं भी आप जाते हैं तो एक बात अवश्य उठ करके सामने आती है टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा कि आप विद्यार्थियों को जरूर स्मरण शक्ति का विकास कैसे हो ये बताएं। तो हमारे साथ भ्राता जी हैं, आदरणीय सूर्य भाई जी, हम उन्हीं से इसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बातों को सुन के, विशेष करके पिछली बार जो मेडिटेशन की बातें आपने बताई और प्रैक्टिकल कराया भी, वो करके वो बहुत आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छे फीडबैक न केवल स्टूडेंट्स के बल्कि उनके पेरेंट्स के भी आ रहे हैं। भ्राता जी, एक और विशेष चर्चा जो समस्या है विद्यार्थियों की, वो है स्मरण शक्ति की कमी। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति, इन दोनों का भी क्या आपस में कनेक्शन है?
1: हाँ, देखिए, है ही। कोई भी बात जब बहुत ध्यान से सुनी जाती है
0: जी।
1: तो वो अंदर चली जाती है। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि 10 साल पहले कोई चीज बहुत ध्यान से सुन ली गई थी,
0: जी
1: वो भूल ही नहीं रही है।
0: बिल्कुल।
1: लोगों को सब कुछ भूलता है लेकिन वो एक बात याद करने की जरूरत नहीं, वो बार बार याद आ रही है।
0: जी।
1: तो जितनी अच्छी कंसंट्रेशन किसी चीज में हम देते हैं उतनी ही अच्छी वो चीज हमारी मेमोरी में समा जाती है।
0: जी।
1: दोनों का बहुत गहरा संबंध है।
0: जी जी
1: परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारी मेमोरी पावर है ये हमारी बुद्धि का विषय है।
0: जी।
1: देखिए, पहले दिन से हमने थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डाला। तीन चीजें हमारे पास हैं,
0: जी
1: मन, बुद्धि और ब्रेन, मस्तिष्क।
0: जी
1: बुद्धि को डिफाइन करना मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन काम रहा है। मैंने पढ़ा था, 10 डेफिनेशन दी थी,
0: जी
1: स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुए कि मन और बुद्धि हैं हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां,
0: जी
1: और वो काम करती हैं ब्रेन के द्वारा। ब्रेन है हमारी एक इंजन, एक मशीन, एक कंप्यूटर।
0: जी
1: तो तीनों का ठीक होना जरूरी है
0: मतलब
1: मेमोरी पावर
0: मन
1: के
0: और
1: लिए।
0: बुद्धि सूक्ष्म है,
1: हाँ,
0: ये स्थूल रूप नहीं है,
1: नहीं
0: जैसे
1: है,
0: फिजिकल फॉर्म इनका
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है, ब्रेन का एक फिजिकल
1: फिजिकल
0: फॉर्म है।
1: फॉर्म है।
0: जी
1: तो मेडिकल साइंस या मनोविज्ञान

0: मुक्त,
1: जी
0: बहुत एकाग्र। तो अगर ये तीनों हमारे पास ठीक हैं,
1: जी
0: तो सच तो ये होगा कि एक बार जो हम पढ़ लेंगे वो हमें याद ही रहेगा।
1: जी
0: और फिर भी अगर मान लो एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, तो दो चार बार पढ़ने से याद होने लगेगा। तो
1: जी
0: मूल चीज हमें इन तीनों को ठीक रखने पे ध्यान देना चाहिए।
1: जी अपनी ब्रेन को हम हेल्दी रखें, साथ ही मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखा जाए और बुद्धि में भी गंदगी ना डाली जाए, उसे क्लीन रखा जाए। एक बहुत सुंदर बेसिक बातें आपने बताई हैं ब्राता जी। और क्या क्या कारण आप देखते हैं, जैसे आपने देखा और आपने आप अपने जमाने में आपने देखा होगा कि बच्चों में ऐसी समस्या शायद कम रही होगी, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने में आती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी आके होमवर्क भी करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी यदि जब वो टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं या कल जो उन्होंने पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करते हैं या कुछ पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं मिस हो गया होता है, तो ये क्या कारण है ऐसे जिसके कारण स्मृति शक्ति का ह्रास होता है?
0: देखिए, ये बुद्धि और ब्रेन
1: जी
0: दोनों ही हर मनुष्य के पास बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सबके पास अलग-अलग भी हैं।
1: जी
0: किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ है तो किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ।
1: भाई साहब, इसे
0: ब्रेन,
1: हम IQ कह सकते
0: हाँ,
1: हैं
0: इसको
1: जो?
0: आईक्यू कहते हैं,
1: जी
0: इसको ही आईक्यू कहते हैं। और किसी का ब्रेन, अब देखो, ब्रेन का निर्माण माँ बाप के द्वारा भी हुआ है,
1: जी
0: तो इसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं पूर्व जन्मों के। तो ब्रेन किसका कैसा गर्भ से ही बना है,
1: जी
0: उसमें कितनी एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी रह गई है, कौन सी चीजें कम रह गई हैं। कुछ चीजें 5 साल के बाद दिखाई देती हैं कि बच्चे में ये कम है,
1: जी
0: कुछ 10 साल के बाद कमी दिखाई देती है, तो कुछ 30-40 साल के बाद भी कोई कमी उभर कर सामने आ जाती है।
1: जी
0: तो ये ब्रेन तो ऐसी एक चीज है जिसको सारे संसार की मेडिकल साइंस भी केवल 10% ही जान सकी है। ये एक अपने में बहुत वंडरफुल बात है।
1: जी
0: हमारे यहाँ सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, माउंट आबू में,
1: जी
0: तो सभी एक मत से ये बात बोल रहे थे कि ब्रेन की नॉलेज तो बहुत ही कम है। हर एक के ब्रेन की रचना अलग अलग, हर एक के ब्रेन में भिन्न भिन्न जो फ्लूड्स हैं, केमिकल्स हैं,
1: जी
0: उनका सिक्रेशन अलग अलग। तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि 1 मिनट में कोई कह रहा था 800, कोई 400 केमिकल्स का सिक्रेशन होता है,
1: जी
0: चर्चा कर रहे थे। हम
1: बिल्कुल
0: उसमें नहीं जाएंगे, पर कहने का अर्थ ये है कि हर एक का ब्रेन अलग अलग, हर एक की बुद्धि अलग अलग, हर
1: जी
0: एक के मन के सोचने का तरीका अलग
1: अलग
0: अलग।
1: अलग है
0: अब
1: जी
0: इनको हमें अपने ब्रेन की क्षमता के अनुसार ही अपनी मेमोरी पावर को भी बढ़ाना है। लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे,
1: जी
0: देखिए, एक सूक्ष्म बात मुझे कहनी है सबको कि ब्रेन में, सबके ही ब्रेन में बहुत शक्ति है, लेकिन ब्रेन के कुछ हिस्से ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं,
1: जी
0: कुछ लेयर्स आ गई हैं। अगर मनुष्य अपने ब्रेन को भी एनर्जेटिक कर दे, जैसे हम मेडिटेशन के राजयोग की चर्चा कर रहे थे,
1: जी
0: तो वो लेयर्स भी हट जाती हैं, वो ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल शहरों में लाफिंग क्लब खुल गए हैं,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: बहुत जोर जोर से
1: हंसते
0: हंसाया
1: हैं
0: जाता है,
1: बिल्कुल
0: होती तो बनावटी हंसी है। अगर मनुष्य नेचुरल रूप से खुले दिल से हटे हंसे, तो
1: हंसे
0: उसके ब्रेन के अनेक ब्लॉकेजेज खुल
1: खुल
0: जाएंगे।
1: जाएंगे बिल्कुल
0: और सभी बच्चों को ये विशेष रूप से जानना चाहिए कि टेंशन ब्रेन को ब्लॉक करती है,
1: जी
0: ब्रेन के कई केंद्र उससे बंद हो जाते हैं। इसे सभी बच्चे जो बहुत खुश रहेंगे, टेंशन कम से कम रखेंगे, उनकी मेमोरी पावर बहुत
1: अच्छी
0: अच्छी
1: होगी
0: रहेगी।
1: जी। मतलब एक स्ट्रेस की बात जो हम लोगों ने
0: हाँ
1: पहले भी चर्चा की थी कि किसी प्रकार का तनाव ना लें,
0: हाँ
1: यदि तनाव होगा तो कहीं ना कहीं उनकी स्मरण शक्ति पे इसका प्रभाव दिखाई देगा, और साथ ही आपने मेडिटेशन के बारे में कहा, मेडिटेशन यदि करते रहेंगे तो जो ब्लॉकेजेस ब्रेन में आ गए हैं कहीं ना कहीं वो तो सूक्ष्म है, दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे और
0: हाँ
1: उन्हें पढ़ने में भी मन लगेगा और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति
0: मैंने
1: भी
0: पहले भी
1: बढ़ेगी।
0: जोड़ा था
1: जी
0: कि एक तो लाफिंग की बात है,
1: जी
0: तो लाफिंग तो एक स्थूल चीज है, पर खुश रहने से
1: जी
0: ऑटोमेटिकली वो खुलते रहते हैं। फिर भी बच्चे हंसे भी जरा खुल के,
1: जी
0: खेल कूद में भी और डांस करने से भी और अच्छा गीत गाने से भी, अच्छे म्यूजिक सुनने से, इन
1: जी
0: सब से भी ब्रेन के ब्लॉकेज खुलते हैं।
1: जी
0: लेकिन मैं

0: बहुत अच्छे जो मुझे इसके लोगों के साथ अनुभव हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जो हमारे देश में बहुत आजकल प्रचलित हो गए हैं, उससे हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगती है, उससे भी ब्रेन के ब्लॉकेज बहुत खुलते हैं। और जैसे हम पहले चर्चा करी आए हैं, एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, इससे भी हमारा ब्रेन बहुत हेल्दी रहता है।
1: जी,
0: इन पे सभी माँ बाप ध्यान दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई कारण आपको लगता है प्रताप जी कि जो हमारी जो ब्रेन की शक्तियां हैं वो तो हैं ही जैसा आपने कहा, लेकिन फिर भी जो स्मृति शक्ति कम होती चली जा रही है और उसके कारण हमें एक बहुत बड़ी क्षति हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों पर अवश्य ध्यान दिलाएं।
0: बुद्धि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है
1: जी,
0: अब बुद्धि में जितनी निगेटिविटी किसी बच्चे ने भर ली, गंदगी जो हम चर्चा कर आए आज, गंदगी डालने वाली चीजें हमारे घरों में, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्रेन में तो एक मैप बनता रहता है ना, एक पिक्चराइज होती रहती हैं चीजें उसमें, और वो फिर हमारी बुद्धि को इतना भरपूर कर देती हैं कि और जो अच्छी चीजें हम उसमें डालेंगे वो साथ साथ बाहर निकलती रहती हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को व्यर्थ चीजों से मुक्त रखना, व्यर्थ सीन न देखना, व्यर्थ दृश्यों की कल्पना न करना, व्यर्थ विजुअलाइजेशन न करना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है, इससे मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाएगी।
1: आप एग्जांपल भी दिया करते हैं भ्राता जी कि जैसे यदि हमारे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 40 GB है और ऑलरेडी हमने 40 GB का मटेरियल उसमें डाल दिया है, या अपने कार्ड में हमने यदि उस 4 GB का है या जो भी है कार्ड भरपूर कर दिया है, तो फिर से उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये बहुत सुंदर और गहरी बात सूक्ष्म आपने कही, यदि व्यर्थ की चीजें देख के हमने अपनी बुद्धि को ऑलरेडी भर दिया है तो अब नई चीज अंदर नहीं जाएगी और फिर स्मरण शक्ति की तो बात ही नहीं रह जाती है। एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। इसके अलावा कोई और चीज जो स्मरण शक्ति को ह्रास कर रही
0: है? अब देखें मन पर
1: जी,
0: अब तीसरी जो हमारी शक्ति हो गई वो है मन। तो मन के विचार जितने ज्यादा चलते होंगे तो मन की शक्तियों का ह्रास होता रहता है। और देखिए मेमोरी भी जो आएगी, मेमोरी पावर जो है वो माइंड के रूप में ही तो काम करेगी, ब्रेन उसका स्थूल रूप, बुद्धि उसकी बड़ी सूक्ष्म चीज जिसमें भर जाता है सार रूप में, और स्थूल उसको जो कार्यरत करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो है मनुष्य का मन। तो मन को भी बहुत अच्छा रखें, उसके विचार अच्छे रखें, जैसे मेडिटेशन की हमने बातें की, उसे विचार सुंदर होंगे, विचार शुद्ध होंगे, तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी मेमोरी पावर को बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों।
1: जी जी, बहुत सुंदर प्रताप जी। क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं? अब कारण तो ये आपने बहुत सुंदर बताया जिन पे ध्यान जरूर देंगे विद्यार्थी, लेकिन क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? मान लीजिए मैं हूँ, क्लासरूम में हूँ, पूरी तरह से जो पढ़ाया गया उसे क्या मैं इनकोड कर सकता हूँ? क्योंकि ये तीनों चीजें हैं स्मरण शक्ति में प्रताप जी, एक तो इनकोडिंग जो चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है हम अपने अंदर डाल रहे हैं, दूसरा स्टोरेज हम कितना स्टोर कर पाते हैं, और फिर रिट्राइवल अर्थात हम भविष्य में कितना उसे समय आने पे याद कर सकते हैं। बात यही है इन तीनों चीजों पे। तो क्या ऐसी युक्तियां हो सकती हैं कि जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े हम उसे रिकॉल कर सकें?
0: हाँ देखिए, उसकी विधि तो है ही, वो मैं मेडिटेशन की एक बात और सभी बच्चों के सामने रखूंगा, बहुत सिंपल है, बच्चे आराम से उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं एक चीज पहले और देना चाहता हूँ कि पहले बच्चों को अपने सब्जेक्ट में फुल इंटरेस्ट होना चाहिए।
1: बहुत सुंदर।
0: इंटरेस्ट अगर कम होता है और या उनकी बुद्धि थोड़ी रिजेक्ट कर रही है उस सब्जेक्ट को, और उन्होंने पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है मैथमेटिक्स, बड़ी मुसीबत है, तो ये तो मेरे से होता ही नहीं, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है ये तो इससे क्या होता है, उनका इंटरेस्ट लूज होता रहता है। लेकिन वो अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट भी करें कि नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है और मुझे इसमें होशियार होना है, मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। तो एक हुआ पहले इंटरेस्ट, दूसरा हम बहुत अटेंशन देंगे उन चीजों पर, अटेंशन का ही संबंध कंसंट्रेशन से है। सिलेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा हो, सिलेक्शन माना भाई ये हमने मान लो मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है जो भी हार्ड लग रहा है, फिजिक्स है, नहीं ये मेरा अपना सिलेक्शन है और मुझे इसमें परफेक्ट होना ही है, मेरी सब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें, तो एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करें। इंटरेस्ट क्रिएट होने से अटेंशन बढ़ता है
1: जी,
0: तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज बच्चों में क्या हो गया है कि वो रटना चाहते हैं हर चीज को। मैंने देखा एमए कर लिया इंग्लिश से
1: जी,
0: लेकिन इंग्लिश ही गलत लिख रहे हैं, बोलनी तो जरा भी नहीं आती
1: जी।
0: तो इसमें क्या है कि उन्हें ये है कि हमें रट रटा के अच्छे मार्क्स ले आने हैं, लेकिन बच्चे ये सीखें, एक अटेंशन दे दें कि हमें अंडरस्टैंडिंग से अपनी नॉलेज बढ़ानी है।
1: बिल्कुल,
0: तो कोई भी चीज चाहे वहां वो क्वेश्चन आंसर करें अपने टीचर से, ये क्यों,
1: बिल्कुल जी, क्यों? होता यही है। कई बार बच्चे डर की वजह से या फिर संकोच की वजह से कि भाई मेरे साथी विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि इसे इतना भी नहीं आता, ये तो बुद्धू है, या टीचर की डर से कि इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, पूरी रामायण हो गई और सीता कौन है ये पूछ रहे हो, तो ये एक भय कहीं ना कहीं उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग वाली जो आपने पहलू कही सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ नहीं पाते हैं इसलिए शायद वो उसको याद भी नहीं कर पाते,
0: भूल जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को मनुष्य समझ लेता है उसको महत्व देता है उसमें भी उसका इंटरेस्ट जाएगा और वो उसकी मेमोरी में छप जाएगी। मैं इसमें एक छोटी सी विधि और जो मैं बहुतों को कराता हूँ अपने यहाँ भी कि जो चीज उन्हें याद करनी है ना, मान लो कोई अच्छी चीज है और उन्हें भूल रही है, वो उसे 7 बार लिखें।
1: कोई भी अच्छी चीज
0: जो उन्हें याद करनी है,
1: याद करनी है जी,
0: मान लो एक लेसन ही है या कोई सिद्धांत है
1: जी,
0: उसके सब थोड़े ऐसे हैं बच्चों को रटने पड़ रहे हैं, रटे नहीं जा रहे हैं या बार बार भूल रहे हैं
1: जी,
0: तो किसी भी टाइम या सवेरे उसको 7 बार लिखें,
1: अच्छा
0: तो याद रहने लगेगा
1: जी।
0: या दूसरा तरीका अपनाएं, उसको 7 बार बोलें, थोड़ी आवाज से बोलें
1: जी,
0: तो वो मेमोरी में छप जाएगा। ये चीजें छपती हैं और बचपन काल में बोलने से बहुत अच्छी तरह छपती हैं
1: जी,
0: लिखने से भी कई बार लिखने से वो बहुत अच्छी तरह छप जाती हैं
1: जी,
0: इससे भी उनको याद रखने में बहुत मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल, तो या तो बोल करके इस चीज को याद करने की कोशिश करें या फिर लिखें, तो लिखने का भी प्रभाव ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति पे पड़ेगा। प्रता जी, इंटरेस्ट की जो बात आप कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें करनी भी हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो रहा होता है। अब देखिए, मूवी हम बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, कौन विलेन था, आदि आदि, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है। या स्पोर्ट्स की बात है, मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन सी टीम का कैप्टन कौन है मैं, या पूरे 11 मेंबर्स की टीम मैं बता सकता हूँ, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट्स की बात यदि करें, उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं उसे स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थी क्या करे?
0: हाँ, देखिए वही बात जो मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है
1: जी,
0: कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ देशों में ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है और हमारे देश में भी ये होना चाहिए कि बच्चों की चॉइस क्या है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एक टेबल पे ही बहुत सारी चीजें रख दी जाती हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है
1: उनका इंटरेस्ट
0: किस चीज में, वो बंदूक उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, किताब उठाते हैं, खिलौने उठा रहे हैं, खाने पीने की चीज उठा रहे हैं, अच्छे कपड़े उठा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जो उनकी जो एक मेंटेलिटी है उसको पहचानने में उन्हें बहुत अच्छी मदद करती है। तो ये तो समस्या रहेगी कि हर बच्चे का इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में नहीं होगा। मान लो एक बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत है और हम उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिला रहे हैं तो वो उसको हार्ड तो पड़ेगा ही।
1: जी, दो पक्ष आते हैं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। एक समय होता है, एक समय तक, जबकि सारे ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मैथ मुझे नहीं बन रहा है। जब मुझे चूज करने की बात आती है तब तो ठीक है कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम है या बायो में प्रॉब्लम है तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ या मुझे कुछ और चीजें सेलेक्ट कर, तो वहां तो एक चॉइस की बात है। लेकिन इस दरमियान जबकि मेरे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है, वहां क्या करें?
0: देखिए, वहां यही करना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो उस पे तो हमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन पास तो सभी सब्जेक्ट में होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और ये प्रॉब्लम आएगी कि मान लो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और उसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट है, उसके कम मार्क्स हमें बिल्कुल असफल कर देंगे, तो उसपे भी इतना ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट उसमें नहीं क्रिएट हो रहा तो उसको याद कर लें, कुछ चीजों को रट लें।
1: लेकिन फिर तो वही बात आ जाती है कि हम रट रहे हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात को शामिल नहीं किया जा सकता कि वो अपने टीचर के साथ बैठ करके थोड़ा सा उस विषय को समझने की कोशिश करे, या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके, मतलब उस विषय को हवा ना बना करके उसे समझने की कोशिश करे, तो क्या वो सफलता प्राप्त कर सकता है?
0: बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल वो आपस में बहुत अच्छी उस पर लेन देन कर सकें, डिस्कस कर सकें, तो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो क्या इस ढंग से पढ़ाना जानते हैं कि वो हर चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर दें बच्चों में? अगर हमारे शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, जो है नहीं
1: जी,
0: उनका तो काम है सिलेबस में जो है वो सुना दिया, आगे पढ़ा दिया, लेकिन अगर सचमुच टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को उसमें होशियार बना सकते हैं। ये ठीक है कि कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जो बच्चे का संस्कार ही ना हो, उस पे तो उसको जबरदस्ती लाया नहीं जा सकेगा, पर ये समस्या किसी हद तक हल की जा सकेगी।
1: जी जी जी, मतलब थोड़ा सा विद्यार्थी भी अपनी तरफ से प्रयास करे उस चीज को समझने का, टीचर्स भी उस विषय को थोड़ा सा हल्का करके, मनोरंजक बना करके विद्यार्थी को देने का प्रयास करें, ताकि ताकि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। जैसे भ्राता जी, मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो बहुत ही बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी को भी 100 तक का पहाड़ा सिखाने वाले भी ऐसे टीचर्स हैं, ऐसा उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो थोड़े समय में ही कैसे वो 100 तक का पहाड़ा पढ़ा सकते। फिर आप उस विद्यार्थी से कहीं से भी पूछ लो, तो ये बात तो आपकी बहुत सही है कि यदि टीचर्स को भी यदि कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो विद्यार्थियों की इस समस्या को सॉल्व कर दे, क्योंकि शायद विद्यार्थी उस लेवल का भी ना हो उसकी बौद्धिक स्थिति, लेकिन टीचर्स इसमें काफी अच्छी उनकी मदद कर
0: अभी
1: सकते
0: हैं। अभी एक टीचर मिले जो चैलेंज कर रहे थे कि मैं 3 घंटे में बच्चों को इंग्लिश सिखानी प्रारंभ कर देता हूँ, और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वो इंग्लिश से लव करने लगते हैं और उन्हें फीलिंग होने लगती है नाउ इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट फॉर मी, आई कैन लर्न एवरीथिंग। तो बच्चों की बात तो देखो, वो छोटे हैं, वो खुलते भी नहीं है, कई बच्चे शर्मीले होते, कईयों को तो पता भी नहीं ना कि हमें टीचर से पूछना भी चाहिए क्या। तो ये काम ऊपर की ओर से अगर होगा तो हर चीज के लिए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकेगा।
1: जी जी जी, और बात रही भरत जी अटेंशन की भी, तो अटेंशन अर्थात एकाग्रता की बात तो हम काफी कर ही चुके हैं कि वो अपने आप को एकाग्र करें बाहरी बातों से निकाल के। बात रही सिलेक्शन की, तो एक सिलेक्शन का जो दौर है, एक सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन भरत जी क्या ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे तक कोई लेक्चरर हमें स्पीच दे रहे हैं या अपने विषय के बारे में बता रहे हैं, और मे बी वो बोरिंग भी हो सकता है लेकिन मुझे करना भी है, तो ऐसे में जो सिलेक्शन है कि कुछ विशेष बिंदुओं को यदि वो सिलेक्ट कर लें तो शायद मेमोरी उनकी अच्छी हो सकती
0: हो
1: जी,
0: के लंबी चौड़ी बातों को ना लेकर तो 5 बातें चुन लें उनमें से
1: जी,
0: और उन 5 बातों को याद करें, सिलेक्ट कर लें, तो वो उनकी मेमोरी में छप जाएगी।
1: भ्राता जी, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने स्मरण शक्ति के लिए एक बहुत सुंदर सा एक स्वरूप बनाया था विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस पे आप भी प्रकाश डालें कि स्पिरिचुअल फील्ड से किस प्रकार से मदद की जा सकती है बच्चों को, और वो है आंसर। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति के कैसे बढ़ाया जाए, उसके आंसर में ही आंसर है, और इसकी बहुत सुंदर डिटेल उन्होंने दी थी। आज वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि कल विस्तार से इस पर हम चर्चा करें और इस पे आपके जो व्यू है वो भी बच्चों को मिले, ताकि विद्यार्थियों की एकाग्रता बहुत अच्छी हो। राता जी, आज बहुत सुंदर बातें आपने स्मरण शक्ति के विषय में कही है, निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग इससे लाभान्वित होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एकाग्रता का कनेक्शन हमारी स्मरण शक्ति से है, और आज जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कि हमारी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, कारण कई हो सकते हैं जिनकी चर्चा भ्राता जी ने भी आज की है, लेकिन निवारण स्वरूप हम ये देखें, इंटरेस्ट हमें अवश्य पैदा करना है, हमें अपने अटेंशन को बनाए रखना है अपनी स्टडी में, साथ ही कुछ सुंदर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसके माध्यम से हम उन चीजों को स्टोर कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हम उन बातों को समझने की कोशिश करें, न कि रट्टा लगाएं, अन्यथा आपकी भी स्थिति थ्री इडियट्स के चतुर के जैसी हो जाएगी। आप सबने वो मूवी देखी होगी। रट्टा ना लगाएं लेकिन समझने की कोशिश करें। तो आज यही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ समाधान में बने रहें। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जब स्वस्थिति अच्छी होती है या जब स्वस्थिति नीचे होती है तो क्या अंतर होता है। दो पंक्तियां मैंने कल किसी को बोलते हुए सुना था और मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। अगर हमारी स्वस्थिति बहुत लो होती है तो परिस्थिति हमें परिस्थिति लगती है, अगर वो थोड़ी ठीक होती है, हम ओके महसूस कर रहे होते हैं, ठीक महसूस कर रहे होते हैं, तो समस्या हमें चैलेंज लगती है। और अगर हमारी स्वस्थिति बहुत अच्छी और पावरफुल होती है तो समस्या हमें अपॉर्चुनिटी लगती है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। सुबह हो चुकी है, सुनहरी और बहुत ही सुंदर। तारीख है आज 17 मई और दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं 7:34। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लेते हैं, परसीव करते हैं, ये भी हमारे ऊपर है। समस्याएं हमें हिलाती हैं, जुलाती हैं, कई बार हमें नीचे गिराती भी हैं, लेकिन हम उठना सीख लेते हैं अगर अपने को हम हौसला देते हैं, जोश देते हैं, याद दिलाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ दुआएं हैं। अपने आप को बहुत सारे रिमाइंडर देने पड़ते हैं कई बार, लेकिन लेकिन लेकिन जब वो रिमाइंडर्स मिल जाते हैं और हम अब उस महसूसता में होते हैं कि मैं हूँ पावरफुल और मैं फेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर वो समस्या से चैलेंज और चैलेंज से अपॉर्चुनिटी बन ही जाता है, यानी कि एक अवसर बन जाता है आगे बढ़ने का। कहते हैं ना कि जो वो घुड़सवार क्या गिरे, जो घुटनों के बल चले, यानी जब हम निकलते हैं आगे बढ़ते हैं जीवन में तो समस्याएं तो आती हैं, चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आते कि वो हमें नीचे कर दें या हमें पीछे कर दें, बल्कि वो इसलिए आते हैं ताकि वो हमें उड़ाकर और आगे ले जाएं। जी हाँ, आगे बढ़ने के लिए नहीं तो हमें शायद वक्त लगता, सीखने की शायद हम कोशिश ना करते, लेकिन जब चैलेंज आता है तो हम सीखते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, खुद की बाउंड्रीज को और पुश करते हैं और मेहनत करते हैं और हिम्मत हमारे अंदर बढ़ती जाती है, अनुभवी हम बनते जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों का भी धन्यवाद है जो आई, लेकिन हमें भले ही उस वक्त लगी ये बहुत बड़ी हैं, इन्होंने हमारे जीवन को हिला दिया है, हमें हलचल में ला दिया है, लेकिन उन्होंने हमें अल्टीमेटली आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ दोस्तों हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं बहुत सुंदर सा एक गीत लौट कर आएंगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू जारी रहेगा, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। और दोस्तों वक्त हो गया है मौसम के मिजाज जानने का। जी हाँ, देखते हैं मौसम के हालचाल क्या रहने वाले हैं। वैसे तो हम सभी वाकिफ हैं कि भाई गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मियों के लिए तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। मटके में पानी आ चुका है या फ्रिज में पानी बोतलों में रखा जा चुका है और बार बार घर पर ये बोला भी जाता है कि बोतल से अगर पानी पियो तो भर के ज़रूर रखना। कूलरों में भी पानी भरने लगा है और इंतज़ार होने लगा है कि क्या थोड़ी सी ठंडी हवा चलेगी बाहर तो हम भी थोड़ा बाहर निकले। जी हाँ, गर्मियों का मौसम आता है और बहुत फ़ायदे भी होते हैं। वैसे आम का सीज़न भी आता है और आम यानी फलों का राजा उसे कहा भी जाता है। तो चलिए, गर्मियों की तो बात हो गई लेकिन जान लेते हैं कि कितना टेम्परेचर रहने वाला है और कैसा मौसम रहने वाला है आज के दिन। सबसे पहले बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। झीलों की नगरी उदयपुर में आज अधिकतम तापमान रहेगा 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म दिन बीतने की आज संभावना है उदयपुर में। आबू रोड की बात करें तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 46 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म दिन होने की संभावना है आज आबू रोड में। माउंट आबू में आज अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। अधिकांश धूप खिली रहेगी। बात करें जोधपुर की तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। धुंधला सूरज नजर आएगा। मेहसाणा की बात करें तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 46 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। रात को आकाश साफ रहेगा, दिन अधिक गर्म रहेगा। अहमदाबाद में आज अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। चमकदार धूप खिली रहेगी अहमदाबाद में। तो दोस्तों, ये तो था मौसम का हाल और आज ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो टेम्परेचर रहा है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा ही नज़र आ रहा है टेम्परेचर, यानी कि गर्म रहने वाला है आज का दिन। तो आप सभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कल भी हमने इस बारे में बात की थी। जी हाँ, पानी पीते रहें, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी की जो कमी नहीं होनी चाहिए। फल आदि खाएं, कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको और गर्म करें और परेशान करें। अमूमन फ्राइड चीज़ें, इन सब चीज़ों से और तकलीफ होती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को हेल्दी रखें इस मौसम में भी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अंतराल की ओर, सुनते हैं एक बहुत ही मीठा सा भजन, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू जारी रहेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लौट कर आ गए हम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू. और दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुबह है. आज जब मैं देख रही थी खिड़की से तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे पहाड़ कितने शांत हैं और हवाएं उन्हें छू कर निकलती हैं और कितनी खूबसूरती से वो सजा देती हैं प्रकृति को. जब पेड़ हिलते हैं, पत्तियां हिलती हैं और एक एक पत्ती भी जैसे खिल उठती है सुबह की उस हवा को पाकर. साथ साथ जब भी हम देखते हैं इन फूलों को और पत्तियों को आपस में साथ साथ, तो प्रकृति की तारीफ करने का दिल में ख्याल आ ही जाता है कि कौन है वो जिसने इसकी रचना की होगी. इतने सुंदर सुंदर रंग बनाए होंगे. एक एक फूल को भी देखें तो लगता है कि एक पत्ती है अगर मान लीजिए पिंक कलर की, तो उसमें और एक पर्पल शेड है और फिर छोटी छोटी स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं. कितना सुंदर, कैसे जैसे किसी ने डिज़ाइन किया होगा इसको. और ऐसे न जाने कितने फूल हैं, न जाने कितनी वैरायटी है, न जाने कितने पेड़ पौधे हैं, न जाने कितनी पत्तियों के भी टाइप्स हैं. हरा कलर में ही इतनी वैरायटी है, इतनी अलग अलग शेप्स हैं, इतनी सुंदरता कहाँ से आई है. और प्रकृति सच में हमारा दिल जो है वो बाग बाग कर देती है अगर सच में थोड़ा समय उसके साथ बिताया जाए तो. आश्चर्य भी होगा और साथ साथ सुकून भी मिलेगा. चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज याद कर रहे हैं हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को जिनका जी हाँ, जिनकी आज जयंती है. कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को हम याद कर रहे हैं जिसमें पहला नाम है धीरेंद्र वर्मा जी का, जो कि हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे. इनका जन्म हुआ था 17 मई को 1897 में. कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, वही कार्य हिंदी शोध के क्षेत्र में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था. जहां एक तरफ हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे, वहीं दूसरी ओर एक आदर्श प्राध्यापक भी थे. भारतीय भाषाओं में समृद्ध समस्त शोध कार्य के आधार पर उन्होंने 1933 में हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा था. फ्रेंच भाषा में उनका ब्रज भाषा पर शोध प्रबंध है जिसका अब हिंदी अनुवाद भी हो चुका है. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की कृतियां अनेक हैं. हिंदी भाषा का इतिहास अपने समय तक के आधुनिक भाषाओं में संबंधित खोज कार्य के गंभीर अनुशीलता के आधार पर लिखा हुआ है.

उन्होंने अपने अनुभव अभिनय को दर्शाया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और सुंदर गीत की ओर आपको लिए चलते हैं। लौट कर आएंगे, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आवू जारी रहेगा। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। दोस्तों अब आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन वो कहानी बड़ी मज़ेदार है, न सिर्फ बच्चों के लिए कभी कभी बड़ों को भी सिखा देती है कि जीवन में चलते चलते कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे आप। तो दोस्तों ये कहानी है एक गधे की। एक गांव में एक किसान था जिसके पास एक गधा था। गधे का नाम था आलसी। आलसी अपने नाम के अनुरूप ही बहुत आलसी था। वो हमेशा काम से बचने की कोशिश करता और दिन भर सुस्ताता रहता। किसान आलसी को खेतों में काम करने के लिए ले जाता, लेकिन आलसी हमेशा काम से जी चुराता। एक दिन किसान ने आलसी को बहुत सारा सामान लादकर बाजार ले जाने के लिए कहा। आलसी ने सोचा कि अगर वो गिर पड़ेगा तो किसान उसे काम से छुट्टी दे देगा। जैसे ही वो बाजार के रास्ते में थे, आलसी जानबूझकर गिर पड़ा और सारा सामान बिखर गया। किसान बहुत परेशान हुआ और उसे सामान फिर लादना पड़ा। इस बार किसान ने आलसी पर और भी ज्यादा सामान लाद दिया। आलसी को तब एहसास हुआ कि उसकी आलस की वजह से उसका काम और भी बढ़ गया है। उसने समझा कि काम से बचने की कोशिश में उसे और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। उस दिन के बाद आलसी ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया। उसे समझ में आ गया कि अगर आलस किया तो काम कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी कहानी थी और आपको सुनानी इसलिए भी थी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें लगता है कि कुछ चीज़ें बच्चों के लिए हैं। मॉरल्स बच्चों के लिए हैं, वैल्यूज बच्चों के लिए है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि झूठ मत बोला करो। बच्चों को समझाना चाहिए कि मेहनत किया करो। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी वो बच्चा हमेशा जिंदा ही रहता है जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें, चाहे वो बॉल से खेलना हो, चाहे बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलना हो, या फिर बच्चों की कहानियाँ पढ़ना या सुनना हो, ये हमारे लिए भी हैं, ताकि हम भी वही चीज़ें सीख सकें जो जीवन हमें सिखाना चाहता है। कहीं हम आगे बढ़ते बढ़ते वो पुराने लेसन्स, वो बातें भूल तो नहीं गए। कहीं ज़िंदगी के सफ़र में इतने बोझ उठाते उठाते सच में जो वैल्यूज़ हमारे अंदर ही हैं उन्हें कहीं छोड़ तो नहीं आए। तो इसलिए ज़रूरी है खुद को रिमाइंड कराना कि आपके अंदर भी वो बच्चा जीवित है जो कुछ सीखना चाहता है, आज भी कुछ नया करना चाहता है, थोड़ा खेलना चाहता है, थोड़ा हंसना चाहता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं एक और छोटे से ब्रेक की ओर। लौट कर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू पर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। और दोस्तों, आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें, जीवन में खुशियां बटोरते ही रहें और हमेशा आगे बढ़ते ही रहें। दोस्तों, आज एक और व्यक्तित्व है जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनका नाम बहुत ही जाना माना है और वो अगर हम गीत संगीत में रुचि रखते हैं तब तो ज़रूर ये नाम हमने सुना होगा। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं आज पंकज उदास जी को, जिनका जन्म 17 मई 1951 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय गज़ल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1980 से और हिंदुस्तानी संगीत में गज़ल की वो आवाज़ रहे हैं। गज़ल को एक नई पहचान उन्होंने दिलाई है। अगर गज़लों की बात होती है तो पंकज उदास जी का नाम ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है। चिट्ठी आई है ये गीत काफ़ी प्रचलित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कीजिए बातें, जिए तो जिए कैसे, ना कचरे की धार, इत्यादि न जाने कितने गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ से नवाजा। ऐसे महान व्यक्तित्व को भी हम नमन करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का। आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आज के समाचार भी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों के यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाऊंगा। साथियों, आज हम लोग विशेष इस एपिसोड के अंतर्गत खास बातें आपसे शेयर करेंगे, जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग करते आ रहे हैं कि नेचुरोपैथी या फिर हमारे डाइट, हमारे लाइफस्टाइल को लेकर हम लोग कितना अवेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोग जागरूक होंगे वैसे हमारी सारी चीज़ें जो है बनती जाएगी और जागरूक होने से ही हम बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कितने नॉलेज अपने पास रखते हैं। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना आप जो है खुद को समृद्ध, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। तो जब भी दुख है, दुख का कारण यही है कि ज्ञान की कमी। जब ज्ञान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा आपके पास और आप उसे अपने अंतरकरण से स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव या ज्ञान को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे एक सुकून जो है आपको मिलने लगेगा और अंतर आत्मा भी संतुष्टता फील करेगी। तो इसीलिए ज्ञान की ज्योति को हमेशा बढ़ाते जाना है, ज्ञान का आलाक जगाते जाना है। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का स्वागत है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का काम करते हैं। और आज हम लोग नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है, जो पिछले कुछ एपिसोड में हमने उनके साथ बातें की, आपको जो गर्मियों के समय में जो विशेष शरबत बनाने की बात बताई थी गुड़ और इमली का, ये जो आपको रिफ्रेशमेंट भी देता है और लू लगने से भी बचाता है। तो इस तरह के बहुत घरेलू जो टिप्स है वो आपको देते हैं। आज हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि हल्दी भी अलग अलग प्रकार की है, काली हल्दी के बारे में आज जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा जो डायबिटीज़ है या कैंसर है, इनको कैसे हम लोग मैनेज करें, क्या इसके लिए हमें एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना ही होता है या हम लोग इसको पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: नमस्कार, बहुत अच्छे।
0: जी जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस है उसमें, और ख़ास करके डायबिटीज़ है या फिर कैंसर है, और कैंसर को हमेशा देखा गया है कि वो दूसरे तीसरे चौथे स्टेज पे पता चल जाता है, शुरू शुरू में तो मालूम ही नहीं कुछ सिम्टम्स उसके होते हैं। और डायबिटीज़ भी जब पूरा आगे बढ़ जाता है तब जाके हमको पता चलता है कि ये डायबिटीज़ है। तो ऐसे में हमें अपने जीवन में इनको समझने के लिए प्राइमरी स्टेज पे क्या इसको पकड़ सकते हैं हमें?
1: जी
0: जी,
1: जैसे कि कोई भी बीमारी बनती है,
0: हाँ,
1: तो जैसे एक स्टेज के बाद आगे चल के हमें पता चलता है काफी सिम्टम्स आते हैं, तो तब तक क्या करते हैं ना, बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो है
0: वो बचा के रखते
1: हैं, वो जो है उसको जो है उस टॉक्सिन्स को या उस बीमारी को जैसे वो ढक के या उसको संभाल के रखती है, अपनी एनर्जी उसमें खर्चा करती रहती है। एंड उसके बाद जब वो मैनेज नहीं कर पाते, उसकी एनर्जी से ऊर्जा के लिमिट से जब बाहर चला जाता है और वो ग्रोथ जब अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तब जाके हमें जो है सिम्टम्स के रूप में पता चलता है। जैसे मैं सिंपल से अगर बात कहूँ तो लेट जॉइंट पेन की बात कर लेते हैं, या कमर के दर्द की बात कर लेते हैं, गर्दन के दर्द है ये चलो, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं।
0: जी,
1: लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में व्यक्ति को जब कब जब पता चलता है, मतलब पहले तो सांस नहीं फूल रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, अब उसको जिस दिन पता चला तो उस दिन एंजियोग्राफी कराने पे ब्लॉकेज कितना मिलते हैं है ना, 70% 80% 90% 100% तक के ब्लॉकेज मिलते हैं। मतलब प्रकृति ने बॉडी के ऑर्गन्स को जो है इतनी ताकत दे रखा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि एटलीस्ट 50% तक की जब तक उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते,
0: नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए अरे लास्ट ईयर तो हम वैष्णो देवी जाके पहाड़ी चढ़ के आए थे, कोई सिम्टम नहीं था, आज कैसे छाती में दर्द होना शुरू हो गया? क्योंकि वो ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है और 50% तक डेवलप हो चुका है, और उसके बावजूद भी प्रकृति क्या करते ना, मैं कोलेट्रल्स खोल देती है, माना जो मेन हार्ट की नली है उसके बाजू में से जो साइड के छोटे छोटे कोलेट्रल्स नलियां जो है, छोटे छोटे नसों में से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। वो जब स्ट्रेस फैक्टर आती है, डाइट में गलती वाला फैक्टर आता है, और साइड की नसें बंद होती है, मेन नस तो पहले से बंद था,
0: बंद था।

0: लेकिन साइड की नसों का जब ब्लड फ्लो जिस दिन कम होता है उस दिन छाती में दर्द शुरू होता है। और हमें पता चलता है कि मेन नस तो जो है पहले से ही ब्लॉक है, 100% ब्लॉक तो कितने साल से हो पता ही नहीं है। तो इसी तरह से बॉडी के हर ऑर्गन्स पे हैं। एंड अभी जो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आम व्यक्ति में जो है कैंसर कहीं ना कहीं जो है देखने के लिए जो है मतलब जो है डायग्नोसिस में आ रही है, बहुत ज्यादा डायग्नोसिस में आ रही है। एंड डायबिटिक भी जो है हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें जब पता है लाइफस्टाइल डिजीज बुला हुआ है कि परिवार में अगर किसी को डायबिटिक है तो उनको होने की, बच्चों को होने की संभावना जो है बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे सोसाइटी में जिन माँ बाप का ऑलरेडी डायग्नोस्ड है उनके बच्चे क्या उसके प्रति या उनके माँ बाप उनके बच्चे को केयर लेने के लिए कभी जो है अवेयरनेस है क्या?
1: हाँ वो भी नहीं है,
0: वो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है कि हम हाँ कोई रिस्क फैक्टर है या रिस्क फैक्टर को जो है आगे चल के 30-40 साल की एज में उनकी ना हो तो हमें 30-40 साल समय मिलता है या चलो बच्चा बड़ा होने के बाद भी 18-20 साल होने के बाद भी जो 10 साल मिलता है उसके लाइफस्टाइल को भी हम अच्छा बना दें। तो ये अवेयरनेस जो है ये जब तक समझ नहीं होगी और हमने डायबिटिक के लिए नया रिस्क फैक्टर्स जो है हमने जो है और कैंसर के लिए जो नया रिस्क फैक्टर्स हमने जो प्रकृति के नियमों पर आधारित रोग मुक्त दवा मुक्त जीवन जो हमने जिसके बारे में बेस जो उसके प्रिंसिपल्स है उसको लेके हमने जो बार बार डिस्कशंस जो किया है कि घर का खाया हुआ खाना चबा के खाया हुआ खाना किन गलतियों से जाके पेट में सड़ता है। एंड उसमें हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को रेज किया जो कि लोग जो है कंसर्न नहीं है कि अगर भोजन खाना चबा के नहीं खाते तो खाना पचने में नहीं जाएगा। लेकिन आज के अगर बच्चों को देखते हैं न्यू जनरेशन के जो है साल डेढ़ साल दो साल के बच्चे हैं जब तक मोबाइल में वीडियो चला के उनके हाथ में ना दे दो तो आज वो कोई भी जनरेशन का मतलब आज की जनरेशन का बच्चा जो है खाना खाने के लिए नहीं बैठेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बड़ों में भी खाना खाने के ऊपर मतलब हमारे अपने इष्ट को याद करके शांति से बैठ के मन को शांत करके एक खाना खाने की एक विधि थी।
1: बिल्कुल।
0: आज जो टीवी देख रहे हैं बड़े हैं तो मोबाइल चला रहे हैं फोन से बात कर रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं और सिस्टम से कर रहे हैं। पहले तो खाना चबा के नहीं खाएंगे तो कितना भी अच्छा खाना खा लो पचने में तो नहीं जाएगा। और दूसरा हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट को जो हमने किया कि आम व्यक्ति जो गलती करते हैं प्रकृति की जो भोजन पाचन व्यवस्था है अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट माना रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें चाहे उसमें पोहा आ गया उपमा आ गया चाहे ब्रेड आ गया जो भी मतलब रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बोलते हैं उसको अगर चबा के नहीं खाते हैं या उसके साथ दही छाछ टमाटर इमली अचार कोई भी खटाई नींबू आदि खटाई खाते हैं तो वो खाना जो है चबा के खाने पर भी ढंग से पचने में नहीं जाएगा। इसके बारे में हमने बार बार डिस्कशन किए हुए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार स्वागत है आपका।
2: नमस्ते कैसे हो सर?
1: बढ़िया बढ़िया है आप बताइए कैसे हैं?
2: बस हमारे नल सर को भी हमारी तरफ से नमस्ते
0: जी। नमस्ते।
2: और आप आते हैं तो हमको एक खुशी रहती है आप जो बताते हैं ये एकदम स्पष्ट बताते हैं तो इससे सबको सबको समझ में आ जाता है कि आप क्या बात कर रहे हो तो एक आपके जो हमको बहुत खुशी रहती है आपकी बातें हमको अच्छा लगता है। हम ये कोई भी घरेलू इलाज जो इलाज होता है हम अच्छी तरह से कर पाते हैं।
1: क्या बात
2: ये आपको जो बहुत अच्छी बात बताई सर कि आज बिल्कुल सही बात है आज लोग खाते खाते चल मोबाइल ही में ध्यान रखते हैं खाना में तब ध्यान नहीं रखते बिल्कुल कुछ अंदर खा जाए तो उसको भी पता है मैंने क्या खाया है तो आज मोबाइल में ज्यादा ध्यान है इसलिए सर खाना पचता नहीं है खाना अच्छी तरह से खाते ही नहीं है और खाने में जो मोबाइल में जो मन होता है तो खाने में कोई स्वाद नहीं होता सर खाना खाया नहीं खाया सब रबर है शुरू से आज ऐसा हो गया देखो बच्चों को भी मोबाइल शुरू करते हैं बाद में बच्चे खाना खाते हैं तो आज बच्चों को भी लत लग गई है बड़े तो लगती है लेकिन छोटों को भी लग गई है तो ऐसा नहीं करना है सर। और मैं एक मेरी बात बताऊँ सर की मैं 4-5 दिन पहले थोड़ा सा मैं गिर गया था तो जो घुटन में मुड़े मुझे घुटन में लगी है थोड़ी तो क्या है मैंने एक्सरे तो पढ़वाया लेकिन एक्सरे में कुछ आया नहीं है कि कोई क्रैक क्रैक नहीं है लेकिन दर्द दर्द होता है कभी कभी मैं बैठा तो वो खड़े होते भी बहुत दर्द होता है तो उसके लिए डॉक्टर ने दवाई भी दी है और वो ट्यूब लगाने की भी है मालिश करने की लेकिन 4-5 दिन हो गया कोई फर्क कभी थोड़ा कम पड़ा है
1: अच्छा
0: तो जी, आप क्या करें, जो भी तेल है तेल की मसाज करें या ऑइंटमेंट्स लगाएं, तो उसके ऊपर पतला कपड़ा डाल के, जो मोटा नमक होता है ना अपना घर में खाने वाला, या खाने वाला नमक हो या मोटा नमक हो या नमक की डली हो, उसको कपड़े में बांध के उसको गर्म करें, या नमक को गर्म करके पोटली में बांधे और उसको उसकी सिकाई करें बाद में
2: जी।
0: तो नमक का जो गुण होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, क्योंकि नमक गर्म होता है ना, तो गहराई से उसकी जो गर्मी है ना, वो गर्मी बॉडी के गहराई तक पहुंचती है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चालू करता है, और नमक की टेंडेंसी होती है वहाँ का नेगेटिव एनर्जी को भी खींच के बाहर निकालने की कैपेसिटी, और कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसको भी निकालने की कैपेसिटी है। और दूसरा, जो खून का थकाव जो जमावट होती है, जैसे बोलते हैं चोट लग गई तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया है, जमा है, तो आप क्या करें, फिटकरी को जो फुला के प्यूरिफिकेशन करने का तरीका हमने बताया हुआ है, फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए, गर्म तवा पे रख दीजिए, तो वो 5-10 मिनट में जैसे मोम पिघलता है ऐसे पूरा पिघलेगा, और उसके पानी जो है एवापोरेट होकर पूरा जो है ड्राई पाउडर बन जाएगा, उसको 15-20 मिनट लगते हैं, और बाद में जब पानी पूरा खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दीजिए और उस फिटकरी का फिर पाउडर बना लीजिए, और इसका आप आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम जो है इसका जो है पानी के साथ आप फांकी मार लें। तो फिटकरी क्या करती है ना, शरीर में कहीं भी जमा हुआ नस नाड़ी में जो खून का फ्लो है ना, उस ब्लड क्लॉट को जो है खोलने की कैपेसिटी जो फिटकरी में है, ठीक है ना। तो फिटकरी का पाउडर को खाने में प्रयोग करें, आपका जो भी ऑइंटमेंट मसाज जो भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो है नमक का प्रयोग करें, और दूसरा जो है सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, एक टाइम का अगर भोजन आप त्याग देते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर अपनी सब पूरी की पूरी ऊर्जा कहाँ पर फोकस करेगी, शरीर में जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी अपनी ऊर्जा को इन्वॉल्व करती है। इसके बारे में मैंने पहले बताया होता तो एक बार जो है मेरा ही खुद का जो है, मैं खुद कार ड्राइविंग कर रहा था और किसी गलती के कारण जो है गाड़ी जो है 2 राउंड पलटी मार के जो है एक्सीडेंट हो गई थी, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऐसे परमात्मा के छत्रा छाया था कि किसी को जो है मना खरोच तक नहीं आई थी। हाईवे में 70-80 की स्पीड में गाड़ी डाइने तरफ पे 2 राउंड लेके पलट जाना, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे जो मेरे को जो दर्द था, तो मैंने जैसे ही प्रकृति के नियम के ऊपर जैसे मैंने स्टडी कर रहा था, तो मैंने क्या किया ना, उसी टाइम पे से जो है उसको खाना का जो है मैंने खाना को त्याग दिया, जैसे कुछ भी अनाज का सेवन नहीं किया, सिर्फ पानी और अपना जो दर्द कम करने के लिए काढ़ा होता है ना, जो हम बुखार के लिए भी यूज करने के लिए बोलते हैं, दालचीनी, पुदीना, जीरा, लौंग, अदरक या अपना सौंठ है, तो ये सब को लेकर जो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना के जैसे उसमें एक आधा नीम का पत्ता, थोड़ा हल्दी भी डाल दिया, और अनाज नहीं खाया 24 घंटे के लिए, तो मेरा दर्द जो है अगले दिन जो है वो अगले दिन ठीक हो गया था। तुम बोलने का भाव है कि अगर उसी टाइम पे अगर हम फास्टिंग का भी प्रयोग करते हैं, उपवास का प्रयोग करते हैं, एक दिन जैसे हम पानी पर उपवास करते हैं, तो बॉडी की टोटल एनर्जी, पाचन से जो ऊर्जा बचता है, वो ऊर्जा बॉडी के वहाँ के डेड सेल्स को रिपेयरिंग करके वहाँ का पेन मैनेजमेंट है उसकी रिपेयरिंग के काम में फोकस करती है, लॉ ऑफ नेचर है। हम तीनों टाइम खाना खाते हुए, दर्द कम करने की गोली खाते हुए जो फायदा नहीं मिलता है, उसमें से अगर 1-2 दिन का हम उपवास कर लें, या अनाज या के बदले में सब्जियों पे रह जाते हैं, और उसको हीलिंग करने के लिए प्रकृति का सपोर्ट देते हैं, तो कैसे भी पुराने से पुराना दर्द है कम से कम समय में ठीक होने की जो संभावना बढ़ जाती है। आप समझ पा रहे
2: हैं?
0: हाँ, तो अभी आपको मैंने 2-3 टिप्स दिए भोजन के साथ खट्टाई को। मैं बोला ना, लोकल एरिया में चोट लगी है, हड्डी में चोट लगी है, तो उस दर्द को जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ इससे आपको 5-7 दिन में जो है 60-70-80% तक फायदा हो जाएगा। समझ गए?
2: नमक वाला मैं कर सकता हूँ आराम से।
0: जी जी जी
2: जी जी जी जी
0: ओके।
2: शायद एक बार बता देना, मैं टेलीफोन रख के एक बार और बता देना सर, वो नमक वाला मैं समझ पाऊँ।
0: हाँ, आप जब फोन नंबर नोट कर लीजिए, किसी को अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बाद में आप फोन से भी पूछ सकते हैं।
1: 99
0: आप रिपीट कर दो।
1: 99 2 8 2 8 4 0 4 0 9 1 9 1 9 7 9 7। तो ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 9:22 हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को हम लोग जो बातें कर रहे हैं, सुरेश जी ने भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया। जब कार्यक्रम करते हैं तो नरेश जी अपनी भावनाएं विचार जो है बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताते हैं, कोई मेडिकल टर्म उसमें होती नहीं है। घरेलू हिसाब से आप घर में जिस तरह से बातें करते हैं, अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाता है। तो आप सभी को ये कार्यक्रम इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि आपको अपनी बातें समझ में आ जाता है और आप भी अपनी भावनाओं को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छी तरह से पूछ लेते हैं। तो ये एक अच्छा शो है जहाँ पर आप अपनी बातों के साथ जो है अपने सेहत के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग शुरू में मैंने कहा था काली हल्दी के बारे में बात करेंगे। काली हल्दी तो नाम भी पहली बार सुना मैंने, हल्दी पीली होती है ये तो हमको पता है। तो ये काली हल्दी का क्या रहस्य है और आयुर्वेद में इसको क्या इम्पोर्टेंस दिया है और ये कैंसर जैसे बीमारी पर भी कैसे काम करता है? जी
3: जी, तो काली हल्दी पे भी मैं डिस्कशंस करूंगा, लेकिन जो है अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है ना। अब हाँ। इसके बाद जो है अब पूरा का पूरा टाइम में से अब ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला है ना। और दूसरा क्या होता है, जैसे माइंड का कनेक्शन जैसे हमारा होता है ना, तो जैसे आजकल जैसे यूट्यूब है, आप जैसे शॉर्ट वीडियोज जो देखते हैं और लगातार देखने के बाद हमने क्या किया, एक एक मिनट में जो है हमने मान लो कि 30-40-50 वीडियोज देख लिए। अब 50 इनपुट तो हमने डाल दिया, लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे? उसमें मान लो कि कोई काम की भी बात मिली, लेकिन नेक्स्ट सेकंड पे नेक्स्ट मिनट पे आप जो दूसरी वीडियो देख रहे हो, तीसरी देख रहे हो, अब जो लास्ट में 50-100 वीडियोस देख लिए, अब उसके बाद अमल आप किस काम पे ऊपर करने वाले हो? दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। और आज की डेट में यही हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज दिखाते हैं और ये जो दिमाग में जो है कोई डिसीजन लेना या काम करने की जो कैपेसिटी या वर्कआउट करने की जो क्रिएटिविटी की कैपेसिटी जो है ये खत्म कर रहा है।
2: बिल्कुल,
3: तो आज की डेट में जो है बच्चे अभी छुट्टी है तो जो समय क्योंकि कल से सब छुट्टियां डिक्लेरेशन के 1.5 से 2 महीना है, तो बच्चों को कैसे क्रिएटिविटी काम में लगाएं।
2: सही बात है,
3: स्क्रीन टाइम पे अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि ये अभी जैसे छुट्टियां हो गई तो बच्चों का एक रूटीन था या दूसरों का भी है, तो जो रात को 10 बजे के बाद अगर हम सोएंगे तो बॉडी की ऊर्जा रीजनरेट कैसे होगी, क्योंकि जो स्लीप साइकिल है 10 से 12 और 12 से 2, ये जो 4 घंटे का नींद में जो है डेल्टा स्लीप में जो है दिमाग जो है 10-10 मिनट के लिए, ये साइकिल में भी 10-10 मिनट के लिए डेल्टा रिदम का स्लीप जाता है, और जो कि हमारी शरीर की जो अगले दिन काम करने की जो तरोताजगी या जो ऊर्जा जो देना है ना, शारीरिक ऊर्जा या दिमागी ऊर्जा जो देता है वो 10-10 मिनट का नींद और पहले 2 साइकिल 10 से 12 और 12 से 2, क्योंकि सूरज के साथ अर्थ के रोटेशन के साथ ये साइकिल चलता है। हम चाहेंगे कि हम 12 से 2, 2 से 4 सो जाएं तो वो साइकिल एक साइकिल तो मिस कर चुके हैं और 12 बजे वाली नींद क्वालिटी आएगी ही नहीं।
2: सही बात।
3: तो ये एनर्जी जो हम डेप्लीसिएशंस कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का काम कौन करती है? प्रकृति की दी हुई जो ऊर्जा जो है, जब तक वो चालू है तब तक हम स्वस्थ हैं। अगर ये ऊर्जा को हम खत्म कर रहे हैं, और खत्म किससे कर रहे हैं, हमारे दिमागी जो थॉट्स है नेगेटिव है, वेस्ट है, या आज की डेट में जो है इंटरनेट मोबाइल के थ्रू जो जितना ज्यादा हमारे दिमाग की ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं। और दूसरा जो खाना खा रहे हैं, वो खाना हम कितना पेट में सड़ा रहे हैं, जो पच रहा है वो तो हमें ऊर्जा देगा, लेकिन पचाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्चा करने के बाद खाना अगर जाके पेट में सड़ रहा है तो जाके शराब बन रहा है और जहरीला एसिड बन रहा है, और उस जहरीले एसिड को दुष्प्रभाव को संभालने के लिए बॉडी की 300% ऊर्जा उसमें वेस्ट जा रही है। अगर उस ऊर्जा को वेस्ट जाने से हम बचा ले तो जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, बाकी अदरवाइज सिंगल सिंगल बीमारी के लिए हम जो है कोई हेल्दी या कोई बीमारी ट्रीटमेंट करने के सोचे तो फिर उसका प्रिवेंशन संभव नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस पे जो है अभी जैसे आम का सीजन आया, हमने बताया कि खाना पेट में सड़ने का, जैसे हमने बताया कि जो है एक तो हो गया कि खाना चबा के खाने की आदत को पक्का करो, अगर घर में एक संस्कार लाना है, बच्चों में कोई डिसिप्लिन लानी है, कुछ करनी है, तो उस टाइम पे टीवी देखना, मोबाइल देखना, कार्टून्स देखना, ये करना सारा करके जो खाना चबा के खाना जो है बहुत ही मना पहला ही स्टेप है कि माइंड को स्टेबलाइज करना और घर में कोई संस्कार लाने की अगर आदत का पहला सीढ़ी है तो खाना बैठ के शांति से बैठ के चबा के खाना सिखाओ। चाहे इसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे 5 से 8 के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, शांति से बैठ के खिलाने के लिए 5 से 6 महीने को पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे कोई एक दिन में परिवर्तन होने वाला आदत नहीं, खुद की आदत बदले और घर में बच्चों को जो है शांति से बैठ के खाना खिलाना सिखाने के लिए चाहे अपना टाइम देना पड़ेगा। और इस बात को बिल्कुल पक्का करें और जो है ये डिसिप्लिन को घर में लाने का करें, क्योंकि कोई भी संस्कार धारण करना है, कोई भी बच्चों में जो अच्छाई धारण करना है, तो पहला कि माइंड स्टेबल हो, मेडिटेशन दूसरा चीज सिखाएं, ये टाइम के जो है क्रिएटिविटी कराएं बच्चों से। जो है ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में बच्चों के लिए भी समर कैंप चलते हैं, अपने अपने ब्रांचेस में भी चलते हैं, हेडक्वार्टर में भी बच्चों का प्रोग्राम्स होता है, तो इस टाइम पे उनको जो है आध्यात्मिकता की तरफ जो है उस चीज के ऊपर और कुछ अच्छी चीजें सीखने की तरफ भी उनके माइंड डाइवर्ट करने की जो है जरूरत
2: है,
3: ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आम का सीजन आ गया, फल का सीजन। अब फल को खाने के साथ खाएंगे या अलग से खाना चाहिए?
2: फल को अलग से खाना चाहिए, लेकिन
3: क्योंकि
2: खाने
3: फल
2: के साथ
3: जो है फल पचने के लिए, जो अगर खाली पेट में फल खा रहे तो 20 मिनट के लिए पेट में प्रोसेसिंग होता है। अगर अनाज खाते हो तो उसका रस बनने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम में 3 से 4 घंटा है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए। लेकिन फल अगर खाली पेट में खाएंगे तो कैसे पचेगा? उसको मिनिमम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिनिमम डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, और सेल्फ पचा पचा होता है, 20 मिनट में उसका रस जो पेट में तैयार हो सकता है, और बाद में सीधे छोटे आंत में पहुंच के 1 से 2 घंटे में उसके मिनरल से, फाइबर से, न्यूट्रिशन से सीधे खून में मिलके शरीर को फायदा करते हैं। लेकिन अनाज के साथ मिला के फल खाएंगे तो क्या होगा?
2: सड़ जाएगा।
3: तो जब तक अनाज का पाचन नहीं होगा, फल को भी 3 घंटे से 4 घंटे तक पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सारे अनाज के साथ पड़ा रहना पड़ेगा। और पड़ा रहेगा तो अनाज की पाचन व्यवस्था अलग है, फल की पाचन व्यवस्था अलग है, दोनों की टाइमिंग्स अलग है, और दोनों साथ में खाएंगे तो जाके पेट में सड़ना की गारंटी है। सिर्फ आम पेट में सड़ेगा, पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ा देगा,
4: खराब हो गया।
3: तो इसलिए मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप जो है आम का अगर सेवन करते हैं, दूसरे भी फल का सेवन करते हैं, तो आप भोजन से 2 घंटा पहले या भोजन से 4-5 घंटे बाद ही उसका सेवन करें। माना नाश्ता ही आम का कर लें, शाम को 5-6 बजे खा लें, और फल को दूध के साथ ना मिलाएं। आयुर्वेद कहता है ये जहर है। दूध का पाचन व्यवस्था अलग है, उसके साथ 1 कटोरी बर्फ डाल दिया, 1 कटोरी दूध डाल दिया और उसको जो है कबाड़ बना दिया, ठीक है ना। टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, कम क्वांटिटी में महीने में 1 बार या 2 बार ले लिए वो बात अलग है। बच्चे हैं, इच्छा होती है, पीते आए हैं, लेकिन हर रोज हम दूध में फल मिलाएंगे,
2: तो
3: 1 कटोरी बर्फ मिलाएंगे, 1 कटोरी खाएंगे और उसको भी जो है अनाज के साथ खाएंगे, तो डबल डबल गलतियां करते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि तरबूज है, खरबूज है, जो भी फल आ रहा है, एक तो पहले उसको जो है पानी में डालें, उसकी गर्मी निकलने दे, ठंडा हो, और उसके बाद जो है उसको सेपरेटली खाएं, उसको खाने के साथ मिला के या दूध के साथ मिला के खाने की गलतियां ना करें, नहीं तो पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ता है, शराब बनता है और जहरीला एसिड बनता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो इस बात पे खास ध्यान दें। दूसरा जो है आज की डेट में जो प्रॉब्लम जो कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक। मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर को हमने प्लास्टिक के बोतल में डाल के रखा है, कार में है, कार में जो है अगर 2 दिन से ज्यादा वो प्लास्टिक के बोतल में अगर पड़ा हुआ है तो पानी क्या होगा? जब डीमिनरलाइज वाटर है तो एक्सीलरेट होकर वो पानी को जो है, पानी में से प्लास्टिक को जो है ऑब्जर्व करता है, टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करता है। तो जैसे एक मैं पॉइंट्स को अगर रेज कराऊं, जैसे अच्छे घर हैं, बड़े घर हैं, तो फर्नीचर जो बनाएंगे कौन से लकड़ी से बनाएंगे? जो कि टर्माइट प्रूफ,
2: बिल्कुल
3: वाटर प्रूफ। तो टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ करने के लिए उस लकड़ी को किस में प्रोसेस किया गया है? केमिकल में प्रोसेस किया गया है। तो वो फर्नीचर अपने घर में पड़ा है, अब उस फर्नीचर में से वो जो गैस है, वो गैस जो है उसकी केमिकल की जो है कुछ रिलीज करता रहेगा जिंदगी भर,
2: बिल्कुल।
3: और उस केमिकल को इनहेल कौन करेगा? मतलब हमारे कैंसर के जो कारण है, जो बीमारी के कारण है, माना इतने छोटे छोटे लेवल पे जो माइक्रोप्लास्टिक की बात की अटेंशन तो है ही नहीं,
2: है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है ना। और ऐसे जो ऐसे अच्छे घर है, अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू से भी केमिकल्स की जो रिलीज हो रही है,
2: बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग खिलौना बनाने के लिए

0: फाइबर यूज करते हैं।
1: हाँ,
0: वो सारी चीजें गंध दो दिन तक ऐसे
1: मतलब
0: बंद,
1: जो है दिमाग बंद मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि, लेकिन मैं भी उसमें से जो आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप भोजन सड़ाने से अगर आप रोक लेते हैं, आपकी जो है 75% एनर्जी जो आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है, जो खाना खा रहे घर का खाया हुआ खाना, चबा के खाया हुआ खाना किन गलती से पेट में सड़ता है, वहां पर हमारी बॉडी की 75% एनर्जी खाना सड़ने के बाद वेस्ट जा रहा है, आप उस वेस्ट को जाने से बचाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए खाना चबा के खाना, और भोजन के साथ जैसे अंकुरित खा रहे हैं आप, उसमें नींबू और टमाटर डाल के खाओ, प्रोटीन रिच डाइट है, पचने में मदद करेगा। लेकिन आप रोटी चावल आलू के साथ आप दही खाओगे, छाछ खाएंगे, इमली अचार खाएंगे, नींबू खाएंगे, खटाई खाएंगे, तो चबा के खाने पर भी खाना पचने में नहीं जाएगा। क्योंकि गर्मी का दिन आया है, लोगों की टेंडेंसी है कि दही और छाछ का जो भरपूर यूज करेंगे, लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि दही की तासीर जो है गर्म होती है, गर्मी के दिन में खाना नहीं चाहिए। और खट्टी चीज को जो है दही की तासीर, चाहे मीठी दही है, ताजा दही है, अरे मीठा दही बोलते हैं, लेकिन उसकी तासीर तो हमेशा खट्टी ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप दही और छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो छाछ तो बिलोने वाला छाछ होता है, बिलोने वाला छाछ तो है नहीं,
0: है
1: वो खट्टा छाछ, पैकेट वाला छाछ पीके जो है मैंने देखा है कि यंग यंग बच्चों को जॉइंट पेन हो जाते हैं। तो फिर भी आपको जो भी छाछ मिल रही है, आप खाने से जो है गर्मी से बचना चाहते हैं, छाछ अच्छी चीज है, लेकिन आप खाने से घंटे पहले या दो घंटे बाद यूज करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दही का भी इस्तेमाल करना तो सेपरेट करें, दही के साथ सुबह में पराठा खाएंगे, दही के साथ रोटी खाएंगे, दोपहर को दही के साथ चावल खाएंगे, खाने के साथ एक कटोरी दही ले लेंगे, दही हेल्दी होता है समझ के, वो एक्चुअली जाके शरीर में एसिड बना रहा है, आप ऑब्जर्व करिए, आपको जो पेट में और छाती में हल्की सी जलन की महसूसता होती है, लेकिन वो गलत खाने के सिस्टम के कारण हो रही है, आपको पता नहीं और आप समझ नहीं पाते।
0: सही बात।
1: आप सिर्फ सिस्टम चेंज करके देखिए, उस एक कटोरी दही को जो है आप अलग से सेपरेट खा लीजिए, खाने के साथ ना खाएं, और आप देखिए आपका जो हल्का सा जो जलन होने का जो टेंडेंसी है ना,
0: वो खत्म,
1: बिल्कुल होती है, हर एक को होती है, लेकिन किसी को पता नहीं है, कि समझ नहीं कि वो जो है प्रकृति के भोजन पाचन व्यवस्था के विपरीत हम खाने के कारण वो जो है वो खाना पेट में सड़ने के कारण छाती में जलन हो रही है।
0: जी जी जी।
1: तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को बचाइए, और सबसे ज्यादा आपको जो हेल्दी रहना है, शरीर के सब टॉक्सिन्स को मैनेज करना है, सबसे अच्छी बीमारी से करनी है, कैंसर को प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक प्रिवेंशन करनी है, तो हफ्ते में एक दिन का उपवास करिए, महीने में चलो एक दिन का नहीं कर पाते हैं तो महीने में एक दिन का करिए।
0: सही बात।
1: साल में 3 दिन का उपवास एक बार कर लीजिए।
0: तो आपको समझ में आ गया होगा उपवास कितना जरूरी है।
1: उपवास कैसे करना है वो भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं डिटेल्स में।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही है। निश्चित तौर पे खाने का मेकानिज्म पेट में जाकर कैसे काम करता है ये आपने समझ लिया। अब इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, साल में 3-4 उपवास कर लेंगे और एक अच्छी बात यह है कि आप खाना चबा चबा के खाइएगा और उसे सड़ने ना दे, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और वेल्दी रहेंगे। आइए बात करते हैं आगे। जी
1: जी, अगर कैंसर को प्रिवेंशन करना है
0: जी,
1: तो सबसे बेस्ट उपाय है, और डायबिटीज को भी अगर प्रिवेंट करना है, जिनको घर में डायबिटीज के, प्री डायबिटीज के, डायबिटीज के आगे ना बढ़े, तो उनको उपवास, लंघनम परम औषधम, एक शॉर्ट टर्म का फास्टिंग, अनाज नहीं खाना, प्रकृति की पाचन तंत्र से जो बचा हुआ ऊर्जा जो पाचन के कार्य में इन्वॉल्व होती है, वो ऊर्जा जब डाइवर्ट होके दवाई के साथ या सिस्टम के साथ जब जाती है, तो सूक्ष्म नस नाड़ी में जो रिपेयरिंग करने का काम है या टॉक्सिन्स हटाने का काम जो है प्रकृति करती है, जिसके ऊपर के हमारे जो है ऑटोफेजी बोलते हैं, जो जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, कि शरीर अपने टॉक्सिन्स को, अपने कचड़े को, अपने कैंसर सेल्स को जो है, अगर 17 घंटा से लंबा फास्टिंग हम कर लेते हैं तो वहां पर ऑटोफेजी शुरू होता है। जैसे हमने उपवास के ऊपर कितने घंटे में क्या फायदा होता है, तो अगर उसको अगर आप समझ लें, तो आपका उपवास के महत्व को जो है उसको जो है और समझने में, जो डीप समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम 8 घंटे तक लगातार हम ग्लूकोज नहीं खाते, मतलब कोई भी अनाज या खाना हम सिस्टम को नहीं देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है ना, ब्लड शुगर का लेवल जो है कम होना शुरू करता है। और जैसे ब्लड शुगर का लेवल कम होना शुरू करता है, उसके साथ क्या होता है, हमारे थॉट्स की जो स्पीड है वो बढ़ती है घटती है, हमारे दिमाग के थॉट्स की स्पीड भी जो घटनी शुरू हो जाती है, और बॉडी में कीटोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और एक बार तो जो है 3-4 घंटे तक भूख की फीलिंग तेज आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे 10 घंटे 11 घंटे हो जाते हैं, तो भूख की फीलिंग जो न्यूट्रल हो जाती है, वो भूख की फीलिंग हमें तंग नहीं करती। उसके बाद जैसे फास्टिंग 12 घंटे तक जैसे हमें एक्सटेंड कर लेते हैं, तो बॉडी के जो फैट सेल्स है, फैट सेल्स जलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब 15 घंटे तक, जब 17 घंटे तक हम उसको फास्टिंग को कर लेते हैं, तो 15 घंटे पे क्या होता है, बॉडी के जो इंटरनल CRP लेवल है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, तो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स में सूजन पैदा करता है, वो लेवल कम होना शुरू कर देता है। अगर 17 घंटे का तक लगातार हमने उपवास करते हैं, तो 17 घंटे के बाद क्या करते हैं ना, शरीर के जो कैंसर सेल्स है, जो ऑटोफेजी हम बात कर रहे थे, तो ये बॉडी के जो टॉक्सिन्स को जो है, बॉडी की ऊर्जा, उसको खाना जब पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो टॉक्सिन्स को पहला रूप में जो है भोजन के रूप में करके, या डेड सेल्स को हटाने का काम जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, कैंसर सेल को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है। अगर 24 घंटे तक हम लगातार उपवास करते हैं, तो जो गट लाइन है हमारे स्टोमा का, जो इनर लाइनिंग्स है, वो गट लाइनिंग्स की रिपेयरिंग होती है। अगर 36 घंटे तक का हम लगातार उपवास करते हैं, तो जिनको बोलते हैं ना कि हमारा चर्बी जलता नहीं, पेट की एरिया की चर्बी है, दूसरी एरिया की चर्बी है, तो उस एरिया की चर्बी अगर किसको जलाना है, तो उसको 36 घंटे तक का उपवास और हर महीने एक बार तो उसको जो है कम से कम करना पड़ेगा। अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं, तो ये हमारा डोपामाइन लेवल, माना जो ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर लेवल का जो है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना एंड उसको जो है रेगुलराइज करने का काम करता है। माना जिनको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, उनको कंसंट्रेशन माइंड नहीं हो रही है, या तो फिर दूसरे सारे साइकोलॉजिकल जो हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, वो अगर हर 3 महीने में अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं, तो उनको उन सब के मेडिकेशन से जो प्रॉब्लम है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशंस रहता है, इरिटेशंस रहता है, वो सारे समस्याएं से लेके इवन के साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है, तो उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। अगर 72 घंटे तक के हम फास्टिंग कर लेते हैं, तो बॉडी की टोटल इम्यूनो सिस्टम जो है, लिम्फाटिक सिस्टम से लेके इम्यूनो सिस्टम से लेके बॉडी के हर सेल्स को जो है उसको रीसेट करने की कैपेसिटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उपवास जो काम कर सकता है, जो शरीर में रिपेयरिंग कर सकता है, जो बेनिफिट्स दे सकता है, दुनिया की कोई भी मेडिकेशन सिस्टम्स नहीं दे सकती। अगर इस बात को आप गहराई से समझ जाए, तो इस बात को कौन प्रमोट करेगा, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी क्या? उनको तो कोई प्रोडक्ट बना के बेचने में फायदा है। तो ये इस बात को अगर लोगों को अवार कर दे, अगर लोगों के मन से डर निकल जाए, और बीमारी होने की बड़ी बड़ी गंभीर बीमार होने की समस्याएं अगर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 80-90-100% अगर
0: कम करेक्ट हो जाए, एलिब्रेट हो जाए,
1: मतलब जो व्यक्ति जैसे भोजन में खाना पेट में सड़ने की 2-3 बातों के ऊपर हमने ध्यान दिलाया, अटेंशन दिलाया, अगर अपने जीवन में गलतियां भी कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उपवास का तरीका कर लेता है, तो मैं गारंटी करता हूं कि उसके जीवन में कोई मेडिकल फाइल नहीं खुलेगी।
0: बिल्कुल,
1: माना फाइल खुलने की रिस्क फैक्टर 80-100% तक उसकी जो है एलिमिनेट हो गई।
0: सही बात।
1: तो कैंसर भी बचेगा, होने की संभावना है तो जो करेगी, और कैंसर है या कोई भी ट्रीटमेंट करा लिया है, कोई भी थेरापी लिया हुआ है, फिर भी अगर इन प्रिंसिपल्स को बाद में भी अप्लाई करते हैं तो भी उनको आगे चल के री कैंसर, री प्रॉब्लम होना, या डायबिटिक है तो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना, और सब में जो है प्रिवेंशन का काम कौन करेगा या हेल्प कौन करेगा, दवाई से ज्यादा मदद जो है उपवास, और दूसरा जो है यंग और हेल्दी रहने के लिए मैं और एक बात बोलता हूँ कि सलाद खाने के नियम को कंपल्सरी करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है।
1: अच्छा। तो मैं जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कशंस कर रहे थे बहुत अच्छे से जो है ब्लड प्रेशर को प्रिवेंशन भी करेगा और ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट भी करेगा।
0: अच्छा, ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं? उसका दूसरा नाम हाइपरटेंशन दिया।
1: जी जी, उसको जो है मतलब जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो स्ट्रेस बढ़ने से जैसे क्या बोलते हैं कि जो है हाइपर हो गया स्ट्रेस, तो जो है वो हाइपर मना बढ़ना,
0: बढ़ना,
1: जैसे हम थायराइड के लिए बोलते हैं हाइपर और हाइपो, तो हाइपर मना जो है हमारा थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपो में कम होता है, तो उसके लिए दूसरी मेडिकेशंस लेते हैं, तो हाइपर मना हाई जा रहा है, मना जो है लेवल से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हाइपर टेंशन, ठीक है ना। तो दूसरा जो है अभी जो सब मतलब कि सलाद खाने के नियम को अगर कंपल्सन करते हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: जो नेचुरल फॉर्म ऑफ सलाद है, और सलाद को क्वांटिटी में खाएं, क्वांटिटी में खाएं मतलब एक्चुअल जो हमारा जो है सलाद को अगर हम मेडिसिन के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो अगर 60 किलो का व्यक्ति है 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, 300 ग्राम,
0: 300 ग्राम,
1: तो 300 ग्राम के सलाद जो है एक प्लेट सलाद खाने की जो है एक बार मेजर कर ले कि 300 ग्राम खीरा कितना होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे खीरा खाएं, गाजर खाएं, चाहे
0: कुछ भी खाएं, पर 300 ग्राम
1: जो भी सलाद खाएं
0: 300 ग्राम,
1: मतलब कोशिश करें जिनको एक्चुअली डिजीज प्रिवेंशन के लिए काम में लेना है।
0: जी जी जी जी।
1: तो एक बार में नहीं खाए तो 2 बार में खाए, मना नहीं है। लेकिन 300 ग्राम के सलाद जो दवाई का, ये नहीं कि 300 ग्राम सलाद खाएंगे उनके खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उनको भूख अच्छे से लगेगी और नॉर्मल खाना खा पाएंगे और उनको सेटिस्फेक्शंस भी अच्छी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: और सलाद खाना अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है, मैं जो खाना चबा के खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि सलाद को निगल तो नहीं सकते हो,
0: इसको भी चबाना पड़ेगा,
1: अंकुरित खाओगे तो अंकुरित को निगल तो नहीं सकते, उसको तो चबाना पड़ेगा ना, कंपल्सरी उसको चबाना पड़ेगा, तो वो पेशेंस हमारे पास नहीं है, माइंड मतलब हमारा इतना आउट ऑफ कंसंट्रेशन, इतना भटक रहा है कि हम माइंड को स्टेबलाइज करना या खाने के टाइम पे उसको जो है उसको स्टेबल करना, इवन कि नींद के टाइम पे भी जीरो हमारा थॉट्स होगा तब तो नींद आएगी, इसलिए क्वालिटी नींद नहीं होना।
0: बिल्कुल।
1: माना आज की डेट में विचारधारा को थोड़ा कम करके माइंड को कंसंट्रेट करना और एक ही बात पे फोकस करके रखना जो है आज की डेट में, ये जो है ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम जो बोलते हैं ना माइंड हमारे कनेक्टेड है, तो कोई भी चीज लर्निंग हो, कुछ हो, जैसे गुरुकुल है आज भी, कुछ स्कूल से दूसरी जगह है, इवन के स्टाफ को भी मोबाइल यूज करना मना है। ऐसे भी स्कूल्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी, और वहां के बच्चों के जो ग्रोथ है, जो विजडम है, उनका जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ये है वो डिफरेंट ही है, वो वातावरण में एक मोबाइल यूज नहीं करने वाला एक वातावरण में ऐसे जाओ कि उसके वाइब्रेशन से अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इवन की अगर मैं लौकिक में बोलूं तो राजस्थान में एक मंदिर है, वो मौनी मंदिर कुछ समथिंग कुछ बोलते हैं, मतलब वहां पर जो गुरु थे
0: जी,
1: वो संपूर्ण ऋषि से मौन में कई साल जो है उन्होंने जो है साधना की हुई थी।
0: बिल्कुल।
1: और वहां पर कोई भी जाए तो उस हॉल के अंदर, उस वातावरण के अंदर जो है आपको बोलने की जो है बोलने का जो है अलाउड नहीं है, व्हिस्पर करने का भी अलाउड नहीं है, पर उसका वाइब्रेशन इतना तेज है, अगर छोटे बच्चे गोद में होते हैं तो कोई भी जगह पे क्या होता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता, और उस वातावरण में जाने के बाद बच्चे को भी जो है बच्चे भी नहीं रोते, उसका इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेडिटेशन रूम में आओ, मेडिटेशन रूम में जाओ, मंदिर में जाओ। घर में भी तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो वातावरण है, उस मेडिटेशन रूम में जो हजारों व्यक्ति जाके, चाहे हमारे सेंटर्स के वातावरण में, चाहे हेडक्वार्टर के वातावरण में आते हैं, कदम रखते हैं, बोलते हैं कि अलग से शांति की महसूसता होती है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो है, एक तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना अपने बच्चों में जो है, उस नियम को आप लेके आओ। ये छुट्टियां हो तो उनको मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की लर्निंग करने के लिए लाओ, और खुद के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, मोबाइल और फास्ट लाइफ में जो है, सबसे पहला अगर हेल्दी रहना है तो अपना माइंड को कम से कम स्टेबल करने का रीजन तो समझो। हार्मोनल सिक्रेशन भी कब ठीक होगा?
0: वेलकम,
1: जब सुबह उठेंगे। तो अपना डाइट को समझना, प्रकृति का जो उपवास का जो है, रोग निवारण का जो नियम है, सिर्फ दिन भर हम फल खाएं, सलाद खाएं, फिर भी उपवास करना जरूरी है। तो भी एक बार पाचन तंत्र तो आपको आराम देना पड़ेगा, तो ही गट लाइन को रीसेट होगी। हमारे हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा जो बोल रहे हैं कि ये कांजी पियो, वो पियो, तरह तरह के उपाय बताते हैं। मैं बताता हूँ कि आप खाना सड़ने के से ये गलतियां को कम करो, और जो है अपना वीकली वंस या मंथली वंस या साल में एक बार 3 दिन का उपवास,
0: साल में एक बार 3 दिन का उपवास
1: करने के बाद जो वो एक्चुअली 72 आवर्स तक का आपके एक बार टारगेट दोगे, तो बॉडी जो 17 घंटे में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हुआ है, आप 17 घंटे के बाद 20 घंटे में बंद कर दोगे क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो 3 घंटे में बॉडी की क्लीनिंग होगी क्या?
0: नहीं होगी।
1: तो साल में मैं 3 दिन का एक बार टारगेट दे रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो 72 घंटे के 17 घंटे में शुरू हुई प्रोसेस को आप 72 घंटे तक एक्सटेंड करेंगे, तब तो बॉडी की क्लीनिंग होगी। और महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जो है 24 घंटे का उपवास कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष काली हल्दी ये इस पे बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर और ये डायबिटीज़ के बारे में बातें की, और बॉडी का क्लिनजिंग या हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक सिंपल तरीका है कि आप उपवास करते ही चीज़ें सेट होने शुरू हो जाएगी। तो अब काली हल्दी के बारे में बताइए
1: जी। जैसे वेराइटी ऑफ हल्दी आती है, अपने खाने वाली हल्दी तो है ही, और उसमें भी हल्दी अगर यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिले तो उसका जो है औषधीय मूल्य जो है अपने आप ही एक
0: अलग ही
1: है, ठीक है ना। तो हम तेल के बारे में जो होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं, तेल हमारा प्रॉब्लम करता है। तेल खाने के लिए कम करने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया है, तो अच्छी बात है। रिफाइंड तेल से अपने घाणी से निकाल के तेल यूज़ करें। और हल्दी में भी जैसे दारू हल्दी आती है ना, जंगली हल्दी आती है, और ये अम्बा हल्दी आती है, खाने वाली हल्दी आती है, ऐसे एक हल्दी की वेराइटी काली हल्दी, तो वो ब्लैक कलर ही होता है, अंदर से जो होता है ना पर्पल कलर, ब्लैक कलर होता है। अच्छा, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और भारत में अलग अलग जगह में होना शुरू हो गया है, लेकिन खास तौर पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, उस साइड में जो है
0: ये काली हल्दी का
1: फार्मिंग जो है उसकी की जाती है। और इस हल्दी को ग्रो करने के लिए 8 महीना समय लगता है, जैसे दूसरी हल्दी मान लो कि 4 महीने में हो जाती है,
0: ये
1: 8 महीना समय लगता है। और ये अंदर से पर्पल कलर की होती है, और उसका जो पाउडर होता है एक थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, लेकिन इसकी जो है कैंसर प्रिवेंशन की जो कैपेसिटी है, ज्वाइंट पेन ठीक करना हो, चाहे कैंसर को प्रिवेंशन करना हो, या कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, या तो फिर डायबिटिक का प्रिवेंशन करना हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसमें काली हल्दी जो है बहुत ही, इसकी जो है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, जो ओराक वैल्यू बोलते हैं, या तो फिर इसकी जो करकुमिन की जो क्वालिटी है,
0: क्वालिटी है ज्यादा,
1: हाँ, और दूसरे जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशंस है वो आम हल्दी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इसको काली हल्दी हल्का कड़वा होता है, तो इसको शहद के साथ जो है आधा चम्मच पौना चम्मच की मात्रा जो है हम इसको ले सकते हैं, या पानी के साथ भी फांकी मार सकते हैं। और ये ऑनलाइन से ये सब में अवेलेबल है, नॉर्मली दुकानों में वो सब में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी
0: नहीं,
1: कॉमन अवेलेबिलिटी शुरू नहीं हुई है, तो आप इसके बारे में ज़रूर से जो है ज़्यादा पढ़ें। एंड ये अपने आप में जो है एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और अच्छी चीज है। दवाइयों में हजारों रुपया खर्चा करने से तो जो है 300-400 रुपया अगर हम इस काली हल्दी का यूज, या ऑर्गेनिक हल्दी, खाने वाली हल्दी भी हो जाए ना, ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी अगर आपको सोर्स मिलती है, तो सामान्य सी मार्केट से 100-150 रुपया एक्स्ट्रा किलो की हल्दी का प्राइस देकर वो चीज अवेलेबल हो सकती है। तो आप उसकी भी अगर फांकी मारते हैं, अगर आपको काली हल्दी नहीं मिलता है, तो जिनको भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, जॉइंट पेन को मैनेज करने के लिए है, अंदर की सूजन कम करेगा, है ना, इंटरनल, क्योंकि उसके एंटीऑक्सीडेंट और ओरक वैल्यू से। तो आप नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का हल्दी है तो आप उसको भी आप यूज करिए, आंवले का यूज करिए। कैंसर प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक ठीक करना है तो सुबह में आंवला लेना चालू करो ना, कंपलसरी करो ना, डेली आंवला लेना, ठीक है ना। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, आंवला कर सकता है, लौंग कर सकता है, पालक कर सकता है, टमाटर को सेपरेट खाए तो कैंसर प्रिवेंशन कर सकता है, डायबिटिक ठीक कर सकता है। उसी टमाटर को खाने में, सब्जी में, दाल में नहीं डाल के आप सलाद में खा लीजिए, अलग से खा लीजिए
0: जी,
1: ठीक है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज हल्दी के जो प्रकार है इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और काली हल्दी किस तरह से कैंसर प्रिवेंशन करता है, डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बस उसको जो है आप ऑनलाइन मंगा के यूज़ कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे आपको जो उपवास के बारे में नरेश जी ने बताया है इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिए आप, तो जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे, एक बार करके देखिए, है ना। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। और आज हाइपर टेंशन डे है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको तो रेगुलर गोली खानी पड़ती है, बिना गोली के उनका कंट्रोल हो सकता है क्या?
1: जी, हमने जो सिस्टम्स बताए उसको करें, और उसको कंट्रोल आने के साथ दवाई की मात्रा आपने डॉक्टर के सलाह से कम करें। बिल्कुल जो है, आप अगर इन उपायों को अगर करते हैं, लीवर क्लीन थेरापी है करते हैं, और आप एक टारगेट ले लेते कि मुझे बीपी की जो है बीपी से मुक्त होना है, जब कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, डायबिटिक रिवर्स हो सकती है, तो बीपी ठीक नहीं हो सकती है, बीपी ठीक होती है। या तो फिर आपके जो है कम से कम दवाई में, या तो सम आमला आयुर्वेदिक चीजों से भी मैनेज हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैनेज करने के बाद अपनी दवाई का डोज कम करें, और एक लक्ष्य ले लें, अगर 6 महीने डाइट को मैनेज करना, फास्टिंग करना, दूसरे उपाय को करेंगे, तो उनकी बीपी की मेडिसिन जो है जो नए हैं, तो उनका तो जो जल्दी से जो है विड्रॉल हो सकता है, और जिनका पुराना है उनका आधे से कम दवाइयां हो सकती है। हाँ, लेकिन चेकिंग करा के अपने डॉक्टर के सलाह से दवाई कम करेंगे, तो बिल्कुल उनसे हाँ। जो है दवाई से बीपी के प्रॉब्लम से जो है विड्रॉ अपना कर सकते हैं, संभव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है। और आज के दिन इसका उद्देश्य है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के बारे में बताया जाए, और इसे कंट्रोल करने के ठीक तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम भी नो यूर नंबर्स है, यानी आपका ब्लड प्रेशर कितनी मात्रा में है और कैसे बढ़ रहा है इसको समझे, और फिर इसके लिए आप अलग अलग तरीके अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, नमस्ते, नमस्ते।

0: ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: सुवात छी है। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे तीन भाई थे और पांच बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए थे, ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे। थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं कि आप बता रहे थे आप आठ भाई बहनों।
1: आठ भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। तीन बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर सातवें नंबर पर, आठ भाई बहनों में आपका सातवां नंबर।
1: सातवां नंबर। हाँ तीन भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे है इनके।
0: सॉरी बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप आठ भाई बहन में आपका सातवां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी,
0: क्योंकि आठ भाई बहन है इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किस में करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप आठ भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान दे। वो मजदूरी करके दुकान

0: आप बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने हम पांच बहने थी, तीन भाई थे, तो फिर शादीशुदा हो गया, तो फिर ये इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी, तो मम्मी इन सबका टेका लेके, सहारा लेके हमार को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
1: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
0: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, और पढ़ाई नहीं करी, हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने, कभी किसी से नहीं।
1: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
0: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा, हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने, फिर पैसे थोड़े घने मिले, तब मम्मी के पास में ही है।
1: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते
0: हाँ,
1: हैं?
0: मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
1: जल के मर गए? कुछ
0: तो फिर
1: हादसा हुआ क्या?
0: हाँ ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो वो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गया। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई, सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभीया नहीं संभालती, हमारी छोटी लड़की ही संभालती है।
1: अच्छा, बहुत। देखो, कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
0: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
1: अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
0: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट देके गए, बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही देके जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए ये सारे बच्चे, तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही नहीं भावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
1: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
0: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको, घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता है।
1: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना।
0: इसने जीवन त्याग कर दिया, इसने शादी किया था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे, तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते हैं, कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है बोले।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे, तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
2: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
1: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहा है, बड़े होवे ही नहीं।
2: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
1: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके, तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
2: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नौ सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। फिर सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
1: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
2: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
1: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
2: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
1: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
2: 15-16 साल की थी।
1: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी?
2: तो
1: शादी करके आप सीधे आबू आए?
2: सीधे आबू आए।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
2: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
1: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
2: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
1: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
2: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
1: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
2: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, मैंने भी डट के सामना करा।
1: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
2: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जी थी मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
1: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए या परिवार वालों का दबाव था?
2: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलो, ऐसे ही झोपड़ा था घर, मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
1: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
2: नहीं देखा था इन्होंने, देखा था क्या मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी क्या मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा, पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे। मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे करते थे।
1: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
2: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मैं रात दिन ने घर वाला नहीं सारा करा।
1: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
2: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए। फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है। इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे, छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे। जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया, बनाया मैंने।
1: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
2: मैंने 5-6 साल बाद।
1: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
2: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
1: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू मैं में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोज ही। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
2: हाँ, होता था, बहुत होता था। कोई सगे वाले आते थे, करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी। फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने, आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया। करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
1: कितने रुपये से आपने शुरुआत की? फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपए लिए मंथली?
2: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
1: ये कितने साल पहले की बात होगी?
2: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के।
1: पर 250 रुपये में सारा ही काम?
2: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
1: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
2: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती। 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश करवा के, चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते, बंद करके मैं काम करके आती।
1: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद, दियर, फिर इनको कौन?
2: हाँ, तो शादी हो गई थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे, इसके आदमी तकलीफे देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको। जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनका, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको, कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं संभालती दोनों बहनों को।
1: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत। तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: मैं हूं वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
2: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
1: जी जी, अब तो इतने साल हो गए। जो
2: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी, ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
1: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी? क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
2: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे पांच लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जानता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
1: जी जी, हाँ सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
2: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
1: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
2: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
1: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
2: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
1: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
2: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको, दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
1: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
2: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
1: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
2: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
1: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
2: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
1: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
2: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
1: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
2: 2-3 बज जाते थे सोते करते, सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के, फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती है।
1: सुबह 9 बजे?
2: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
1: बहुत काम करते थे, तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
2: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती ही नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
1: खुददारी से जीवन जिया,
2: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया, मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
1: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है, काम करना गुनाह नहीं है लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
2: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
1: जी जी, तो आपके जैसे बेटियां भी है तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटियां पढ़ रही है?
2: नहीं, मेरी दो बेटियां ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
1: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
2: एक सातवीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूल छोड़ दी। फिर
1: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
2: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे तो फिर इन्होंने बिचारी काम करा दोनों बहनों ने।
1: देखिए पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
2: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
1: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
2: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। और छोटी वाली थी, इसने आठवीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई आठवीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते हैं?
2: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
2: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे। बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
2: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल, तो प्रवीणा जी और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
3: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है।
2: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
3: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छो करते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने। मैंने शान से जी, शान से ही वही रहना है मेरे को। इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा अब मत काम करो।
2: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
3: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ, सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुशी थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी, पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहाँ से वहाँ नहीं हुई चीजें इनकी।
2: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटे वाले को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
3: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे अभी सोच रहे, इसकी फीस भी जमा करनी है और सोच रहे वहाँ तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको चुप्त कर देंगे।
2: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
3: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में ही खूब ध्यान दिया हमने।
2: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
3: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
2: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
3: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ मैं, मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
2: बच्चे आपका कहना मानते?
3: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे देवे, एक रोटी देवे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
2: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
3: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
2: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझना क्या कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
2: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम, कैसे है? बहुत बहुत बहुत ठंडी पड़ रही है भाई, है कि नहीं? बर्फ भी जम गया, कहते हैं कि उधर का अपना झील में, और गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की परतें जम रही है। सब लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, कोई समोसा खा रहा है, कोई भजिया खा रहा है, और कोई आग ताप रहा है, और हम आपके सामने हाजिर हो गए आपका प्रोग्राम पंडिताइन के लिए। तो आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है, और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम शब्दों की चोट और नाम का चमत्कार। स्वामी विवेकानंद अपने प्रभावपूर्ण प्रवचन में भगवान के नाम की महिमा समझा रहे थे, और श्रोता भाव विभोर होकर सुन रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति अचानक खड़ा हुई गवाह। वो अपने को बड़ा तर्कशील मानता रहा। वो कहा, स्वामी जी, नाम शब्द इन सब में कहाँ रखा है? इन्हें कह देने से क्या लाभ? स्वामी जी ने शांत भाव से उसे समझाया कि शब्द मात्र ध्वनि नहीं, शक्ति होते हैं। पर वो व्यक्ति हर बात पर कुतर्क किए जा रहा था। अंत में स्वामी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, ना समझ हो, बेवकूफ हो, ऐसे कुतर केवल नालायक लोग ही करते। और सुनते ही वो तो आग बबूला हो गया, और तथा कथित तर्कशील व्यक्ति बड़ा उठा। बोला, स्वामी जी, आप जैसे महान सन्यासी के मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। आपके शब्दों से मुझे गहरी चोट पहुंची है। उसकी बात सुनकर स्वामी जी जोर से हंसती पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। ये कैसा हास्य? स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, बंधु, मैं तो केवल शब्द बोल रहा था। आपने स्वामी कहा था ना, शब्दों में क्या रखा है? मैंने कोई पत्थर तो नहीं मारा, फिर इतनी चोट कैसी? उसका क्रोध पल भर में शांत हो गया। उसको अपनी भूल समझ में आ गई। वो हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, मुझे आपको बीच में रोकना नहीं चाहिए था। अब समझ आया कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। सभा में बैठे सभी लोग भी सकपका गए। अभी अभी उन्होंने शब्दों की वास्तविक ताकत देखी थी। अब शब्द मनुष्य को जला सकते हैं, स्नेह भरे शब्द अमृत बनकर मन को शीतल कर सकते हैं। यही तो स्वामी जी समझा रहे थे कि जब एक कठोर शब्द किसी को तड़पा सकता है, तो भक्ति का नाम, प्रेम का शब्द, ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं हृदय को ऊंचा कर सकता? शब्द वो दीपक है जो चाहे तो भीतर के अंधकार, क्रोध, अहंकार, भरम सबको उजागर कर बाहर निकाल दे, और

0: है कि वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे शुभ वरदान भी। वो चाहकर किसी को गिरा सकता है और चाहकर किसी को उबार सकता है। इस बात से क्या शिक्षा मिली बताइए तो भला, आप लोग क्या सोचे? अपशब्द मन को घायल कर देते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा सद्गुण है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपों शीतल होए। और दूसरी बात, प्रेम भक्ति और सद्भाव से भरे शब्द हर हृदय में प्रकाश जगा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? लोगों के दिल में प्रकाश जागे, प्रेम जागे, श्रद्धा जागे, ईश्वर का स्नेह हम पर बरसे, तो नाम शब्द के सिर्फ नाम नहीं है या शब्द शब्द नहीं है, शब्द में भावनाएं बहुत काम करती हैं। जिसे छूने से ज़्यादा देखने में सुकून मिले, जिसे छूने से ज़्यादा देखने में सुकून मिले, प्रेम वही प्रेम है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है, सबका मुकदमा जारी है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। शब्दों की गहराई को समझे ना विवेकानंद जी ने जो बोले, इसको याद रखिएगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग प्यारे भैया, कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, इधर भी ठंडी बहुत है, ठंडी में एंजॉय कर रहा हूँ दीदी। आपके तरफ तो बहुत ही ठंडी है, हम देख रहे हैं मोबाइल में बहुत ठंडी है, बहुत तकलीफ हो रही है आप सभी को, हमको भी बहुत दुख हो रहा है। और दीदी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, शब्दों में ताकत होती है
0: जी।
1: आत्मा की पुकार है, उसको सोच समझ कर यूज करना चाहिए दीदी, ये हम आपसे सीख रहे, रेडियो मधुबन से सीख रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी को नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार भैया, तबीयत का ध्यान रखिएगा। ओम शांति। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। इंसान करोड़ों मील, लाखों मील, हजारों मील चला जाता, सफ़र कर लेता है, लेकिन खुद से खुद को मिलने में बहुत दुख। जैसे कि मृग, उसकी नाभी में ही कस्तूरी होती है लेकिन वो सारा जंगल ढूंढता है। इसी प्रकार इंसान खुद से खुद नहीं मिल पाता और दुनिया भर से मिलता है। तो जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। हर जगह मैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मैंने किया, मैं नहीं करता तो हो ही नहीं सकता था। तकलीफ खुद ही कम हो गई, तकलीफ खुद ही कम हो गई, जब अपनों से उम्मीद भी धीरे धीरे कम हो गए। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होती जब हम किसी से अपेक्षा रखते और

0: को सामने वाला हमारे मन लायक नहीं करता तो, और जब हम कोई अपेक्षा ही नहीं रखे तो अपने आप तकलीफ कम हो जाती कि भाई हमें खुद करना है जो करना है, हो जाए कोई कर दे अपने मन से तो ठीक है, नहीं तो हमको कोई तकलीफ की बात नहीं। सपनों को सच करने का पहला कदम है हार ना मानना। काहे कि इंसान बहुत जल्दी हार मान जाता, और जहाँ हार मानी तो फिर सफलता कैसे मिलेगी भाई। हमको लगे रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। हम अपनी स्थिति बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्थिति हमें बदलने के लिए ही बनाई गई थी। हमारी चेंज की ज़रूरत है, हमको कहीं ना कहीं चेंज करना है। समस्याएं जब समाप्त हो जाएंगी, अगर बचने के बजाय उनके समाधान का मन बनाए। हमेशा समाधान सोचिए, बातें तो आए भी करेगी। दयालु बने, बिल्कुल सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की तकलीफें सुनने और उन्हें सांत्वना देने वाले नेक दिल। लोग तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं भगवान को? लोग तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं भगवान को? वो तो वहाँ भी मौजूद है जहाँ लोग गुनाह करते हैं, जहाँ चोरी करते। अगर कण कण में लोग कहते हैं भगवान है, तो जहाँ चोरी हो रही तो वहाँ पे नहीं है का? जहाँ गुनाह हो रहा वहाँ नहीं है का? मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, पर सिद्ध होती है उसके व्यवहार से। जिंदगी दिखावा का खेल नहीं, ये कर्म और सोच का हिसाब है। जो अंदर से सच होता है वही ऊपर से लाजवाब होता है। कितनी सुंदर बात है, जो अंदर से सच होता है वही ऊपर से लाजवाब होता है। देखिए भाई, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिएगा तो जीवन में बहुत काम आएगी। परीक्षा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि परिणाम का मोह ही खत्म हो जाए। कई बार इतना कठिन होता है ना कि भाई हमें तो मालूम हम तो फेल होंगे, तो फिर परीक्षा ही काहे को दी। यानी मतलब इतनी कठिन बातें भी ना आए कि जीवन जीने का ही रस खत्म हो जाए। श्री करसन जी कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे जिंदगी में दोबारा कभी मौका मत देना। क्योंकि आपको पता चल गया वो व्यक्ति धोखेबाज है, तो बार बार मौका दे के आप मूर्खाए बनेंगे। सोच और पानी हमेशा साफ होनी चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है, और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है। सूरज ढलने के बाद कहते हैं ना, आज का दिन चलो भाई पूरा हुआ। तो हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है। सुबह निकली, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, यानी आज का दिन कुछ करने के लिए वो हमें सौगात दे जाता है। जहाँ अहंकार, हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार भैया, हंसने वाले भैया, हंसमुख भैया,
1: मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ
0: जी। भैया कैसे हो?
1: बहुत ही अच्छा हो। आपका प्रवचन सुन करके मेरे को इतना आनंद आ रहा है, बात मत पूछो, मजे आ रहे। जैसे गुलाब का फूल खिलता है ना, जैसे आप मेरी आत्मा के अंदर फूल खिल गया है।
0: क्या बात है,
1: आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मा के अंदर सच्चाई भी होनी चाहिए, सत्यता भी होना चाहिए। सत्यता नहीं है तो कुछ नहीं है। संसार है तो सब कुछ है, संसार नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, जीवन को साथ जीना है तो जिंदगी के साथ में जीना है, सत्यता के साथ में जीना है।
0: जी भैया बिल्कुल। सब बातें आप याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं।
1: ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे ख्याल आएगा, ख्याल ही तो ध्यान है, ध्यान ही तो ख्याल है।
0: बिल्कुल, जब जब जरूरत पड़ती उस समय ज्ञान याद आना चाहिए।
1: बिल्कुल दीदी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं है, विज्ञान के बिना ज्ञान नहीं है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: आज के दुनिया के अंदर हर चीज की कीमत होती है, बात इसकी एक रुपया कीमत है तो है ही है
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: संसार कितना भी बढ़ता रहे लेकिन उसकी स्थायिता भी होनी चाहिए, स्थिरता भी होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक है भैया।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: के लिए, उसके लिए माफ़ करें सर।
0: थैंक यू ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए।
1: साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार भैया। देखिए जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वरीय प्रेम का आरंभ होता है। जैसे ये भैया हर बात पे मुस्कुराते हैं, हंसते कितना अच्छा लगता है, जैसे कोई नन्ना बच्चा मुस्कुरा रहा हो। निस्वार्थ भाव रहता है ना तब ऐसी हंसी आती है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, प्रिय अप्रिय में राग द्वेष नहीं रखता और निंदा स्तुति में सम्मान भाव बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हम बोलते हैं ना ज्ञानी की क्या पहचान है, सुख आए दुख आए अरे भाई आते रहता है, हमारे मन लायक बात हो चाहे हमारे मन के खिलाफ हो, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे कोई हमारी बहुत स्तुति करे चाहे निंदा हो, लेकिन एक समान। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति हमारी प्यारी दादी जी।
0: नमस्कार ओम शांति, कैसे हो भाई?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी दादियों की बहनों की और हमारे प्यारे लिस्नरों की
0: जी
2: दुआ है और अच्छा हूँ, बढ़िया है। दीदी दादी आपने तो आते ही हमें सकारात्मक सोच से पूरा भर दिया और बुरेलाल जी ने भी बहुत अच्छी बातें की और हमारे सभी जो रेडियो सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छा ज्ञान ले रहे हैं आपसे।
0: जी जी।
2: और आप कैसे हो दादी जी?
0: एकदम ठीक है, ठंडी बहुत पड़ रही है यहाँ पे।
2: हमारे राजस्थान में भी बहुत ठंडी पड़ रही है, इधर बाड़मेर की साइड
0: में। हम आपके राजस्थान में ही रहते हैं, आपके राजस्थान में ही हम रहते हैं।
2: जी दीदी मुझे पता है, मैं हर साल रेडियो मधुबन के जन्मदिन पर आता हूँ वहाँ।
0: अच्छा और अच्छा,
2: आता हूँ, हर रोज आता हूँ, हर साल आता हूँ। अब इसी महीने में होने वाला है अपना रेडियो मधुबन का जन्मदिन, तो उस समय पर
0: डेट फिक्स होगी तो आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे।
2: और सभी हमारी जो आरजे बहनों हैं, हमारे आरजे भाई हैं, उनसे मैं मिला हूँ और अभी जन्मदिन पर आऊंगा तब भी मिलूंगा और बड़ी खुशी होती है और आपका प्रेम और स्नेह हमें याद रहता है हमेशा और बार बार वहाँ आने का हमारा मन कहता है, दिल कहता है, लेकिन हमारा रेडियो मधुबन का जन्मदिन आए और उसकी बदौलत हम वहाँ आए और आपके दर्शन कर पाए सभी मधुबन के बाबा के।
0: थैंक यू भैया, थैंक यू, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच भैया। चलिए भाई ये बात पे गीत सुन लेते हैं, उनके बाद आपसे बताएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहे मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।
3: जी हाँ, लड़कियों को स्कूली शिक्षा दिलाए, माता पिता स्वयं उनका दाखिला कराए और मुफ्त में शिक्षा पाए और आगे बढ़ाए।

0: देखिए भाई, एक बार घूमते घूमते कालिदास बाजार गए। वहाँ एक महिला बैठी मिली। उनके पास एक मटका रहा और कुछ प्यालियाँ पड़ी थी। कालिदास ने वो महिला से पूछा, कहाँ बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज मैं पाप बेचती हूँ। कालिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पाप और मटके में? महिला बोली, हाँ महाराज, मटके में पाप है। कालिदास पूछे, कौन सा पाप है? महिला बोली, 8 पाप इस मटके में है। मैं चिल्ला कर कहती हूँ कि मैं पाप बेचती हूँ पाप, और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब महाकवि कालिदास को और आश्चर्य हुआ, पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला बोली, हाँ महाराज, पैसे से खरीद कर लोग पाप ले जाते हैं। कालिदास बोले, इस मटके में 8 पाप कौन कौन से है? महिला बोली, क्रोध है, बुद्धि नाश है, यश का नाश है, स्त्री एवं बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय, चोरी, असत्य आदि दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश, ऐसे 8 प्रकार के पाप ही घड़ी में हैं। कालिदास को कौतूहल हुआ कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, कौनो शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। वो बोले, आखिरकार इसमें का है? महिला बोली, महाराज इसमें शराब है, शराब। कालिदास महिला की कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, तुझे धन्यवाद है, शराब में 8 प्रकार के पाप है ये तू जानती है, और मैं पाप बेचती हूँ ऐसा कहकर बेचती है, फिर भी लोग ले जाते हैं। देखे भाई, कई लोग चोर भी होते हैं तो वो सच्चे भी होते हैं। महिला भी वैसे ही रहेगी, मैं पाप बेचती हूँ पाप, और पैसे देके लोग ले जाते हैं। तो कई बार जिंदगी में ऐसा भी होता है, और लोग जानते हैं और फिर भी खरीद लेते हैं। कलयुग है ना, इसका नाम तो कलयुग है, और का है। 7 वर्ष का एक बालक एक दिन महर्षि के आश्रम पहुंचा। वो महर्षि को प्रणाम कर विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव कृपा मुझे बताइए कि कर्म योग का होता है? जब भी मैं ये बात अपने माता पिता से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर स्वयं समझ जाओगे, लेकिन मेरे मन में ये जानने की तीव्र इच्छा है। बालक की निष्कपट जिज्ञासा सुनकर महर्षि मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही बताऊंगा, पर अभी तुम शांत होकर मेरे समीप बैठ जाओ। बालक आज्ञाकारी रहा, वो तुरंत महर्षि के पास बैठ गया। और कुछ देर के बाद एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और थाल महर्षि के समक्ष रख दिया। महर्षि ने एक लड्डू अपने लिए रखा और शेष लड्डू बांट देने का संकेत किया। फिर बालक के हाथ में लड्डू रखते हुए बोले, जब तक मैं अपनी अंगुली से रुकने का इशारा ना करूं, तब तक तुम ये लड्डू खाते रहना। ध्यान रखना, मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू समाप्त नहीं होएगा चाहिए, और जैसे ही मैं इशारा करूं, उसके बाद तुम्हारे हाथ में लड्डू शेष नहीं रहना चाहिए, उसी क्षण समाप्त हो जाना चाहिए। बालक ने लड्डू खाना शुरू किया, किंतु की दृष्टि एक पल को भी महर्षि से नहीं हटी। मुख लड्डू खा रहा था, पर मन और आंखें, हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज बोल रहा हूँ। ओम शांति, और सभी रेडियो मधुबन परिवार और अपने श्रोतागण को सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: थैंक यू भैया, आपको भी, आपके परिवार को भी, पूरी रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। ठंडी ठंडी
1: अभी आगे बुरेलाल जी भी जुड़े थे
0: जी,
1: और ये शब्द की जो मारामारी है, तो अच्छा शब्द बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसा है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। एक शब्द कुप्यार है, एक शब्द कुप्यार है, एक शब्द सब दुश्मन, एक शब्द सब प्यार है। शीतल शब्द उच्चारिये, शीतल सब उच्चारिये, अहम आनी नाही, तेरा प्रीतम तुझ में बसे, दुश्मन भी तुझ माही।
0: जी बिल्कुल, सारा खेल शब्दों का है। बोल का है, शब्द के पीछे हमारे भाव और भावनाएं क्या होती है उसका होता है
1: जी, है ना? जी, और के दूसरा बहन जी ऐसा है कि आकाश में अभी तारे ना होते हाँ। तो रात इतनी सुहानी ना होती, दुनिया में अगर शब्द मीठे ना होते तो इंसानियत की इंसानियत पहचान ना होती।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कहा आपने, सही बात है, ये सही बातें हैं। लोग जीवन में इसको सही उतारने लगे तब है ना। बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है तो अलग ही हो जाता है ना।
1: लेकिन अमल नहीं करते,
0: अमल नहीं करते, वो प्रैक्टिकल में नहीं लाते। मैंने कहा प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, हमारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, कुशलता, शब्दों की बोल मर्यादा, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, वो कहाँ, वो तो जब निकल जाते हैं मुँह से उसके बाद में फिर पछताते हैं कि अरे नहीं बोलना चाहिए था, फिर तो कुछ नहीं होता ना, एक बार दूध फट गया उसको तो फिर दूध नहीं बनाया जा सकता।
1: जी, सही है ना। हाँ, अभी अपना ये रेडियो पे अपन बोलते हैं, लेकिन मैं क्या शाम को या सुबह कहीं निकलता हूँ तो नौकरी पे जाता हूँ, नौकरी से रिटर्न होता है तो सब आदमी पहचान वाले खड़े रहते मेरे को के अच्छी अच्छी बात बताएंगे, अच्छा मुख से बताएंगे, अच्छा कोई बोल बोलेंगे तो सुनने के लिए तुरंत आ जाते मेरे पास।
0: आपके पास स्टॉक रहता है ना,
1: सब मेरे को रेडियो मधुबन और सभी आरजे श्री के इनके ऊपर से मैंने ये प्रेरणा लेके सब किया है।
0: क्या बात है, ये आपकी सच्चाई है कि आप सत्यता बोल रहे, यहाँ से लेकर आप वहाँ दे रहे, नहीं तो आप बोल भी सकते मेरी बात है। नहीं, ये सच्चाई जिंदगी में बहुत फल देती है हमें, है ना।
1: मेरे को कई लोग बोले इसका राज क्या, मैं बोला मेरा इसका राज है रेडियो मधुबन सुनना और सबको आप लोग जैसे को बोलना, वो मेरा राज है।
0: जी जी, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू, ऐसे ही फोन करते रहिए, बताते रहिए। ओम शांति। तो हम बता रहे थे कुछ देर के बाद एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और थाल महर्षि के समक्ष रख दिया। महर्षि ने एक लड्डू अपने लिए रखा और शेष लड्डू बांट देने का संकेत किया। फिर बालक के हाथ में लड्डू रखते हुए बोले, जब तक मैं अपनी उंगली से रुकने का इशारा ना करूं तब तक तुम ये लड्डू खाते रहना, और ध्यान रखना मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू समाप्त नहीं होना चाहिए, और जैसे ही मैं इशारा करूं उसके बाद तुम्हारे हाथ में लड्डू शेष नहीं रहना चाहिए, वो उसी क्षण समाप्त हो जाना चाहिए। बालक ने लड्डू खाना शुरू किया किंतु की दृष्टि एक पल को भी महर्षि से नहीं हटी। मुख लड्डू खा रहा था पर मन और आंखें पूरी तरह महर्षि पर केंद्रित रही। अचानक महर्षि ने उंगली उठाई, इशारा मिलते ही बालक ने शेष लड्डू तुरंत ही मुंह में डाल दिया। महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, बस अभी जो तुमने किया वही कर्मयोग है, जब तुम लड्डू खा रहे थे तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा था, परंतु तुम्हारा मन निरंतर मेरे प्रति ही एकाग्र था। इसी प्रकार संसार में जहाँ भी रहो, जो भी कर्तव्य निभाओ, मन बुद्धि और स्मृति को ईश्वर में स्थिर रखकर कर्म करना ही सच्चा कर्म योग है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, अर्थात हाथ से विविध कर्म करते हुए भी मन सदैव उस प्रभु में टिके रहे जो करुणा और कृपा का असीम भंडार है। ये कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में चाहे कितने ही कार्य क्यों ना करें, सच्चा कर्म योग वही है जिसमें हाथ से कर्म होते रहें लेकिन मन निरंतर ईश्वर में स्थिर रहे। बाहरी काम की व्यवस्था हमें प्रभु स्मरण से दूर नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन को सफल, शांत और पवित्र बनाता है। चलिए भाई बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, उनकी बात फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा गीत।

0: हे माता रानी, ये जीवन तेरा दिया उपहार है, सांसे सारी उधार है। गुरूर करें भी तो किस चीज पर, हम तो यहाँ तेरे किराएदार हैं, हम तो तेरे यहाँ किराएदार हैं। ऐसे प्रेम से भगवान जी से कहिए ना, और फिर देखिए आपको किराएदार के जगह मालिक बना देगा। दूसरों की खुशी के लिए खुद को बर्बाद करने वाला व्यक्ति कभी बर्बाद नहीं होता। कभी कभी ईश्वर भी सुन लेते हैं अनकही प्रार्थनाएं, कभी कभी ईश्वर भी सुन लेते हैं अनकही प्रार्थनाएं और भेज देते हैं जीवन में ऐसा व्यक्ति जो इस स्वार्थी संसार में निस्वार्थ प्रेम निभाते हैं, जैसे श्री कृष्ण। सहज रहें पर सहज रहें। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। न बुरा होगा न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। हजार महफिलें हों लाख मेले हों, पर जब तक खुद से न मिले अकेले हो। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मनुष्य कितना भी गोरा काहे ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। अहंकार से जिनका मन मैला है, करोड़ों की भीड़ में भी वो अकेला है। बड़प्पन बड़े आदमियों के संपर्क से नहीं, अपने गुण कर्म और स्वभाव की निर्मलता से मिला करता है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। कहे कि हेलो
1: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: जी एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बस बस दीदी, हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है
0: जी। ठंडी इतनी है, आपके तो पैर नहीं चल रहे होंगे सिलाई के?
1: ठंडी तो है, लेकिन ऐसा हमको तो
0: आदत पड़ गई,
1: कम लगती है क्योंकि हम ठंडी से टूटे गए हैं, इसलिए ठंडी तो रहनी चाहिए, थोड़ी सी तो ठंडी अच्छी होती
0: है, अच्छी लगती है बिल्कुल। कभी कभी
1: ठंडी तो अच्छी लगती है क्योंकि मैं तो 3:30 बजे उठता हूँ, हमें के लिए 3:30 बजे उठ के पाठशाला में जाता हूँ, 4:45 बजे पाठशाला में जाता हूँ, 5 बजे 5 बजे से आज तैयार होकर दुकान पे जाता हूँ। क्योंकि अमृत वेला में हरा पूरा महीना में अमृत वेला जाता हूँ हमारे पाठशाला में।
0: बहुत अच्छी,
1: 3:30 बजे उठ के 4:45 बजे तैयार होकर चला जाता हूँ और 5 बजे आता हूँ पाठशाला में से। और मैं तो जाता हूँ लेकिन हमारे 2-3 बहनों को भी साथ के मेले तक जाता हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी हम भी दूसरों को लेके जाए तो हमको भी
0: हमारा भाग्य बनता है। हाँ, वो हमारी वजह से कभी आगे पीछे नहीं होंगे कि नहीं भैया वेट करेंगे, चलो तैयार हो जाएं जल्दी। जब कोई साथ होता है ना तो एक दूसरे का सहारा बहुत हो जाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो हम हर वक्त सबको ले जाते हैं जल्दी और पाठशाला में जाके 1 घंटे का हमारा योग होता है बाबा का।
0: जी जी,
1: देखते हैं वहाँ, योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं और अच्छा कार्यक्रम भी सुनते हैं वहाँ। हमारे कई लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लगभग 10-15 बच्चे आते हैं सुबह में।
0: अच्छा,
1: हमारे यहाँ पाठशाला है, गीता पाठशाला में जाते हैं।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहने अभी अभी आपने जो बात बताई कि कर्म दीदी करना चाहिए, कर्म से तो भाग्य बनता है।
0: बिल्कुल,
1: कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य से बनेगा? लोग आज लोग कुछ करते नहीं और बोलते हैं की हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं। अरे भाई, आप कुछ करो तो भाग्य आपका बन सकता है,
0: बनेगा।
1: अब ऐसे बैठे रहेंगे तो आपका भाग्य कैसे काम करेगा?
0: बिल्कुल,
1: हम खाना पड़ा है, हम खाए नहींगे, आज से खाए नहींगे तो क्या, हम क्या खाना हमारा मुंह में थोड़ा आ जाएगा?
0: नहीं आ जाएगा, सामने तक आ जाएगा भाग्य से, लेकिन मुंह में डाल के तो हाथ से उठा के मुंह में डालना तो आपको ही करना पड़ेगा।
1: करना पड़ता है, इसीलिए दीदी कर्म तो करना पड़ता है,
0: करना है पुरुषार्थ करना
1: है। कर्म करेगा तो आपका भाग्य आप बन जाता है, कर्म से तो भाग्य बनता है।
0: बिल्कुल, किसी को बोलने को किसी को कोसने से भाग्य नहीं बनता,
1: नहीं बनता,
0: कर्म करने से बनता।
1: हम ऐसे बात करेंगे तो ये करो ये करो, लेकिन करो तो होगा ना, वरना तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दीदी बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, हम सुन रहे हैं क्योंकि आज हमारे दीदी के यहाँ 9 बजे से 1 बजे तक की बिजली बंद है।
0: अच्छा, बिजली बंद है?
1: हाँ, बिजली बंद है तो आराम से बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं बैठे आराम से।
0: रेडियो में सेल डले हुए?
1: हाँ अभी तो दीदी नहीं, हमारे तो क्या है दीदी, मैं तो ये मोबाइल से कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: अच्छा अच्छा हाँ।
1: और क्योंकि हमारा जो सिलाई मशीन से अभी दीदी पैर का तो जला गया है, बस मशीन से ही चलता है, इलेक्ट्रिक से ही चलता है अभी तो। तो पैर वाला मशीन तो अब तो कोई चलाते नहीं है, क्योंकि वो तो पहले गुजर चलाते थे हमारे।
0: हाँ, अभी इलेक्ट्रिक वाली आ गई ना सारी बिजली।
1: हाँ,
0: से
1: अभी तो इलेक्ट्रिक जो मशीन आई है तो इलेक्ट्रिक से चलती है। पैर पैर नहीं आता है उसको, पहिया भी नहीं आता है इसके।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो बस बिजली चली जाती है तो आराम कर लेते हैं। नमस्ते दीदी,
0: ओम शांति। थैंक यू। सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। सरकार कौन? परमात्मा। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। धर्म छुट्टी पर है, विज्ञान ड्यूटी पर है। परमात्मा पागलों को चाहता है, समझदार अक्सर चूक जाता है। शिकायतों की भी इज्जत है, हर किसी से नहीं की जाती। बीते कल को मत दो आज की खुशी चुराने का मौका। क्षमा करना अर्थात स्वयं को दुख के बंधनों से मुक्त करना। दूसरों की अच्छाई देखना स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की पहली सीढ़ी है। त्याग जितना गहरा होगा भाग्य उतना ही संपन्न होकर लौटेगा। अपने अतीत के कैदी मत बनो, ये एक सबक था। आजीवन कारावास नहीं, भगवान भक्ति स्टेटस नहीं देखते, भगवान कर्म देखते। इसलिए अच्छे कर्म करो। समझ गए? तो अब भी भैया भी यही बोले रहे, हमको कितने लोग पहचानते उसका महत्व नहीं है। लोग क्यों पहचानते हैं, इसका महत्व है। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, प्रसिद्धि और ख्याति समाज से मिलती है, अहंकार और घमंड स्वयं से मिलता है। नतमस्तक आभारी एवं सावधान रहें। बनावट सजावट और दिखावट इन्हीं तीनों चीजों के कारण आई है लोगों में गिरावट। बड़प्पन बड़े आदमियों के संपर्क से नहीं अपने गुण कर्म और स्वभाव की निर्मलता से मिलता है। अंत में यही कहेंगे कि भाई सब कुछ कर्म है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इसलिए लिया भी कीजिए और दिया भी कीजिए। अंत में आपकी 99 अच्छाइयों को भुलाकर एक बुराई का जिक्र किया जाएगा और रिश्ता समाप्त। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए ना ही किसी को कम चाहिए। बोलने वाली जुबानें बहुत हैं, सोचने वाले दिमाग बहुत कम। व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा होता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल आपसे मिलेंगे। आज जरा काम है तो निकल रहे हैं, कल 11 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। जैसे एक संगीत शिल्पी कोई एक राग का संपूर्ण परिचय देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आलाप के माध्यम से, आलाप माना ही विस्तार, जिसके माध्यम से उसके शैल्पिक चेतना प्रस्फुटित होती है। जैसे भाषा के माध्यम से साहित्यकार के साहित्य प्रकाशित होते हैं, रंग और तुली द्वारा एक चित्रकार अपने मन के दर्पण में एक चित्र अंकित करता है, ठीक ऐसे ही एक गायक भी स्वर विस्तार या आलाप के द्वारा राग की रूपरेखा परिवेशन करता है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने यमन राग के ऊपर विलंबित ख्याल शुरुआत की थी, आज हम उसके ही बारे में श्यामली जी से और जानकारी लेंगे। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं सबको नमस्कार जनाती हूँ।
0: श्यामली जी, आज शायद आप वही लाए हैं ना?
1: हाँ जी, आपने अभी बताया विस्तार और आलाप, या बोलते हो आलाप की बहुत जरूरी है, विस्तार सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गीत में अगर सरगम की जो सजावट है
0: जी,
1: कभी कभी होता है ना, कोई अच्छा गीत गाने के टाइम अगर कोई गाने का जो डिजाइन होता है, जैसे हम अलंकार के सजाते हैं, ऐसे गीतों का भी अलंकार होता है।
0: माना जब हम श्रृंगार करते हैं वैसे ही
1: ये भी श्रृंगार ही है, गीत के श्रृंगार है। मैं थोड़ा करके सुनाती हूँ, चार लाइन फिल्म का गीत। अच्छा। देखिए क्यों हम विस्तार सीखना जरूरी है, ठीक है।

0: हमने थोड़ा सुनाया है। ये जो गीत की आप देखिए, इस गीत का कितना अच्छा सिंगर है जिन्होंने ये निभाया है
1: जी।
0: पहले उन्होंने यही राग सीखे हैं, बिस्तर की है, कुछ भी किए हैं, उसके ऊपर दखल लिए हैं, तब तो जाके एक राग परिवेशन कर सकते हैं। इसलिए बिस्तर बहुत बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम वही बिस्तर थोड़ा सिखाएंगे, विलंबित ख्याल के बिस्तर सिखाएंगे।
1: हाँ, तो श्यामली जी, मैं समझती हूँ यमन राग की विलंबित ख्याल की बंदिश एक बार हमारे श्रोता मित्रों को फिर से सुना देंगे, जो लास्ट एपिसोड में हमने किया है।
0: हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि शायद लिसनर भूल भी गए हैं, तो थोड़ा ताजा हो जाएंगे। यमन राग की विलंबित आपने पहले बताया, एक तल की ऊपर है, एक तल की चार चार चार मात्रा करके, अगर उसको 48 मात्रा में है तो इसको पहले अपने पिछले एपिसोड में हमने बोल जो है तबला की जो ठेका की बोल जो है वो भी दे दिया। अभी फिर से विलंबित ख्याल दोहराती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, ठीक है
1: जी।

0: संस्कृत है, जैसे 48 मात्रा है, अगर मेरा मन वा बा तक बा चार मात्रा है, मेरा मन चार मात्रा है, ये 8 मात्रा हो गया। और बाकी अगर 48 मात्रा है, 40 मात्रा बचे हुए हैं
1: जी।
0: अगर 20 तक 40 मात्रा में करते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले पहले ऐसे करना है, क्योंकि ग्रामेटिकली मैथमेटिकली जाना है, जब हम नहीं जाएंगे तब हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं सीधा साधा वे सरल गति से हम दे देते हैं
1: जी,
0: एकदम सहजता से वो कर पाएंगे। तो अगर लिसनर लिख लेता है, दो पहले देती हूँ
1: जी जी।
0: तो एक नंबर नी ई रे ए, नी ये जो नी है नीचे नी मंद्र सर के नी, नी ई रे ए गा आ आ आ, चार गा मतलब चार मात्रा, नी ई रे ए मतलब चार मात्रा और गा चार मात्रा, तो इसमें हो गया 8 मात्रा। तो ऐसे करना है, नी ई रे ए गा आ आ आ मा आ गा आ, करीमा है मा आ गा आ रे ए ए ए नी ई रे ए, ये जो नी है नीचे नी मंद्र सर की नी, उसके बाद गा चार मात्रा गा आ आ आ मा आ रे गा रे ए रे ए नी ई रे ए सा आ आ आ मेरा मन वा। बा चार मात्रा करने के बाद अगर कटते हैं, पहले एक सुनाती हूँ कैसे करना है, तब जाके आगे
1: आप बताएंगे तो उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस प्रकार से ये करना है।
0: अगर हाथ में गिनती कर लेते हैं
1: जी,
0: फिंगर में गिनती कर लेते, एक एक मात्रा गिनती कर लेते हैं, देखिए वही आ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा।

0: आपने देखा ना कि इतना इजी प्रोसेस से सहजता से हमने किया है, आठ मात्रा किया है मुखरा के साथ, चार मात्रा स्वम के बाद चार मात्रा किया है, उसके बाद हमने जितना किया है 40 मात्रा हमने किया है।
1: अच्छा,
0: पहले चार मात्रा मुखरा किया है, उसके बाद स्वम गिरते हैं चार मात्रा किया है, मतलब चार मात्रा आठ मात्रा चले गए, बाकी 40 मात्रा में हम ये विस्तार किया है।
1: अच्छा,
0: अगर अभी आ करेंगे देखो कितना सुंदरता है,

0: तो ये यमन राग का विस्तार आपने बताया।
1: हाँ, मैं सहजता से सिखाती हूँ।
0: हाँ, सहजता से माना छोटे छोटे विस्तार से ही वो पकड़ पाएंगे है ना?
1: हाँ जी।
0: श्यामली जी, इसी विस्तार के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हम यमन राग से ही संबंधित एक सुंदर सा मीठा सा गीत का आनंद लेंगे। हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने श्यामली जी से यमन राग के विस्तार के बारे में सुना भी और समझा भी कि विस्तार कितना जरूरी है,
1: है ना? आगे आगे और भी सिखाएंगे
0: जी,
1: तो आपको पता लगेगा कितना जरूरी है
0: जी। और बहुत सहजता से उन्होंने हमको बताया कि विलंबित ख्याल इतना जरूरी है श्रृंगार के, जैसे हाँ हम श्रृंगार करते हैं उसके लिए, जैसे
1: हाँ जी
0: अपनी सुंदरता की अभिव्यक्ति करने के लिए
1: हाँ जी
0: श्रृंगार करते हैं, वैसे संगीत में भी,
1: संगीत की भी वो भी जान है ना, संगीत में भी जान
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: तो उसका अगर सिंगर करते हैं तो इसके लिए विस्तार बहुत बहुत बहुत जरूरी है
0: जी। तो आगे आप हमको क्या बताना चाहेंगे?
1: जैसे आपको बताइए ये जो विस्तार कैसे हम उसके ऊपर लाएंगे, जैसे आकर के सुनाए, आकर करके सुनाए, थोड़ा सुनाती हूँ

0: ये जो हमने बिस्तर किया है बोल के ऊपर बिस्तर किया है, अभी विलंबित में बोल के ऊपर बिस्तर करना ही है। अच्छा। पहले ये जो हम आकार करके किया है, सरगम किया है, वो तो करना ही है। पहले इसको कंठस्थ करेंगे, अगर वही जो सरगम है अभी जो सरगम दिया है उसके ऊपर आकार किया है, उसके ऊपर अगर बोल जो है मेरा मन बाधली, ये जो बोल बिठाते हैं तो सहजता से वो कर पाएंगे।
1: जी, मन आकार के साथ साथ बोल भी बिठाएंगे।
0: हाँ, बोल तो भी वो जो सुर में हम यमन रग की जो स्वर जो है सर बिस्तर पहले कर लेंगे, उसके अगर बैठेंगे तो इजीली हो जाएंगे।
1: जी जी,
0: तो मैं चाहती हूँ ये सरगम दो देती हूँ, बाकी फिर से थोड़ा सुनाती हूँ बिस्तर कैसे करना है। ठीक है,
1: ओके।
0: तो नंबर दो अगर लिख लेते हैं लिसनर, नी ए रे ए, ऑब्वियसली ये जो नी है मंद्र सर की है, नी ए रे ए गा आ मा आ पा आ मा आ रे गा रे ए ए ए नी ए रे ए गा आ रे ए मा आ गा रे गा मा गा रे नी रे सा आ, नीचे नी है। ठीक है, तो अभी मैं एक और भी एक बात बताना चाहती हूँ, आठ मात्राएं अगर माइनस करना है ऐसे भी नहीं, 40 मात्राएं बिस्तर करने ऐसे भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं,

0: हम यही ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा। ये तो जैसे ग्रामेटिकली मैथमेटिकली हो गया, ये तो उठाने के लिए सही है, लेकिन बाद में फ्रीडम, ये जो बिस्तर है सुर में बैठा कर फ्रीडम से करना है।
1: ओके।
0: हम खाली ये कंठस्थ कर लिया इसके मतलब ये नहीं हर टाइम कंठस्थ करेंगे। अच्छा। हमने ये जो आठ मात्रा हमने किया है, मेरा मन बा के चार मात्रा किया है, हम आठ मात्रा में भी कर सकते हैं, आठ मात्रा के बाद भी स्वर्ग में उठा सकते हैं। यही आपको
1: थोड़ा आराम से अपनी मर्जी से कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं ताल के साथ। लेकिन याद रखना है वो लास्ट में जो स्वम की जो है, स्वम गिनने के चार मात्रा पहले आपको मेरा मन उठाना ही है। अच्छा। मेरा मन बाकी ऊपर स्वम उठाना ही है।
1: Okay.
0: जैसे अभी मैं करती हूँ। अच्छा, और भी एक सरगम दे देती हूँ, हम दो करके सुनाती हूँ
1: जी।
0: नेक्स्ट करती हूँ, नी ई रे गा मा आ गा आ मा आ रे गा रे ए ए ए नी रे गा आ मा पा मा गा रे नी रे गा रे सा, चार मात्रा। अभी ये दो जो हमने दिया है थोड़ा करके सुनाती हूँ, ठीक है, जिसके बाद थोड़ा बिस्तर भी करेंगे।

0: हम ने क्या किया, एकदम सहजता से सिखाने के लिए दिया है। तो आपको ये जो बिस्तर है, बिस्तर दिखा दिया है कैसे करना है।
1: अब श्यामली जी, जाते जाते आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं?
0: हाँ, एक बहुत सुंदर गीत है, ये चित्रलेखा बहुत पुराने फिल्म का गीत है, रफी साहब ने गीत गाए थे, इतना सुंदर है। मन रे तो काहे न धीर धरे, बहुत सुंदर
1: बोली उसके, बहुत सुंदर है। जी जी।

0: बहुत सुंदर, पूरा गीत के जो बोल है वो भी इतने अर्थ सहित है।
1: हाँ जी,
0: पुरानी फिल्मों के ऐसे भी गीत अर्थ सहित ही थे,
1: भजन भी हो सकता भजन टाइप का है
0: जी,
1: लेकिन इतना सुंदर रफी साहब जी ने बहुत सुंदर निभाया।
0: तुम हमारा मन भी अभी अधीर हो रहा है। ऐसे तो समय अभी हमको देता है इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ बात करना चाहते हो तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत थलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी, मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दें और तारों को दिन में दिखा दें। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ, यानी 16 अलग अलग स्वभाव, 16 अलग अलग अनूठे कैरेक्टर और 16 अलग अलग कहानियां। आइए मिलते हैं राठौड़ परिवार के पहले सदस्य, घर के सबसे बड़े भाई यानी बच्चों के ताऊजी श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ से। ये आदर्शवादी, आशावादी, बात सभ्यता से करते हैं, स्कूल टीचर हैं, संस्कारों से इनके दिन रात चलते हैं। अरे अरे, रुकिए रुकिए, और भाई इनके बिना गजेंद्र सिंह जी कहां पूरे होते हैं। साथ में मिलिए गजेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सब की रखती हैं, पल में तोला, पल में माशा, पल पल में रंग बदलती हैं।
1: ठीक है, लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार, क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है
2: अंकल। हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
2: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौर परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
4: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
3: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
4: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती है। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
5: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
6: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
7: शांति शांति शांति शांति।
6: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
7: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं, क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु, माफ करना। मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान, माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
0: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं, थोड़े थोड़े से हैं जिम्मेदार। जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
8: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
9: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन
8: लेकिन क्या?
9: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
8: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
9: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
8: बोल बेटा बोल।
9: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
8: अच्छा बेटा, रुक अभी बताता हूँ।
9: अरे चाचू, मैं जा रही हूँ।
0: बचपन किसी पौधे की तरह होता है। अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो, वहाँ तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बा मुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त। किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
10: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं। चल राजकुमारी, फिर से सारा काम कर।
11: राजकुमारी क्या कर रही है? आराम से कर।
10: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
11: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
10: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
0: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य हैं इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं। इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
12: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
13: डैड, व्हाट हैपेंड?
12: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
13: ये श्री कौन है डैड?
12: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
13: अरे डैड, वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
12: ठीक है, पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
14: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी? मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
12: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
14: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
12: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
0: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर, आइए चलिए देखते हैं।
15: मैडम 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
2: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
16: राजकुमारी।
2: राजकुमारी
17: राजकुमारी
16: राजकुमारी।
10: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
5: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
10: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
2: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा।
16: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाए भाई साहब।
14: अरे फिर मंगवाया किसने?
10: मुझे
14: वापस कर दो उसको।
10: मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
2: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
0: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोकझोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
18: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगी। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुखवंत सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। काफी लंबे समय से डीपीएस से जुड़े रहे हैं, प्रिंसिपल का काम भी आपने किया है और फिर एक अच्छे टीचर का जो सम्मान है आपको दो बार मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम आपने किए हैं जिसके लिए आपको सम्मान प्राप्त है और आज भी लोग आपको एक शिक्षाविद के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं अपने स्थान पर भोपाल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने लंबे समय से कम 3 दशक तक आपने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, एक बहुत बड़ा अनुभव है। आदमी अगर 3 दशक किसी फील्ड में रहता है तो उस फील्ड का पूरा जो है निचोड़ उनके पास हो जाता है। तो बिल्कुल आपके एजुकेशन शिक्षा के अंदर जो गतिविधियां है, जो चीजें हो रही हैं, उसकी पूरी आपको जो है ज्ञान भी है और आप बच्चों से अगर जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे बेहद खुश होते होंगे और आपको पसंद भी करते होंगे। और आपने इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया है और मैं चाहूंगा कि आगे की जो बातें हैं, जितना मुझे जानकारी हो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन अभी हम लोग सर से ही अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। तो आप सभी की तरफ से सुखवंत सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर।
1: नमस्कार सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और ये भी एक परमात्मा की देन मैं समझता हूँ कि वो हमें मिलाता है और साधन बनते हैं। साधन हमारे यहाँ से जो आपके ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है उनके थ्रू मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप इस तरह से शो कंडक्ट करते हैं और जी, आपने जी, मुझे इस काबिल समझा, ये मेरा सौभाग्य है।
0: अरे सर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनने का। एक सौभाग्य है मेरा कि मैं आप जैसे एजुकेशनिस्ट को सुन पा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि शिक्षा प्रणाली में काफी अच्छा जो बदलाव आए हैं, इसके अलावा और क्या बदलाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए।
1: सर अभी तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की,
0: हाँ,
1: उसमें बहुत बदलाव जो हैं वो सारे जो होने चाहिए उस ओर मतलब एक बहुत
0: ही
1: अच्छा एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को प्राप्त हुई है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। और जो एक रॉट लर्निंग पहले होती थी कि चीजों को कंटेस्ट कर लिया जाए और उसको फिर एग्जाम कंडक्ट हो और बच्चे जो लिख देते थे, जो कंटेस्ट करने की क्षमता रखते थे वो अव्वल नंबर पा जाते थे और जो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते थे वो पीछे हो जाते थे। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा मतलब इसका तालमेल अब चेंज होगा और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे और जो आउटपुट होगा इसका निश्चित रूप से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, नए पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव किए हैं और जो हमें चाहिए था वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, दो कैटेगरी के बच्चों को जो बाहर कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, उन दोनों को भी न्याय मिलेगा और साथ ही साथ जो सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जितना तक वो पढ़ता है उतना तक उसको सर्टिफिकेट, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर काम हो रहा है एजुकेशन नए पॉलिसी में। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसे आज के समय में जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं और आप 30 यानी पूरे 30 सालों तक आप एजुकेशन फील्ड में काम किया है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं, 30 ईयर्स बैक चले जाते हैं, 3 दशक पीछे चले जाते हैं, तो उस समय आपकी जब शुरुआत एजुकेशन फील्ड में आप एंट्री कर रहे होंगे तो उस समय का जो सिनेरियो था वो कैसा था और आप किस लक्ष्य को लेकर वहां पहुंचे थे और कैसे कैसे आप में क्या बदलाव आया, वो भी मैं चाहूंगा कि जरूर।
1: एक प्रश्न पूछा जाता है शिक्षकों से, जो शिक्षक जो शिक्षा की लाइन में होते हैं, कि आप इस फील्ड में अपनी इच्छा से आए या किसी
0: मजबूरी से आए।
1: तो अगर आप मेरे आपसे ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा था, एक वक्त ऐसा आ गया था जब हम लोग, मैं 83-85 के दौरान मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था रेवेन्शा कॉलेज कटक से,
0: जी।
1: और उसी दौरान कुछ ऐसा हो गया था कि हम लोग उड़ीसा में रहते थे, लेकिन जो 84 के जो रायट्स हुए थे उसमें हमारे पिताजी का, और उस कारण से जब मेरी एमए कंप्लीशन की तरफ थी तो कुछ आर्थिक समस्याएं गई, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दिल्ली पढ़ने के लिए जाऊं, आगे अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, लेकिन मैंने जब घर के हालात देखे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ नौकरी की ओर भी जाना चाहिए, और मैंने वहीं से एक

0: मिलता है, तो वो हम लोगों ने
1: जी
0: मौका
1: जी
0: मिस किया था। जब मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डीपी
1: देखा तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आए और मैंने कहा देखिए स्कूल में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला और यहाँ पर मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए। तो मैंने वहीं से वेलूर से ही एक प्लेन पेपर में मैंने चिट्ठी लिखी डीपीएस कोरबा के मैनेजमेंट को कि मैं इस तरह से जीजा जी के इलाज के लिए आया हूँ और मेरा ये बायोडाटा है, मैंने एमए तक शिक्षा ग्रहण की हुई है और मैं नॉन बीएड हूँ, मेरे पास में सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेरे को आप अगर मौका देंगे तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ। मैंने वहां से वो चिट्ठी पोस्ट कर दी वेलोर से और जब वापस विशाखापट्टनम आया मैं, जब विशाखापट्टनम हम लोग रहते थे क्योंकि जयपुर से हम लोग शिफ्ट कर गए थे, विशाखापट्टनम से डैडी ने रेसिडेंस अपना विशाखापट्टनम कर लिया था, तो अच्छा।
0: विशाखापट्टनम में एक दिन मेरे को अचानक से कॉल लेटर आ गया डीपीएस कोरबा का
1: अरे
0: और
1: वाह।
0: मैं प्रिपरेशन कर रहा था आंध्रा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, मैं जाता था वहां पर एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको हम बबला बबला सर कहते थे, तो उनके
1: अच्छा
0: अंडर में
1: अच्छा
0: मैं प्रिपेयर कर रहा था सिविल सर्विसेज की, दो सब्जेक्ट मैंने लिए थे साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी की अनुमति दी हुई थी यूज करने की और आंध्रा यूनिवर्सिटी की उस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने मतलब उस दौरान पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिली मुझे। तो बबला सर को जब पता चला तो वो नाराज हुए, बोले क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं क्योंकि अभी इस वक्त खाली बैठा हूं तो काफी लोग मेरे को यूज करते हैं, यूज करने का सेंस है कि अगर मामा जी को अपने ससुराल जाना है तो कहते हैं कि मेरी दुकान में आके बैठ जाओ, चाचा जी को कहीं जाना है तो कहते हैं मेरी दुकान में आके थोड़े दिन बैठ जाओ, तो मेरी पढ़ाई में इफेक्ट होता है, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जहां पर मैं बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकूं। तो मैंने
1: बिल्कुल
0: वहां से
1: बिल्कुल
0: जब अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद में फिर मैंने पिताजी से अनुमति मांगी कि मेरे को नौकरी करने का मौका दिया जाए, मैं जाके अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा। तो
1: बिल्कुल
0: पहला साल जो था 87 का वो मैंने इस कंडीशन पे ज्वाइन किया था कि मैं अपनी साथ साथ में तैयारी रखूंगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो नौकरी मेरे को मिली है एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में मिली है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ में मिली है, और मैं मुझे तब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पता चली कि नहीं भाई आप इसमें कंटिन्यू करोगे तो आपके दो बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी, मैं उस वक्त बैचलर था लेकिन फिर भी ये एक जो पॉइंट था कि दो बच्चों की पढ़ाई मैं फ्री करा सकूंगा अपने बच्चों की, तो मुझे लगा कि अगर मैं आईएएस नहीं बनता तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन बचता था बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का,
1: बिल्कुल
0: तो मैंने सोचा कि अगर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन गया तो दो बच्चों की पढ़ाई अगर मैं डीपीएस के जैसे स्कूल में अगर करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा, तो मेरे पास में जो ऑप्शन था मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं एक अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन जो था मेरा दैट वाज आउट ऑफ प्योर चॉइस और आज की डेट तक मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो सब बातें पीछे रह गई, मैंने वहां से प्रयास किया है कि मैं एक अच्छा टीचर बनने का प्रयास करूंगा इसी विद्यालय में, और फिर आगे चल के हमारी शादी हुई, एक बच्ची हुई, दो बच्चे तो नहीं हुए हमारे, एक ही बच्ची है और उसको भी डीपीएस में पढ़ने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि मेरा ये जो कैरियर था मतलब अभी तक जो चल रहा है मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और बच्चों को पसंद करता हूं और शायद बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आज से 30 साल पहला जो चीजें आपके सरकमटेंस आ गए ऐसे कि आपको इस तरह आपको जाना हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे गीता का
0: बिल्कुल
1: जो शब्द है वो लिखते हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो
0: जी,
1: होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होगा।
0: वो भी अच्छा होगा।
1: तो बिल्कुल, मानसी जी ने याद भेजा है ओम शांति करके। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए शिक्षा के क्षेत्र की। और हमारे कर्नल सर भी जुड़ गए हैं, सोलंकी सर राजस्थान से, उन्होंने भी याद भेजा है और आपको भी याद किया है। सुखवंत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत हैं और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं। और शिक्षक तो बच्चों के भविष्य बनाते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद कर्नल सर याद करके मैसेज करने के लिए। अब आइए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा फिर से सुखवंत सिंह सर से। जैसे कि अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग कि आज से 30 साल पहले जब आप पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो उस समय आपकी जैसे कि बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम बच्चों

0: से मिलते हैं, तो आपको कितने टाइम में ऐसे लगा कि मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाऊंगा और ये बहुत अच्छा कर पाऊंगा?
1: सर, पहली क्लास, पहला दिन और पहली क्लास से मुझे लगा कि मैं बच्चों के बीच में बहुत अच्छी जगह में आया हूँ। मुझे आज भी वो क्लास याद है,
0: अच्छा
1: क्लास 5 थी वो, 87 की बात कर रहा हूँ,
0: हाँ
1: 87-88 की बात है,
0: जी
1: और
0: जी
1: मुझे क्लास 5 का टीचर बनाया गया था। हालांकि मैं क्लास 10 तक जाता था पढ़ाने के लिए, लेकिन क्लास 5 का टीचर था मैं। तो जब उस क्लास के अंदर में मैं जब गया और मुझे छोटे बच्चे दिखे, और उसमें मुझे अच्छे से सब कई सारे बच्चों के नाम भी याद है। श्रीजीत चक्रवर्ती, वो आज डॉक्टर है। शोभी अब्राहम, वो न्यूजीलैंड में है। उसके बाद में मोनिका नागपाल एक थी, वो डॉक्टर है। फिर मुक्ता मुक्ता करके एक लड़की थी, बड़ी प्यारी सी। उसके बाद मतलब इसी तरह से कई सारे बच्चे उस क्लास के हैं जो आज भी मेरे टच पे हैं फेसबुक के द्वारा। और
0: जी जी
1: मुझे उस क्लास में जाके बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लगा कि एक अच्छे विद्यालय में और अच्छे बच्चों के साथ में होना एक मतलब एक बड़े ही किस्मत की बात है जो मुझे उपलब्ध थी उस
0: जी
1: वक्त। और उन बच्चों के साथ
0: बिल्कुल
1: में आई से टॉट देम एंड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि उस वक्त के माहौल और पढ़ाने के जो टेक्निक्स होती थी, वो बड़ी बेसिक्स होती थी हमारे पास में। जैसे हम लोग रिजल्ट भी बनाते थे जब, तो रिजल्ट हम लोग प्लेन शीट्स में स्केल, पेंसिल, रबर लेके हम लोग लाइनें खींचते थे, और उसमें सब्जेक्ट का स्लॉट बनाते थे, फिर मार्क्स लिखते थे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी की जो हेल्प होती थी, वो एक कैलकुलेटर होता था, छोटा सा हमारे पास में कैलकुलेटर था, पॉकेट कैलकुलेटर। उसको खोल के हम लोग टोटलिंग करते थे। और उस वक्त जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे, जैसे आर एन त्रिपाठी सर और कुछ उस विद्यालय के जो कुछ और पुराने टीचर्स जो थे, वो हमें कहते थे अपना पुराना 10 साल का एक्सपीरियंस, इस तापर जी आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है, हम लोग तो एकदम से मतलब मेंटल टोटलिंग करते थे और उसको परसेंटेज निकालते थे, आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है। तो हम लोग, मैंने
0: जी
1: अपना कैरियर जब चालू किया, तो हम लोग रिजल्ट कैलकुलेटर हमारे पास में मैक्सिमम एक टेक्नोलॉजी की हेल्प होती थी। और जब टाइम टेबल भी बनाते थे हम लोग बैठ के, टीचर्स का टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल, तो वो भी हमें एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके, उसमें पहले तो करीब करीब एक आध घंटा लग जाता था लाइंस ड्रॉ करने के। फिर उसमें टीचर्स के नाम लिखते थे, टीचर्स के नाम आगे सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्लासेस अलॉटमेंट होती थी। बड़ा समय लगता था उस टाइम टेबल को बनाने में। और इधर आज के जमाने में आपके पास में एक्सेल शीट्स हैं और टेक्नोलॉजी की पूरी हेल्प है आपके पास में। क्वेश्चन पेपर्स जब हम बनाते थे तो मुझे
0: जी
1: याद है न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स काट के उसको हैंड रिटन लिख के, या मैक्सिमम अगर प्रिंसिपल परमिशन तो उसको कहीं बाहर से या स्कूल ऑफिस से उसको जीरोक्स करा के उसको लगाते थे और उस पर क्वेश्चन बनाते थे। आज एट द प्रेस ऑफ ए बटन वी हैव वेरियस सैंपल पेपर्स अवेलेबल विच टीचर्स आर यूजिंग। तो फर्क थोड़ा सा ये आ गया है सर, कि उस वक्त हम लोग काफी इन्वॉल्व रहते थे क्वेश्चन पेपर बनाने में, और आज जो रेडीमेड जो मिल जाता है, उसमें मुझे थोड़ी सी कभी कभी क्वालिटी की कमी नजर आती है। कि मतलब जो एक पूरा ध्यान लगा के जो टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना देते थे पहले, वो एक उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती थी, जो कि आज हम लोग सैंपल पेपर से इजीली उठा लेते हैं। जो टीचर्स सारे क्वेश्चन पेपर्स सैंपल पेपर से ना उठा के खुद बनाए, वो मेरे ख्याल से बच्चों
0: बेटर
1: को भी
0: ज्यादा है।
1: पसंद आएगा, पेरेंट्स को भी पसंद आएगा।
0: जी सुखवंत सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या सिचुएशन होता है, और बच्चों को पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें रम जाते हैं जैसे आप रम गए, पर पहले दिन ही आपको एहसास हुआ कि मैं बच्चों के साथ अच्छा कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पे ये एहसास ही हमें जो है 30 साल तक बांध के रखा है, और आपने उसको बखूबी निभाया है। तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कई बच्चों का शिकायत होती है कि वो कुछ चीजें नहीं समझ पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप बताएंगे, बच्चों के साइड से क्या एफर्ट्स होना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स का क्या एफर्ट होना चाहिए?
1: सर, ये आपने एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है स्कूल सिनेरियो के लिए।
0: जी जी
1: मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, अपने टीचर से भी कहता हूँ, और ये आप ऑब्जर्व भी करते हैं, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे आपने भी देखा होगा कि जो
0: जी
1: टीचर नॉलेजेबल है वो कभी भी बच्चों से गुस्सा नहीं करते। क्लास में बच्चा अगर जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब वो जरूर देते हैं। गुस्सा कौन करता है? जो अपने में उसका कॉन्फिडेंस कम हो, शायद समझ लीजिए जो बच्चा क्वेश्चन को पूछ रहा हो उसका उत्तर उसको ना आता हो और वो स्वीकार ना कर पा रहा हो कि मुझे ये उत्तर नहीं आता। जिस दिन एक टीचर ये कहना सीख जाए कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता बच्चे, मैं तुमको ये कल बताऊंगा, तो मैं उस टीचर की रेटिंग काफी हाई करूंगा। मतलब उस
0: बिल्कुल
1: टीचर में एक कम से कम क्वालिटी है कि अपनी कमी को वो स्वीकार कर रहा है। जिस दिन हम अपनी कमी को भी स्वीकार कर लेना सीख जाते हैं, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। और बच्चों को हम बहुत आ, आ, देर तक या बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे निश्चित रूप से समझ जाते हैं कौन किस टीचर के पास में कितनी नॉलेज है और ये हमें क्यों डांट रहा है, ये सब बच्चे पकड़ते हैं।
0: जी जी चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और सोलंकी सर ने एक शायद विचार भेजा है, लिखते हैं, ओम शांति, मैंने तो बीएड भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और डीपीएस आरकेपुरम नई दिल्ली में, तीन विषयों में पढ़ाया बच्चों से, बहुत सीखने को मिला जो पूरे जीवन काल में काम आया, और पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चलिए,
1: थैंक यू सो
0: बहुत
1: मच।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सोलंकी सर, बहुत ही
1: अच्छा,
0: अच्छा
1: मुझे
0: लगा
1: भी अभी जैसे
0: आपने।
1: इन्होंने आरकेपुरम की बात की है तो
0: जी जी जी जी
1: मैं कहूंगा, जब मैंने 87 में डीपीएस कोरबा ज्वाइन किया था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर बी सिंह, भीकम सिंह के साथ में काम करने का। और
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी जी
1: भीकम
0: जी
1: सिंह 10 साल वो करीब डीपीएस आरकेपुरम में काम करके आए थे, एज फिजिक्स पढ़ाते थे क्लास 11th 12th में। तो आरकेपुरम का जो कल्चर जो था वो उन्होंने डीपीएस कोरबा में इम्प्लीमेंट किया और उनके अंडर में रह के 7 साल वो हमारे साथ रहे। उसके बाद फिर वो चले गए रामपुर में, मोदी एकेडमी में। तो 7 साल हम लोगों ने उनसे डीपीएस का कल्चर ग्रहण किया। वो जब वहां से निकले थे तो उनके साथ में मिस्टर एम आई हुसैन, ये चले गए थे डीपीएस भिलाई, और त्यागी सर गए थे डीपीएस बोकारो। तो त्यागी सर और आपके एम आई हुसैन सर और डॉक्टर बीकम सिंह, इन तीनों ने डीपीएस कोरबा, डीपीएस भिलाई और डीपीएस बोकारो को बनाया। और इनके अंडर में रह के हम लोगों ने सीखा। और मेरे साथ में थे जय महंती, डॉक्टर अरुण प्रकाश, मैं और कई सारे टीचर्स जो थे, हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। और आगे जब हम लोगों को जिम्मेवारियां मिली डीपीएस चलाने की, तो ये जो परंपरा है डीपीएस की उसको हम लोगों ने आगे और बढ़ाया। डॉक्टर अरुण प्रकाश काफी विद्यालयों में रहे, वो गए वहां से न्यू बुनगाईगांव, फिर गुवाहाटी, फिर बिलासपुर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद वो जेड्डा चले गए, इंटरनेशनल स्कूल्स कुछ चलाए उन्होंने। फिर वो चले गए साई इंटरनेशनल भुवनेश्वर, जो नंबर 1 स्कूल कहलाता है के स्कूल कैटेगरी में। वहां से फिर वो चले गए अपने इलाहाबाद, वहां पर उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है, लॉरल्स इंटरनेशनल। जय महंती सर ये भी मेरे कोलीग रहे हैं, और वो वहां से कोरबा से निकले और वो आए डीपीएस विंदनगर, फिर यहाँ डीपीएस विंदनगर से गए डीपीएस रांची, और डीपीएस रांची से अब चले गए हैं वो डीपीएस नवी मुंबई। तो जो कहते हैं एक जोत कोई जलती है उसे जोत से जोत जलाते चलो, तो ये डीपीएस मथुरा रोड की जोत जो है, जो 1947 में जली, जो विस्थापित होकर जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप टाइप का स्कूल चलाया था और टेंट्स में ये स्कूल चला था, डीपीएस मथुरा रोड। और आगे चल के 1972 में डीपीएस आरकेपुरम की ब्रांच चली। उसके बाद 1972 से लेकर 83 तक दो ही ब्रांचेस थी, मथुरा रोड और आरकेपुरम। 83 में डीपीएस स्प्रेड करना चालू किया आर एस लुघानी सर के अंडर में, बीएचईएल भेल दैट इज रानीपुर हरिद्वार में स्कूल एक खुला, और साथ साथ दामन जोड़ी 85 में डीपीएस कोरबा भिलाई और बोकारो खुला, और उसके बाद फिर कई सारे स्कूल्स खुलते गए। आज की डेट में करीब 240 से ज़्यादा दिल्ली पब्लिक स्कूल्स हैं और इंडिया में हैं, अब्रॉड हैं, और मेरे ख्याल से सब सारे स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर।
0: सुकवंत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने डीपीएस स्कूल के बारे में बताया, उसका इतिहास। और अब मैं चाहूंगा कि आपको जो नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है 2013 एंड 14, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे आपको प्राप्त हुआ। जी
1: सर, इसकी एक एक रिपोर्ट मांगी जाती है आरओ ऑफिस द्वारा, और
0: हाँ।
1: उसको वो एनालाइज करते हैं, आपका पर्सनल डाटा लेते हैं, स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं पिछले कई सालों की, और जो प्रिंसिपल्स और जो स्कूल का जो रिजल्ट्स रहता है उस पे उसको एनालाइज करते हुए एक रिपोर्ट मांगी जाती है जो काफी पन्नों में होती है, और उसकी फिर एक आपके जो सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसके भी कई सारे मार्क्स होते हैं उस पे, वो फिर पूरे देश में से करीब 30 से 35 टीचर्स प्रिंसिपल्स को ये अवार्ड देते हैं। अब उसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, अब वो काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लेते हैं, क्योंकि आपके वीडियोस हो गए और आपके टीचिंग पैटर्न क्या है, आपके स्कूल के रिजल्ट्स क्या है, ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है सीबीएसई के लिए, आपने क्या क्या काम किया हुआ है। जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1993-94 में सीबीएसई के साथ जुड़ने का। मैं आपको एक अच्छा एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं 87 में मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, डॉक्टर बी सिंह आके जुड़े, और 88 में एक लेटर आया था सीबीएसई की तरफ से।
0: अच्छा।
1: और वो लेटर था, सीबीएसई एक एनालिसिस करना चाहती थी और इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है उसके बारे में वो एक अच्छा सर्वे करके कुछ बदलाव लाना चाहती थी। तो वो चीज 88 में जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि आप उस टीचर का नाम फॉरवर्ड करें जो कम से कम 5 साल कक्षा 10वीं को पढ़ाया हो, और मैंने तो सिर्फ 1 साल ही हुआ था मुझे ज्वाइन करे हुए, तो मैंने वो बोट मिस कर ली। मुझे अफसोस हुआ कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया भी कि जब नया हो तो इसमें अफसोस करने की कोई बात भी नहीं। खैर वो पीछे छूट गया। जब आगे समय आया 93-94 तो सीबीएसई से फिर लेटर आया कि 88 से जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था उसमें हम लोगों ने पूरे इंडिया से करीब 30 टीचर्स को चुन के, जो टीचर्स जो थे वो पब्लिक स्कूल से भी थे, केंद्रीय विद्यालय से भी थे, नवोदय विद्यालय से भी थे और दूसरे कई सारे स्कूल से थे, और उनको उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा था। उन्होंने ये सर्वे करके पाया था कि एक अजीब सा पैटर्न सामने आया था। वो पैटर्न ये था कि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ाए हुए होते थे
0: जी जी
1: इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते थे, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो दूसरे विद्यालयों से गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालयों से बच्चे आते थे वो कम्युनिकेशन में ठीक नहीं होते थे। लेकिन एक दूसरी बात, दूसरा एंगल भी था कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को जब ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे अलग से तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये पाया गया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ग्रामर तो वो लोग काफी अच्छा कर लेते हैं लेकिन पब्लिक स्कूल के तरह बच्चों के वो कम्युनिकेट नहीं करता, लिखने में कमजोर हैं, बोलने में कमजोर हैं। तो लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव को जब ध्यान दिया गया तो ये ग्रुप ने पाया कि नहीं, हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ते हुए हम इंटरैक्टिव अप्रोच में आए कि हमें लैंग्वेज की 4 स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पोकन स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इन 4 पे हमें फोकस करना है। तो ये जो 30 टीचर्स का ग्रुप जो था, इन्होंने 88 से लेकर 93 तक इस पे पूरा ध्यान दिया और इसके लिए मटेरियल नया तैयार किया। मटेरियल तैयार करने के लिए अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो, मटेरियल चेंज कर रहे हो, तो निश्चित रूप से टीचर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग ग्रुप भी एक बना उसी में से। और
0: बिल्कुल
1: 93-94 में सीबीएसई ने स्टाफ को फिर ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया तो उनको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स को ट्रेन करना, इस नए पैटर्न पे लाना, इंटरेक्टिव अप्रोच कैसे अडॉप्ट करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे और रिसोर्स पर्सन चाहिए। तो मुझे मौका मिला था 11 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने का इंदौर में दिल्ली कॉलेज में।
0: अच्छा,
1: 94 की बात कर रहा हूँ। तो 94 में जब मैं वहां बात ट्रेनिंग ले रहा था तो एस के गंगल सर थे वहां पे, जो इस सीबीएसई के ईएलटी प्रोजेक्ट के ऑफिसर थे, मेन थे, मेन पर्सन। और साथ में थे ही साधना पराशर मैम, आज भी वो सीबीएसई में है, गंगल सर रिटायर कर गए। तो उस 11 दिन के दौरान तीसरे या चौथे दिन मेरे को गंगल सर ने अलग से अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे से उन्होंने वहीं दिल्ली कॉलेज इंदौर में मेरे से कहा कि हमें और टीचर्स की जरूरत है जो इस ईएलटी प्रोजेक्ट में जुड़ सकें, तो क्या आप जुड़ोगे? मैंने कहा सर मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे प्रिंसिपल मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रिंसिपल के परमिशन के मैं आपको हाँ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके प्रिंसिपल से भी बात कर लेंगे। तो मैं जब वापस आया कोरबा तो माय प्रिंसिपल वाज वेरी हैप्पी बिकॉज बाय दैट टाइम आई थिंक गंगल सर हैड स्पोकन टू डॉक्टर पीकम सिंह एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स। तो हमें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड तो नहीं भेजा गया था, लेकिन हैदराबाद भेजा गया था इस ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टाफ था और प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से रिसोर्स पर्सन आए थे हमें वहां ट्रेन करने के लिए, जो नेक्स्ट 30 टीचर्स का ग्रुप था। तो वहां से मैं फिर सीबीएसई के साथ जुड़ा और काफी सारी वर्कशॉप्स मैंने इंग्लिश टीचर्स के लिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे पब्लिक स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, इन सब के लिए मध्य प्रदेश में, उस वक्त जब छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के टीचर्स के लिए मैंने ये वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट। तो वो सब जो बैकग्राउंड था मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने मुझे 13-14 के लिए मुझे चुना था। एंड अगेन आई एम थैंकफुल दैट ये रिकॉग्निशन मेरे को सीबीएसई की तरफ से मिली।
0: चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं, तो आपके लिए गीत जो है छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको एक गीत डेडिकेट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति जी। जी
2: तो भगवान की याद से और
0: जी,
2: हमारे
0: जी।
2: सामने जो गुरु है उनकी उनको डेडिकेट करेंगे।
0: बिल्कुल

0: अच्छे हो हमारे करम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि जी
0: है बस यही कामना, सतगुरु परमात्मा। ओम शांति।
1: शांति। धन्यवाद ममता जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और इस गीत के साथ मैं फिर से सुखविंदर जी को जोड़ना चाहूंगा और हमारे कुछ
2: सुखवन सर,
1: सवाल आए। सुखवंत सॉरी, सुखवंत सर को
2: अगर आप
1: जोड़ना
2: इजाजत
1: चाहूंगा।
2: दें तो एक मैं यहां पर मानसी देवनीकर जी का एक क्वेश्चन देख रहा
1: हाँ
2: हूं,
1: वही सब सवाल है
2: उस
1: उनका
2: क्वेश्चन को अगर ले
1: वो।
2: लिया जाए तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखती है कि आज के समय में जो है टेक्नोलॉजी है और टीचर्स भी अच्छे हैं, बट एज पेरेंट्स वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, सो हाउ आई बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, बिकॉज नाउ डेज चिल्ड्रंस आर वेरी ऑलरेडी वेरी गुड क्वालिटी हैविंग क्वालिटीज
2: ऑलराउंड पर्सनालिटी रहती है जी।
1: ऑलराउंड।
2: मानसी जी, मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूं कि जब एक वक्त था जब हम लोग टीवी ऑन करते थे तो एक फिक्स टाइम में कुछ कुछ चीजें आती थी। एज ए टीचर व्हेन आई वाज इन डीपीएस कोरबा, मुझे याद है कि शाम 8:30 बजे मैं 8:40 मिनट में न्यूज आती थी, 8:40 मिनट से लेकर 9 बजे तक, और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता था और 9:05 मिनट से कोई सीरियल आता था। तो मैं क्योंकि बैचलर होता था तो मैं उन 40 मिनट में या आधे घंटे में मैं अपना रात का जो खाना होता था, दो तो तीन रोटियां, कुछ भुजिया और कुछ साथ में बना के दाल वगैरह कुछ रख के खा लेते थे टेबल पे और सीरियल देखते थे। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको याद करना चाहूंगा कि हम लोगों को, आपको याद होगा सर, वेंसडे और फ्राइडे को शायद चित्रहार आता था दूरदर्शन, तो हर कोई चित्रहार देखता था उस वक्त। और बड़े बड़े शहरों
1: बिल्कुल
2: में उसी वक्त चोरियां भी होती थी बहुत सारी, क्योंकि चोर भी जानते थे कि सारे घर के मेंबर ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और वो अपना काम कर जाते थे, हम लोग इतना एनग्रॉस्ड होते थे। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे पास में सारी चीजें 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। जब भी हम चाहें न्यूज लगाएं, न्यूज आ रही होती है, कोई भी चैनल हम देखना चाहें उस वक्त वो आ रहा होता है, सीरियल्स हर वक्त आते हैं, हर एक चैनल आता है। अब हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, वी हैव टू नॉट सकम टू द थिंग्स अराउंड अस, बट वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल देम। हमें अपना टाइम डिसाइड करना
1: बिल्कुल
2: है कि हमें, ठीक है, कुछ पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कहते हैं कि सर मैंने बच्चे का टीवी बंद कर दिया है, मैं टीवी नहीं देखने देता, मैंने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया है, हम मोबाइल नहीं देते। लेकिन सर दैट इज नॉट द राइट थिंग, बच्चा अपने आप को खोया हुआ पाएगा। जब क्लास में बच्चे बहुत सारी कुछ बातें करेंगे और उसको पता ही नहीं होगा उन चीजों का, तो ही विल नॉट डेवलप इन टू उस सर्कमस्टेंसेस, मतलब प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, हम उसकी ग्रोथ को इम्पीड कर।
1: बिल्कुल
2: तो राइट वे ये है मानसी जी कि आप बच्चे को समझाएं, अपने आप को भी समझाएं कि मुझे जो चाहिए, अगर आपके बच्चे को कुछ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसको एक समय निर्धारित कर दीजिए कि मैं इस समय से इस समय तक मैं देखूंगा। अब जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मैं मोबाइल, अनलेस अनटिल देयर इज अ फोन कॉल, आई डोंट टच इट टिल आई रीच द स्कूल ऑफिस। स्कूल ऑफिस आने के बाद में जब सारा कुछ सेटल हो जाता है, एट दैट टाइम आई ओपन माई व्हाट्सएप टू सी इफ देर आर एनी मैसेजेस फ्रॉम सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज। उसके अलावा अगर मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेजेस हैं तो मैं उनको ओपन नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। उस तरह से वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटीज। बच्चे को सीरियल अच्छा लगता है, उसको सीरियल देखने दे, उसको कहें कि आपका कौन सा कन्वीनियंट टाइम है जिसमें आप देखना चाहोगे, और उतना उसको अलाउ कर दें, बिल्कुल बंद ना करें। तो मेरे ख्याल से दैट वे विल बी एम्पावरिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एम्पावर करें। ये ताकत जो है कि मुझे अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है, ये मेरे पास होना चाहिए ना कि सरकमस्टेंसेस के पास। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से आप अपने व्यस्त समय से भी समय निकाल के आप बच्चे को गाइड कर पाएंगी। और बच्चे की अगर इस समझ से चलता है तो वो भी अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुकवंत सिंह जी। आशा करूंगा कि मनसी जी को आपकी बात सुनकर समझ आ गया होगा कि क्या करना चाहिए उन्हें। और आज के समय में जो है जैसे कि मानसी जी लिखती हैं आगे, रियली थैंक यू वेरी मच सर करके मैसेज किया है। मानसी जी समझ गई हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और ममता जी के गीत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा गीत करके मैसेज किया है। सोलंकी सर ने भी याद भेजा है और गीत के लिए बड़ी प्यार से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बहुत अच्छा गीत ममता जी करके मैसेज किया है। अब आइए हम लोग एक और बात, जैसे कि अब फिर बच्चों की बात ही हो रही है क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो बच्चों को लेकर काफी काम किया है और टीचर्स के साथ भी आपने काफी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं और कंडक्ट भी किए हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। तो निश्चित तौर पर आज जैसे कि हम लोग शुरू मैंने बात की कि बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कोप अप कर पाते, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे पास आउट होने में दिक्कत हो जाते हैं उनको, तो ऐसे बच्चे फिर कैसे वो क्या अल्टरनेटिव चीजों को ले वो अपने आप को अपग्रेड बना के रखे, क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा वो बताइए सर। जी
2: सर, इसमें हमें थोड़ा सा बच्चों को यही बताना होता है मेरे ख्याल से कि अगर तुम में कोई घबराहट हो रही है, कई बार बच्चे बोलते हैं ना हम नर्वस हो रहे हैं सर, तो बच्चों को मैं ये समझाता हूँ कि बेटा कोई भी अच्छा काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले नर्वस होना बहुत नॉर्मल बात है। तो अगर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये नॉर्मल है, हर कोई नर्वस होता है, हम इतने साल प्रिंसिपल रह चुके हैं लेकिन अगर हमें कोई मंच पे बोलने के लिए कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से हम भी थोड़ा सा कुछ सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे हम। तो ये नर्वसनेस अगर बच्चे के साथ हम शेयर करें कि हम भी नर्वस होते हैं बेटा, तुम कोई अलग से नहीं हो रहे हो, तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है। और हम किसी को भी, किसी बच्चे को भी किसी दूसरे के साथ में कंपेयर कभी ना करें, उसके भाई या बहन के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हम बच्चे को कहें कि आज आप क्या, कल क्या थे, आज उससे अच्छा बनने का प्रयास करें, आज जो है और कल आने वाले कल में आज से अच्छा बनने का प्रयास करें, आप खुद से कंपीट करें ना कि किसी और से। और इसी के साथ एक और भी बात ऐड करना चाहूंगा कि हम बच्चे की प्रोग्रेस बच्चे के हिसाब से ही करें। अगर पिछले एग्जाम में उसने 40 मार्क्स लाए थे और अगले एग्जाम में वो 50 ला रहा है तो उसको 10 मार्क्स का जो इंक्रीज हुआ है उसका क्रेडिट हम उस बच्चे को जरूर दें। हम लोग तभी देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे इस दोस्त को 80 मार्क्स आए, तुम अभी भी 50 में पढ़े हो। मोटिवेट हम डीमोटिवेट ना करें। और कोई भी बच्चा खराब करना नहीं चाहता, अगर वो सही तरह से गाइडेंस में हो तो कभी भी कोई भी बच्चा ना टीचर खराब नहीं करना चाहता, उसको बस अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्या अल्टरनेट कर सकते हैं हम लोग, बच्चों को समझना और उसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है और ग्रेस मार्क की भी कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है, तो हमें वो सर्कमटेंस और सिचुएशन, बच्चे की कैपेसिटी को देखकर उसको बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ सके और आगे बढ़ते रहे बच्चे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिसर्च की भी जरूरत है, और टीचर या प्रिंसिपल जो स्कूल में है और जो बच्चे नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चों को टारगेट करके उनको एक्स्ट्रा अगर मेरे ख्याल से थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग 10th तक जो है बच्चों को पढ़ाते जाते हैं और बच्चे जो है, कुछ जो बच्चे हैं वो अपने 5th से 8th 9th 10th में ही अपना करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस और जाना है, इस और बढ़ना है, और कुछ बच्चे जो है उनको ये फ्रेमिंग ही नहीं आता है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्योंकि उनके घर के माहौल अलग रहते हैं, उनको तो बस पढ़ाई करके पास होना है, यही मकसद उनका रहता है सर्टिफिकेट पास का मिलना, ऐसा सोचते हैं कई बच्चे, तो क्योंकि उनके यहाँ वो चीजें शायद होती नहीं है तो वो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो ऐसे बच्चों का सरकमटेंस देखने के बाद उन बच्चों को शायद उस तरह का कुछ ऐसी मोटिवेशन वाली टॉक्स बीच बीच में हो, एक अलग लेक्चर हो, ताकि वो अपने करियर के बारे में सोच सकें, क्या बनना है ये सोच सकें, है ना। और उनको
2: जी बिल्कुल,
1: कोई बड़ी बड़ी, जैसे कि हम लोग डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शब्द ही उनके समझ में नहीं आता एक्चुअली। कभी कभी ऐसा हो जाता है
2: बहुत
1: ना कि
2: बहुत
1: भाई
2: सही कहा
1: डॉक्टर बनना है तो क्या बनना है, इंजीनियर
2: जी।
1: बनना है तो क्या बनना है, तो उनके फोकस में ये पिक्चर क्लियर नहीं होता कि हाँ डॉक्टर बना ये, इंजीनियर बना ये, और इससे ये हो सकता है, ये चीजें करने की जरूरत है, तो वो चीजें वो नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा बताइए।
2: सर इस और भी मैं तो कहूंगा कि हर एक के साथ में एक अपनी घड़ी होती है प्रोग्रेस की, वो जल्दी कर जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें बच्चों को भी नर्वस नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को भी नर्वस नहीं होना चाहिए कि हर एक के साथ में अपना अपना समय बंधा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं घरों में, क्योंकि वो खुद काफी आगे होते हैं इस ओर, दे आर वेल एजुकेटेड, व्हाट आई मीन टू से, एंड दे आर एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन बैक एट होम इन द राइट डायरेक्शन एट अ वेरी यंग एज। ऑन द अदर हैंड यस, देर आर फ्यू केसेस वेयर द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से स्कूल के टीचर्स बढ़ जाता है ताकि उनको अच्छे से गाइड कर पाए। और हमें उन बच्चों को एक चीज बतानी होती है कि कभी भी कोई एक रास्ता मतलब आप निर्धारित करके ना चले। जैसे कई, मैं आपको बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मैं देखता हूं कि 90%+ वाले जो बच्चे होते हैं नर्वसनेस उनमें ज्यादा होती है। जो 70s 80s में रहते हैं मतलब बेसिकली बड़े खुश रहते हैं वो बच्चे, जब रिजल्ट के दिन भी आते हैं ना, रिजल्ट निकलता है उसके बाद जब मुलाकात होती है, तो 94% वाले को जब कंग्रेचुलेट किया जाता है कई बार, तो वो बड़ा दुखी सा दिखता है और उसको हम कहते हैं क्या हो गया बेटा, बोलता है नहीं सर मैं 96 ला सकता था लेकिन सिर्फ 94 लाया हूँ। दूसरी तरफ 72-74% वाले जो बच्चे आते हैं रिजल्ट लेने के लिए, तो उनसे मेरी मुलाकात होती है तो वो बड़े खुश नजर आते हैं, सर वी आर हैप्पी गोइंग फॉर दिस कोर्स दैट कोर्स, एंड लाइफ में बड़ी जल्दी सेटल भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि 90+ वाले बच्चे सेटल नहीं करते, वो भी करते हैं लेकिन वो थोड़े से ज्यादा नर्वस रहते हैं। इस नर्वसनेस को हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको कम करने का प्रयास करना है, बोथ एज पेरेंट्स एंड टीचर्स इट इज आर ड्यूटी टू टेल द चिल्ड्रन, बच्चे अगर IIT में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होते। FMC और एम्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते भी हैं। हमें बच्चों को हमेशा कई सारे ऑल्टरनेटिव्स बता के रखने चाहिए, नहीं तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे का IIT में चयन नहीं हुआ और हम देखते हैं वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ना हो, गलत कदम उठाने वाले हमेशा वही बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में ला
1: बिल्कुल
2: के रखा जाता है कि बेटा तुम्हारा अगर इसमें नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, ऐसे करके उनका उनको हम कभी डीमोटिवेट ना करें, यही मेरा कहना है।
1: जी। एक और सवाल मानसी जी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने को, और लिखते हैं पेरेंट्स एक्सपेक्शन एंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप।
2: हाँ जी सर,
1: पेरेंट्स की जो अपेक्षा है और विद्यार्थियों का स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप, ये वो पूछ रही है।
2: मैं इसमें ये कहूंगा कि एक अच्छा विद्यालय वो होता है जिसमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर एसेसिबल टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर टीचर्स को पेरेंट्स ना मिल पाए, मतलब उनको हम बहुत ज्यादा ये कर दें कि मतलब आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा उसके बाद ही आप आके मिल सकते हैं, और
1: भी हम सोच समझ के देंगे, मेरे ख्याल कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो करते हैं लेकिन बड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, उससे पेरेंट्स कम स्कूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं मोटिवेट करता हूँ पेरेंट्स को भी कि आपको जब कभी कुछ अगर लगता है आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं,
2: बहुत पहले जब ये व्हाट्सएप भी नहीं आया था तब से मैंने अपने स्कूल के टीचर्स के फोन नंबर भी पेरेंट्स को अवेलेबल कराए हुए हैं, मेरा नंबर भी अवेलेबल है और कोई भी पेरेंट जब भी चाहे वो उस फोन पे कॉल कर सकता है। इतनी लिबर्टी होने के बाद में भी सर कोई ऐसा नहीं होता कि हम दिन भर फोन ही अटेंड कर रहे हैं या मेरे टीचर्स आके मेरे को बताएं कि सर आज तो 20 पेरेंट्स ने फोन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ गिने चुने ही पेरेंट्स फोन करेंगे और जो जिनको जरूरत होती है वही करते हैं और इससे एक रिलेशनशिप अच्छा बनता है। मेरे चैम्बर में संजोग से दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है जो ऑफिस की तरफ से आता है, निश्चित रूप से कोई पेरेंट्स या विजिटर जब आते हैं तो वो उस दरवाजे से आते हैं क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ताकि वन टू वन मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूं। दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा जो मेरा है वो स्कूल एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ खुलता है और उस रास्ते से मैंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ये कहा हुआ है कि आप मेरे बाहर दरवाजे के आके आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप दरवाजा खोलें और निश्चित रूप से अंदर आ जाएं। अगर मेरे पास में कोई पेरेंट बैठे हो, कोई बैठे हो, विजिटर बैठे हो, मैं हो सकता है आपको रोक दूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप बाहर वेट नहीं करेंगे, यू जस्ट कम इनसाइड और अपनी समस्या जो है आप मेरे को बताएं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा। चाहे क्योंकि टीचर अपना काम छोड़ के आ रहा है, बच्चे भी अपनी क्लास छोड़ के आ रहे हैं अगर मेरे को मिलना चाहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन आई थिंक वी आर रेडीली एसेसिबल टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बी एसेसिबल टू द पेरेंट्स ऑल्सो, सो दैट वे पेरेंट्स को भी खराब ये नहीं लगेगा कि नहीं नहीं मुझे इस टीचर से मिलने के लिए या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अगर हम मैनेज अच्छा से कर लें तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है और पेरेंट्स को बच्चे को जब पता चलता है कि माई पेरेंट्स कैन टॉक टू माई टीचर एट एनी टाइम फॉर ए हेल्दी रिलेशन। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ जब ओपन डे होता है कि पेरेंट्स अब आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट को टीचर बच्चे की शिकायत ही करें, अच्छी बातें भी बताएं। और वैसे पेरेंट्स को मैं मोटिवेट करता हूं कि आप मेरे टीचर से जब मिलें खाली कंप्लेन मत करें, उनके अच्छे पॉइंट्स ही बताएं। और मैं एक स्लोगन स्कूल के कैंपस में मैं लगा के हमेशा रखता हूं कि जो भी विजिटर आए पेरेंट्स आए मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे विद्यालय की कोई चीज अच्छी लगती है तो आप बाहर जाके सबको बताएं और अगर कोई कमी नजर आ रही है तो हमें बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मानसी जी और नीता नायक जी लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें और गिव सम सजेशन प्लीज सर करके बोला है, तो बहुत सारे सजेशन आपको मिल गए हैं। नीता जी लिखते हैं ऐसा ही प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को मिलने में आसानी हो और उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी से रिजॉल्व हो सके। तो चलिए सुकुन सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है और निश्चित तौर पे जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स अगर सुनेंगे आपको ये एपिसोड फिर से तो उन्हें काफी कुछ बातें क्लियर होगी और विद्यार्थी का जीवन बेहतर होने के लिए वो निश्चित तौर पे काम करेंगे जिस तरह से आपने बताया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा जाते जाते दो लाइनें आप गुनगुनाइए उसी के साथ पूरा करेंगे जी, दो लाइनें सिर्फ गुनगुनाइए।
2: आवाज नहीं आ रही।
0: आ गया
1: जीवन।

0: साल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ममता जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। आशा करूंगा सुखवंत सिंह सर की बातें आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर उसे अमल में लाएं और अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शांति। नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त शरद, आज के रेडियो शो हमारे कार्यक्रम जुनून में। जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ बदलने का। हमारे समाज में जो भी हम चैलेंजेस देखते हैं उसको दूर करने के लिए एक जुनूनी हमारे साथ होता है हर बार हमारे एक रेडियो शो में। और हमारे इस आज के शो में हमारे साथ हैं क्षेत्रीय मेयूम बेबीली फ्रॉम इम्फाल मणिपुर, हमारे देश के एक सुंदर इलाके से, उस रीजन से जिसको बहुत हम लोग कम जानते हैं। और वो बहुत सुंदर है और वहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए हो रहा है और वहाँ पर भी कुछ जुनूनी है जो वहाँ के चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे बेबीली के साथ और बेबीली से जानेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में मणिपुर कुछ घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है, हम उस विषय पर ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम उसके अतिरिक्त कुछ भी और विषय हैं जो हम उस पर डेफिनेटली बेबीली के साथ बात करेंगे। तो बेबीली, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच। श्रोता वालों सभी को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी शुरुआत जो रही आपके जीवन की बेबीली, और आपको ये मिशन पे आने का कैसे मौका मिला, आपको कैसे लगा कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए और उसके लिए एक जुनून आपके अंदर कैसे पैदा हुआ?
1: हाँ, एक्चुअली माय फादर वाज टीचर ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और मेरे पिताजी की तरफ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि जीवन में कुछ करना चाहिए अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी। तो बचपन से ही मेरे पिताजी के संग रहकर भारतीय स्काउट गार्ड में छोटी से उम्र से ही मैंने ज्वाइन किया था, और सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, ये प्रिंसिपल के साथ आई वाज फ्रॉम ए सोशल वर्क फैमिली। तो पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ बचपन से ही मैं अपनी ही कम उम्र के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ विदाउट फीस, और इसी तरह छोटे छोटे कामों के साथ अपने राज्य के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट को जाकर काम करने की मौका मिली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी काम मैंने आज तक किया है वो सब करने की प्रेरणा मैंने अपने पिताजी से मिली है।
0: जी जी जी जी, फैमिली से ही आपकी शुरुआत हुई जी। और तो मैं इस बारे में आपसे और आगे हम बात करेंगे, आपके आगे के भविष्य के बारे में, आपके कैरियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले फिर से वही बात शुरू होती है कि जो आपने बहुत ही शानदार कोटेशन बोला, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, तो आपका कार्य क्षेत्र क्या रहा, आप क्या क्या कर रहे थे इन दिनों में और क्या चैलेंजेस अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास आप देख रहे थे?
1: हाँ जी, जैसे आपने अभी मेंशन किया है कि मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है, बहुत सुंदर पहाड़ी राज्य है। यहाँ के वातावरण, द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी नियर टू नेचर। जैसे 82% ऑफ दिस स्टेट इज हिली एरियाज एंड द ओनली 8% इज द वैली एरिया। सो डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस आर इन वैली एरिया एंड द हिली एरिया। तो हिली एरिया में रहने वाले लोगों के भी डिफरेंट इश्यूज है और वैली एरिया में रहने वाले लोगों का भी डिफरेंट इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिफोरेस्टेशन होता है पहाड़ी जगहों पर, जो भी ट्रीज है उन सबको काट के कोल बनाना और वो कारोबार के लिए ले जाना, फिर उसकी जगह या उसके बदले में एक पौधा लगाने का उन लोगों का कोई नॉलेज ही नहीं था। तो बहुत सारे पहाड़ एकदम, उसको कैसे कहेंगे, देखने में बिना पेड़ पौधे के जैसे पहले वाला हरे भरे थे नहीं रहा। उसी के कारण से भी बहुत सारे चेंजेस वैली एरिया में मिले। लाइक जो भी वैली में रिवर है, नदियां हैं जो बहती है वैली एरिया में, वो सब तो मणिपुर के पहाड़ से ही आते हैं। तो बाढ़ के समय, बारिश के मौसम में पहाड़ों की एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे काटने की वजह से अनटाइमली बाढ़ भी हो जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को एफोरेस्ट्रेशन के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम देना बहुत जरूरी है। और अलग अलग मणिपुर के जो डिपार्टमेंट हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी पब्लिक बेनिफिट स्कीम का काम करते हैं, उन सारे बेनिफिट जो पब्लिक को दे रहे हैं वो लोग पब्लिक मालूम नहीं होता, उन सब स्कीम के बारे में लोगों को मालूम कराना, अवेयरनेस प्रोग्राम देना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। उसी तरह हेल्थ के बारे में भी, जैसे आजकल सभी भारत में प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड जो बनाते हैं, उनके बारे में भी नॉलेज नहीं, बहुत कम लोगों को नॉलेज है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उन लोगों को सपोर्ट करना, और जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह करते हैं हर साल में, वो ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग भागों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिया गया प्रोग्राम है उन लोगों को सपोर्ट करके, जैसे कैसे कहे कि पब्लिक सिविल पीपल तक पहुंचाना भी बहुत काम करते हैं।
0: जी नहीं, बिल्कुल बिबली, आपने बिल्कुल बात को एक दिशा दी है, और आपकी हिंदी के लिए तो आपकी तारीफ करनी होगी कि आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो हम सबके लिए प्रेरणा है कि हमें भी मणिपुरी सीखनी चाहिए, और हमें भी हमारे देश के उस अनछुए हिस्से को, उत्तर पूर्व के बारे में और जानने की आवश्यकता है। और हमारे रेडियो शो पे पहली बार पश्चिम और पूर्व को मिलन हो रहा है, हम माउंट आबू में बैठे हैं देश के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में, और आप बिल्कुल पूर्वी हिस्से में बैठे हैं, कि यही भारत की खूबसूरती है। फिर से हम आपके पास आते हैं, और जो श्रोता हमसे देरी से जुड़े हैं वो जान लें कि हमारे साथ हैं चित्रिमियुम बेबिली, जो कि मणिपुर से आती हैं और हमारे देश के सर्वोच्च यूथ अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं, और आपको इंदिरा गांधी NSS अवार्ड भी मिला है, और आपने अपने युवा जीवन के में रहते हुए बहुत सारे मिशन, जो कि समाज में बदलाव के और सोशल चेंज को लेकर जो भी एक्शन मोड में हो सकता है वो आपने करने का प्रयास किया, और हम उसी आज की बातचीत में उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेबिली, हम ये जानना चाहेंगे कि मणिपुर के क्या चैलेंजेस हैं आपके इलाके में, और लोग क्या ठीक करना चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं?
1: चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे चैलेंजेस में मैं सबसे आगे जो लाना चाहती हूँ, द मोस्ट प्रायोरिटी वन चैलेंज इज अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ मणिपुर, क्योंकि अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ बहुत सारे हैं आजकल, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक मणिपुर छोटा सा राज्य है, यहाँ में कोई बड़ा वाला इंडस्ट्रीज नहीं है जो यूथ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को काम दे सके, तो यहाँ में वगैरह इंडस्ट्री फैक्ट्री बड़ा नहीं है, और अभी जो भी हम करना चाहते हैं तो एक एंटरप्रेनर की तरह अपने आप को डेवलप करने की उन लोगों को क्षमता, जैसे उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उन लोगों को जगाना ही द बेस्ट वन आइडिया इज ये रहा है। जीने में हम लोगों को सब पता है कि अब आप पे एक पोस्ट पोजीशन में तो रखनी चाहिए, काम छोटा हो या बड़ा करना तो चाहिए जीवन में, लेकिन करना क्या है ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल यूथ में। तो अभी मैं कर रही हूँ यूथ एंड द वुमेन एंड द चिल्ड्रेन, बच्चे और नारी और युवाओं के क्षेत्र में जो भी काम रिलेटेड है, उन रिलेटेड कामों पे हमने काम किया है। द मोस्ट वन इम्पोर्टेंट थिंग इज सभी युवाओं को अपने आप पे एक एंटरप्रेनर की तरह डेवलप करना, किस

दी उपयोगिता मिलते हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट, तो इनके क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। और यहाँ के जो भी फ्रूट्स है, पहाड़ी फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारे फायदा जो मिलते हैं उनके बारे में भी, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। और अपने आप पे एक कल्चर, रिच कल्चर है उनमें भी। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरियों के आशा में बैठे रहने तब तो नहीं है बिल्कुल, बस हमको अपने आप काम देना है, जैसे एंटरप्रेनर की तरह हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में। और मणिपुर की एक अपनी इतिहास है, जैसे मणिपुर के राजा की बेटी जो राजकुमारी है, वो भी हैंडलूम जो हम वर्क करते हैं, हैंडलूम में कैसे कहेंगे उसको, कपड़े बुनते हैं, बनाते हैं, वो काम करते हैं। तो बहुत सारे उसमें डिजाइन आते हैं, मणिपुर के अलग अलग नारियों के कपड़े भी हैं। तो आजकल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के जरिए, फूड प्रोसेसिंग के जरिए भी बहुत काम करने लगे हैं। अलग अलग भागों में बहुत सारे यंग एंटरप्रेनर्स भी डेवलप हो चुके हैं। तो मैं, ये नंबर वन चैलेंजेस है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का जो संख्या बढ़ रहे हैं, उन लोगों को काम देने का और काम बताने का ये बहुत जरूरी है, आजकल वो भी हो रहा है। और सेकेंड इशू, या हम चैलेंजेस कह सकते हैं, ये आजकल की नारियों का भी है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, द मोस्ट एरिया ऑफ मणिपुर इज 82% इज हिल एरिया। तो विलेज या हिल एरिया में रहने वाले लोग, उन वो मैं ये नहीं कहती कि उन लोगों का नॉलेज बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो सिटी एरिया में रहने वाले रूरल लाइफस्टाइल और अर्बन लाइफस्टाइल में बहुत सारे फर्क होता है। तो रूरल लाइफस्टाइल में रहने वाले नारियों का जीवन आजकल भी थोड़ा बहुत गंभीर है। द मेंटल एबिलिटी ऑफ द रूरल लाइफस्टाइल, रूरल लिविंग जो विलेज में या पहाड़ में होते हैं, हम सब जानते हैं कि आजकल की स्त्री और पुरुष में द इक्वल राइट्स आर देयर, जेंडर इक्वलिटी भी है, फिर भी बस ये बात कानों पे है, जवान पे है, लेकिन दिल पे नहीं। इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल टू द हिल एरिया और रूरल एरियाज ऑफ आवर स्टेट ऑल्सो। जैसे कि हम अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, तो वी आर टेकिंग मोर प्रायोरिटी टू आवर बॉयज चाइल्ड एंड गर्ल्स चाइल्ड को थोड़ा पीछे रहने देते हैं, घर के कामों में ज्यादा उनको भाग लेने देते हैं। तो कहाँ गए वो इक्वल राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, कहाँ गए वो इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी मैन एंड वुमेन। तो ये बात शहर पे रहने वाले लोगों में तो थोड़ा लागू है, लेकिन और सबसे बड़ी आजकल की इशू है कि शादी के बाद जो भी औरत अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह से रहने लगी वो ठीक है, लेकिन कोई इशू या प्रॉब्लम उनके जीवन में अगर आए तो उनके लिए कोई नहीं है। अगर वो मायके वापस भी आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमें लॉ में लिखा गया है कि देयर इज इक्वल राइट इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। लड़की का भी और लड़के का भी अपने माँ बाप के जायदाद में, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देते हैं हमें लॉ के द्वारा, लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू दी व्हाट वी कॉल ट्रेडिशनल लॉ ऑफ आवर कस्टम एरिया। जो ये इसके बारे में जो भी शादी के बाद लड़कियों का औरत का जो हाल है, बहुत इट इज नॉट गुड। वी आर फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम आफ्टर द मैरिज ऑफ गर्ल। एंड ऑल्सो नाउ आजकल के जमाने में भी बहुत सारे माइनॉरिटी गर्ल्स का भी शादी हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड बिकॉज लैक ऑफ द नॉलेज। अगर नॉलेज है फिर भी वो पॉवर्टी के कारण भी अपनी बच्ची, छोटी बच्ची को किसी और के घर में भेज देते हैं, ताकि वो बोझ बन जाता है ना माँ बाप को। और वन मोर पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज कि अपनी बच्ची इज नॉट मैच्योर मेंटली और फिजिकली। जैसे मेंटली अगर फिजिकली वो मैच्योरिटी नहीं आ गए 18 इयर्स या 21 इयर्स से पहले शादी अगर हमने किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनके जीवन में आ सकते हैं। इसका बिल्कुल उन लोगों को नॉलेज नहीं है, इसीलिए

0: जल्दी शादी हो जाता है, नंबर वन पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट में, अगर उनको नॉलेज हो फिर भी वो बहुत पॉवर्टी पे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन पे हो, तो बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उन माँ बाप को बहुत सारे दिक्कत होने लगी है, इसीलिए लड़कियाँ शादी हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो शादी के बाद बहुत सारे इशूए आते हैं विदाउट मेंटली फिजिकली इमेच्योर। अगर शादी हो जाए तो फैमिली के बाद एक बच्चे के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, ये बात भी और है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज मणिपुर इज द बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट इट इज द नॉट ओनली द बॉर्डर स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज द बॉर्डर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट। तो दैट इज व्हाई यहाँ में ड्रग एब्यूज का बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। आजकल के नौजवान जैसे 25 इयर्स के पहले जो भी लड़का है वो बहुत सारे आजकल ड्रग यूज करने की खबरें आती हैं। और लड़के ही लड़के के साथ लड़कियां भी इसमें हम लोग बहुत सारे पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर का संख्या बढ़ने लगे, इट इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ आवर सोसाइटी। यूज करते हैं इसीलिए तो उसको सब जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए तो सॉल्विंग नेचर हम ढूंढते हैं। Why we are seeing nowadays why the rehabilitation center, the number of rehabilitation center are increasingly day by day in Manipur, and also the center of the girls rehabilitation center is also increasing. But how and why? अगर how and why की सवाल करते हैं तो अपने आप आ जाते हैं कि use करने वाले बहुत संख्या बढ़ने लगी है नौजवानों में, इसीलिए ये हो जाता है। पहले तो हम बहुत घबराते थे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का, और फिर घबराने लगे यूथ विद ड्रग यूजर्स, और अभी तो और भी घबराते हुए हमें सामने आ जाते हैं कि नारियों के जो शक्ति दिए गए हैं वो शक्ति ओनली दे गिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट वी आर फेल टू इम्प्लीमेंट, वी आर जस्ट कम प्रैक्टिकल इन द सोसाइटी, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रग यूज करने से हमारी सभ्यता पर, हमारे राष्ट्रीय पर ये हानि होगा, इनके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस देने का काम करते हैं स्कूल कॉलेज में और लोकल क्लब्स वगैरह हम रहते हैं उन लोगों के, विद द हेल्प ऑफ लोकल क्लब्स, विद द हेल्प ऑफ लोकल लीडर्स हम अवेयरनेस देते हैं। और एक तो एंटरप्रेनर बनने का उन लोगों को अवेयरनेस देना, और एक तो नारियों के शक्ति के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, अपने आप के राइट के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस देना, उन लोगों को उनके बारे में बताना, दिस इज द मेन थिंग व्हाट वी आर डूइंग स्टिल नाउ।
1: जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत डिटेल में सारे मुद्दों को रखा है और बहुत अच्छे से समझाया है हमारे श्रोताओं को। तो बिबली, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें ये जानने को मिला है कि उत्तर पूर्व का जो समाज है वो मैट्रियार्की कुछ कम्युनिटीज़ में वहाँ पर है, तो ये बात जो आपने बताई कि जो महिलाओं के चैलेंजेस हैं जो लगभग कुछ ऐसे ही हैं जो हमारे उत्तर भारत में हैं या पश्चिमी राजस्थान या देश के इस हिस्से में है, कुछ वैसा ही चित्र आपने वहां पर खींचा है, तो मैं सरप्राइज हूँ ये जान के कि उत्तर पूर्व के मैट्रियार्की लीड करने वाली फैमिलीज या समाज में भी क्या ऐसी परिस्थितियां भी हैं। जो आपने बात रखी जेंडर के इश्यूज को लेकर और जो आपने बताया नशे को लेकर, कुछ वैसा ही, क्योंकि राजस्थान भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट है और जब आप बोल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम राजस्थान की परिस्थितियों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि उत्तर पूर्व का परिवर्तक समाज है वो मैट्रियार्कल सिस्टम है, तो क्या ऐसा है और उसके बारे में क्या सच्चाई है वो हमारे श्रोताओं को बताएं। और इसके साथ साथ आपने इन सारे चैलेंजेस जो आपने रखे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और जेंडर इश्यूज को लेकर और नशे को लेकर, वो कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप एक्शन में आए, और आपने इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड क्या एक्शन चलाया जो आपकी लीडरशिप में रहा और उसके क्या परिणाम रहे, ये हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। जी बिबली,
0: अभी तक हम बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि मणिपुर के इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉइन हैव टू फेसेस, अगर एक फेस में बहुत सारे चैलेंजेस इशू है तो एक फेस में बहुत सारे उसकी खूबियाँ, सुंदरताएँ, कल्चर रिचेज एंड बहुत सारे डेवलपमेंट भी है। फिर भी जो भी आपने सवाल किया मणिपुर के पैट्रिकल सिस्टम और मैट्रिकल सिस्टम के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे आप लोग भी शायद नॉलेज होंगे कि मेघालय में मैट्रिकल सिस्टम है। शादी के बाद लड़कियों के घर में जाना, लड़कियों को कस्टमरी लॉ के द्वारा ज़्यादा उनको, जैसे कि दे हैव मोर पावर इन दैट एरिया ऑल्सो। बट आई वुड लाइक टू टॉक इन द एरिया ऑफ मणिपुर। मणिपुर में हम लड़कियों की बहुत भाग्यशाली, वी हैव द अपॉर्चुनिटी दैट अगर हम किसी मनपसंद लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स आर रेडी टू एग्री इन द डिसीजन ऑफ दैट गर्ल्स एंड बॉयज। अपने आप जीवन साथी चुनने का मौका भी मिलते हैं। और शादी के बाद लड़कियां जो दहेज कहते हैं उनको ज़्यादा ले जाएं या कम ले जाएं, उनकी मर्जी है। देर इज़ नो फोर्स, नो कंपल्सरी अबाउट द दहेज द सिस्टम। हमने सुना है कि इन द मेन एरिया ऑफ मेन स्टेट्स ऑफ इंडिया देर इज द वेरी बिग इश्यूज ऑफ दाउरी सिस्टम, लेकिन वो बिल्कुल मणिपुर में नहीं है। बस लड़की को अगर माँ बाप दे रहे हैं शादी के बिना दहेज के, तो भी वो लड़के के घर में खुश रहते हैं। और कुछ एक घर में तो ऐसा भी हो जाता है कि लड़का लड़की शादी के बाद अगर लड़कियां के घर वाले अपनी लड़की को गुस्से में, अगर वो जो लड़का उन्होंने चुना है वो अगर पसंद नहीं है तो बस अपनी बेटी को सौंप देते हैं लड़के वालों के घर में। और लड़के वाले अपनी बहू के लिए सारी जो सामान है दहेज में जो दे रहे हैं लड़की वाले, वो अपने आप लड़के के घर मैनेज करते हैं, रेडी हो जाते हैं। ये भी सिस्टम हो रहा है। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी के लिए लड़की वाले को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं अकॉर्डिंग फॉर द दहेज ले जाने के लिए। और अबाउट द मैट्रिकल सिस्टम, यहाँ पे मणिपुर पे शादी के बाद लड़के के घर में लड़की जाना पड़ता है उनके सर नेम पे।
1: उसको अपना सरनेम बदलना होगा और
0: बदलना होता है। फिर भी एक बात है, द डिसीजन ऑफ द फैमिली इज द फाइनल बाय द हेड ऑफ द फैमिली। एंड हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? लड़का होता है। हेड ऑफ द फैमिली फादर होता है, हेड ऑफ द फैमिली ग्रैंडफादर होता है। ये निर्णय लेने का जो भी हक, जो राइट है, वो लड़का पर जाता है। अपॉन टू द मैन। आजकल ये अभी भी चालू है, लेकिन जब हम बच्चे थे उसी समय तो वी हैड एक्सपीरियंस कि अपनी माँ और दादी अपनी जो मन में है ओपिनियन वो भी व्यक्त करने का मौका नहीं मिलते हमारे बचपन पे। लेकिन आजकल के जमाने में डिसीजन तो लेते हैं फादर ऑफ द फैमिली या तो ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, फिर भी सुनते हैं घर वाले के सभी बात सुनते हैं, माँ की सुनती है, बेटी की सुनती है। दिस इज वेरी लकी फॉर द गर्ल चाइल्ड और फॉर द लेडीज। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द एज ऑफ आवर चाइल्डहुड एंड द नाउ इट इज।
1: बहुत बढ़िया, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। जो श्रोता हमसे देरी से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं बेबिली जो मणिपुर इम्फाल से आती हैं, राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं, और आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जुनून ऑन हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर 107.8 पर। और हम हैं इस समय माउंट आबू की सुंदर वादियों में और हमारे साथ हैं इम्फाल की सुंदर वादियों से हमारे साथ बेबिली। बेबिली, आपने जो चैलेंजेस हमें बताए, जो पिछले एपिसोड में जो हमारी बातचीत हुई, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत हुई, आपने बताया कि जेंडर को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी कई सारे चैलेंजेस हैं, और नशे को लेकर भी एक चैलेंजेस आपने मुझे बताया आपके समाज में, आपकी स्टेट, और आपने बताया कि अवेयरनेस सबसे बड़ी चाबी है और उसके लिए आप अवेयरनेस कैंप्स स्कूलों में कॉलेजेस में लगाते रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने विस्तार से आप हमें बताएं कि आपकी लीडरशिप में कौन कौन से एक्शन हुए आपके स्टेट में और आपने उसके क्या परिणाम रहे, मतलब क्या रिजल्ट्स आपने पाए और क्या बदलाव आपने देखा, कितना आप कर पाए और कितना बाकी है।
0: एक सोसाइटी पे वातावरण लाना अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस एंड द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, इट इज नॉट सो इजी, इट्स अ वेरी टफ वर्क। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये व्यक्त करने में बहुत खुशी है कि बदलाव लाने में थोड़ा तो हमने सक्सेस प्राप्त की है। I would like to share my success story about the unemployed youths and the women of our society. जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो शादी के बाद उन लोगों के घर में बहुत सारे different financial issues और unemployed issues आने के वजह से घर में बहुत सारे झगड़े भी होने लगे थे, अलग अलग रहने लगे थे और कभी कभी तो बहुत सारे ड्रग भी यूज करने लगे थे। जैसे उन लोगों के मानसिक स्थिति पर बदलाव जो आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, तो उन लोगों ने ड्रग यूज करके टेक द हेल्प ऑफ ड्रग टू फेस द प्रॉब्लम। तो उन लोगों को हमने एक, मैंने महिला संगठन इकट्ठा किया है, आई जस्ट मेट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड वुमेन and we are just start to give awareness program of that people, they are facing so many issues of unemployed and drugs also. To humne pehle rural area mein, remote area mein jaakar un logon ke sath mil jul kar baat ki. We just take the first priority to give a good relationship, interpersonal development, interpersonal, good interpersonal relationship with them. तो अगर जान पहचान हो तो जो मैं बात कर रही हूँ वो सुनते हैं, अगर मैं हम लोगों के साथ अगर जान पहचान नहीं है तो वो थोड़ा सुन लेंगे, बाद में कहेंगे वो लोग अगर वहाँ से आते हैं वो, उन लोगों को क्या पता है कि जिंदगी क्या होता है, ये है वो है। तो हमने interpersonal relationship develop करने का कोशिश किया और वो success रही। और उनके बाद उन लोगों को हमने, जैसे the main thing is to face the problem of मानसिक जो परिस्थिति, मानसिक problems face करने का बहुत main thing है कि जिंदगी को उन लोगों को बताना with the help of spiritual knowledge। जैसे हम ब्रह्म कुमारी बहन जी लोग ने हमको सिखाया, some spiritual knowledge are here, but we are devotee of different believing is good that we know। जैसे अलग अलग फैमिली का है, कुछ लोग का अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग को जीसस को मानते हैं, कुछ लोग तो कृष्णा को भी मानते हैं, लेकिन देयर आर ओनली वन सुप्रीम गॉड इन द वर्ल्ड, द मेकर ऑफ यूनिवर्स। इस तरह से हम भी उनको समझाया और फिर बाद में अपने आप को कैसे समझाया जाए इन द डिफिकल्ट परिस्थिति में, हम अपने आप को कैसे समझाया जाए उन लोगों के बारे में, उसके बारे में हमने उनको बताया। तो धीरे धीरे आपस में मिलजुल होने लगे और वो लोग जानने लगे कि जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे दारू पीना, जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज को उन लोग समझ नहीं रहे थे कि शादी के बाद पत्नी के लिए क्या करना है, अगर बच्चे आ गए तो एज अ फादर व्हाट आई शुड डू फॉर माय चिल्ड्रन, एज अ हस्बैंड व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू माय वाइफ, ये लोग जानते नहीं थे। तो हमने उनको ये बात बताई कि जीवन ये है और जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में हमको ये नॉलेज होना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू पुट देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड देन दे केम टू नो, तो अपने आप करने लगे हैं। अगर वो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, घर को साफ रखना चाहते हैं, घर को शांति से, अगर वेल ऑर्गेनाइज एक घर है तो एक एक घर से समाज तो बनता है, उसी तरह एक एक घर को हमने ट्राई किया है एक शांति पूर्वक परिवार बनने का, तो हमने किया और छोटी मोटी उन लोगों को काम भी दिया है। जैसे आपको हमने बताया कि मणिपुर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आजकल तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। उन सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट को हमने उन लोगों पर बनाने का काम किया और मार्केटिंग का काम हमने किया है, तो अनएम्प्लॉयड को हमने एम्प्लॉयड बना दिया। और जो भी लड़का शादी के बाद दारू पीते हैं, दारू पीकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, पीने के बाद घर वाली को बहुत परेशान करते हैं, अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजने का उन लोगों को पहले जो नॉलेज नहीं था, बाद में अगर अवेयरनेस के बाद उन लोगों का जो परिवर्तन हमने देखी है, एकदम बिगड़े हुए परिवार को हमने जोड़ते हुए देखा है, यही है हमारा द चेंजेस ऑफ द इश्यूज। एक विलेज में अगर मान लीजिए आप 200 या तो 400 फैमिलीज हो, वो सब हमने किया है, ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वी डिड द मैक्सिमम इन दैट विलेज, दिस इज द आवर सक्सेस स्टोरी।
1: बहुत बढ़िया विविलिया, आपने बड़ा विस्तार से अपने काम के बारे में बताया, और निश्चित रूप से जो आप काम कर रहे हैं वो मणिपुर के समाज में और वहाँ के राज्य में एक लंबी इबारत लिखेगा, एक कहानी लिखेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आज के समय में आप क्या कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं?
0: मैं आपको मैंने पहले ही बात करने के शुरू में ही आपको मैंने बात की है कि मैं बचपन से ही समाज की सोशल डेवलपमेंट वर्क में अपनी फैमिली के साथ, अपने गुरुओं के साथ जुड़ते आई हूँ। तो कॉलेज के समय में भी पढ़ते समय ड्यूरिंग माय एजुकेशन टाइम इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी समाज की जो भी सेवाएं करने का मौका मिली मैं करती आई, इसीलिए NSS का भी अवार्ड मुझे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिली थी। और काम जो भी हो अभी भी जुड़ा है, लेकिन आफ्टर माय मैरिज आफ्टर इन द ईयर 2011 आई वाज अवार्डेड नेशनल यूथ अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री। तो अवार्ड मिलने के बाद ही मुझे सरकारी नौकरी मिली, सो आई एम वर्किंग एज अ हेडमास्टर ऑफ एन गवर्नमेंट स्कूल। सो सरकारी स्कूल में भी बहुत सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे काम करती हूँ। एंड आई वाज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म अ गवर्नमेंट स्कूल। पहले एकदम स्कूल बिगड़े हुए थे, उसका कंस्ट्रक्शन भी नहीं थे, छात्राएं भी नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे उन स्कूल पे एकदम परिवर्तन लाई। आई कैन चेंज द स्कूल इन पॉजिटिव वे, छात्रा भी आए बहुत सारे, उसमें कंस्ट्रक्शन काम भी किया। तो मणिपुर सरकार की तरफ से हमें चुनकर पिछले साल सिक्किम में सक्सेस स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, जो स्कूल सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, उनके बारे में भी केस स्टडी और शेयर करने की हमें मौका मिली थी। और अभी भी एक अलग स्कूल में भी चालू है डेवलपमेंट का, और एक दिन में 24 आवर्स है, उन 24 आवर्स में ओनली द 6 आवर्स ऑफ डे टाइम इज इन माय स्कूल, और जो भी बाकी आवर्स है रात को सोने के लिए घर के लिए जो 10 आवर्स हमने जो माइनस करके समय मिली है, उन समय में जो भी महिलाएं हमने इकट्ठा की है उन लोगों के साथ हमने तरह तरह की जो विलेज में और रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, और आपका जो जुनून है ये समाज को बदलने का, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, और कोई युवा यंग एज में अगर जुनून से जुड़ जाए, जुनून मतलब कुछ बदलने का, कुछ कर गुजरने का, तो वो ये जो जुनून आपके अंदर आया, कुछ लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि ये मैड है, पागल हो गई है, या ना, तो या आपके सामने कुछ कमेंट्स भी किए होंगे, तो वो जो मेंटल ट्रॉमा शुरुआती दिनों में लीडर को फेस करना पड़ता है अपने गांव में, अपने विलेज में, कुछ लोग उसको ये भी कहते हैं कि ये देखो ये आया कलेक्टर साहब, तो कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो ये जो ये क्या अनुभव तो आपके साथ भी रहा या आपको समाज ने और विलेज ने सपोर्ट किया?
0: बहुत सारे रहा, बहुत सारे,
1: जी
0: सो मेनी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स आर फेसिंग इन माय लाइफ स्टिल नाउ। तो एक अध्यापिका के रूप में जो भी परिवर्तन मैं अपनी स्कूल पे लाने की कोशिश कर रही थी, उनके समय में भी बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये तो एकदम पागल हो गई है। जो बहुत सारे टीचर्स लोग कर नहीं पाते, ये कैसे करेंगे, मैं कैसे करेंगे। स्कूल का भी एक अलग सा कहानियां हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। हमारे लोकल पेपर्स में मेरा सक्सेस स्टोरी का बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे चुके हैं लोकल न्यूज रिपोर्टर्स। और अगर स्कूल को एक तरफ रख कर सोसाइटी के कामों का भी हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो आते रहते हैं। ये लड़की क्या कर रही है, ये नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगी, इस तरह के। लेकिन अपने आत्मविश्वास तो रखनी चाहिए जो भी हो। जैसे बचपन में मेरे पिताजी ने हमको बहुत सारे सुनाए थे फेरी टेल स्टोरी, जो लोग को सुनाते हैं, उसी तरह सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज हमारे पिताजी ने हमें सुना। छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी चल पड़ी थी पैदल से, बहुत सारे समुद्र के जो लहरें हैं वो लेकर आते हैं, के लहरे उन स्टार फिशेस को किनारे छोड़ देते हैं, वो छुप जाते हैं। और चलते चलते उन आदमी ने क्या किया, उन स्टार को चुन के उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। तो देखने वाले, समुद्र के लहरे तो हम कभी रोक नहीं सकते, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन ये जो कर रहे हैं एकदम पागल है। समुद्र के लहरे जब भी आएंगे, स्टार फिशेस उठाकर समुद्र में जो फेंक रहे हैं, ये तो पागल है। तो उन्होंने मालूम है, लेकिन जो भी मैंने स्टारफिश पकड़ा वो तो एक जिंदगी मिल गया है, ऐसा ही उसने सुनाया। तो मैं उस तरह के आपको मोटिवेट करती हूँ कि समाज में बहुत सारे परेशानियां और इश्यूज और चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो भी एरिया में, जो भी क्षेत्र में जो मैं कुछ कर रही हूँ अपने तरफ से, वो तो ठीक हो गया ना। जो भी छोटा सा काम भी हो अच्छे के लिए जो मैं कर रही हूँ, वो तो अच्छे ही का फल स्वरूप मिल जाता है। भले ही मैंने एक विलेज को, एक सोसाइटी को या एक स्टेट को चेंज नहीं कर पाए, लेकिन जो भी मैंने हाथ डाला है वो फैमिली तो सुखहाल शांति से रह सकते हैं। इसी तरह से मैं काम करती हूँ।
1: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बेबिली, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, अब आपकी क्या प्लानिंग है, आगे की क्या योजना है, और अब कौन सी मंजिलें बाकी हैं अभी?
0: अभी तो बहुत बाकी है। हमने हिंदी फिल्म की एक संगीत सुनी थी, जैसे जो औरों को जीवन देता है वो जिंदगी है, इस तरह के। अपने लिए जीना बहुत सरल है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये तो एक अपने आप में चैलेंजेस है। और वो चैलेंजेस मैंने करना शुरू की है, तो अभी तो बहुत बाकी है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देते हैं, इस तरह का संगीत, इस तरह का जो लाइंस है, इससे हमें बहुत सारे इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। अभी मैं एजुकेशन के लाइन पे भी बहुत सारे बदलाव लाने हैं। बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में तो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उनके अलग तरीके से समझाना, स्कूल के भाग में भी बहुत सारे काम हैं और एक समाज के लिए भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने ही सोसाइटी के, जो भी दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, उन लोगों के समक्ष रहकर कुछ काम करना चाहती हूँ। उस काम के जरिए से दूसरों को जीने की सहायता मिले, जीने की भावना जागे और जीवन में एक सुख शांति परिवार के साथ जी सके, और समाज के लिए भी, हमारे राष्ट्र के लिए भी, अपने राष्ट्र के प्रति उन लोगों के भावनाओं में प्रेम, प्यार और राष्ट्र के प्रति जीने का जो भावना हम अगर जगा सके तो मैं समझूंगी कि मेरा जीने का मकसद अभी थोड़ा कुछ मिला है।
1: जी बहुत ही बढ़िया सिद्धमियों, आप बिबलिया, आपसे बहुत सारी बातें हुई और आपका राज्य अभी कुछ समय से चर्चाओं में रहा है, कुछ मुश्किल समय में है, लेकिन निश्चित रूप से हम आपको कामनाएं देते हैं कि वहां पर परिस्थितियां जल्दी ही ठीक होंगी और जैसे पहले एक शांति का माहौल रहा है वैसा रहे, आप लोग सब लोग मिलजुल के रहें और इन सब मुश्किल दिनों से आप जितना भी बाहर आ सकें ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। और इसके साथ साथ आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें। और हमारे श्रोताओं को भी कहना चाहूँगा, आप सुन रहे थे हमारा फेवरेट प्रोग्राम जुनून, जिसके लिए हमने के दूसरे एपिसोड में हमारी राष्ट्रीय युवा अवार्डी बेबीली को इम्फाल से मणिपुर से रिकॉर्ड किया और इस शो में उन्होंने हमें एक अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहें अपना फेवरेट प्रोग्राम जुनून, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। ओम शांति, थैंक यू,
0: धन्यवाद, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: आदमी को देखना चाहिए और दुकान से आंगरी अम्मा को अकेले देखना चाहिए। का भैया तुम तो और से खाओ देखो।
1: अरे हाँ भाई पूरन, बैठो और बताओ कि कैसा था वहाँ का दशहरा।
2: अरे काका उसकी तो बात ही निराली है। लेकिन काका एक बात बताएं, हम ना वहाँ पर शहीद स्मारक भी घूमने गए।
1: अच्छा।
2: हाँ, वहाँ क्रांतिकारियों और आजादी की लड़ाई में शामिल देशभक्तों की प्रदर्शनी भी देखी।
1: अरे वाह भाई वाह।
2: काका वहाँ बहुत से लोगों के चित्र के साथ जानकारी भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी। अब हमने कहा कि बस नाम लिख ले और यहाँ के काका से पूछ लेंगे। क्यों रहमान चाचा, ठीक कहा ना?
3: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे अपने काका तो क्रांतिकारियों की जानकारी के मामले में गूगल से भी आगे हैं।
1: अच्छा ये बताओ किसके बारे में जानना चाहते हो?
2: काका वो उल्लास्कर दत्ता और जितेंद्र नाथ राय है ना, उनके बारे में।
1: अच्छा, अब कलकत्ता का दशहरा देख के आए हो तो बंगाल की क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हो, है ना?
0: हाओ भैया, इतना ही रुचि पूरन बेटा बंगाली मिठाई के बारे में लेते नहीं तो आज होटल और बड़ी हो जाती। जब से आओ है उन्हीं के बारे में जानवे की रट लगाए बैठो है।
3: हाँ तो भाई गजबी है। अरे भाई उनके बारे में कुछ बताओ ना।
1: हाँ क्यों नहीं रहमान भाई। उल्लास्कर दत्ता का जन्म जो है वो बंगाल के कालीकच गांव में हुआ। पिता का नाम था द्विजदास।
2: काका कुछ जानकारी तो हमें भी है।
1: हाँ,
2: जैसे अपनी स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के अलावा उन्होंने विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अध्ययन भी किया।
1: हाँ।
2: और रासायनिक पदार्थों का ज्ञान अर्जित किया।
1: हाँ भाई पूरन, ये तो ऐसे देशभक्त थे अपने उल्लास्कर दत्त कि जिन पर किसी भी माँ बाप और पीढ़ी को नाज हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में ही इन लोगों ने अपने आप को देश प्रेम की राह में मोड़ दिया।
2: वाह
3: वाह भाई वाह, एक वो पीढ़ी थी और पूरन आज एक ये पीढ़ी है, हिंसा नशाखोरी और पता नहीं क्या क्या।
1: अरे लेकिन रहमान भाई उसमें दोष केवल उनका नहीं है। दरअसल हम ना उन्हें इतिहास की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही भविष्य की तस्वीर बना रहे।
2: अच्छा काका ये बताइए कि उल्लास्कर दत्त क्रांतिकारी दल में कैसे आए?
1: अरे भाई पूरन, मन से तो वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे, है ना? अब बड़े होकर उन्होंने ये तय किया कि अब पूरी तरह से वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहेंगे।
4: की करोश बाबा?
5: किछु ना मा, कुछ नहीं।
4: आजकल ती बड्डो शांत थाकोश। किसु होय नहीं तो बाबा?
5: नहीं माँ, तू परेशान मत हो, वैसे ही।
4: अच्छा, भालो थाकिश बाबा।
5: जी।
6: क्यों भाई उल्लास्कर, क्या कर रहे हो?
5: कुछ नहीं दोस्त, बस कुछ सोच रहा था।
6: किस बारे में?
5: कल ही युगांतर में एक देशभक्ति से ओतप्रोत पंक्ति पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद मन में एक बेचैनी सी हो रही है। लग रहा है कि अगर ये जीवन देश के काम नहीं आया तो इसका क्या मोल।
6: देखो उल्लास्कर, अगर तुम्हारे यही ख्यालात हैं और तुम इसी पथ पर जाना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर चलता हूँ।
5: कहाँ?
6: एक ऐसी जगह जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषण होने वाला है।
5: अच्छा।
6: जहाँ आज वे स्वदेशी समाज विषय पर भाषण देंगे, बहुत से लोग वहाँ आएंगे।
5: ऐसा?
6: अगर तुम भी वहाँ चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
5: जरूर जरूर दोस्त, जरूर।
7: हे कम हियर।
3: लो आ गए तुम्हारी आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ।
8: सुनो, 4 बॉटल मिनरल वाटर And some snacks, please.
2: हाँ मैडम।
7: हेलो आंटी। अरे आंटी जरा सुनिए।
0: अरे आंटी हुई तुम्हारी अम्मा, हमारा नाम तो अम्मा है।
7: ओके अम्मा, ओके ओके। अच्छा यहाँ कुछ खाने को मिलेगा?
0: हाँ बैठ जाओ अभी, होते हम गर्मा गर्म आलू बंडा लगवाए दिए थे, बैठो।
8: What? आलू बंडा? No, कुछ और नहीं मिलेगा यहाँ? Some snacks?
0: अरे बेटा भाई एक बार खा के तो देखो आलू बंडा, तुम अपने ये जापे जैसा भूल जाए हो।
8: यश आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन। ओके हम यहीं बैठ जाते हैं।
7: ओके
0: खाओ, बैठ जाओ, एक काम करो बेटा, जब तक हम आलू बंडा निकाल रहे गरम गरम, उते कक्का के लेगा बैठ जाओ, वो साथ में हेसु कक्का की आजादी की कहानी को स्वाद भी ले लियो ये, बैठ जाओ।
8: आजादी की कहानी? ओह, इट्स सो बोरिंग।
2: काका, तो तब तक आप आगे बात बताओ ना।
1: हाँ, तो जब उस दिन उल्हासकर दत्त रविन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण सुनने गए ना, तो वहाँ भारी भीड़ थी।
2: अच्छा।
1: इतना बड़ा सैलाब देख के अंग्रेज अफसर के तो होश ही उड़ गए और वो बौखला गया और भीड़ को भगाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया।
2: अच्छा।
9: Oh my God! Too much crowd is there. It was unexpected for me. इतना सारा लोग यहाँ पर स्पीच सुनने को आया, हमको भीड़ को भगाना होगा। I say लाठी चार्ज।
10: तुम्हें लज्जा हो उचित अफसर। Shame on you अफसर। इन निर्दोष और निरपराध बच्चों और औरतों पर लाठी चलवाते हो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए।
9: अगर तुम मर्द का बच्चा है और तुम्हें इन औरतों और बच्चों का इतना खेर है, तो कम ऑन, फेस मी, मेरा सामना करो, तुम सामने आओ।
1: और उल्लास करने उसकी लाठी पकड़ ली और सिपाही को पीट दिया।
2: अरे वाह काका, ये हुई ना बात।
1: मगर सारे सिपाही उल्लास कर पर टूट पड़े
2: हैं
1: और उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। हाँ, और डॉक्टर सुरेंद्र मोहन दास जो कि कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर थे,
2: अच्छा,
1: उन्होंने उल्लास कर की जमानत ली और इलाज भी करवाया।
11: अब तुम बिल्कुल ठीक हो उल्लास कर, बस कुछ दिन आराम और कर लेना।
12: हम आजादी के दीवानों के लिए आराम अभी नहीं है डॉक्टर साहब। अंग्रेजों की आजादी और अत्याचार देखने के बाद इनकलाब का समय तो अब आया है।
11: तो अब आगे क्या सोचा है?
12: सोच रहा हूँ कि वारिन घोष जी से मिलकर क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाऊं।
11: वारिन घोष से परिचय है तुम्हारा?
12: नहीं, मुलाकात तो नहीं है, मगर युगांतर में उनके लिखे लेख द्वारा उनके क्रांतिकारी विचारधारा से परिचय अवश्य है।
1: और भाई देखो, उस समय तो वारिंद्र घोष भी क्रांतिकारी और देशभक्त नौजवानों की तलाश कर रहे थे।
2: अच्छा।
1: और उसी दौरान उनका परिचय उल्लासकर से हुआ और फिर हुआ ये कि उल्लासकर उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए।
7: काका, आप कहीं बंगाल के फ्रीडम फाइटर उल्लासकर दत्त की बात तो नहीं कर रहे?
1: अरे हाँ बेटा, अरे उनकी तो बात चल रही है।
7: आई नो हिम बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम कलकत्ता।
1: अच्छा।
7: पर उनका नाम सुना है, ज्यादा नहीं जानता।
3: तो बेटा, आज हमारे गूगल गजभिये काका से सुन के तुम भी उनके बारे में जान जाओगे।
7: तो काका, कुछ और बताइए ना उनके बारे में। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम।
1: अच्छा।
0: ले इन भैया को, सोई लग गई काका की कहानी की लत।
1: तो बेटा, इसके बाद हुआ ये कि उल्लासकर दत्त और प्रफुल्ल चक्रवर्ती वारिंद्र घोष के साथ उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए।
7: इस अत्याचारी बहरी अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए अब हमें धमाकों का सहारा लेना होगा, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि हम इसकी ज्यादतियां यूं ही बर्दाश्त करते जाएंगे।
10: इसके लिए हमें बम बनाना होगा घोषता, जिसके लिए बारूद और दूसरी चीजों का इंतजाम भी करना होगा।
7: इंतजाम हो जाएगा,
10: मगर बम कौन बनाएगा?
12: आमी बनाते बारी घोषता, मैं बना सकता हूँ। इससे पहले मैं विक्टोरिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रह चुका हूँ। अगर चीजें मुहैया हो जाए तो आमी बम बनाते बारी, मैं बना सकता हूँ बम।
7: शाबाश उल्लास कर, शाबाश। अगर हम सफल हुए तो इस अंग्रेजी सरकार की तो हम ईंट हिला देंगे।
1: और बस उल्लास कर दत्त अपने पुराने ज्ञान के आधार पर अपने कमरे में प्रयोग करने में जुट गए। उनके पिता को लगा जैसे बेटा छोड़े हुए अध्ययन को पूरा कर रहा है।
2: अच्छा।
1: हाँ।
2: बिल्कुल वैसे ही ना काका, जैसे अम्मा को लगता है कि हम यहाँ होटल में

0: तो जेटा तुर करा उचित ना
1: ना ना माँ मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और जिसमें मेरी माँ को गर्व हो।
0: अच्छा नहीं एबार खाया लो बाबा खाया लो तार पर शुया पर
2: और आखिर कई परीक्षणों के बाद उन्होंने शक्तिशाली बम बना भी लिया और अब बारी थी उसको आजमाने की उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ।
3: लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर का अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू को सबक सिखाना ही होगा।
4: ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं घोसदा। उस लॉर्ड के अत्याचारों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए।
5: मगर कैसे?
3: सुनने में आया है कि कल एंड्रू फ्रेजर रांची जाने वाला है। हम उस ट्रेन लाइन पर बम रखकर उस सरकारी पिट्ठू को उड़ा सकते हैं।
6: सुझाव तो अच्छा है मगर इसमें सावधानी रखनी होगी।
3: हम जानते हैं इसलिए हमें सोच समझ कर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा।
5: किंतु घोषदा इस काम के लिए किस खुशनसीब को चुना है आपने?
3: इस काम को अंजाम देगा उल्हासकर। क्या कहते हो उल्हासकर?
4: वाह दादा, आपने ये काम देकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं सचमुच आभारी हूँ। देश के काम के लिए चुना जाऊं इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है?
3: तो फिर ये तय रहा कि जब लाट की गाड़ी जाने वाली होगी तो उल्हासकर ये काम करेगा।
7: वंदे मातरम,
8: वंदे मातरम।
2: और बेटा उल्हासकर दत्त जैसे ही लाइन पर बम रखने पहुंचे तो वहां लोगों की काफी चहल पहल थी।
3: अच्छा।
9: उल्हासकर अगर तुम यहां बम रखोगे तो वहां खड़े आम लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ी दूर पर रखना होगा।
4: तुम चिंता मत करो दोस्त, ट्रेन निकलने में अभी समय है, तब तक मैं इसे थोड़ी दूरी पर रखाता हूँ।

0: उफ, आज इस लाट की किस्मत अच्छी थी, बच गया। लेकिन कब तक खैर मनाएगा ये?
1: कोई बात नहीं उल्लासकर, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेकिन इस बार हमारी कोशिश और बड़ी होगी।
2: हमें पता चला है कि लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर खड़कपुर जा रहा है।
0: घोषदा, इस बार हम बम नहीं माइन बिछाएंगे ताकि बड़ा धमाका सुनाई दे इस अंग्रेजी सरकार को।
1: हाँ, इस बार हम डायनामाइट का इस्तेमाल कर उस लाइन में बिछाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उल्लास कर के कंधों पर।
0: है दादा? हाँ जरूर।
3: वंदे मातरम।
4: वंदे

0: जितेंद्र नाथ राय।
1: इस बार हम उन पर सामने से हमला करेंगे दा।
2: किंतु सामने से हमला करने पर तुम पकड़े भी तो जा सकते हो।
1: मुझे अपने पकड़े जाने की चिंता नहीं है घोषदा, चिंता इस बात की है कि वो अत्याचारी अभी तक जिंदा है।
3: अब तुम क्या करोगे?
1: सुना है कि लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर एक सभा में आने वाला है, वहीं सबके सामने उस अत्याचारी को सजा दे दी जाएगी। बस उसके लिए एक पिस्तौल चाहिए।
3: हो जाएगा।
4: वंदे मातरम।
5: वंदे मातरम।
0: और जानते हो पूरन बेटा?
6: क्या काका?
0: ये जितेंद्र नाथ जो हैं उस समय कॉलेज में पढ़ते थे।
6: कॉलेज में?
3: ओह, इट्स अमेजिंग, इतनी कम उम्र में ही देश पर मर मिटने का ये जज्बा।
7: देन व्हाट हैपेंड काका, इसके बाद क्या हुआ?
0: इसके बाद हुआ ये बेटा कि यहाँ क्रांतिकारी अपनी तैयारी कर रहे थे और वहीं अंग्रेज सरकार भी उन पर अपना शिकंजा कस रही थी। जितेंद्र नाथ आम सभा में लाट साहब पर हमला करते हुए पकड़े गए और उन्हें 10 साल के लिए काला पानी की सजा मिली।
8: तुमने भारी सभा में लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर पर अटैक किया, तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? गिल्टी और नॉट?
1: हाँ, कबूल करता हूँ। वंदे मातरम।
8: कोर्ट तुम्हें 10 इयर्स की सजा का ऐलान करती है। द कोर्ट इज adjourned।
0: साथ ही उल्लासकर दत्त पर भी केस चलाया गया।
6: अच्छा।
9: मिस्टर उल्लासकर, आप क्रांतिकारी दल में किस तरह शामिल हुए?
10: युवांतर पढ़कर बारिन घोष का पता लगाकर दल में शामिल हो गया।
9: दल में शामिल होने से पहले आप क्या करते थे?
10: विस्फोटक पदार्थों के निर्माण का प्रयोग किया करता था। चंदननगर बम कांड के समय मैं वही था और खड़गपुर घटना के लिए माइन मैंने ही तैयार किया था।
9: तो वो माइन आपने बनाया था?
10: जी हाँ।
9: मिस्टर उल्लासकर, वो माइन आपने कहाँ बनाया था?
10: गोवा बागान के इलाके में एक कमरा हमने लिया और वहीं हमने इस काम को अंजाम दिया।
9: किन चीजों से बनाया?
10: वो ढले हुए लोहे के आधार में डायनामाइट से भरा हुआ माइन था। पिक्रिक एसिड और क्लोरेट ऑफ पोटाश को मिलाकर बनाया गया था।
9: इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बनाया?
10: जो जितना बहरा होगा उसे सुनाने के लिए उतने ही बड़े धमाके की जरूरत होती है।
9: आप जानते हैं मिस्टर उल्लासकर कि ये बयान देकर आप लगातार फंसते जा रहे हैं, ये आप क्यों कबूल कर रहे हैं?
10: अगर यदि फंसना ही है तो मैं फंसूं? अब निर्दोष लोगों को फंसाने से बचाया जाए।
8: वंदे मातरम।
11: तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो?
10: गुनाह तो आपकी नजरों में होगा, पर जो मैंने किया मैं उसे कबूल करता हूँ।
11: मिस्टर उल्लासकर डट, ये कोर्ट आपको फांसी की सजा का हुक्म देती है।
8: वंदे मातरम।
5: वंदे मातरम।
7: तू एक टू चिंता करिस ना बाबा, मैं एक टू कांदुम ना। तू एमन একটা কাজ করছস যাতে যে কোনো মার গর্ব হয় বাবা, তুই আমার জন্য চিন্তা করিস না।

0: मगर बाद में उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उल्लासकर दत्त को बाकी क्रांतिकारियों के साथ काले पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। यहां अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। अगर इनके बारे में तुम जान जाओगे ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
1: देवर रियली ग्रेट काका, आज आपकी कहानी सुनकर यह एहसास हुआ कि हमारे भविष्य के निर्माण के लिए शहीदों ने कैसे अपना जीवन न्योछावर कर दिया।
2: हाँ काका, आज सचमुच उनके बलिदान की कथा सुनकर दिल में उनके प्रति श्रद्धा उभर रही है।
3: और हमारे आलू वंडा खा ले हो तो साथ में जीव से सोई श्रद्धा उभरन लागे। लियो खा तुम्हारे अच्छे गर्मा गर्म है।
2: ओके आंटी, सॉरी अम्मा।
1: वाव, इट्स सो टेस्टी। अम्मा, ये तो सच में बहुत टेस्टी है।
3: काय बेटा, सो भूल गई नहीं अपने पिज्जा को नाम के? नहीं
1: सचमुच अम्मा। काका, आज ये जाके पता चला कि हमारे देश की चीजें और जड़ें बहुत समृद्ध हैं।
0: हाँ बेटा, बस जरूरत है उन जड़ों से आज की पीढ़ियों को जोड़ने की।
1: तो ये मान लो काका कि हम दोनों तो उन जड़ों से जुड़ ही गए।
4: हाँ, और इसका श्रेय जाता है हमारे गजबीय काका को।
2: तो काका, अब चलते हैं, मगर आप और आपकी कहानी हमेशा याद रहेगी।
0: अरे वाह।
1: और साथ ही अम्मा के आलू बंडे भी हमेशा याद रहेंगे।
3: और कभाऊ कभाऊ अम्मा खसो याद कर लियो बेटा।
1: हाँ अम्मा, जरूर याद करेंगे।
2: बाय आंटी।
5: ये था कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। निर्देशन तापसी नागराज, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको हमें भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। अब हमें आज्ञा दीजिए, इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की गाथा लेकर कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा में।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.6 पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस दूसरी एपिसोड में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं, बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
2: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10 घंटे 11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7-8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से निद्रा हो सकती है, या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज्यादा होती रहती है।
0: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए वैसे करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
2: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जिससे चाय, कॉफी, रेडबुल, जो ऐसी चीजें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पे बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
1: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपकी नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है, या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है, जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीजें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको जरूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10-12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
0: जी ये बहुत सारी अपने टिप्स दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिजिकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिजिकल एड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
1: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीजें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीजें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीजों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें, बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा,
0: कई बार हो सकते है वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
1: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
0: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दे।
1: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। उसको बाहर निकालें, जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
0: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरे लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
2: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील कर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
0: जी, तो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
0: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में, जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत,
2: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सब का नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
0: जी ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
2: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
2: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है, और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है।
0: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
2: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं, दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
0: जी सो लास्ट में व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज़ द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है?
2: देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए, हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
0: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
2: नहीं।
0: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का, और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन, कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप अपना ख्याल तो ज़रूरी रख रहे होंगे, तन के ख्याल के साथ साथ मन की क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने मन से सही से बात कर सके और मन क्या विचार कर रहा है उसे सही से परख सके। तो इस जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत मन की क्लैरिटी को आप समझ पाते हैं। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं हितेश जी, जो आपसे बात करेंगे क्लैरिटी को लेकर के। और वो कहते हैं कि क्लैरिटी एक मूल्य है, यानी कि एक वैल्यू है। तो ये कैसे एक मूल्य है, आइए उनसे ही जानेंगे। वो एक लाइफ कोच है, एक इंजीनियर है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो वो है ही हैं, और सभी यूथ को वो गाइड करते हैं। आप रेडियो मधुबन पर उन्हें कई बार आप सुन चुके हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेते रहेंगे। तो ऐसे हितेश जी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो जैसे कि आज का जो विषय है वो है क्लैरिटी, और आप कहते हैं कि क्लैरिटी एक वैल्यू है, तो ये कैसे है?
1: असली में क्लैरिटी अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी चीज़ें जब एक साथ मिलती है ना, तब जाकर हमें सही में क्लैरिटी आती है।
0: मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, मतलब
1: काफ़ी चीज़ें, मतलब जब एग्जांपल अगर मैं दूं, जब आपका मन बहुत शांत होता है, आप प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, और मन की भागदौड़ बंद हो जाती है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, या मैं ये कहूँ कि एक ना लगातार हमारे ऊपर एक प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर? कि अरे मैं 25 साल का हो गया हूँ, 25 की हो गई हूँ, ये हो जाना चाहिए था, मेरे सभी दोस्त तो आगे निकल गए, सोशल मीडिया पर तो ये लग रहा है, या मेरी 30 की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है। इससे क्या होता है कि हम एक कॉन्स्टेंट अगर ध्यान से देखें ना, तो एक रेस में है। इस वजह से, जो दूसरी भाषा में बोलते हैं कि एक फोग, एक धुंधला सा फील होता है जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अनक्लियर होते हैं, पता ही नहीं होता करना क्या है, करियर में क्या करना है, करना भी है तो क्यों करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, आगे प्लानिंग क्या करनी है, घर, गाड़ी, रिलेशंस, करियर, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम बहुत बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। और बाकी सब छोड़ दीजिए, रात को खाना क्या बनाना है, कल क्या करना है, कहाँ जाना है, उसमें भी इतना कंफ्यूजन रहता है।
0: जी बिल्कुल, इसका मतलब आप कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि अंधेरे का ऑपोजिट जो है वो लाइट है, तो वैसे कंफ्यूजन का ऑपोजिट क्लैरिटी है।
1: यस यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
0: ओके, तो ये जो लाइफ में क्लैरिटी नहीं होने के वजह क्या है, और इसे कैसे पहचाने कि हमें क्लैरिटी की जरूरत है, या फिर लाइफ ही ऐसी है कन्फ्यूजन टाइप?
1: नहीं, लाइफ कन्फ्यूजन टाइप नहीं है। अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे आप बता रहे थे कि मैं इंजीनियर था, हूँ, जॉब करता था,
0: प्रैक्टिस में नहीं हूँ।
1: हाँ, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। तो तब मुझे कन्फ्यूजन रहता था, तब मुझे बहुत समझ नहीं आता था, स्पष्टता नहीं थी मेरे विचारों में, मेरे एक्शंस में, कर्मों में, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं कि पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी उस स्टेज पर था, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर काम किया, और सबसे बड़ा काम क्या किया, जिसे मिनिमलिज्म बोलते हैं।
0: ओके।
1: अपरिग्रह, मतलब कि मन में बिल्कुल कम से कम बातें रखना, मतलब बिना बात की, जैसा मैंने बताया कि हम प्लानिंग करते करते, फ्यूचर की प्लानिंग करते करते टेंशन में ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा, प्लानिंग तो करनी है, बट उसके बारे में एंडलेसली सोचते रहते, पूरा दिन वहीं चला जाता है ना, ऐसे ही पुराना सोचते रहते हैं, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, एक साथ इकट्ठी होकर बहुत माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, धुंधलापन क्रिएट कर रही है, है ना
0: जी।
1: इसलिए वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना, और जो बात मेरे काम की नहीं है उसे ना सुनना, उस पर नहीं सोचना, थोड़ा सा ये सीरियस होकर हमें लाना चाहिए अपने अंदर कि मुझे काम की बात को ही अपने अंदर रखना है, काम की बात सोचनी है, काम की बात देखनी है, इधर उधर हर चीज नहीं देखनी है, अपने माइंड को साफ रखना है। जब इसमें बहुत ज्यादा कचरा आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है।
0: तो मिनिमलिज्म आप विचारों की बात करें?
1: मैं विचारों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। बाहर भी मिनिमलिज्म होना चाहिए हमारा, पर असली में वो तभी आएगा जब हमारे मन में मिनिमलिज्म होगा। मिनिमम थॉट्स, मिनिमम लोग, मिनिमम बातें, मिनिमम चीजें जो काम की हैं सिर्फ वही रखना है ना। कंपल्सिव नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कि जैसे हम सबके साथ होता है कि हम कुछ भी सोचते रहते हैं, किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं। एक ये भी थॉट आ गया ना कि अच्छा अभी ओलंपिक शुरू होने वाले, तो उसके बारे में एक घंटा सोचते रहेंगे कि अच्छा इस बार इंडिया मेडल कितना जीतेगा। ठीक है, मतलब कंसर्न होना चाहिए, बट हम कुछ अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। सेम इज पॉलिटिक्स, है ना। अच्छा यहाँ कौन जीत रहा है, वहाँ, बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर पूरे कुएं में ही गिर जाते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये सारे जो वेस्ट थॉट्स जो जरूरी नहीं है वो हम ना सोचें, तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या हमें मतलब? हाँ। एक शॉर्टकट है ये क्लैरिटी के लिए?
1: हाँ, ये सब बातें करते करते ही धीरे धीरे हमारे अंदर ना क्लैरिटी आने लग जाती है। जब हम शांत होते हैं, जब हम हल्के होते हैं, हमारा मन हल्का होता है, ये नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट हमें बहुत बर्डन फील करवा देते हैं। तो जब हम हल्के होते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं होती, पुराना पकड़ा नहीं होता, सप्रेशन नहीं होता, जब हम खुश होते हैं, अंदर से खुश, बाहर वाला नहीं, है ना, तो ये तीनों बातें मिलकर क्या बनाती हैं, हमें क्लैरिटी लाती हैं। कि अच्छा मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एक कीचड़ में आपका पांव फंसा हुआ है, तो अब क्या चाहिए? अब या तो हम दुखी होते रहते हैं, अरे मुझे किसने कीचड़ में डाल दिया, कोई मुझे बाहर निकालो, ये सब ऐसे हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कहाँ गए सभी लोग मुझे बाहर निकालने वाले। पर क्लैरिटी ये कहती है कि पहले स्वीकार करो कि मैं कीचड़ में हूँ। हम स्वीकार ही नहीं करते हम कीचड़ में हैं, मतलब कि कन्फ्यूजन है लाइफ में, है ना। यही क्लैरिटी है कि अच्छा मैं कीचड़ में हूँ, कोई आने वाला नहीं है बचाने, अब मुझे क्या करना है। तो ये क्या है, पहले हम हल्के हो गए, बाहर सोचना बंद कर दिया कि मेरे रिश्तेदार आएंगे या प्राइम मिनिस्टर आएंगे या भगवान आएगा मुझे बचाने, ये बाहर की ओर थिंकिंग है ना। धीरे धीरे अपने ऊपर लाए कि चलो भाई मुझे पता है मैं कीचड़ में हूँ, अब मुझे निकलना है। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्ट किया हमने।
0: ओके।
1: इससे क्या हुआ, एकदम से एक लाइटनेस आ गई और क्लैरिटी आ गई, क्या मुझे ही ठीक करना है अपने आप में।
0: कोई और नहीं आकर के बचाएंगे, लेकिन हमें खुद को ही निकलना है। तो ये सोचने से हमें फिर आइडियाज आते हैं।
1: यही, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये सोचने से क्या होता है, जैसे एक टावर होता है ना, चाहे इंटरनेट टावर लगा लीजिए, नेटवर्क का टावर, तो क्या होता है कि अगर वो कवर्ड होगा, अगर उस पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगी, तो क्या होगा, वो कनेक्शन अच्छे से नहीं होगा। ऐसी हमारे मन पर बहुत सी परतें लगी हुई हैं इन्हीं चीजों की, जो बचपन से हमने सीखा कि ये जिम्मेवार है इस चीज का, ये जिम्मेवार है, तो क्या हुआ कि वो कनेक्शन नहीं हुआ। तो जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे तो आप देखना वो अंदर आइडियाज आएंगे, है ना, सॉल्यूशंस आएंगे।
0: जो कहते हैं कि अपना जो इनर मन है, कह सकते हैं उसको अंतर मन कह सकते,
1: अंतर मन में कितना खजाना है, तब हमें रियलाइज होगा कि अच्छा मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, है ना,
0: जिसको विवेक कहते हैं उसे जगा सकते हैं।
1: हाँ, और ज्यादातर लोगों के साथ ये क्लैरिटी कब आती है, जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, दोनों चीजें होती हैं, पर कुछ लोगों को क्लैरिटी कब आती है, जब पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तब लोगों को समझ आता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है, है ना,
0: हेल्थ भी ठीक करना,
1: हेल्थ ठीक करनी है, मेरे फैमिली है, डिपेंडेंसी है, तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है। क्यों क्लैरिटी मिलती है? क्योंकि उस समय वो परिस्थिति आई और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो क्या हुआ, आपने स्वीकार किया, आपने आप प्रेजेंट में आ गए, आपने देखा कि अच्छा भाई अब ये तो प्रॉब्लम है, अब क्या कर सकते हैं, तो आपको आइडियाज आए, आपको क्लैरिटी आई कि अच्छा ये कर लेना चाहिए।
0: ओके जी, तो इसलिए

0: करना क्या है
1: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, तो पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। तो आप सुन रहे हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप 94-1415-1415 पर कॉल कर सकते हैं।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो, ये समय है जागने का, जागृति लाने का, ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का, ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी के बारे में। और ब्रेक से पहले हमने बातचीत की थी कि कैसे जो यूथ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एज मान लीजिए अब 30s के ऊपर है या फिर वो 30s में आने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी भी हो गई है लेकिन उनको अभी तक नहीं पता है कि करना क्या है और बहुत सारे फेलियर्स उन्होंने लाइफ में देखा है। तो कौन से ऐसे ऑप्शंस उनके पास है उसके बारे में सोचते सोचते कई बार वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मन में क्लैरिटी कैसे लाएं, आइए हितेश जी से जानते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। देखिए, जब भी हमें कुछ भी चूज़ करना है, मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, पहले हम वो करते रहें लेकिन उसके साथ साथ अपने

0: पर काम करना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि स्वीकार भाव को लाना, कि मैं जहां हूं पहले मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने से क्या होता है, वही बात कि हमें हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और उससे क्या होता है, उससे हमें क्लैरिटी आने लगती है। मतलब जैसा हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ मैं कीचड़ में हूँ, कोई आएगा तो निकाल लेगा, नहीं। इसका ये मतलब है पहले स्वीकार करना है मैं कीचड़ में हूँ, अब मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि उस कीचड़ में ही रहना है हमेशा,
1: ओके,
0: है ना। उससे बाहर कैसे आना है, इसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, हूँ मैं सिंगर लेकिन मैं एक जॉब करता हूँ, मन मेरा सिंगिंग का है पर उसमें इतना समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं वही कहता हूँ, अभी आप जहाँ पर हो पहले ना खुश रहना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि काम में खुशी नहीं ढूंढनी है। ये थोड़ी सी बात, हल्की सी, समय लगेगा समझने में, कि कुछ लोग ये कहते हैं वो काम करो जिसमें खुशी मिलती, वो पहले जो मैं कर रहा हूं ना उसमें खुश रहना सीखना है मुझे। इसका ये मतलब नहीं कि वही लाइफ टाइम करते रहो। मैं जब इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था मैंने उसमें खुश रहना सीखा, छोटी छोटी बातों को, कि अच्छा ये मुझे ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, मुझे जिंदगी भर नहीं करना ये, पर अभी मैं खुश हूं, अभी मैं ना शांत हूं, मैं स्वीकार करता हूं जहां मैं हूं। उससे क्या हुआ, अपने आप ही, कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप क्लैरिटी आने लगी कि अच्छा ये बहुत हो गया, अब ये छोड़ देते हैं, अब ये करते हैं
1: जी,
0: है ना। तो इसलिए पहले हम जहां भी हैं, चाहे वो संबंधों की बात करें, काम की बात करें, जो भी चीज है, पहले जो है उसे अच्छे से स्वीकार करें, खुश रहें, अंदर से खुशी को बढ़ाएं, जो भी सिचुएशन मिली है उसे स्वीकार करें अच्छे से। इससे क्या होगा, धीरे धीरे धीरे धीरे मेरी हीलिंग होने लग जाएगी
1: जी।
0: क्या करना है लाइफ में, उसकी क्लैरिटी के लिए सबसे पहले हीलिंग चाहिए।
1: ओके।
0: मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बहुत ज्यादा फ्यूचर का अभी मत सोचिए, आप अपने आप को कहिए कि फ्यूचर में क्या करना है, ओके प्लानिंग करनी है, पर एक काम करता हूँ 6 महीने ना खुद के लिए देता हूँ, एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ जो ये कह रहे हैं
1: जी,
0: कि खुश रहता हूँ, जो सिचुएशन है उसे स्वीकार करता हूँ, उसमें कंप्लेन नहीं, उसमें रोना धोना नहीं, उसमें ये नहीं कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, पहले स्वीकार कर लेता हूँ कि ये अच्छा शादी हो गई, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, कोई बात नहीं, पहले स्वीकार करता हूँ कि हाँ ये ऐसे हैं, फिर देखेंगे क्या करना है, है
1: जी,
0: ना? तो ये करने से धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप वो क्लैरिटी, वो समझ अपने आप बढ़ती जाएगी
1: जी। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और फिर कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें हम फिट होना चाहते हैं, और फिर हमें लगता है कि शायद, है ना, हमारे में इतने सारे कमी कमजोरियां हैं, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना जैसे आपने कहा जरूरी है
0: जी।
1: तब फिर हीलिंग प्रोसेस के थ्रू आप को क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है।
0: हम वही बात जो आपने कहा ना कि हम क्या करते हैं, हम एक दौड़ में जाते हैं कि जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, साथ में बिजनेस भी करता था, तो मैं देखता था कि मेरा ये फ्रेंड इतना सक्सेसफुल हो गया, ये इतना सक्सेसफुल हो गया, ये इतना सैलरी कमा रहे हैं, तो जो मुझे क्लैरिटी आ रही थी धीरे धीरे कि मुझे ये सब नहीं चूज करना है, मुझे कुछ और करना है, फिर वो बातें अंदर आने लग गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्यों मेरे फ्रेंड तो इतना, उनसे बात करो तो वो कहते हैं अरे बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी सैलरी है मेरी, ऐसा है वैसा है, या दिखता है सोशल मीडिया पर, या मेरे सेम उम्र के लोग दुनिया में ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये कर रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे क्लैरिटी क्या उल्टा होने लग जाता है और कंफ्यूजन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सबकी एक अलग जर्नी है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं, हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। मुझे ये समझना जरूरी है कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ
1: जी,
0: और वो बेस्ट के लिए सबसे पहले तो अपने मन की स्थिति ठीक करनी है।
1: Okay.
0: है ना, मैं किसी चीज में ठीक भी हूँ, जैसे आपने बहुत से एग्जांपल सुने होंगे ना, जैसे वो स्पोर्ट्स में कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली सेम खेलते थे, सेम स्कूल से थे, तो एक इंसान कहाँ निकल गया और एक कहाँ रह गया। गिफ्ट तो दोनों के पास था, बट उस गिफ्ट का किया क्या, उस गिफ्ट को कितना यूज किया और क्लैरिटी कितनी थी, मन शांत था या डिस्ट्रैक्टेड थे, परेशान थे, दूसरों की बातों से प्रभावित होते थे, तो ये सब चीज़ें ना बहुत इफ़ेक्ट करने लग जाती है हमारी डिसीजंस को, हमारी क्लैरिटी को, हमारे मन को प्रभावित करने लग जाती हैं और ज़्यादातर गलत तरीके से प्रभावित करती हैं।
1: जी बिल्कुल। और आज की ये जो कंपटीशन भरा दुनिया है और इसमें हर कोई चाहता है कि हम कम्पीट करें और हमारे यूनिकनेस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं और शायद हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे अंदर वो यूनिकनेस जो है वो क्या है। और वो क्लैरिटी से ही आ ही सकता है। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं कि हम जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंसान है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ज़माने के साथ कदम में कदम मिला करके चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम कई बार नहीं चल पाते या शायद वो कदम हमारा ना हो, तो उससे कैसे बच सकते हैं।
0: हाँ, ये प्रभावित होना तो देखिए हमेशा से इंसान का रहा ही है और शुरू में बहुत अच्छा भी रहा है ना, एक दूसरे से आइडियाज शेयर हुए तभी हम वो पुरानी दुनिया छोड़कर आए, है ना। लेकिन इसका गलत असर भी होता है, जैसे हम सभी फेस कर रहे हैं, है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि वही बात कि मेरा रास्ता अलग हो सकता है, सबका सेम रास्ता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, है ना। सभी बिजनेसमैन बनेंगे तो गाड़ी कौन बनाएगा, सभी बिजनेसमैन बन जाएंगे तो बैंक में नौकरी कौन करेगा,
1: है ना। नहीं, नहीं।
0: तो सबका एक अलग रास्ता है और हमें किसी काम के लिए चुना हुआ है इस ब्रह्मांड ने, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होकर हम लोग एक रेस में लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मुझसे बाकी लोग आगे नहीं निकल जाएं, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मान लीजिए किसी चीज़ में 10 साल हो गए नौकरी करते को, तो फिर एक मुश्किल लगता है कि अब कैसे रास्ता बदलूं, है ना।
1: जी, जी।
0: अभी 2 दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 10 साल की नौकरी के बाद अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मेरा पैशन है डिजाइनिंग में, अब मैंने नौकरी छोड़कर उसमें एडमिशन ले लिया है,
1: जी।
0: है ना। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पता नहीं कहीं मैं रह नहीं जाऊं। ये डर हमें ख़त्म करना है लाइफ से, कि जब दो चीज़ें हैं ना, एक आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जब आपका मन शांत है तो अब अंदर से आवाज़ आ रही है,
1: तो नेक्स्ट कोई थॉट्स नहीं आता उसमें।
0: हाँ, नेक्स्ट नहीं आता उसमें, लेकिन ये अंदर की आवाज़ भी थोड़ी क्लियर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की अंदर की आवाज़, अगर हम हील्ड नहीं है, अगर हम शांत नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर की आवाज़ क्या आएगी कि मत करो ये, या रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ये ठीक है ना, चलो परेशानियां तो हैं, नौकरी में परेशानियां हैं या अपने छोटे मोटे काम में परेशानियां तो, पर ठीक है ना, सबकी लाइफ में तो हैं, है ना
1: जी।
0: तो वो अंदर की आवाज़, अंदर की आवाज़ नहीं है
1: ये, अपने वीकनेसेस की आवाज़,
0: कमजोरी है। ये मन की आवाज़ है, मन मतलब कि अहंकार की आवाज़ है, जो कुछ नहीं करना चाहता है, जो डरता है।
1: अच्छा, अहंकार डरता है।
0: बिल्कुल, अहंकार डरता है, तभी तो वो बाहर चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है ना।
1: ओके।
0: मतलब वो कहता है कि उसे डर लगता है, तभी तो वो कंट्रोल करना चाहता है।
1: जी,
0: है ना। तो ऐसे ही अहंकार को डर लगता है कि कुछ नया रास्ता चुनेंगे ना, पता नहीं क्या होगा, चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानी है इस टाइम चल रही हो, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जैसा है ना, ठीक है।
1: थोड़ा डर जाते हैं कि बिल्कुल कि आगे क्या होगा, अगर उसमें हम फेल हो गए तो।
0: हाँ,
1: ये भी हाथ से जाएगा और वो।
0: हाँ,
1: भी।
0: और फेल हो गए से ज्यादा डर पता है क्या होता है, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे।
1: हाँ,
0: फियर ऑफ क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है
1: जी,
0: ना, तो अंदर की आवाज का असली मतलब है दिल की आवाज, और दिल की आवाज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना, जिसे कॉलिंग बोलते हैं, जिसे पर्पस बोलते हैं, जिसे ये कहते हैं कि आप जिस चीज के लिए चुने हो वो इतनी क्लियर होगी ना, उसमें कोई दो राय होगी ही नहीं, ड्यूअलिटी होगी ही नहीं उसमें, चाहे वो मुश्किल लगेगा पर आपको ये लगेगा कि हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग से सेल्फ बिलीफ आएगा
1: जी।
0: जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुनते हैं कि वो टिकट कलेक्टर थे है ना, और खेलना वो क्रिकेट चाहते थे, तो अब कंफ्यूजन थी उस समय उनको, पेरेंट्स प्रेशर करते थे और उनको भी नहीं पता था कि छोटे गांव से आते थे, पैसा बहुत ज़रूरी होता है और पता नहीं आगे करियर बनेगा नहीं बनेगा, तो कंफ्यूजन में थे ना वो
1: जी।
0: लेकिन अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी हो तो वो यही कहते हैं कि अगर मैं यहीं रह गया तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगा, अगर आज मैंने क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं लिया, डर है पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कुछ तो अच्छा कर लूँगा है ना, तो वो इतना क्लियर होता है कि आप सोचते नहीं हो ज़्यादा, फिर आप उसमें चले जाते हो
1: जी। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि वो दिल की आवाज़ जो हम कहते हैं कि विवेक की आवाज़, और उसमें कंफ्यूजन नहीं होता और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समाज को देखते हुए और हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को तोड़ करके हम आगे चले जाएं। पहले ऐसे हम कंफ्यूज होते थे या क्लैरिटी नहीं होता था कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है या मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा वो अलग लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना तो बाहर से आ रहा है वो, ऐसा लगता है मुझे कि कोई और आपको इंस्पायर कर रहा है, कोई और आपको कह रहा है कि आपके अंदर है या आपको ये करना चाहिए, देखो चार लोगों ने ऐसा किया था, वो बाहर से आ रहा है, वो मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, है ना। अब वो बाहर से आएगा तो वो दो दिन रहेगा, फिर वही का वही हो जाएगा, वो मेरे अंदर से आना चाहिए। अंदर से आने का मतलब है कि मुझे समझ आनी चाहिए, है ना। एक बहुत सुंदर चीज़ है, जब मैंने उस बात को समझा तो मुझे और क्लैरिटी आने लगी, जिसे इकीगाय बोलते हैं, है ना। इकीगाय मतलब कि जीवन जीने का कारण, है ना, एक जैपनीज वर्ड है कि रीजन टू लिव, कि मैं क्यों जी रहा हूँ, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझे, उसके चार पार्ट होते हैं कि क्या, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, आज क्या करें, आज लिखें कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हूँ, हो सकता है सिंगिंग में, हो सकता है बोलने में, हो सकता है टेक्निकल, वो कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे क्या करना अच्छा लगता है, दूसरा सेक्शन ये बनाइए कि क्या करना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तीसरा होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसे भी मिले
1: जी,
0: इन दोनों में से सेलेक्ट करें कि इनमें से क्या क्या चीजें हैं जिसे मैं करियर बना सकता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे रील्स देखना अच्छा लगता है, अब ये करियर तो नहीं बन सकता ना,
1: नहीं बनाते हैं लोग
0: रील्स देखने का,
1: रील्स बनाने का,
0: हाँ वो अलग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग अच्छा लगता है, हाँ, गानों को सुनना अच्छा लगता है, इसका करियर नहीं बन सकता,
1: राइट।
0: तो इनको एक फिल्टर कीजिए कि इसमें से कौन सा करियर बन सकता है। और चौथा सबसे जरूरी कि दुनिया को क्या चाहिए इस समय, ये बहुत जरूरी है।
1: ओके,
0: कि इस समय दुनिया को इसमें से क्या चाहिए। मान लीजिए आप कहें कि मुझे डांस आता है, ठीक है, वेरी गुड, करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मैं इसमें अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, कमा सकता हूँ, दुनिया को चाहिए। अब इस बात पे थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ेगा, पहले ही इतने रील्स खोलो तो अलग अलग लोग डांस कर रहे हैं, नहीं चाहिए लोगों को मुझे।
1: कभी कभी आप अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए हम आबू रोड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लासिकल डांसर्स की कमी है,
0: यस,
1: तो आप कोई कैटेगरी उनमें से ढूंढ सकते हैं,
0: उसमें से चूज कीजिए, और उसी को क्या कनेक्ट करना है कि दुनिया को क्या चाहिए, है ना। मतलब मान लीजिए मैं क्लासिकल डांसर बनूं, क्यों बनना है मुझे, इससे मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, क्या मैं दूसरों को समझा सकता हूँ इस चीज में। अब इन चारों चीजों पे काम करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे देखना आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि अच्छा आई थिंक ये काम मैं करूँ ये मेरे लिए बेस्ट है।
1: जी बिल्कुल, और आगे भी और बात करेंगे और कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और भी चीज़ें हमारे डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं कल फिर आप।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है, रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब वो किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है, हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी।

बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी Volume 1 और Volume 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी के बारे में। और अभी अभी आप कुछ किताबों के बारे में सुन रहे थे, तो आइए हितेश जी से भी पूछना चाहेंगे, उन्होंने भी बहुत सारे किताबें तो पढ़े ही होंगे, तो ऐसे क्या किताबें हैं, जैसे आप इकिगाई के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन क्यों जीना ज़रूरी है और कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार से और भी किताबें होंगे तो सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
1: जी जी बिल्कुल। एक बुक जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ा वो है द पावर ऑफ नाउ, कि वर्तमान में रहने की क्या शक्ति है
0: जी।
1: और वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम असली में हम फेस कर रहे हैं और कैसे ठीक करें, तो वो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और इकिगाई नाम से ही बुक भी है एक, और उसी से रिलेटेड एक बुक है फ्लो, कि फ्लो मतलब एक ऐसी स्थिति जब आप काम को कर रहे हो और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो, है ना, तो वो स्थिति बहुत कम लोग ला पाते हैं। वो लाने के लिए करना क्या चाहिए वो उस बुक में लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बुक्स और भी हैं, बट एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आदतों को कैसे धीरे धीरे बदलें। तो ये किताबें पढ़ते रहने से बहुत अच्छा होता है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई आपने सुना, बहुत प्यारी बुक है। जो बिल्कुल नए हैं ना, जिन्हें बुक्स का ज़्यादा पता नहीं है, आप उससे शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छी बुक है
0: जी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको पता है जहाँ पर कोई बुक्स पढ़ करके हमें समझाए?
1: जी हम सही बताएं तो अभी हमने ही शुरू किया है इंग्लिश रीडिंग क्लब के नाम से। उसमें हम बुक इंग्लिश लेते हैं पर उसको एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। तो एक इनिशिएटिव सेफ स्पेस ओसिस के नाम से है, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सेफ स्पेस ओसिस, तो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सारा बाकी का डिटेल आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आफ्टरनून में, दोपहर में 3 से 4 हम पढ़ते हैं, और अगर टाइम सूटेबल नहीं है तो बाद में भी उसे सुन सकते हैं
0: यूट्यूब
1: पर, हैप्पीनेस म्यूजियम चैनल पर आता है वो। तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मिलकर करते हैं ना तो उसका बहुत अलग प्रभाव पड़ता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, हैप्पीनेस म्यूजियम एक चैनल है और जिसके माध्यम से आप इन्हीं किताबों को पढ़ सकते हैं
1: जी।
0: और मिलकर के पढ़ने से उसका इम्पैक्ट आप पर बहुत अच्छा पड़ता है। और कई बार मिलकर हम भी कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कई बार वो गलत भी हो जाता है। पढ़ने की बात अलग है, ग्रुप स्टडी का महत्व अलग है,
1: डिसीजन खुद ही लेना चाहिए,
0: खुद ही लेना चाहिए, सुनना सबका है, करना अपना है। जी
1: जी,
0: लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग हमें जज करेंगे या मिसजज करेंगे, हम कह सकते हैं कि गलत सोचेंगे, या फिर लोग कई बार कह देते हैं ना ये कुछ नहीं कर सकता, है ना, कई ऐसे जैसे हम चाहते हैं हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करें, अरे उसमें क्या पैसा है, क्या करना है, क्यों करना है, तो इस प्रकार से भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे हम उसे दृढ़तापूर्वक क्लैरिटी के साथ कैसे हम डिसाइड करें?
1: जी पहली बात तो ये सच समझने की ज़रूरत है कि लोग तो जज करेंगे ही, आप कुछ भी करो लोगों का काम तो है जज करना। वो गाना याद है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो ये बात तो मान के चलिए, है ना, वो ये बिल्कुल सच है कि वो कहते हैं ना कि आप किसी को कहो ना कि आप मेरी जान ले लो, मेरा गला काट दो तब आप खुश हो, तो भी लोग मार के भी ये कहेंगे कि मार तो दिया लेकिन ना ऐसे काटना चाहिए था, वैसे नहीं काटा आपको।
0: जी जी,
1: है ना?
0: जी,
1: तो वो उस लाइन में तो जाना ही नहीं है मुझे, यही तो कंफ्यूजन है ना, कि ये फिर से वही बात कि वो हमारे बहुत अंदर बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, इतना आसान जाने वाला नहीं है वो। इसके लिए खुद क्लैरिटी होना जरूरी है कि मुझे क्या करना है। जब हम क्लियर नहीं होते ना तो फिर लोगों की बातें हम सुनते हैं, जब खुद नहीं पता होता क्या करना है, खुद समझ नहीं होती, और वही बात चारों फैक्टर नहीं होते कि मुझे उसमें अच्छा भी होना है ना, धीरे धीरे अपने आप को उसमें अच्छा भी बनाना है, वो करने का मन भी करे
0: जी,
1: ये नहीं हो कि अपने आप को फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, नहीं अंदर से आना चाहिए। तो जब ये सब चीजें होंगी ना तो फिर हमें लोगों का नहीं सोचना है, फेलियर का नहीं सोचना है, लोग क्या कहेंगे या मैं फेल हो गया तो अरे अच्छे से करूंगा तो फेल होऊंगा ही नहीं, और अगर ट्राई ही नहीं करूंगा तो मैं ऑलरेडी फेलियर ही हूँ, ये बात समझ कर चलनी है।
0: कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हर कोई यूनिक कर रहा है कुछ, तो उस यूनिक करने के पीछे ना, नहीं नहीं हमें जो भीड़ जिस रास्ते जा रहा है ना, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है, अपोजिट में जाने के चक्कर में कई बार हम गलत भी कर लेते हैं।
1: क्यों? क्योंकि ये हो जाता है मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन क्या वो मेरे अंदर से आ रहा है या फिर वही बात सोशल मीडिया से आ रहा है कि कोई रील देखी होगी, किसी ने कहा होगा कि कुछ अलग करो, तो मोटिवेशन तो मिल गया, तो हमने क्या सोचा, अच्छा है डॉक्टर तो नहीं बनना, पढ़ाई तो नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमें लगा कि ये सब सभी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना तो करना क्या है
0: जी,
1: है ना, वो क्लैरिटी नहीं होती नहीं है।
0: क्या पता अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना भी चाहते हैं, इंजीनियरिंग में भी आप अलग कर सकते हैं ना, आप कुछ उसमें आप रोबोटिक्स में चले जाइए या फिर कुछ और करिए, प्रोजेक्ट्स करिए, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स करने में मदद करिए, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं।
1: वही क्लैरिटी की बात है, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे समझ आने लग गया कि मुझे इसमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा, तो वो क्लैरिटी आने लगी कि अच्छा ये एक दिन डिजाइनिंग करने को बैठा तो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये करना है मुझे, तो उस तरफ पूरे 2 साल लगाए उस चीज को अच्छे से सीखने में,
0: राइट।
1: तो वो वही बात, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, थोड़ा सा ओपन माइंड होने की जरूरत है, नई चीजों को ट्राई करने की जरूरत है, और फिर उसको समय तो देना पड़ेगा
0: जी,
1: उस पौधे को पानी तो फिर देना पड़ेगा अगर हम उसे बड़ा करना चाहते हैं तो
0: जी ना? जी। और जैसे क्लैरिटी की बात आप कह रहे हैं कि दिल से वो आवाज आनी चाहिए, कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर हमने लोगों को इतना फेल होते हुए देखा होता है, असफलताएं देखी होती हैं, तो फिर लगता है कि नहीं ये शायद नहीं करना है, उस बेस पर फिर हम डिसीजंस लेते हैं। तो एक्चुअली क्या कोई ऐसा समय है जहाँ पर हम एकांत में बैठ के सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टिक पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपने आप को परख सके, कोई कसौटी है?
1: हाँ बिल्कुल, कसौटी है, और मुझे लगता है एक अलग से टाइम अपने आप को देना चाहिए, अगर रोज भी नहीं तो 2-3 दिन में एक बार 1 घंटा आराम से अपने साथ हमें बैठना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना है। अब जैसे आपने कहा ना कि पास्ट का, मान लीजिए आप किसी चीज़ में फेल हुए या आपके कोई दोस्त फेल हुए, मान लीजिए आप कुछ अलग करना चाहते हो और आपके किसी दोस्त ने कहा अरे ये मैंने ना 5 साल पहले किया था, मुझसे तो नहीं हुआ, अरे उनसे नहीं हुआ, मुझसे तो हो सकता है, पर क्या ये मेरे अंदर से आवाज आ रही है, पहले ये चेक करना है, मैं करना चाहता हूँ, पहला पॉइंट तो ये चेक करना है। कोई भी मुझे कहता है ना कि मुझे MBA करना है, मुझे ये करना है, तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, क्या सही में आपके अंदर से आ रहा है या ये बाहर सोशल मीडिया दोस्तों से आ रहा है कि मुझे MBA करना है
0: जी।
1: मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा MBA
0: चैलेंजेस है उसे फेस हम कर पाएंगे नहीं कर,
1: हाँ एग्जैक्टली जैसे कोई कहता है मुझे IAS बनना है, तो ज्यादातर लोग अंधेरे में हैं, वो देखा देखी कि IAS बनना है, IAS बनने के बाद ऐसा हो जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है, अगर आपको IAS बनना है आपके अभी वाले 5 साल कैसे रहेंगे, उसके बाद वाले 5 साल क्या रहेंगे, क्या आप रेडी हो उस चीज के लिए, ये रियलिटी है। कोई कहता है मुझे कनाडा जाना है, है ना
0: जी,
1: तो उनसे पूछना पड़ता है, यही अपने आप से पूछना है कि कनाडा जाना है, बाहर जाना है, क्यों जाना है, अरे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत है,
0: बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है, लगता है ऐसा,
1: लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा वहम है ना, क्योंकि सच्चाई पता नहीं है, तो खुद को अंधेरे में नहीं रखना है, खुद को चैलेंजेस बता के रखने हैं कि ये अगेन इस चीज को हमें नेगेटिव नहीं होना कि अरे इतने नहीं, ये कहना है कि चैलेंजेस ये आएंगे, वो कहते हैं ना कि थिंक ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट,
0: ओके,
1: है ना, परफॉर्म लाइक यू आर अ मास्टर, उससे सीखना बहुत जरूरी है ना
0: जी।
1: तो इसलिए उस बात के बर्डन को नहीं रखना है, पर रेडी तो रहना है ना चैलेंजेस के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना
0: जी।
1: सो परफॉर्म लाइक कि यू आर अ विनर, किसी चीज को आप करो तो बहुत अच्छे से करो जैसे आप ऑलरेडी जीत चुके हो, और तैयारी कैसे करनी है कि मुझे कुछ नहीं आता है,
0: ओके
1: मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने आप को सोचना है कि अगर मैं अपना पैशन भी फॉलो करना चाहता हूँ तो भी ये प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में, है ना?
0: तो क्या मैं तैयार हूँ ये सब फेस करने के लिए? तो तभी फिर आप
1: तभी धीरे धीरे अपने आप को ऐसा मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके लिए इतनी अंदर पावर चाहिए, इतनी क्लैरिटी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, इतना लोगों का सामना, नेगेटिविटी का सामना करने की मुझ में हिम्मत चाहिए, ये सब बातें, सेल्फ बिलीफ चाहिए, खुद पर विश्वास चाहिए, इन सब पे धीरे धीरे तैयारी करनी।
0: नो कहने की हिम्मत भी चाहिए।
1: हाँ,
0: ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
1: मैंने कल परसों ही एक बहुत अच्छा शब्द सुना था, बुक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें था हाई क्वालिटी नो।
0: हाई क्वालिटी नो, इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे एक बार कि नो कैसे कहना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके फायदे क्या हैं।
1: हाई क्वालिटी नो
0: जी, हाई क्वालिटी नो, क्योंकि हां जी का पार्ट तो हमसे बचपन से पढ़ाया जाता है कि बड़ों को ना नहीं कहना है, दोस्तों को ना नहीं कहना है, कोई अपॉर्चुनिटीज आए उसे ना नहीं कहना है, लेकिन वो आपके लिए है कि नहीं उसे क्लैरिटी के साथ जज करना बहुत जरूरी है। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। और आपके जीवन में अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, वो सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच हितेश जी आज हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक यू।
0: यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना,

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का, ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का, ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ

0: ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इनवाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे। तो हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं। कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से ही आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच. आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी. एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए.
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज़ ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने
0: पता नहीं, अब ये तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए, इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई. तो मेरी काफ़ी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके जो आई थिंक सबके साथ होती है. कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं. एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं, वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले. तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा. एंड एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले. तो
0: अच्छा, क्या
1: हाँ,
0: बात है,
1: बिल्कुल दिल वालों की दिल्ली बन गई. यस
0: दिल्ली दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: टोटली.
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप।
1: श्योर. सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है. और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो US में सेटल्ड है. तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ. एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन. एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा,
1: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है. तो उन्होंने मेरे को चेक भी कराया था और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद MD है. लेकिन जब सेकेंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज़ तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज ही ज्यादा समझ आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्केरी थी और मेडिकल रूम की होती आई गेस। एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: और उनको पता भी
1: कैसे।
0: नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ
0: नॉलेज नहीं होता.
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, यू नो, जान पूछ के तंग करने के लिए। बट तो यही सिलसिला चला और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे। तो जब मैं 9 ईयर्स की थी तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही। तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी उनको ही वापस दिखाया, तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है। फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है। तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ। बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेनस्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से। एंड तकलीफें बहुत रही क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा रही, टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी। तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी।
0: नहीं थी.
1: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ। तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, पहले इतना
0: अच्छा.
1: दिक्कत था नहीं। एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था। एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था। एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें थोड़ी छूट गई।
0: टूट गई.
1: राइट। एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफ़ी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया, क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर और ये सब अवेलेबल है। और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
0: अच्छा.
1: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
0: वर्किंग थी,
1: उसने
0: राइट.
1: मेरा राइट तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी। तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई। अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा।
0: अच्छा.
1: राइट। इसी वजह से क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी। और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था, उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं।
0: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, ये कब की बात रही होगी?
1: 2010 की
0: 2010 की. बताइए, मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई.
1: बिल्कुल। एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल में कितने छोटे छोटे होते हैं, फिर भी सबने इतना सपोर्ट किया। और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं जाके। तो वहां पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोप अप भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी।
0: अरे वाह.
1: राइट, मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मज़े आते थे मुझे।
0: इस समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
1: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से मेरा शुरू, और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
0: क्या बात है.
1: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमीजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए. उन्हें हमेशा पुश किया टू डू मोर.
0: बेसिकली वो 5 से 5 6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
1: नहीं, क्रिएटिव
0: आपका
1: फील्ड
0: क्रिएटिविटी
1: से

0: टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया एंड देन आई वॉज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 ईयर्स. और उसके साथ साथ मैं काफ़ी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए. और एज आई सेड इट, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है. तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का काफ़ी शौक है. लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था. सबसे पहले हमारी बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ के ऊपर शुरू
1: क्या बात है।
0: हुई थी.
1: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
0: यस. तो आई थिंक
1: तो
0: लास्ट आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
1: हाँ जी,
0: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, सो ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे एंड वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
1: ठीक से कर रहे हो
0: सर्विस
1: कि नहीं कर रहे हो।
0: ये तो हाँ पूछना बनता है. बट
1: ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
0: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से. सो ही हैज हिज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स. एंड
1: अच्छा।
0: हमारे काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस. तब हम दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए.
1: काम करना चाहिए। बहुत सही।
0: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल. एंड मेन स्ट्रीम के तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें. तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या बात है। और अभी कुछ आपको है आई साइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
0: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है. जैसे सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता.
1: ओके ओके
0: थोड़ी
1: ओके ओके
0: बहुत लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस.
1: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
0: यस.
1: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर। पीयूष जी,
2: हाँ जी,
1: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी. तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था. सिमिलर स्टोरी है घर में. जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए. तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था. थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम. तो
1: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा. फिर डॉक्टर, कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया. तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन. पहली डायग्नोसिस थी उस समय. और
1: अच्छा।
2: उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था. तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था. इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया. फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली
1: अच्छा।
2: क्या होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता, एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है. तो उसमें क्या होता है, आपको भी नहीं समझ आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं, आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड. कहीं ना कहीं आई साइट, वो तो पता है कि नेचुरली आई साइट वीक के कारण अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया, कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा है, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है.
1: प्रॉब्लम है, राइट।
2: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए. और ये मैंने उस समय, हाँ उस समय रियलाइज किया. पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला. मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था,

0: क्लासिक स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो बेसिकली, उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट तक 6th स्टैंडर्ड तक। फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ। तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर रहा पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा। तो वो बोले दूसरी तरीका को कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है। तो फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने। मतलब
1: बताइए
0: कितनी
1: हद
0: कितनी
1: है, मतलब
0: इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट
1: बताइए
0: के लिए।
1: मतलब कोई, हाँ मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज करा है। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाना। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
1: अच्छा
0: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
1: क्या बात है।
0: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ 7th स्टैंडर्ड में, और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में। तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो
1: आगे बढ़ाएं जी।
0: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
1: जी
0: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाए। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे, 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
1: वाह क्या
0: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टालनी या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी IIM रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली
0: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
1: कौन से ईयर में आपने IIM किया पीयूष जी?
0: 2013 से 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
1: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
0: हाँ, पर आप ये
1: तो
0: नहीं, मतलब
1: वहां का
0: ऐसा
1: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
0: बिल्कुल
1: IIM का?
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हर कोई जा नहीं पाता IIM, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
0: हाँ
1: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
0: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था। पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड, इस टाइम से मेरे में मन में हमेशा था कि मुझे MBA करना है। पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि MBA करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू IIM रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, Day 1 से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ, सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप लोग समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी
1: क्या
0: यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
1: क्या बात है।
0: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए नहीं वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
1: ट्रस्ट
0: वापस दे तो
1: मतलब
0: दे देगा
1: वो
0: ना।
1: उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई, और मैंने उनको बहुत, मैं दो, क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट, मैं भी, मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
1: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका, या कुछ था आई साइड
0: मतलब
1: आपको?
0: आप समझ लो 5%, 4-5% कुछ
1: और
0: साइट बची
1: अभी
0: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
1: अच्छा,
0: मेरा है।
1: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं। अच्छा, फिर ये वहां से IIM से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
0: हाँ,
1: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
0: ये मैंने एक्चुअली सोचा IIM करते हुए ही, जब मैं
1: अच्छा
0: IIM में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था, तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो, और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में, तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं, पहले तो उनको पता, आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था, मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है, स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था, और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को, तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है, तो वही मेरा एक्चुअली, मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
1: वाह,
0: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने MBA फिनिश की। MBA के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था। ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने, वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर IIM रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो 3 महीना हमने वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं जब वापस आया, 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा। एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ। मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं। और
1: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
0: जॉब अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में। अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि Day 1 से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो Day 1 से। पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
1: वेरी गुड, चलो करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास जॉब। चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमराही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
2: ये हम आखिर दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई मिलने की?
2: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी। इवन इन 2024 तक यही सच था। व्हाट्सएप
1: अच्छा,
2: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट,
1: नाइस।
2: बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे। आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
1: सही है।
2: मिलता है ना। तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना NGO है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में। तो उन्हें बोला कि आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं जो दोनों
1: अच्छा।
2: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है, अच्छे से इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे। तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था।
1: सिस्टर के साथ गए अकेले?
2: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ
1: अरे
2: सारे विजुअली
1: अच्छा,
2: इम्पेयर्ड ही थे।
1: ओ
2: अब वो मेरे नहीं, अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी US में, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे अकेले
1: जरूरी है,
2: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता।
1: निकलता, बिल्कुल सही
2: हाँ,
1: है।
2: और अब जॉब भी कर रहे हो तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग।
1: कहाँ का ट्रिप था वो मेगा जी?
2: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक, हाँ जी
1: ओके
2: गुड़गांव में एक होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन। तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
1: हाँ
2: को
1: वही
2: बोल
1: मैं भी मन में वही सोच
2: के
1: रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
2: देखो चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
1: आपकी
2: अच्छी
1: तो कहानी सिमरन
2: फैमिलीज
1: से बहुत मिलती जुलती है। हाँ
2: हाँ तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया
1: राज
2: था
1: पता नहीं राखे जा जरूर आ गया।
2: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ, तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी,
1: अच्छा
2: तो हाँ, और ये भी वहाँ सबको जानता था तो ये भी इनवाइटेड था, तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया वहाँ पे, एकदम एंट्री मारी
1: ओहो
2: एंड हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन आपको फील होता है, हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है।
1: मतलब कुछ तो है
2: हाँ ये पीयूष
1: कुछ
2: को
1: है तो
2: ज्यादा
1: कुछ
2: लगा था
1: है।
2: वैसे, आप इससे पूछना जब इसकी बारी आएगी
1: लेकिन
2: एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक दूसरे
1: आपको तो
2: के,
1: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको। लेकिन
2: सिंगल था ये पता था क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे एंड
1: अच्छा मतलब
2: हाँ
1: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के।
2: नहीं सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई, ये चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
1: अच्छा
2: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है,
1: बहुत शौक है राइट।
2: तो आई वाज लाइक एक VI कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, दो तीन चार चीजें,
1: और आपने
2: तो
1: सोचा होगा यार यूट्यूब पे जिसको देखा वो यही मिल गया।
2: हाँ बिल्कुल मैंने कहा ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे, तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
1: कहीं
2: तो
1: जाऊंगी
2: वो क्वेश्चन ही नहीं था कभी, बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई, और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच एंड फिर बस चीजें बदलती गई, तो दिस इज हाउ वी मेट एंड
1: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
2: यस
1: जी
0: हाँ
1: आपको
0: जी
1: भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था।
0: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
1: अरे भाई
0: बाय
1: साहब
0: साइड बैठ के
1: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा। गेट
2: हाँ वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा
1: टुगेदर जो है सफल हो गया।
0: बिल्कुल नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ दो तीन लोगों को ही जानता था, फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में, हाँ
1: उसी ट्रिप में
0: नहीं उस ट्रिप में नहीं, ये
2: उससे
0: थोड़ी
2: पहले
0: थोड़ी
2: पर्पल
0: पुरानी, उससे आई थिंक
1: फेस्ट के
2: अच्छा
1: टाइम ना,
0: उससे
1: उससे
0: दो
1: पहले की
0: साल
1: बात,
0: मतलब हम मिले 2024, ये 2022 की बात है।
1: की बात है। ओके
0: 2022 में हम मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ। फिर जॉर्ज के साथ तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है। फिर उन्होंने मुझे एक बार ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में
1: जी
0: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
2: हाँ
0: हुआ
2: सेम
0: था।
2: योर। हाँ
0: हाँ तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर। तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस, तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा। और गोवा में ही आई थिंक गोवा में जब मैं गया था तभी मैं सबसे ज्यादा लोगों से मिला। और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीजें डिस्कस कर सको। तो वहां पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले और वहां से फिर मेरा काफी इस कम्युनिटी में भी काफी जान पहचान लोगों से हुआ। और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से। और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई।
2: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया आई थिंक। ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था। सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे
1: बताइए
2: ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
1: कहाँ
2: फेस्ट पे मिला।
1: दिल्ली, कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
2: सही
1: गुड़गांव।
2: में सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है लिखा होता है तो हो ही जाता
1: हाँ तो हम
2: बिल्कुल।
1: थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के, और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा।
0: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देखिए हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती। पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं और शादी की सोचें। हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं।
1: अरे
0: आप
1: भाई
0: समझ लो
1: साहब,
0: ऐसे,
1: जैसे
0: या आप समझ लो नवंबर,
2: इसने डिसाइड किया था।
0: चलो इसने नवंबर एंड, इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है 15 दिन बाद इसने
1: अच्छा।
0: डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो
1: हाँ
0: मतलब
1: नहीं
0: आप
1: मैं
0: समझ
1: वही
0: लो
1: पूछ
0: दो
1: रहा हूँ,
2: महीने
1: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले।
2: इसने
0: प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है।
1: नहीं कि
2: एंड आई
1: मुझे
2: थिंक
1: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है।
2: नहीं सही बात है। आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो एक होता है, आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता। एंड अब ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो इसको यू नो किसी चीज में कन्वर्ट करा जा सकता है। बट आई
1: हाँ
2: थिंक
1: यानी मेघा जी, मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी का नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
2: आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा। काफी कुछ हम कर रहे हैं एवरीथिंग। और मेरा क्या था कि, और ये आई थिंक काफी लोगों का होता है, हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए। और ऐसा ही था, मतलब पहले और मेरे, एज आई सेड राइट, मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं, मैं हमेशा मेन स्ट्रीम
1: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे।
2: राइट, तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं। उसी ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स के साथ, साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं। फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी, करती तो इसलिए करती कि हाँ कोई सच्चा मिला तो। एंड जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया, जैसे पोर्टल्स वगैरह पे दो तीन लोगों से मिली, कुछ साइटेड कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से. पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं, साइटेड से ही करो, तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे जिंदगी, बहुत डिफिकल्ट होगी. और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था. बट और फिर काफी लोगों से मिली, बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है, नहीं होएगी तो नहीं होएगी. अब ठीक है, कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा. अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी, और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर. तो वही माइंडसेट हो भी गया था. एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच लेते कि ठीक है, हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते, बट सडनली पीयूष के साथ इट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ, ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया. सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है.
1: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेघा जी? नहीं,
2: अब इतना टाइम तो चाहिए. दो दो महीने से कम
1: पीयूष
2: तो बहुत कम है.
1: ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
2: अब थोड़ा टाइम तो लगता है. अब एक्चुअली जैसे
1: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे?
2: हाँ, वो तो था ही ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता. जब हम मीटिंग हमारी हुई, हमने काफी बात की, तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है. जैसे आपने पूछा भी था ना सेट की, तब वहां सब सिंगल ही थे. बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है, और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है. तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे, एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही. फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हैं, यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा.
1: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना
2: हाँ
1: पड़े।
2: तो देखो, लाइक
1: अपना काम
2: लाइक हाँ जी
1: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
2: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो खत्म. तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली. एंड जब इनने प्रपोज किया, ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप. पहले शादी का था माइंड में, बट पहले देखा था कि ठीक है, अभी तक मिले एक ही बारी है, मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड, एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था, तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए, टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार, जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है, इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली, मम्मी पापा से मिला, इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं, इसके भैया, तो उनसे मैं मिली. एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ, तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हो इससे.
1: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई।
2: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
1: तो नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
0: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था, तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ. तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो, दो वीआई की शादी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा, इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बट ऐसे फिर और वीआई कपल, जो एक और वीआई कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिलके कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं. तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला, अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं, ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए. तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया. जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे. और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है। तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले और फिर वहीं ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया। आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर ली और फिर मई में शादी।
1: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, चूंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
0: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ ना किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी। लेट 20s में ही मैं रियलाइज करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था। और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है, बोले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता। तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू
1: कोई
0: या
1: दिक्कत
0: प्रॉब्लम
1: नहीं।
0: नहीं है। और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश हैं और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है
2: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से ही पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों VI हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
0: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीज़ों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट, अगर इसको देखोगे आप हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट, और मिल के बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
2: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है, आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते। आप ना ये सोचते हो कि ठीक है हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर, बट वो मुझे लगता है एक कॉम्प्रोमाइज़ है। और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है, तो जब मैं पीयूष से मिली तब मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
2: जी
1: और लेकिन हो सकता है 1,000 में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को, यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे, उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
2: आई डोंट थिंक, मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे, एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज्यादा लगता है फील, क्योंकि एक चीज करते करते एकदम से उस चीज को नहीं कर पाना और उस वजह से काफी चीजों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस, बट आई हैविंग सेड दैट आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं. तो हमें वही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ तो देखो
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे.
2: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए. व्हेन इट कम्स टू व्हाइट केन, जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज करने के लिए क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है. बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ व्हाइट केन.
1: व्हाइट कैन.
2: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के, नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, व्हाइट केन यूज करो कितना आसान हो जाएगा. बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट. तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना. एंड अब बल्कि हम दोनों ऑनेस्टली बताऊं तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं, हम डिनर्स लंचेस शो सब जाते हैं अकेले और हम व्हाइट केन लेके जाते हैं. एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ व्हाइट केन तो यूज करना ही है और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है. जी
2: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि जैसे हम बिल्कुल जैसे पीयूष भी, आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से हमें दिल्ली से हूँ तो दोनों को खाने का शौक बहुत है.
1: शौक है ही बिल्कुल.
2: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा, आप
2: ऐसे
1: दोनों
2: मिले,
1: के बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
2: नहीं हम दोनों
1: क्योंकि
2: वेजिटेरियन
1: अच्छा फिर
2: है.
1: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉनवेज थोड़ा ज्यादा चलता है.
0: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही मेरे बर्थ के पहले यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में. तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
1: वेरी
0: और
1: नाइस.
0: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीजें जो आपको पसंद है बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर होगी. और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है और ऐसे कई चीजें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज नहीं है. और जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट की चीजें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है. मतलब ये मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली जो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक्साइटेड है वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वही एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है. आई फील एज ए सेक लाइक माइंडेडनेस कंपैटिबिलिटी वो इम्पोर्टेंट है. अब चाहे विजुअली
1: बहुत
2: इम्पेयर्ड हो
1: बढ़िया,
2: साइटेड हो डजेंट मैटर.
1: काफी सीरियस बातें हो गई. जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
2: बिल्कुल किया. एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था. एंड
1: ओ
2: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया. हमने सोचा इंडिया में ही पहले कहीं सोचा चले जाए क्योंकि इजी रहेगा राइट, इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है. बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे. बट
1: सही
2: ट्राई
1: है.
2: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं. तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है बाली चलते हैं, क्लोज है अगर कुछ हुआ भी
1: इंडोनेशिया.
2: तो. हाँ जी, ये सोचा क्लोज है कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं. एंड यू नो वहां पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की.
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा ही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेघा राखेजा के साथ, लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
2: ऑफ कोर्स, बिल्कुल
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, 9414151415 पर। और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष।
2: थैंक
0: थैंक
2: यू।
0: यू।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और जिंदगी से प्यार हो तो भाई शायरियां बाहर आती हैं, क्रिएटिविटी बाहर आती है और बहुत सुंदर मोमेंट्स लाइफ के हम क्रिएट कर पाते हैं। वो गाना है ना लव यू जिंदगी का, मुझे कुछ लिरिक्स उसके बड़े ही अच्छे लगते हैं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। इतना आसान होता अगर हाय कहना जो अच्छा लगे और बाय कहना जो बुरा लगे, कितना अच्छा होता ना दोस्तों। चलिए इसे और अच्छा बनाते हैं और लाइफ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बात है एकदम प्रैक्टिकल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
0: और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजी भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी, बहुत अच्छा लग रहा है वापस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप दोनों से मिलके।
0: जी, और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे थॉट्स को रेगुलेट करने के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, थॉट्स रेगुलेशन कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी हमने समझा था। एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि जब बात आती है ना कि क्या हम सच में थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो कई बार जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, अलग हो जाते हैं रास्ते, लेकिन वो थॉट पीछा ही नहीं छोड़ता या वो व्यक्ति बार बार याद आता रहता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो थॉट्स रेगुलेट कर पाए और वापस वहीं ना जाए बार बार, तो बड़ा फायदेमंद होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? श्रीनिधि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ ये बहुत ही एप्ट विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं।
0: बिल्कुल।
2: और पिछले रोज कोई मेरे को ये बात सुना रहा था कि भाई एक फिल्म में यही घटना होती है कि लड़का और लड़की दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लोग आपस में शादी कर रहे होते, तो इनको लगता है कि भाई हम इनको भूल नहीं पा रहे और ये शादी करने के लिए ऑलरेडी मूव ऑन कर गए। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग अपने जीवन की धारा या अपने विचारों को बदल कर आगे बढ़ चुके हैं, उनके आगे बढ़े हुए चीज पर भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि इतने जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, मूव ऑन कैसे कर। और वो शायद इसलिए तकलीफ में है क्योंकि उनसे वो खुद चीज नहीं हो पा रही है, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मूव ऑन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन कर जाने से आपका ही भला होने वाला है। अगर आप इस मूव ऑन को पीछे कर दे तो मूव बैक हो जाएगा, यानी पीछे। कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछे नहीं जाना चाहता, जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए भी संबंधों में भी, रिलेशनशिप्स में भी मूव ऑन करना जरूरी है। आपने रिलेशनशिप्स की बात कही, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, वो बात समझ में आती। कई बार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आप अच्छे दोस्त हैं मगर एक लेवल पर आकर आपको लगता है कि ये बहुत ही टैक्सिंग हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें दोस्त बदलने की जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो हमेशा मेरे को ही करते रहना पड़ता है और मुझे इन रिटर्न जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता
0: है।
2: तो ऐसे समय पर लोग दोस्तों से भी मूव ऑन कर जाते हैं, दे चूज न्यू फ्रेंड्स। नए लाइफ में आप गए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, या आपकी नौकरी चेंज हो गई है, या आपका कोर्स बदल गया है, आप कॉलेज से आगे की लाइफ में आ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आपके नए दोस्त मिल गए। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ग्रेजुएशन का मेरा दोस्त था, ग्रेजुएशन के दौरान वो मेरे से जितना टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, हालांकि वो डिफरेंट कोर्स कर रहा है और मैं डिफरेंट कोर्स कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब भी हम एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें, शायद ये संभव नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि जीवन के सफर में हर एक के स्टेशन अलग अलग हैं, हम में से कई लोग पूरे सफर साथ चलें ये उम्मीद पाल कर बैठे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो। और ये भी जानना जरूरी है कि हम सभी हम सफर हैं, और हम जब तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के इस सफर में हैं, तब तक हम स्वीट मेमोरीज क्रिएट करें, सफर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए ये सफर सुहावना हो, सहूलियत भरा हो, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं। कब इस ट्रेन की गाड़ी में किसका स्टॉप आएगा और कहाँ किसको उतरना होगा, नहीं पता। और किसी ने दार्शनिक विचारधारा रखते हुए बात कही है कि स्टेशन आना और गाड़ी से उतर जाना इसका मतलब मौत ही नहीं है, तो वो व्यक्ति मर गया या उस व्यक्ति का देहांत हो गया ही नहीं है। कभी कभार व्यक्ति उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं, या किसी भी कारणवश हो सकता है, क्या शायद वो फिजिकल डिस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, और इसकी वजह से अगर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है तो ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी गलती है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि हम पॉजिटिवली हमें भी मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये जो थॉट्स आते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे को छोड़ के क्यों चले गए, मेरे में ही कमी थी, पता नहीं वो क्या चाहते थे मेरे से, मैंने इतना दिया फिर भी उनको, ये क्वेश्चंस नहीं पूछना है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में और मैं समझता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बीती हुई बातों पे चिंतन नहीं करना है। कहा जाता है कि बीती को चितो नहीं, यानी बीती की चिंता नहीं करनी। और बीती हुई बातों की अगर हम चिंता करते हैं तो हिंदी में और संस्कृत में ये बात कही जाती है, चिंता चितयोर मध्ये बिंदु मात्रेण अंतरम, यानी चिंता और चिता के बीच में एक बिंदु मात्र का अंतर है। अगर आप चिता शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो चिंता बन जाती है, तो दोनों एक समान है, सिर्फ इतना ही अंतर रहता है। तो इसलिए बीती हुई बातों की चिंता नहीं करनी है और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और आगे के लिए हम ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ की जर्नी है, उनकी भी आगे की यात्रा अच्छी हो, मेरी भी अच्छी हो, उन्होंने इतना समय मेरा साथ दिया, इतना समय उन्होंने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, कंपेनियनशिप दी, सपोर्ट दिया, मेरे लिए उनके दिल में हमेशा ही अच्छी भावनाएं हैं, मैं हमेशा उनके लिए गुड विशेस और अच्छी चीजें ही भेजूंगी और मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए भी आगे की ओर मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीजों को आने के लिए अपने द्वार खुला।
0: ओके कल्पना जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, पास्ट में अगर अटक गए हैं, सेम थॉट्स पैटर्न रिपीट हुए जा रहे हैं, पता है कि हो रहा है लेकिन फिर भी उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ तरीके हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं?
3: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे दो गाने याद आ गए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
0: किसने जाना
3: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो जब उनकी बातें मैं सुन रही थी, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी ही लाइफ के ऊपर, और कई सारी बातें मुझे रियलाइज हो रही थी उनकी बातों को सुनते हुए कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं। और जब मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ तो जन्म के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एकला चालो रे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात है। ये हमारा सफर अकेले का सफर है जो जन्म के साथ हमने शुरू किया। जन्म होने के बाद हमारे माता पिता उस सफर में वैसे ही जुड़ गए जैसे कि बिल्कुल शुरू के फर्स्ट लाइन में रनिंग करते समय हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन मेरे सफर में जुड़ते गए, मेरा सफर आगे बढ़ा, मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे दोस्त और टीचर मेरे सफर में जुड़ गए, थोड़ी दूर उन्होंने भी साथ दिया, उनके भी साथ को मैंने इंजॉय किया, मेरे पीछे के भाई बहन माता पिता थोड़ा सा पीछे रह गए और मैं आगे अपने दोस्तों के साथ निकल गया। आगे चल के मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आया, उस लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, परंतु केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं मेरे सफर के साथ ही थे, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ गए और उन्होंने साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि पीछे के रिश्ते धीरे धीरे छूटते गए, आगे के रिश्ते आगे बढ़ते गए, कुछ लोग साथ रहे, कुछ ने साथ छोड़ा। और जीवन का यही सच्चाई है कि हमारे सफर में हम अकेले आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। एक बहुत सुंदर पुरानी कविता है जो लमाण जाति के लोग होते हैं ना, लमाण जाति के लोग, वो लमाण जाति के लोग किसी एक जगह पर रुकते नहीं है ज्यादा लंबा समय तक, वो अपना सामान अपने जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते हैं। हमारे जीवन का भी सफर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अब इसमें ब्रेकअप की जहां तक बात है, वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ समय रहा और कुदरतन उसका समय आया साथ छोड़ने का, वैसे ही मेरा कोई रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा, उनकी अचानक डेथ भी हो सकती है। वो दुख भी ब्रेकअप से कई गुना ज्यादा होता है क्योंकि एक व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़कर गया। ब्रेकअप के बाद तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति जिससे हमने प्यार किया वो कहीं है और खुश है, इस बात की हमें खुशी होती है, लेकिन जो व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाता है उसके दुख को भी ओवरकम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त हमारे छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हम आगे लेके चलते हैं, तो क्या ऐसे समय पर हम मूव ऑन, जो कहा श्री जी ने, वो एक फंडा अपने साथ यादें लेकर हम आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि वो व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ बुनी हुई यादें लेकर मैं आगे बढ़ूं, शिक्षाएं मैं लेकर आगे बढ़ूं, सफर तो मेरे अकेले का ही है जो मुझे अकेले ही तय करना है।
0: लेकिन हम उन्हें मिस भी कर रहे होते हैं सफर में, उनके साथ जो हम, अब मान लीजिए सिंपल चीजें हैं, आइसक्रीम खाने गए तो फिर अकेले गए तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाता है, या फिर कोई और मोमेंट्स में हम अकेला खुद को फील करते हैं, किसी ने हमारी केयर करी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है तो वो याद आ जाता है, या उसने कुछ चीजें गिफ्ट की होती
3: है। जी, मुझे आपको सुनते हुए ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को सुन रही हूँ। नहीं, आइसक्रीम खाते समय मुझे याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल याद आता है, जिनके साथ हमने समय बिताया क्यों हम उनको भूले, उन्हें भूलना नहीं है। यही मैंने कहा कि उनके साथ बुनी हुई अच्छी अच्छी यादें हम अपने साथ लेके जाए, तो हमारी यादों में तो वो है ना, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता है, बट अच्छी अच्छी यादें हमें जो एंटरटेन करेगी, ये पॉसिबल तो नहीं है। समझो कि किसी माँ का एक बेटा अमेरिका में है, उनका प्यार कम नहीं होता है, वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, फोन से या किसी और तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। कोरोना में कई बार हमें मिलने को नहीं मिला कई लोगों से, बट उनकी दूरियां हमने महसूस नहीं की, वो हमारे पास थे, दूसरे कमरे में थे, 15-15 दिन हम नहीं मिले।
0: बिल्कुल ऐसा हुआ है।
3: सो ये हमें अपने आप को सिखाना होगा कि सफर तो मेरा अकेले का है, साथ में बहुत खूबसूरत यादें हैं, और उन यादों के सहारे मुझे आगे बढ़ना है।
0: तो यादों के सहारे आगे बढ़ना है, और मूव ऑन का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे दोस्त कहते हैं लेट्स मूव ऑन यार, अब तुम बहुत हो गया, मूव ऑन करो, या फिर इस जनरेशन में कई बार हम मानते हैं मूव ऑन इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से, लाइफ बहुत बड़ी है, उसे एंजॉय करना है तो मूव ऑन करना ही होगा। लेकिन जब हम थॉट्स रेगुलेशन के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं,

0: पर्यावरण पे आना है।
1: जो भी समझ में उसको बोलना है
0: बोलिए, जैसे इन्होंने बताया था, अभी आगे बोलो कोई
1: खड़ा करेंगे सभी बोलेंगे, लेकिन
0: कोई भी करे एक शख्स
1: जो आता गलत हो जो भी आता आपको बोलने का। आसपास का परिवेश का ज्ञान,
0: परिवेश का ज्ञान,
1: ज्ञान जानने के लिए पढ़ाई।
0: ठीक है ठीक है।
1: और कोई बहने
0: परिवेश की जानकारी लेनी है अपने को,
1: बहने
0: आसपास का
1: एनीवन।
0: हाँ हाँ, और कोई भाई शिक्षा की सामान्य परिभाषा क्या दी जाती है ये बता दो। अगर आपने हमको सुनाया तो हम कई बार ये परिभाषा ही देते रहते हैं यहाँ खड़े होकर के, तुम्हारे देते हैं ना। शिक्षा की क्या परिभाषा है? सीखना है, परिवेश में रह करके सीखना, कम से कम यही ले लो आपका
1: सबका एक एक उत्तर हो।
0: ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, दैट इज एजुकेशन, इसको शिक्षा कहते हैं। सर्वांगीण विकास हो, ठीक है ना, व्यक्ति के माइंड भाई, उसके मस्तिष्क का, उसके शरीर का, चारों तरफ से, चहुं ओर से, सब तरफ से विकास हो, वो शिक्षा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शिक्षा में जब हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा अच्छा, अपन लोग जैसे अच्छा, तुम ये शिक्षा लेते हो, तुम पढ़ते हो, तुम 12वीं तक आए ना, आप लोग क्यों आए 12वीं तक, क्या करोगे आगे जा करके?
1: नौकरी करेंगे सर।
0: आप बोलो बोलो, ये चीज समझनी है मुझे, समझनी
1: सर। केवल गांव का सभी नौकरी करने वाले आप ऐसे पूछेंगे,
0: बताइए ये बोलेंगे, उसको सुनेंगे अपन, समझेंगे क्या करना है 12वीं के बाद, क्या करना है
1: बोलो बोलो,
0: 13वीं के बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना है ये बोलो ना,
1: क्या जो से बोलो, अभी तो मुझे बताए थे ना आप लोग सभी,
0: भाई जो भी करना है बोलो तो सही। मैडम तो सही कह रही है, सही बात है।
1: हाँ भले करने दो, कोई दिक्कत नहीं।
0: तो फिर भैया जब एक ही काम करना है बोलो, चलिए कोई बात नहीं, आपको किसी को एसटीसी करनी है, किसी को बाद में बीएड करनी है, किसी को कुछ करना, मतलब नौकरी ही लानी है बस यही। तो भैया शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सर्वांगीण विकास वस्तु पूरा ही नहीं हो रहा है, नौकरी ही करनी है आप सबको। जैसे मैं मेरे बारे में कहूं, मैं सेवानिवृत्त हो गया तो क्या वो तो नौकरी तो पूरी हो गई, तो क्या मेरी शिक्षा पूरी होगी? तो मेरा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें व्यक्तित्व का जो विकास है वो तो अभी बाकी है। वो आप जीवन में जो कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लिए, अपने विस्तृत उस विचार के लिए, तो वो सारी चीजें इसमें आएगी, तब जाकर के शिक्षा का उद्देश्य तो पूरा होगा ना। आप समझ रहे हो ना, मतलब शिक्षा का मतलब है कि सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना, उसमें नौकरी के एक छोटा सा पार्ट हुआ। नौकरी अगर नहीं लगी तो क्या सब लोग खाली बैठे हैं, ऐसे भूखे बैठे हैं? मैं आपके उद्देश्य की तरफ बढ़ जाता हूं, खाली तो नहीं बैठे ना, सबको मिल रहा है ना। इसका मतलब व्यक्तित्व जब बन जाएगा तो वो शिक्षा के सारे उद्देश्यों की पूर्ति, मतलब व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती है, एक ही चीज नहीं आती, नौकरी ही नहीं आती। चलो व्यक्तित्व में क्या क्या आ जाएगा, अरे भाई नौकरी के अलावा और क्या, अगर नौकरी नहीं दी तुम्हारी शिक्षा नहीं हुई, भाई नौकरी तो एक पार्ट है। अच्छा क्या, मैं वही बात उसी पर, अगर नौकरी नहीं लगती है तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या? चलिए ठीक है, जो भी है, मतलब आपके सर्वांगीण विकास के प्रयास के लिए आप लोग निरंतर अध्ययन रहते हैं और आप परीक्षाएं पास किए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर 100 में से 100 भी आपके अंक आते हैं, अगर किसी कंटेंट में, मेरा हमेशा से यही विचार रहा है टेट से ही, और वो रिजल्ट हमने इधर उधर विद्यालय में जाके देखा कि जो चीज मैं जहां पर 3 साल पहले छोड़ के आया था वहां बहुत अच्छा भौतिक विकास हुआ है, वो सर कह रहे बहुत तगड़ा भौतिक विकास हुआ है। लेकिन समझ के लेवल पर जहां तक जाना चाहिए, मुझे लगता है कि हम लोग नहीं जा पा रहे। छोटा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई, मैं पर्यावरण पर ही आ रहा हूं। एजुकेशन किस लिए? संस्कारों के निर्माण के लिए। एजुकेशन किस लिए? चरित्र के निर्माण के लिए। एजुकेशन किस लिए? आध्यात्मिक विकास के लिए, क्योंकि चारों तरफ विकास करना है ना। अरे भाई आज हमारे पास में समस्याएं क्यों है, हम परेशान क्यों है, क्यों है? क्योंकि हम आध्यात्मिक चिंतन कम कर पा रहे हैं, या तो, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर उसका अध्ययन नहीं कर रहे। भाई आप एक पार्ट को सर ये पढ़ रहे हैं, वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पर्यावरण में लाने की कोशिश करता हूं, चलिए उसमें, कि आपका चिंतन अंदर से भी वो होना चाहिए जो समझ के लेवल को बढ़ाए, और बाहर का वातावरण भी ये होना चाहिए। आप धूप में बैठ करके पढ़ो और यहां बैठ करके पढ़ो, सर्दी में आप धूप में बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा ना,

0: और फिर आपको गर्मी में धूप में बैठा दिया जाए तो नहीं लगेगा। तो उपयुक्त वातावरण तो पढ़ाई के लिए होना ही चाहिए, शिक्षा के लिए होना ही चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए होना ही चाहिए। लेकिन अगर उपयुक्त वातावरण अगर आपके पास में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारा जो ध्यान है वो भटक जाएगा और हम इतना अच्छा सीख नहीं पाएंगे, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे आप, मैं ये कहता हूं कि आज आप 12वीं में आए, 11वीं में आए, कितने साल पढ़ाई को दे दिए प्लस एज 16-17 साल, अगर हमने इस पर समझ नहीं बनाई तो फिर ये कैसे गए ठीक ठाक। तो चारों तरफ से आपका विकास हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बच्चों का साथ साथ हमें भी प्रेरणा दिए हैं और हमारा श्रोता मित्र भी ध्यान से सुन रहे हैं पर्यावरण को लेकर। खासकर हमारे बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, सर्वांगीण उन्नति के लिए पर्यावरण को कितना आत्मसात करते हैं और जागरूकता रखते हैं, वो चीज रखे हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है, जो अपना जो विकास में पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, निभाता है, वो चीज रखेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल के अंतर्गत श्रीमान भूपाल राम पुरोहित जी जो कि भूतपूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपना बात को रख रहे हैं बच्चों का सामने। और आज जब बच्चों के साथ रूबरू हुए हैं, बच्चों के अंदर में बहुत कुछ जानने के लिए जो ललक था, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, उसको और तेज कराने के लिए और कुछ देने के लिए हमारे सर जी को पुनः स्वागत करते हैं। सर, आप बच्चों का जो सर्वांगीण उन्नति के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण कितना आवश्यकता है उसका ऊपर में और कुछ जानकारियां हमारे बच्चों को दीजिए, तो आपको स्वागत करते हैं पुनः।
2: अब मैं लाता हूं आपको, अब ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण ही आपके डेवलपमेंट में सहयोगी होता है। भाई, आपके शरीर का तापमान इन सर्दी के दिनों में नियंत्रित करना है, आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठ करके कुछ पहनते हैं ना ऊपर? क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसका शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है? तो अब आप ये बताइए कि दुष्प्रभाव नहीं पड़े तो ये पर्यावरण जो है ना, ये पर्यावरण ही आपके ऊपर प्रभाव डालता है। सुप्रभाव, दुष्प्रभाव, जैसा भी है। तो आप ये बताइए कि पर्यावरण कहते किसे है? देखिए, इसमें परिभाषा भी है, कोई एक पढ़ लीजिए ताकि अपन उसको आगे डिस्कस करते हैं। पढ़ लो भैया, किसे कहेंगे पर्यावरण? यही पढ़ना है। वही एक व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ो,
3: तुम पढ़ो,
2: पढ़ो, पढ़ो, पढ़ लो बेटा।
4: किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक घटक सम्मिलित
2: है। देखिए, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और जो प्रकृति जो उस जीवित व्यक्ति को प्रभावित करती है बाहरी तौर पे, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि वो आपके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करेंगे, अगर वो शुद्ध हुआ तो। देखिए, यहां ये चीज खास आती है, ये अगर शुद्ध हुआ तो आपको कैसे प्रभावित करेगा? सही रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करेगा। और वो शुद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट में, वेरी गुड। ये नकारात्मक प्रभाव कहां कहां होगा बता सकते हो?
3: बोलो।
2: कोई और, ये नकारात्मक प्रभाव किस जगह होगा?
3: खुद पर। ध्यान से सुन रहे? मुझे जरूर
2: नहीं, नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे तो हम ये समझेंगे कि यहाँ का लेवल ये है, ये बताएंगे इन्हें?
3: अभी तक जितने भी बोले सबका राइट है।
2: हाँ
3: बोलो। हाँ, स्वास्थ्य पर प्रभाव, वेरी गुड।
2: स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव आप बता सकते हैं कि अपने आसपास कहाँ पड़ रहा है, किन लोगों पे नहीं पड़ रहा है, ऐसा बता सकते हैं? कोई जगह बता सकते हैं अपने यहाँ पर?
3: पूरा वातावरण एक उतर आया। हाँ, पूरे चार तरफ।
2: आप अगर किसी क्रशर के पास में रहते हैं, क्रशर होता है ना, क्रशर पत्थर पीसने का, उसके आसपास रहते हैं, उनकी तुलना में आप जो यहाँ पर जो गांव में रहते हैं, उनके और उनके रहने में कोई फर्क है? कितना फर्क है?
3: बहुत फर्क,
2: बहुत बड़ा अंतर है ना। मतलब उनके जो पार्टिकल्स है, उस पर हम कभी जाएंगे, लेकिन उनके पार्टिकल्स उनकी बॉडी पर दुष्प्रभाव डालते हैं, मतलब उनका पर्यावरण वहां का गड़बड़ हो रहा है। हालांकि पर्यावरण को बहुत बड़े कंस्ट्रक्ट में देखा जाता है, लेकिन वहां पर गड़बड़ हो रहा है। अपने यहाँ पर पर्यावरण शुद्ध है, अपनी तुलना में जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनका पर्यावरण और ज्यादा शुद्ध है, ठीक है ना? तो ये बात ये तो होगी किसके लिए? ये जो स्थलाकृतिक वस्तुएं हैं, इसके बाद अगर जल है, जल इस नदी में स्नान करने का आपको आप कहेंगे तो आप जाकर स्नान करेंगे? क्यों क्यों नहीं करेंगे? एक जना बोलो, समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है।
3: आप बोलो,
2: क्यों नहीं करेंगे नदी में स्नान?
3: दूषित है, दूषित है।
2: जो से बोलना यार, इनको सुना रहा है, मेरे को नहीं सुनना। दूषित है, क्यों दूषित है? क्या हो रहा है? दूषित क्यों है ये पानी? दूषित क्यों? हम लोग पहले है ना, हम सब लोग कुओं पर स्नान करते थे, हम लोग, मैं खुद, ठीक है ना, आपके जो बड़े बड़े लोग है ना, जो 70-60 के हैं, वो सब इस नदी में हमेशा स्नान करते थे, अब नहीं जाते उधर, दूषित है। प्रदूषित क्यों है?
3: फैक्ट्री का पानी,
2: बोल जोर से बोल रहे हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है और क्या आता है, कचरा भी उसी में डंप करते हैं। देखिए हम लोग कैसे हो गए, यहाँ का जो कचरा है वो कहाँ जाता है? मैंने एक दिन पूछा भी था अपने यहाँ, वो जो आता है ना वो कचरा इकट्ठा करने वाला कचरा ले जा करके, है ना, मैंने एक दिन सर पूछ लिया उनसे, तो वो बता रहे हैं कि कहाँ डंप करते हो, तो नदी में जाकर डंप करते। अरे यार, सबसे बढ़िया जगह, सबसे अच्छी जगह, जीवनदायिनी पानी, और उसके अंदर जाकर के कचरा डालते हैं, उस कचरे का पानी हम पीते हैं। पीते हो आप लोग? नहीं पीते हो? अरे पीते हो, उसमें से पानी नीचे जाता है और वो उस बोरवेल से आता है, तो आप पी क्या रहे हो, उसी पानी को तो पी रहे हो। तो ये पर्यावरण का प्रदूषण कौन कर रहा है? तो भाई देखिए, इसकी शुद्धि के लिए आप जितने अलर्ट रहेंगे, ये शिक्षा ये हुई। अब आप ये कहोगे कि साहब इसमें शिक्षा का क्या रोल, क्या इसमें शिक्षा का रोल है? इसमें शिक्षा का रोल है क्या? क्या रोल है? आप जितना चाहेंगे उतने प्रदूषण को आप समझ के स्तर से स्वयं के लिए तो रोक सकते हो। मैं दूसरों की बात नहीं करता, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, खुद के घर में बचा हुआ अन्न सही जगह पे डाल दो, उसको सही जगह पे दबा दो, भोजन उतना बने जितना आवश्यक है, वाहनों का उतना प्रयोग करो जितना आवश्यक है। तो ये सब क्या होगा, कैसे होगा? जब आप अंदर जाकर के सोचेंगे तब जाकर के ये बात बैठेगी। अब देखिए पर्यावरण में ये जो सारी चीजें है ना, जैविक और अजैविक जितने भी घटक है, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे है, जानवर है, घर है, ये धातु है, अधातु, ये सारी चीजें आती है और सब मिलकर के देखिए आपका जो जीवन है ना, इसको प्रभावित तो यही करता है। तो समझ के लेवल पर जाकर के अगर आप उचित चिंतन करते हैं अंदर का, देखिए ये बाहरी वस्तु है, आप अंदर से अगर चिंतन करेंगे तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि हमको आपकी खाने वाली वस्तुओं में, सब्जियों में, क्या सब्जी तुम पेस्टिसाइड छिड़की हुई खाना चाहोगे? तो हम सब काम तो यही कर रहे हैं, हमारे खेतों में जो सब्जी आ रही है वो कैसी आ रही है, तो फिर हम क्या खाएं? अरे कम से कम स्वयं का किचन गार्डन बना दे, कुएं पर ही बना दे, घर पर बना दे, जितना संभव हो उतना बना दे, तो निश्चित रूप से हम केमिकल के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तो इस तरह से अपने को इसका विकास और विस्तार करना पड़ेगा। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इनके लिए? चलिए इसके साथ साथ ही चलें।
4: चारों ओर का क्षेत्र
2: पर्यावरण, मतलब पहले से ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया है ना कि अपना जो बाहरी आवरण है। अब बेटा जैसे आपने इसको समझा है कि ये चारों ओर जो पाई जाने वाली वस्तुएं और प्रकृति जो भी है ये पर्यावरण कहलाती है। अब जो बाहरी पर्यावरण है जो आपका, जो आपको प्रभावित करता है, देखिए पर्यावरण का जो मूल जो वस्तु है ना वह ये है कि वो किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन, विकास और उसकी जो मृत्यु है ना, इन सारी चीजों को वह परिभाषित करता है। भाई वो जीवित रहेगा तो भी पर्यावरण की शुद्धि जो है, पर्यावरण कितना शुद्ध है वो उसके डेवलपमेंट को वो प्रभावित करेगा, ठीक है। पर्यावरण अशुद्ध है तो वो उसकी जो जीवन की प्रत्याशा है उसको बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो घटक है वो जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन कौन से होंगे पर्यावरण के अंदर? जैविक घटक कौन कौन से होंगे? जिसके अंदर जीव है, ठीक है ना, और जिसके अंदर जीव नहीं है। तो जैसे माइनिंग है आपका, जहां पर खनन हो रहा है, ठीक है, वो उसका अजैविक घटक हो गया। और जैविक घटक क्या हो गया? जो ये जीवित पर्यावरण जो आपको दिख रहा है, पेड़ है, पौधे है, ये सारी चीजें जो आपको प्रभावित करती है, ये सारी चीजें मिलकर के आपके इस जीवन को प्रभावित करती है। अब इसमें जो घटक है इनके खास खास, इसमें मैं आपको बता दूं, एक तो है इसके प्राथमिक घटक, प्राथमिक जो प्रदूषक है, इसमें जो मूल सोर्स से ही इसको प्रभावित कर देते हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाली गैस, अपने जो वाहन ये चलते हैं, जैसे टू व्हीलर चल रहे हैं आपके, फोर व्हीलर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, इनसे जो निकलने वाली गैस है ये कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा निकलेगी उतना ही वातावरण ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा, ये इसका प्राथमिक घटक है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कोई गैस, जैसे आपके जो कण जो है, पार्टिकुलर्स जो है, जैसे आपका क्रशर है, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसके जो कण है वो निकल करके किस प्रकार से आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, आप ये बताइए। जो जैसे जेके सीमेंट प्लांट है, आपको इसका दूसरा पहलू भी मैं बताऊंगा कि जैसे आपका जो सीमेंट प्लांट है उसमें काम करने वाले लोग किस बीमारी से ग्रसित होते हैं ज्यादातर, आपने अगर सुना हो तो बताइए। उनको अस्थमा होता है, सामान्य तौर पे उनको अस्थमा होता है, क्योंकि वो पार्टिकुलर्स आपकी बॉडी में जाते हैं और जा करके उनको सामान्य तौर पे कहे तो सिलिकोसिस हो जाता है। तो जिस तरह के वातावरण में वो रहते हैं वो लोग, उनको उस तरह के प्रदूषण से संबंधित बीमारी उनको होती है। तो हमें करना क्या है वहां पर, जो उसको रोकने के लिए सामान्य उपाय है वो कर लेने चाहिए, जैसे मास्क का उपयोग करना है। भाई अभी जो समझ के लेवल की बात की, तो आप मिनिमम क्या कर सकते हैं वो तो करेंगे ना हम लोग। भाई जैसे जहां डस्टिंग हो रही है उस एरिया से आप थोड़े से दूर रहें, फिर आप कहोगे कि वहां रहने वाले तो वहीं रहेंगे। भाई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर तो वहीं रहेगा ना, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं हो सकता। तो ये फैक्टर तो आपके जीवन में आ जाना चाहिए कि उससे हम कितना दूर रहे ताकि हम सेफ रहे। यानी मिनिमाइज ये तो कर ही सकते हैं कि भाई सीमेंट प्लांट के अंदर रहने वाले लोग अगर आसपास के गांवों के हैं तो कम से कम सीमेंट प्लांट के अंदर तो नहीं रहे। ये क्या हुआ, समझ का लेवल ही तो हुआ। आप अपने आप को प्रदूषण से बचा तो सकते हैं। तो ये इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो निश्चित रूप से आप सामान्य तौर पे उन लोगों की तुलना में जो उस प्लांट के अंदर रहते हैं कम बीमार रहेंगे, सीधी सी बात है। और ये कि ये अन्य औद्योगिक इकाइयों की बात है, आपका एक प्रश्न हो सकता है कि साहब तो फिर विकास के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जरूरी है। हाँ, ये चीज तो हम भी मानते हैं कि वो जरूरी है, पर उसके लिए क्या बीमार होना जरूरी है? तो उसमें ऑटोमेशन आएगा, जो भी है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा, और उसका जो मिक्स, जो संतुलित उपयोग होगा, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को उससे बचा पाएंगे। और उसके जो प्रिकॉशंस है वो आपको लेने होंगे, जैसे मास्क का उपयोग करना है, उस डस्टिंग में कम से कम जाना है, ठीक है ना। तो ये सारा आप करेंगे तो आप इसके दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। अब जैसे पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है, बात मैं वापस कह रहा हूं, जो बच्चे है ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके बॉडी में या लोग जो इस पर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो जो बॉडी है ना, जो रक्त है, उसका जब उसका विश्लेषण किया गया तब जाकर के उसमें कहीं पर सीसा पाया गया, लेड, कई जगह पर वो लोग एनीमिक हो गए, ठीक है। तो वो कहां से आया, वो आता कहां से? भाई उस बच्चे ने तो पेस्टिसाइड नहीं लिया है, मां के दूध के अंदर वो पाया गया है, वो आता कहां से? क्योंकि उस वातावरण से प्रभावित होकर के, उस पेस्टिसाइड से प्रभावित होकर के, दुष्प्रभावित होकर के, वो जो सब्जी आपने काम में ली है उसे प्रभावित होकर के, जो सब्जी आपने काम में ली है, ठीक है ना, वो एलिमेंट तो उसके, जिसने खाया उसकी बॉडी में गया, और वो उस माँ के द्वारा कहा उस बच्चे तक गया ना। भाई बच्चे ना तो सीधा सीधा उसको खाया नहीं था। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। तो आपको कम से कम सावधान होकर के, अगर इन शुद्ध वस्तुओं का जगह आप उपयोग करेंगे, अपने द्वारा ही उत्पादित करके उपयोग करेंगे, जैसे भाई सरकारें कितना क्या करेगी, सरकार तो कर ही रही है ना, लेकिन हमको कितना करना है वो अपने घर में, अपने खेत में इन सारी चीजों का उपयोग करके आप उस दुष्प्रभाव से जो आपको नुकसान कर रहा है, स्वास्थ्य को नुकसान करता है, उससे हम बच पाएंगे। ये तो हुआ इसका प्राथमिक घटक। अब इसको प्रदूषण के जो द्वितीयक घटक है उसमें दो दो फैक्टर मिलकर के उसको प्रभावित करते हैं। भाई किसी चीज के साथ कोई और मिल गई, जैसे पानी है, पानी के अंदर पेस्टिसाइड भी मिल गया, पानी के अंदर आपका जो भोजन का जो जो जो अपघटित जो एरिया अपघटन भी होता है, ठीक है ना, तो वो भी उसके अंदर मिल गया। भाई आपने नाली में कुछ भी डाल दिया पर वो जाकर के आपके नदी में चला गया, और नदी का पानी आपके किसी भी सोर्स से

0: के पेट में चला गया। तो इस तरह से ये जो द्वितीयक घटक है ये भी आपको नुकसान करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि उसकी जहां प्रॉपर डंपिंग है वहां आप स्वयं तो करेंगे भाई, अपने घर के अंदर जो कचरा है ना उसको तो आप अलग अलग करेंगे, उसको तो आप पानी में जाने नहीं देंगे, सूखे को अलग कर देंगे, गीले को अलग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप छोटा छोटा सहयोग करेंगे तो वो आगे जा करके आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन आत्मज्ञान से कैसे होगा ये मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे, आपके खेतों में यूरिया का मिनिमम उपयोग करेंगे, खेतों में आप यूरिया डालते हैं ना, आपका जो ये जो कण वाला जो यूरिया है ना इसकी तुलना में जो आपका नैनो यूरिया उपयोग होता है सब जानते हैं मेरे ख्याल से, वो ज्यादा इफेक्टिव है पर नुकसान भी बहुत कम करता है। उसकी तुलना में भी अगर आपने जीवामृत का उपयोग किया या जो आपका गोबर है ठीक है ना, गाय भैंस का बकरी का जो भी है गोबर है उसका उपयोग किया, तो उससे जो उत्पादित जो फसल है उसको अगर आपने खाना शुरू कर दिया तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए सबके लिए ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और देखिए भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और वहां पर जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप आत्मचिंतन भी कर पाएंगे और आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर पाएंगे। नहीं तो बीमार व्यक्ति कहीं कुछ भी नहीं कर पाता, न घर के लिए उपयोगी है और न वह स्वयं के लिए भी उपयोगी है। इसलिए आपको स्वस्थ रहते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करना होगा और इसके लिए आपको संकल्पबद्ध होकर के आप जो प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को पहचान करके अपनी आत्मा को पहचान करके अगर आप थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, शांत रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है वो उज्ज्वल हो जाएगा। थैंक यू सर।
1: तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और पर्यावरण के साथ साथ हमारा मन बुद्धि और संस्कार कितना जड़ित है, संपर्क में आते हैं, क्योंकि पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी मस्त रहेंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप में चल पाएगा और खुद के लिए, परिवार के लिए और गांव के लिए और राष्ट्र के लिए एक सहयोग का भाव रहेगा। इन सुभावना के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे और किसी बात को लेकर और खासकर आज पर्यावरण स्पेशल में विद्यालयों के बच्चों का साथ रूबरू हुए तो सभी को पुनः धन्यवाद, आभार। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किवली का बच्चों का साथ

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
2: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
2: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
2: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी कब आएगी, इंतजार रहता है। लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है कई बार। अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा जरूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है। खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे।
0: अच्छे हैं?
1: बहुत अच्छे।
0: बहुत अच्छे हैं सरोज जी। वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है, तो हम आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था, तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
0: गाना नहीं छोड़ा।
1: हाँ।
0: आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई हुआ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
0: अच्छा।
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई। लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए किया तैयार, तो मेरे को रोक दिया गया,
0: लड़कियों को नहीं,
1: लड़कियों को नहीं जाना, बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
0: लड़कों को मिलती थी
1: परमिशन? लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं। खेत का भी करते थे, जैसे जमींदारा है 18-20 किले, ज्यादा भी मतलब 80 किले की भी खेती करते थे, काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला। प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
0: बाहर नहीं जाने,
1: बाहर नहीं जाने दिया। हम 4 बहने हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो, गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वे बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से

0: अब फिर हो जाता था, भी बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाने
1: मतलब आपके
0: दिया।
1: माता पिता का भी मन था।
0: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का। वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
1: समाज, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या
0: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया।
1: स्वीकार कर लिया?
0: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार
1: उनकी तो
0: करता।
1: भावना भी थी और आपको।
0: बहुत भावना थी दीदी उसको, तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें तो कहीं भेज दूँ। उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते,
1: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे
0: पूरा
1: आप?
0: सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे। कहते थे वे तो गाड़ी चला, स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं, सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो, कर रही हो, भाई थोड़ा सा अच्छी आदत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी। दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
1: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी, जो गाने को आपने छोड़ा नहीं,
0: हाँ
1: पकड़े
0: ये चीज
1: रखा
0: मैंने
1: है
0: दीदी
1: ना,
0: अकेले में, मैं
1: हिम्मत
0: जैसे
1: रखी
0: रसोई
1: आपने।
0: में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ, देखो इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये
1: बिल्कुल।
0: तो मैं घर में भी करती थी, घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा कोई रोक क्या नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ नहीं
1: नहीं,
0: पाई।
1: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना, तो उन
0: हाँ
1: कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी
0: हाँ
1: हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोजी, मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज
0: ठीक है दीदी,
1: जी।
0: ओम शांति।

0: सूक्ष्म वतन में योग लगावे, सूक्ष्म वतन में योग लगावे, परम धाम बिंदु बन जाव, परम धाम बिंदु बन जावे। हे तरी हो जा मन की चाही, तम योग लगाओ सार।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, एक बहुत सुंदर सा आपने गीत सुना सरोज जी की आवाज में। सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
2: हाँ दीदी,
1: है ना। क्या क्या गीत है ये, क्या आपने सोच के से बनाया, क्या मन में आया आपके?
2: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से।
1: अच्छा।
2: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया।
1: क्या बात है।
2: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है।
1: सही बात है, शब्दों से संगीत,
2: शब्दों से संगीत बनता है।
1: और भावना ईश्वर से,
2: ईश्वर के लिए, मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वे शब्द निकले, उसका संगीत बन गया।
1: क्या बात है। अच्छा सरोचि, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
2: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब देखती हूँ गा देती हूँ।
1: बचपन से भी आप ऐसे गाते थे?
2: हाँ बचपन से ही, जैसे माँ है ना दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोक गीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। तो पहले आटा पीसती थी तो मेरी माँ ऐसे करती थी, तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब शुरुआत होगी। हाँ मन आया मेरे को, मैं गाने लगी बस।
1: अच्छा। तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
2: जी
1: याद है
2: जी।
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो?
2: जी दीदी
1: जरूर। हाँ जी,
2: मैं आपको एक लोक गीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।
0: चीज बड़ी अनमोल जगत में

0: क्या बात है, क्या बात है. मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है. माँ का कर सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी
1: जी दीदी,
0: कभी जब
1: कभी
0: चुकाया
1: नहीं
0: नहीं
1: चुका,
0: जा
1: कोई नहीं
0: सकता,
1: चुका सकता.
0: कोई नहीं चुका सकता. और आपने गाया बहुत अच्छा, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम. ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ.
1: दीदी मेरी माँ है ना,
0: हाँ
1: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ. तो मेरी माँ ने कदे मतलब एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमका या कुछ. मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती.
0: हाँ
1: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना. भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से. देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे.
0: माँ की सेवा.
1: माँ की सेवा.
0: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
1: जी
0: अलग
1: दी
0: अलग चीज़ों में. और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
1: जी दी
0: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया. और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए.
1: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है. जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है. जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है. वो है ना, जिस टाइम भी घर पाओगा ना, या
0: बंद हो गया. हाँ
1: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता. वो
0: अच्छा
1: सोएगा नहीं,
0: अच्छा
1: इतना वो सोए नहीं गा. लेखो देखो, मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा.
0: अपने घर में देखा आपने.
1: हाँ बहुत अच्छा
0: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है.
1: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता, सब कुछ. उसके लिए शब्द नहीं है,
0: छप नहीं है.
1: शब्द नहीं है. वो तो एक सेवा करने वाला, नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको, फिर माँ की सेवा करने के

0: बात कुछ रहता ही नहीं, इच्छा
1: इच्छा ही नहीं
0: बिल्कुल
1: रहती
0: किसी
1: है।
0: की सेवा करने। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा,
1: महसूस किया।
0: महसूस। हाँ, मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना, वो दो लेगा। और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर सब रह गए, बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी। कोई घर चला जाता है, मेहमान आते हैं, तो वो कभी ये नहीं देखती कि भी तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं। भावना से, ऐसे भावना से भाव भी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
1: कितने लक की भी बात है कि ऐसे
0: हाँ,
1: परिवार
0: ऐसा
1: है ना,
0: परिवार नहीं मिल, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: ऐसी भाभी नहीं मिलती।
0: मैं सुनती हूँ गांव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं,
1: अच्छा।
0: मतलब पूरा गांव में। हमारी चाची ताई, मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कहते हैं ना, एक जम्या, तो तने नु समझ ले दसा के बरोबर जान दिया ये,
1: अच्छा।
0: जो तेरी इतनी करता है।
1: 1:10 के बराबर है।
0: हाँ, 1:10 के बराबर है।
1: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
0: हाँ
1: की बुजुर्गों की सेवा से मिलती है,
0: दीदी, हमारे घर
1: किसी
0: में
1: और
0: ना,
1: चीज से
0: मैं
1: नहीं मिल
0: आपको
1: सकती
0: एक छोटी
1: कभी।
0: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
1: अच्छा।
0: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना। तो बाबा, मैं नुकू, मेरा भाई इतना बागवान, इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मतलब तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
1: कोई
0: बताऊं
1: कमी
0: कि
1: नहीं।
0: किसी चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया, हमारा बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा। आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो, गांव का एक राजा बनता है जब भाई, कोई सरपंच बनता तो राजा ही बनता है। उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
1: मदद की ना उन्होंने,
0: मदद की
1: सब की।
0: लोगों की। वो अभी नू नहीं देखता अभी तेरे घर में। देखो, मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तू सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से, मतलब मैं कहूँ ना जान जिगर जो माँ दूध पिलाओ ना, लेकिन मैंने अभी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
1: इतना ही प्यार है।
0: हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
1: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
0: मेरा छोटा भाई है, मेरे से,
1: कितना छोटा है
0: मेरे
1: आपसे?
0: से 5-6 साल छोटा उसका।
1: 5-6 साल
0: हाँ,
1: छोटे हैं। नहीं।
0: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता है, ऐसा भाई संसार में। देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा,
1: देखा नहीं आपने।
0: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है। औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन
1: मेरी बहन है,
0: है। अब जैसे मैं
1: इसलिए
0: आपको,
1: उन्होंने दुआएं भी बहुत
0: हाँ,
1: कमाई
0: तो
1: ना।
0: मैं ऐसे आपको बोल दूं, दीदी हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वे आपको भी अच्छे से बोलेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं। आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं
1: बस आए हैं,
0: भाई।
1: उतना ही
0: वो ये कहते
1: काफी
0: हैं
1: है।
0: कि हमारे ऊपर है ना, जो मेहमान अपने घर आता है ना, वो एहसान करता है आजकल, किसी को आने जाने का टाइम नहीं है। जो हमारे घर आते हैं ना, और आते भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
1: इतना
0: नहीं है,
1: प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना
0: ऐसा कोई
1: चाहेगा।
0: दिन नहीं है। देखो, हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना, उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे,
1: अच्छा।
0: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था,
1: हाँ,
0: लेकिन जब ज्यादा हो जाता
1: कितना
0: था तो
1: सारा
0: थोड़ा
1: काम हो
0: सा,
1: जाता
0: हाँ,
1: है।
0: बहुत हम उसको ना, मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया, अभी इतने बच्चे हैं, हमें
1: हाँ,
0: सारी बहनों के 11 बच्चे सब
1: सब आ
0: छुट्टी
1: जाते
0: में,
1: होंगे साथ
0: तो
1: में।
0: उसके बहन भाई सब उसकी, मतलब इतना प्यार वहां मिलता था। मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। आप देखो, 24 बच्चे रखने, तो क्या
1: बहुत
0: आज के टाइम में तो दो बच्चे भी रखने
1: बहुत
0: मुश्किल
1: बहुत काम होता है
0: है
1: उसमें,
0: ना। और मेरे
1: लेकिन
0: बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले,
1: अच्छा
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने,
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा मामी से
0: वो
1: और सबसे।
0: छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह देना, आए सागरी आ जा सो जा, नुका मैंने नींद ही नहीं आती थी
1: अच्छा।
0: उसके बगैर, नींद ही नहीं आती थी दीदी।
1: हाँ,
0: उनका
1: इतना
0: खाना,
1: प्यार।
0: मतलब भाभी है ना, चार चार मैस दूध देती थी हमारे घर में। भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना,
0: हाँ, बड़े दिल
1: बड़ा
0: वाले,
1: दिल।
0: फरोक दिल
1: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
0: दीदी,
1: किसी को,
0: मतलब
1: या आप
0: बहन
1: गा गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने,
1: सुनते
0: मेरी
1: हैं।
0: माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को भी पसंद है, आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोकगीत, कोई भजन जो हमारी
0: हाँ
1: श्रोताओं को
0: दीदी,
1: आज आप
0: है
1: सुनाए?
0: जो मेरे से सुनती है वो
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक दीदी, मैं सुना रही हूँ। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे।
1: अच्छा
0: ठीक है
1: जी।
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: चलिए ओम शांति।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे इस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं, अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे डाल की बात कर लेते हैं भाई अच्छी बुरी, लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई तुम अपना वेस्ट ना करो समय, भाई भगवान की बातें करो, भगवान के भजन करो। तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधी करण तब बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तब बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधी है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तब बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान ने रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ, हाँ,
1: कि वो समय हाँ, कहते हैं ना जो हाँ, समय की कीमत नहीं समझता फिर हाँ, समय हाँ, उसकी कीमत भी
0: दीदी। फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं भगवान मिलन के, प्यासे इतने हैं कि एकदम भाग लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा इस चीज का भाई ज्योति की चीज है, वे तो भगवान का रूप है ना ते हैं, लेकिन उसको असली चीज का पता नहीं है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान उस चीज में नहीं है, जो हम लौकिक गीत गाते हैं उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं लौकिक में गाती थी तो मुझे भी नहीं पता था क्या चीज है भाई, गाए जाते थे बस सब गाते हैं, मैं भी गाती,
1: मीनिंग नहीं समझते,
0: मीनिंग नहीं पता था। हाँ मीनिंग का नहीं पता था उसमें, अब ये शब्द का अर्थ का पता चल गया इसमें भाई ये के शब्द है।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे सरोज जी, जैसे आपने कहा कि भगवान का स्मरण करना, समय का सही इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
0: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ 3 बजे उठ कर 1 घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ, तो ऐसे ही भी भगवान मुझे शक्ति दो जैसे भी, फिर जो मैं सुबह सुबह उठ कर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चढ़ने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व तो प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
1: ओके, सकाश माना क्या?
0: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया
0: है ना। जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना। ऐसे वायु जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप मोने देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो जैसे हवा है, हे वायुदेव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
1: शुक्रिया करो,
0: शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्यदेव है, हे सूर्यदेव जैसे सुबह सूर्यदेव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्यदेव देखो कहीं भी आप है ना तो जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सके ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
1: शुक्रिया करते हैं आप, है ना। बहुत अच्छी बात है ये तो, शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
0: क्योंकि
1: जो हमें
0: वायुमंडल है ना
1: प्रकृति
0: उससे वायुमंडल अच्छा होता है, जब हम इन चीजों का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना तो उसमें फिर भगवान का सिमरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा,
1: जिस खुशी
0: दिन,
1: रहती है,
0: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
1: कुछ खाली है।
0: हाँ जो खाली है आज कुछ, कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
1: खाली खाली लगता रहता है,
0: वो अच्छा नहीं लगेगा।
1: अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास सरोज जी जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है?
0: हाँ दीदी
1: कोई ऐसा है?
0: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना कभी अपने पास ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना
1: जरूर जरूर मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

नच गई है मनवाज सुनी मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी, ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लगी है।

0: और दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला, भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गणी नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी 4 लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी। जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली, वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दे दी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडु भंडारा धाम है।

0: पर मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहां पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को,
1: अच्छा
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप असीम बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा,
0: तो कह रहा था इसको मैं है ना भाई इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा लो उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना
0: हाँ
1: है,
0: भावना की
1: रिस्पेक्ट
0: समझ
1: है
0: है
1: ना
0: उसको।
1: उनको।
0: हाँ अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू हो गई है,
1: अच्छा, अरे वाह,
0: उस
1: कितनी
0: पोती
1: बड़ी है वो।
0: पोती 5वें साल में लग गई है।
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो अब पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है,
1: वाह,
0: जैसे तीन
1: क्या
0: होते हैं ना
1: बात है,
0: उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे
0: एक ये
1: संस्कार उनको
0: कृष्णाय
1: मिल रहे
0: वासुदेव
1: हैं।
0: आए, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है,
0: हाँ
1: ऐसे संस्कार बच्चों को
0: और जो अब
1: मिले
0: ये
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता
0: हाँ
1: है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का सरोज जी, बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिव

0: चुनरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी भाई, जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि एक गाना है, संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा,
0: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखें,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाते, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या
0: कैसा,
1: लग रहा
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस
1: नहीं।
0: दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ,
0: संगीत के पीछे पागल हो जाओ। कहते हैं ना, पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: बहुत लेजेंड्स हुए,
0: है ना,
1: और वो तो स्वर कोकिला भारत की,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना,
1: उनसे
0: अनुराधा,
1: इंस्पिरेशन ले
0: अनुराधा,
1: लें।
0: मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं,
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा
0: खाने
1: जाइए।
0: के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी,
1: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते हैं, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज है हमारे साथ उर्मिला श्रीवास्तव जी। आप एक काजरी फोक सिंगर हैं और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है फोक सिंगिंग के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं कि मिर्जापुर से आते हुए ये कजरी फोक सिंगर जो उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने फोक सिंगिंग की फील्ड में किस तरीके से अपना योगदान किया है। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो फोक सिंगिंग की यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, और आपकी ये जो कहानी है हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और यहाँ मैं आई हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है कि मेरा बचपन, मेरे माँ बाप तो तीन मेरे भाई, मतलब हम चार भाई बहन थे, और अब तो सब बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे तीनों भाई और हम, मतलब चारों लोग बिल्कुल अनाथ ही हो गए थे। फिर बाबा दादी थे, चाचा चाची थे, उन्होंने पाला पोसा और जो संभव हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। मैंने भी अपने जीवन में मेहनत किया, ट्यूशन किया, और जब परिस्थितियां खराब हो गई तो अपने भाइयों के लिए जो भी हो सका मदद किया, और हम चारों भाई बहन पढ़ते रहे। हमें बचपन से गाने का बहुत शौक था, किसी का भी गाना सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं मिर्जापुर की हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ, और बाय द वे मेरी शादी भी मिर्जापुर में हुई। तो मिर्जापुर में लोकगीतों की एक विधा कजरी है, वहाँ के कजरी गायन बहुत प्रसिद्ध है। ये कह सकते हैं कि कजरी का उद्गम, कजरी की शुरुआत मेरे मिर्जापुर में ही हुई है। वैसे तो आसपास के जगह में लोग गाते हैं, बनारस में, जौनपुर, गाजीपुर, आसपास भी लोग गाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रज के लोकगीत होली जो है ब्रज में है, तो उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कजरी जो हमारी एक विधा है, लोकगीत की एक विधा है। लोकगीतों के अनेक विधाएं हैं, देवी गीत है, पूर्वी है, चैती है, होली है, कजरी है, खेमटा है, इस तरह से संस्कार गीत है, खेती बाड़ी के गीत, सारे गीत आते हैं लोकगीतों में। लेकिन उसमें जो मिर्जापुर की कजरी है, हमारे चूंकि मिर्जापुर की है तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप यूं कहिए कि हमारे बचपन में जगह जगह, हर चौराहे पे, हर गलियों में, हर घरों में गाई जाती थी। और मुख्यतः जो नागपंचमी का त्योहार होता था उस दिन से शुरू होता था, या ऐसे कहिए तो सावन और भादों के महीने में, जब कजरारे बादल घूमड़ घूमड़ के चारों तरफ वर्षा होती है और पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उस बारिश के दिनों में मदमस्त हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं खुश होगा। तो इंसान खुश होगा तो कुछ न कुछ अंदर से उसके उमंग उठेगी, तो उस उमंग को कैसे व्यक्त करें। तो हमारे जो मिर्जापुर में जो गीत गाई गई, गीत को पहचाना गया, लोगों ने गाया और चिरकाल तक चलता रहा, शुरू से और आज तक चलता रहा और आदि अंत तक चलता रहेगा, तो वो है हमारी बहुत प्यारी सी कजरी, जिस गीत का नाम कजरी है। एक बात और है कि कजरी आप ऐसे कह सकते हैं कि कजरारे बादल से भी लिया गया है, लेकिन एक और इसके सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ विंध्याचल माँ है मेरी, विंध्यवासिनी माँ, उनका नाम कजला देवी है।
0: अच्छा।

0: हम ये कह सकते हैं, वैसे किंवदंतियां तो बहुत सारी होती हैं, कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन जो हम लोग अपने दिल से मानते हैं वो ये कि मेरी माँ विंध्याचल माँ का एक नाम कज्जला देवी है, उनके नाम से ये गीत की। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो मेरे सामने स्वरूप है वो मेरे माँ का है, विंध्याचल माँ का है, तो उनके नाम से गाए जाने वाले गीत को हम कह सकते हैं कजरी। कज्जला देवी उनका नाम, तो उसे कजरी। अब अगर प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति चारों तरफ जब काले बादल घुमड़ घुमड़ के वर्षा करते हैं और सभी पशु पक्षी सभी मदमस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खेत लहलहाने लगता है और सबको आशा होती है कि इस बार हमारी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब एक पक्ष और भी है कि नागपंचमी के दिन जितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो पोखरा समझती हैं, जहां तालाब जिसको कहते हैं, तो वहां से मिट्टी लाती थी क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ मानते हैं। मिट्टी ला के उसको गोला सा, जैसे शंकर जी की पिंडी बनती है, से गोला सा बना के उसमें जौ बोते हैं। तो उसका सेंस ये है कि हमारा घर, हमारा देश, हमारे सब खुशहाल हैं। जब खेती होगी, अन्न उपजेगा, तो हम लोग खुशहाल होंगे, हमारा पेट भरेगा, हम औरों का पेट भरेंगे। तो वो जो जौ बोए जाते थे, जब बोए जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह, जैसे पूजा की चीज हम लोग रखते हैं उसी तरह वहीं पे रखते हैं, और ये यूं कहिए कि पूजा स्थल पे ही हम रखते हैं। रोजाना उसमें पानी भी डालते हैं और रात भर कजरी गाते हैं, रात भर गाई जाती है। सारी औरतें हमारे घर के काम काज करके बाहर निकलती थी अपने चौराहे पे, गलियों में, मोहल्लों में, और वहां पे कजरी गाती थी। तो अपने ये गाने की विधा तो है ही, अब अगर अलग से देखिए तो वो हम प्रार्थना करते कि हमारे खेत खलिहान भी उपजे। तो खेत खलिहान रोज तो हम देख नहीं सकते हैं, तो जो हमने बोया हुआ है जौ, तो उसको हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर जरई, जरई मतलब उसका घास की तरह निकलेगा तो उसको जरई बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो करीब नाग पंचमी से हमारे यहाँ जागरण का एक दिन होता है, तो उस दिन तक गाया जाता है, और जागरण के दिन उस जरई को, मतलब उसको, उनको सुला दिया जाता है, उनको जैसे कुछ पुष्प अक्षत और कुछ खाने की चीज दे होके कि मतलब आज का उनका आखिरी दिन रहता है, और सुबह सुबह औरतें जो है जाके उसको नदी में या तालाब में, जिसके पास जो भी आसपास रहता है, उसमें वो उनमें से सारी जो मिट्टी है वो निकाल देते हैं, और जो जरई है मतलब जो बालियां ऐसे लंबे लंबे रहते हैं उनको इकट्ठा करती हैं। सबसे पहले वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर में चढ़ाती हैं, और मंदिर के बाद अपने से बड़ों को, चाहे वो बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, जो भी भाई हो, या अगल बगल हमारे मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हैं, उनके कानों पे रखते, मतलब कान पे रखने मतलब उनको हम चढ़ा रहे हैं, उनकी हम इज्जत कर रहे हैं, उनको एक तरह से उस आराध्य की तरह मान रहे हैं, क्योंकि भगवान को हमने चढ़ाया और अपने बड़ों को भी हमने वो किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये कजरी का शुरुआत होता है, और जागरण के दिन माँ के वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ पे पूरे रात पूरे देश विदेश के कलाकार वहाँ पे आते हैं और अपने को गाकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और मेरे यहाँ मिर्जापुर शहर में भी जगह जगह हम लोग स्टेज बनाते हैं, औरतें तो गाती हैं अपने अपने गांव मोहल्ले जगह जगह जितना मोड़ होता है लगभग। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पहले से बहुत बदलाव हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन ये समय का बहाव है, हर चीज में फर्क आता है, और हमारे इस कजरी में भी बहुत अंतर आया है। जो गाने हम हर मोहल्ले में चौराहे पर सारे जगह होता था, वो थोड़े अब बहुत कम हो गए हैं। गांव में अभी है, और थोड़े जो पुराने लोग हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हम अभी 75 के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे तक तो अभी है, और लेकिन हमारे से नीचे वालों में हम जब अपनी नजर दौड़ाते हैं तो काफी कम हो गया है। लेकिन ये है, जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी मिट्टी की सुगंध होती है, वो कभी जाने वाली नहीं होती। थोड़े कम हो जाएगी, कुछ दिन तक ऐसा रहेगा, लेकिन फिर वो अपने कुछ दूसरे फॉर्म में, कुछ दूसरे तरीके से वो गाया बजाया जाने लगेगा।
1: जी मैम, अक्सर करके हम देखते हैं कि जब भी ये फोक सिंगिंग की बात आती है या लोक कला की बात आती है, जैसे आपने कहा कि लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ के जो पहनावा, ये सभी चीज़ें बहुत ही दर्शाते हैं। तो जब आपने बचपन से ही इस चीज़ को अपने अपना एक कला या अपना जीवन बना दिया है, तो इस कला के माध्यम से जन जागरण के लिए भी आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं? जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा।
0: बहुत कुछ किया है, और अभी मैं सोचते हैं जब तक जिंदगी है मेरी तब तक करते रहेंगे। अभी तो ये कहें कि हमारे भारत सरकार में बहुत सारी कल्चरल विंग है, कल्चर ऑफिस है या संस्थाएं हैं जो इसको काफी प्रमोट कर रही हैं। जैसे हमारा संगीत नाटक अकादमी है, सांस्कृतिक विभाग लखनऊ है, तो ऐसे ये तो हमारे प्रांत की बात है, फिर दिल्ली में भी है, इस तरह से हर शहर हर प्रांत में तो सांस्कृतिक विभाग है, जनजाति विभाग है, और ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी के अलावा संगीत के और भी बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो वो नए नए कलाकारों की खोज कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो परंपरा है वो टूटने न पाए। तो वो लोग तो कर ही रहे हैं, और जगह जगह मंच बना रहे हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त सावन भादो के महीने में मिर्जापुर में जगह जगह कजरी होती है, बनारस में होती है, और जगह होते हैं। अब ये सिलसिला चल ही रहा है एक दो महीना, तो वो तो कर ही रहे हैं, तो उसमें हम सब की भागीदारी होती है, और जिसमें हम तो सोचते हैं हमारा बहुत ही नैतिक दायित्व है कि हमें इसी चीज में अवार्ड मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खोज खोज के कहाँ कहाँ से टैलेंट ला रहे हैं, और नहीं तो हमें तो लोगों का कहना है, हमें नहीं, लोगों का कहना है, हमको 10-20 साल पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। जब ही आँख खुले सवेरा है, तो आज हम करीब 74 साल के थे, लास्ट ईयर हमें मिला है, तो हम देख रहे हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए कि आदमी में और उत्साह बढ़े, और हमें देख के, हमारे में तो जो उत्साह है, हमको देख के कितने कलाकार ऐसे हैं जिनको कितना उत्साह मिल रहा होगा कि अरे उर्मिला जी को मिला है, अब हम भी ऐसे मेहनत करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो मेहनत केवल अपने ऊपर हमने नहीं किया, हम कॉलेज में रहे 40 साल तक, हम रहे कॉलेज में, आर कन्या इंटर कॉलेज में म्यूजिक टीचर रहे। तो म्यूजिक में तो आप जानते हैं कि क्लासिकल सिखाया जाता है, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ हम फोक भी सिखाते थे, कुछ न कुछ देते थे, बताते थे बच्चों को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर है, तो आज इस चीज का कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग फोक ही करवाते थे, क्लासिकल कम ही करवाते थे। तो मैं शुरू से ही फोक में जुड़ी रही, मेरे बचपन का जो शौक था वो धीरे धीरे बढ़ के रेडियो तक आए। जब मैं इंटर में थी उस समय रेडियो में 68 में थी, और तो रेडियो में दिया, तो रेडियो से हम करने लगे, फिर टीवी में आए, फिर बहुत सारे कैसेट है, रिकॉर्ड है, ये सब बने। अच्छा, क्या होता है कि अभी अच्छा गाता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। दूसरे शहर में गए, फिर दूसरे शहर में गए, दूसरे प्रांत में गए, फिर उसके बाद विदेशों में भी गए। तो ये तो मेरा पक्ष रहा कि हमें मौका मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। कभी जो जैसे पानी का बहाव होता है, कभी रुकता नहीं है, तो ईश्वर की दया थी और माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा थी कि मैं आगे बढ़ते ही कभी मुड़ के हमने पीछे नहीं देखा। पर हमने अपने लिए किया, लेकिन साथ ही साथ

0: परंपरा है वो बनी रहे
1: जी।
0: तो हम कार्यशालाओं के माध्यम से और कार्यक्रम करके या करवा के इस तरह के माध्यम से और जगह जगह छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन करके उनको मिले कि हम फर्स्ट सेकेंड आएंगे, तो ये एक चाव रहता है, उसी बहाने बच्चों को सीखने को मिलता है। तो इस तरह से
1: जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे थे फोक संगीत, ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि क्लासिकल संगीत सीखने का, स्टेज परफॉर्मेंसेस करने का, एक पॉपुलर सिंगर बनने का। तो बॉलीवुड में भी फोक सिंगर, प्लेबैक सिंगर बहुत कम बनते हैं। तो म्यूजिशियंस जो बनना चाहते हैं युवा पीढ़ी, तो उस तरफ ज़्यादा रुझान रहता है क्योंकि उसमें एक कमर्शियल वैल्यू भी है। तो जब आप एक फोक सिंगर के रूप में उनको आप ये चीज़ें सिखा रहे थे, तो कितना आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट देख रहे थे और वो जन जागरण के लिए उनको फोक सिंगिंग को लेकर के कैसे आप उनको प्रमोट कर पाते थे?
0: उनको जब हम सिखाएंगे, उनको पहले तो उसका देखिए उसका अर्थ बताएंगे। बच्चों के क्या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। अभी आपको हम एक गाना ऐसे सुना दें तो आपके समझ में आ भी सकता है, थोड़ा नहीं भी आ सकता है।
1: जी जी जी।
0: हम आपको सुनाएंगे,
1: जरूर गुनगुनाइए कुछ।
0: तो आपको उसका अर्थ भी बताएंगे,
1: है ना,
0: कि इसका क्या अर्थ है। जहाँ तक गुनगुनाने की बात है, कोई बात नहीं है। तो हम आपको दो लाइन देवी की सुना रहे हैं
1: जी।
0: और देखा और आपको ये बताना चाहेंगे कि उसमें देखिए शब्द जो है कितने माने रखते हैं और शब्द का जो अर्थ है और फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है जो मेरे हृदय से निकलता है। तो एक देवी गीत है, माँ की वंदना है।

0: सीधे सीधे शब्द है, लेकिन आप देखिए इसके एक एक शब्द को समझा। मैया झूले, माँ झूल रही है किस पे, चंदन के पालने पे।
1: अच्छा।
0: मैया झूले चनन झूलनवा, और पवनवा, पवन यानी
1: हवा,
0: हवा पवनवा चावर डोलावे ना। तो ऐसा लगता है कि माँ तो चंदन के पालने में झूल रही है और जो हवा है वो पंखा झल रहे हैं, माँ को हाक रहे हैं। तो कितना कितना सुंदर भाव है। आगे की लाइन है, अमृत से पग धोवे बदरिया। ये पानी नहीं है, ये जो जल परसता है ये अमृत है, एक एक बूंद में अमृत है। कहते हैं कि पानी बचा के रखो। अमृत से पग, तो माँ का जो पैर है वो किससे धोया जा रहा है, अमृत रूपी जल से। जो जल है वो अमृत है। अमृत से पग धोवे बदरिया, बादल जो है अमृत से माँ का पैर पखा रही है, रिन धो रही है। रही रही आरती उतारे बिजुरिया। देखिए क्या एक भी चीज आपका लग नहीं रहा है, सब प्रकृति कर रही है। जो बिजली है वो क्या कह रही, रही कि आरती उतारे हैं। रही रही आरती उतारे बिजुरिया, और अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया। जो हमारे बगीचे हैं तो ऐसा लगता है लाल हरा नीला पीला हर तरह के, तो ऐसा लगता है कि फूल माँ को नहीं चढ़ा, अक्षत चढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए
1: सुंदर,
0: कितना सुंदर कल्पना है
1: जी।
0: अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया, और गंध यानी

पवनवा। और जो अक्षतरोरी फूल हम चढ़ा रहे हैं तो आप देखिए फूलों में कितनी खुशबू है, गुलाब का अलग खुशबू है, चमेली का अलग है, तो ऐसे से सारे फूलों अक्ष

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैम, आपने जब ये इतना सुंदर गीत सीखा है, तो वो सबसे पहली प्रेरणा या सबसे पहला इंस्पिरेशन क्या था? कौन सा आपने पहला गीत सीखा था?
1: बहुत सही सवाल। हमसे बहुत लोग, कितने ही लोग पूछते हैं, आपके कौन गुरु हैं? बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता नहीं है। लेकिन ताजुब, मेरे गुरु कौन है? मेरी मिर्जापुर की धरती माँ।
0: ओह, वंडरफुल।
1: क्यों? कि हर जगह कजरी गाई जाती थी। तो एक गुरु थोड़े थे, अनेकों गुरु, मतलब एक झुंड में थे। मतलब वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था, वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था। तो मेरे लिए तो कितने गुरु रहे। तो ये हम बड़े फख्र के साथ कहेंगे कि हम सबको गुरु मानते हैं, बिना गुरु के तो कोई बन नहीं सकता है। लेकिन मेरे मिर्जापुर की धरती माँ, मेरी विंध्यवासिनी नगरी की धरती माँ ही मेरे गुरु हैं। फोक में जो फोक है, उसका हम पूरे अपने मिर्जापुर की धरती को, अपने माँ विंध्यवासिनी को ही गुरु कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है जो क्लासिकल है, जब तक सिखाया नहीं जाएगा
0: जी
1: है। देखिए, डलिया है, बिनते बिनते देखते देखते बिन लेगा, खाना देखते देखते बना लेगा। लेकिन क्लासिकल का एक होता है, जिसे दो और दो दुनी चार होता है, तो जब तक कोई नहीं बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से क्लासिकल में कोई सारे गामा पाध निशा स्वर है, तो उसको कैसे गाया जाता है, कैसे संजोया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो क्लासिकल का जो हमारा गुरु है वही बता सकता है। तो क्लासिकल का तो मेरी कई गुरु रही। नलिनी कालेकल कर बहन जी थी, फिर उसके बाद अमिता दत्त बहन जी थी, और कमला, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी थी, और गुप्ता जी वकील रहे पेशे से, लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे उन्होंने। तो हमारे अनेकों गुरु थे, और जिससे हमें जो भी मिला, बल्कि आप भी कुछ कह देंगे तो हम आपको भी एक छाड़ के लिए मेरे गुरु हैं। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बता देता है, वो भी गुरु होता है। तो आप जिससे भी कुछ भी सीखते
0: हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपके गुरु बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कदम कदम पर, हर जगह पे, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर किसी से। लेकिन जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का मैं एक विद्यार्थी हूँ, उस दिन हमारा सीख खत्म हो जाता है। तो यही, इसी के लिए शायद आपको इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो आप उम्र के इस पड़ाव में भी आप ये सोचते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैम, जैसे आपने कजरी की बात कही, और आपकी जीवन की संगीत की जो शुरुआत है वो फोक सिंगिंग से हुई है, विंध्याचल की माँ धरती के मिर्जापुर से। उसके बाद आपने क्लासिकल में क्या क्या सीखा है?
1: क्लासिकल में हम, उसमें एक निश्चित चीजें होती हैं। जैसे अगर हाई स्कूल में है तो 10 राग है, जैसे यमन है तो भैरवी है, भैरव है, और भूपाली है। तो इस तरह से बहुत से राग होते हैं। तो इंटर में आए तो थोड़ा उसका जो दायरा है बढ़ गया, उन रागों को छोड़ के 12 और राग, उसमें थोड़ा सा और थोड़ी भारी चीजें। जैसे कि हाई स्कूल में सिंपल हम लोग सीखते थे, तो उसमें जैसे विलंबित ख्याल होता है, द्रुत ख्याल होता है, तो वो सीखा। ताने हैं, बोल ताल है, आलाप है, तराना है, ध्रुपद है, धमार है। तो जैसे जैसे आपकी शिक्षा आगे बढ़ती जाती है, आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। इसमें तो सारी चीजें हमने सीखी, और एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं कि क्लासिकल जो सीखता है वो फोक नहीं गा सकता है, या फोक का गायक है तो वो कभी क्लासिकल का मौका मिले तो वो नहीं गा सकता है। एक दूसरे का पूरक रहता है। जो क्लासिकल सीखा रहता है उसको और सहारा मिलता है कि मेड़ खटका मुर्के सब गले से निकलता है, तो वो सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं और हमारे गाने में और निखार आता है। हालांकि जो फोक है वो फोक के ही ढंग से गाना चाहिए, उसमें क्लासिकल मिक्स नहीं करना चाहिए। कहीं पे एक आग चीजें छोटी सी लेके हम छोड़ दें, क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बना हुआ है सेमी क्लासिकल, जो आप देखिए बनारस के लोग गाते हैं, मेरी कजरी गाएंगे, मिर्जापुर की कजरी गाएंगे, लेकिन वो ठुमरी अंग से गाएंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हम लोग सीधे सीधे गाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में

0: मन के, कहने का मतलब है ठहराव के साथ, उसमें कुछ आलाप, कुछ बोल आलाप, कुछ उसमें चीजें क्लासिकल की डाल के जब हम गाते हैं तो वो ठहराव के साथ, ठहर ठहर के, सुंदर समझा के, उसमें क्लासिकल अंग पुट डाल के जो गाते हैं वो ठुमरी अंग से हो जाता है। तो दोनों में केवल यही फर्क है, हम गाएंगे सीधे सीधे, जैसे कि हमारी गांव देहात की औरतें हमेशा गाती हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो शुरू से गाया जा रहा है पारंपरिक ढंग से बस उसी तरह गाती हैं। तो ठुमरी अंग से गाते हैं, जो अभी आपने देखा होगा, अभी अभी हमारे छन्नू महाराज जी की डेथ हुई है, तो वो बहुत अच्छे क्लासिकल की, हमारी गिरजा देवी महान विदुषी कलाकार थी, वो इस सब अंग से, और बहुत सारे जितने भी क्लासिकल के कलाकार हैं वो इसी अंग से गाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं उसी को ठुमरी अंग से कहिए या बनारसी कजरी कहिए। तो इस तरह से हम लोग सीधे सीधे गाएंगे, जो पारंपरिक तौर तरीका है, पारंपरिक सीधे साधे। और बनारस के लोग जो क्लासिकल के लोग हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेहनत को डाल के उसको सुंदर से सुंदर बनाते हैं।
1: जी मैम, जैसे आपने इतने लंबे सफर है बचपन से लेकर के आज 74 इयर्स तक आप गा रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने गीत गाए होंगे, या कुछ ऐसा आंकड़ा है कहीं पे आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए होंगे दूरदर्शन में?
0: 2-4 हज़ार तो गाए ही होंगे।
1: ओह माय गॉड,
0: किसी जगह किसी स्टेज पे कभी कभी 2 ही गाना, कभी 1 ही गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी,
0: कभी 5-10 गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी।
0: कभी कभी हम जो प्राइवेट जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो केवल सुनने के ही उद्देश्य से, केवल मुझे ही सुनना है, तो 40-50 गाने से कम नहीं गाते।
1: ओह माय गॉड, वंडरफुल। मतलब आप 2-3 घंटा नॉनस्टॉप गा लेते हैं?
0: 5-6 घंटा गा सकते हैं, आज भी गा सकते
1: हैं। वेरी नाइस।
0: जरूर उम्र हो गई है
1: जी,
0: 75+ चल रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि लोगों मेहनत करना छोड़ दिया है ना। हम ये नहीं कहते कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं, पर हम लोग जो है, अपने को नहीं कह रहे, हम लोग, कुछ लोग जो बहुत पुराने हैं वो बहुत मेहनत करते थे, और तब हम लोग 5-10 साल तक कोई हम लोग को जाना ही नहीं कि ये उर्मिला श्रीवास्तव कौन है, मतलब हम लोग गाते रहे, कुछ लोग जाने नहीं जाने। आज के कलाकार, आज के लोग हैं, 4-6 गाना अगर सीख लिए तो तुरंत अपने को कलाकार समझते हैं, लेकिन हम लोग 10-20 साल तक अपने को कलाकार नहीं समझे, आज भी नहीं समझते, कलाकार नहीं है, हम तो उनकी पूजा करते हैं भाई, हमारा जो हमारा
1: कला की पूजा, हाँ,
0: कला की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कलाकार है तो भाई चलिए ठीक है। तो पहले और अब में केवल इस बात का जरूर है कि आज हम सबको नहीं कहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। तो आप सोचिए, अभी भी हम करीब 8-10 हज़ार गानों का कलेक्शन मेरे पास है।
1: My God.
0: हाँ, मतलब आपके भी गाने, उनके गाने, उनके गाने, मतलब शौक था हमें
1: उनका, कभी इन सभी चीजों का संकलन करके कोई किताब या ऐसा कुछ करने की, लाइब्रेरी बनाने की कोशिश?
0: नहीं, सोचा, और काफी लोगों ने भी कहा, सोचा भी, और लेकिन काफी समय निकल गया, कुछ हमारे कार्यक्रम इतना बिजी हो गया, इतना थक जाते थे, कॉलेज था, अभी तो 2012 में रिटायर हुए, कॉलेज है, घर है, फिर उसके प्रोग्राम है, और अपने देश में, विदेश में, सारे जगह जाना, और एक एक महीने के लिए 15-15 दिन के लिए जाना, तो ये थोड़ा बहुत हैट्रिक रहा, बहुत थका देने वाला, तो हम उसमें सोच के नहीं कर पाए, लेकिन हमको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि कब जीवन लीला समाप्त हो जाए पता नहीं है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी, हमें थियोरेटिकल काम जो है, और सोच रहे हैं, लेकिन आप बताएं, जब जब सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है, कभी बाहर का कार्यक्रम आ गया, कहीं हमें कार्यशाला लेनी है, तो थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, पर करना है हमको, जाने के पहले हमें चीजें सुरक्षित जो मेरे पास है वो लोगों को दे के बांट के जाना है, और कुछ तो संस्थाओं को हमारे सांस्कृतिक विभाग है, कई बार हमारे डायरेक्टर हैं अतुल द्विवेदी जी हैं, कई बार कहते हैं कि उर्मिला जी हमको कम से कम 100-100 गाने का ही दे दीजिए, मैं आपका किताब छपा दूं। बस इतना मौका नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं है, मौका मिले ना मिले मौका निकालना पड़ता है हर काम के लिए, और मैं निकालूंगी, और जो भी मेरे पास कलेक्शन है, और नहीं 10,000 तो 1,000-2,000 उसमें से छाट के जो बहुत अच्छे हैं लोगों के कलेक्शन हैं वो उसको मैं अपने द्वारा जो है निकालूंगी।
1: बहुत सुंदर मैम, हम भी इंतजार करेंगे आपके उस कलेक्शन को देखने का, क्योंकि यही है कि भारत की विरासत और परंपरा जो आप आने वाली पीढ़ियों को देने वाले हैं। किसी भी कला या संस्कृति अगर जीवित है, वो पारंपरिक रीति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब जाती है वो जीवित रहती है, और उसमें भी नवीनताएं आती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, और एक पेरिनियल रिवर की तरह वो बहती रहती हैं। तो आपने अभी तक कितनी पीढ़ियों को सिखाए होंगे?
0: चौथी पीढ़ी तो जरूर चल रही है। एक बार बॉम्बे में कार्यक्रम देने गए थे
1: जी,
0: तो नाम बता दे, हीरालाल भैया बहुत अच्छा लोक गीत गाते थे, तो उनका हालांकि बिरहा, उनका कई टाइप होते हैं ना, तो बिरहा था, तो उनके साथ तो हमने गाया, उनके लड़के के साथ गाया, और उनके लड़के का लड़का यानी पोता, तो जब मैं एक बार कार्यक्रम कर रही थी वहाँ पे बॉम्बे में, तो एक लड़का मेरे साथ गाया, मतलब मेरे मंच पे साझा किया कि हमने गाया, फिर उसका भी कार्यक्रम रहा, और आके पैर छुआ कि बुआ प्रणाम, तो हमने कहा कि खुश रहो भाई, भाई बुआ दीदी जो भी कहता है, तो बोले आपने हमको पहचाना नहीं, हम जो हीरा लाल जी के हैं उनके बेटे के बेटे यानी पोते हैं, और अपने बेटे को खड़ा किया जो 10 साल का था, और नेक्स्ट टाइम आप आएंगी अगले साल या 1-2 साल बाद, तो मैं इसको आपके साथ गवाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी 3 पीढ़ी तो सामने रही, और चौथी
1: पीढ़ी भी आपके साथ गाने वाली
0: है। सकती है, तो
1: बहुत सुंदर।
0: हमें हमारे लिए बहुत गर्व फील होता है कि हमने 1, 2, 3 और चौथी पीढ़ी भी आ रही है, और जैसे छोटे बच्चे गा रहे हैं तो मेरे साथ गा ही रहे हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चों के साथ बच्चे बनके, बड़े के साथ बड़े बनके, जैसे भी होता है उनको भी लेते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता है कि हम क्लास भी लेते हैं, तो ये हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनको मिल के उनको समझा के, जैसे अभी हमने आपको बताया, जब हम बताते हैं बहुत बच्चे भागते हैं
1: जी,
0: अरे क्या लोकगीत है, एक दिन के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी झलकती है
1: जी,
0: कि हमारा इंतजार करते हैं, तो इंतजार मेरा नहीं करते हैं, वो जो कला हमारी है, जो जिस विधा को हम लेके चले हैं उसका इंतजार करते हैं, मैम आएंगी तो हमें सिखाएंगे, और पहले दिन तो उनका लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया है। तो आप जितना सरल ढंग से, जितने सरस ढंग से आप किसी को बताएंगे, आप सीधे मत लाद दीजिए, आप थोड़ा सा करिए, बच्चों के अंदर से निकलवाइए, हम तो बच्चों के अंदर से भी निकलवाते हैं, भाई अगले दिन तुम्हारा एक लोकगीत हम सुनेंगे, तो कहाँ से, अब उनके पास तो लोकगीत तो है नहीं, वो क्या करेंगे, हमने कहा तुम अपने दादी से, नानी से, माँ से, जो तुम्हारे काम करती है, बर्तन मांजती है, उनको अम्मा कहो, दादी कहो, जो भी कहो, आप एक लोकगीत लिख के लाएंगे, अब आप सोचिए कि कितने लोकगीत हमारे सामने आ जाते हैं, अगर 50 बच्चे मेरे क्लास है तो 50 लोकगीत, और वो जाके घर में बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को, अपने जो भी हैं उनको बताते हैं कि अरे हमारी मैम ने ऐसे सिखाया, हमारे ये देखे सिखाया, और उन्होंने ये मांगा है, हमें एक लोकगीत चाहिए, तो कहीं न कहीं से किसी रूप में हमें उनके अंदर जगाना है। जब वो जग जाएगा ना, आप देख रहे हैं कि गाना बज रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं
1: जी,
0: थोड़ा सा उनको अगर उसका अर्थ मालूम होगा तो गाना ध्यान से सुनेंगे।
1: सही बात है।
0: और फोक में कितनी ताकत है, बॉलीवुड की बात कर रही थी आप ना, बॉलीवुड में जो भी फोक लिया गया है, वो
1: सुपर हिट
0: हुआ है।
1: वो एकदम लोगों की दिल को छू जाती है और उमंग उत्साह को बढ़ा देती है। सही बात कहा आपने।
0: कचरी का उन्होंने लिया है।

0: ये लिया है, बहुत सारे हैं। आपने वो देखा होगा एक बन्नी बना, माई हमारे में तो ये भी है, बन्नी बना, पूर्वी, चैती, होली, सारे रंग हैं। तो बनो तेरी अखियां सुरमे दाने, बनो तेरी अखियां, तो कहाँ से लिया गया है? मेरे फोक से लिया गया है
1: जी।
0: तो जो भी गाना उन्होंने लिया है, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा, कहाँ से लिया है? फोक से लिया गया है।

0: तोरे बंगले पे कहाँ से लिए गए? फूक से लिए गए। तो आपको कौन है, कितने गाने बताए, सैकड़ों गाने, अब तो इस समय
1: समय की सीमा है। और
0: तो जो भी लिया है तो समझ लीजिए लोकगीतों का कोई जवाब नहीं है। हमारी मिट्टी की सुगंध है, मेरी माटी की खुशबू है, मेरी जो दादा परदादा दादी पर नानी सबने जो दिया है वो थाती है, हमारी अनमोल धरोहर है, मेरी अनमोल रतन है कह लीजिए। तो फोक के लिए तो भाई मेरे दिल में क्या क्या होता है क्या बताएं
1: जी। मैम अब ये बताइए कि वो वक्त जब आपको फोन आया कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा और आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं और आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उस पल के बारे में बताइए कि कैसा ये चयन हुआ और वो जर्नी कैसी रही आपकी, वो प्राउड मोमेंट के बारे में।
0: बहुत ही रोमांचकारी, देखिए मेरे आपसे बात करें मेरा मन भर गया है, पता नहीं हम आगे बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप सोचिए कि दो चार दिन पहले तो हमारे मंत्रालय से फोन आया था कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसको चुरा के रखे, चुरा के मतलब कि हमने किसी को बताया ही नहीं। तो खबर तो थोड़ा थोड़ा थी कि जब ये 22 अप्रैल का दिन था, 22 अप्रैल 2024 को हम लोग को बुलाया गया, जितने भी अवार्डी थे, दो बार में हुआ है, आधे लोग एक बार में आधे लोग का बाद में हुआ है। तो जिस समय सुना हमें जाना है और इसके पहले जिस दिन अनाउंस हुआ है, आपको हम क्या कहें कि वो पल मेरे आंखों के सामने जैसे कि चलचित्र की तरह घूम गया है कि

0: इतनी खुशी, इतनी खुशी। रात को करीब 11:30-11 बजे अनाउंस हुआ है और मेरे सारे परिवार वालों का फोन, सबकी बधाइयाँ ये, और रात को ही पत्रकारों का फोन आने लगा और उनका पूरी रात हम जगे। शायद एक आग झपकी हमने लिया होगा तो लिया होगा। और सुबह सबसे पहले हम माँ विंध्याचल माँ के दरबार में गए, उनके चरणों को छुआ। माँ आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, बहुत बड़ी चीज दी है। भारत का 4 सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कारों में से हमें एक दिया है, इससे बड़ा हमें क्या मिल सकता है। और मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। और उस दिन मेरे घर जब मैं घर आई तो कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ और 30-40 पत्रकार, मीडिया वाले सब, टीवी वाले सारे लोग आए थे। एक सुबह से शाम 8-10 बजे रात तक संभली, देती रही। तो ये तो पल था। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे वो समय आई, तो हफ्तों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, वो लोग मेरे घर आए, सबने सम्मान किया शॉल से, बुके से, माला से, जिसको जो भी बन पड़ता था सबने बहुत बहुत सम्मान किया मेरा। और आखिर वो दिन आया जो हम राष्ट्रपति के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए कि हमारे देश की कितना, मेरे एक एक रोया समझ लीजिए कि वो रहा द्रवित हो गया खुश से। तो मैं दिल्ली पहुंची, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, बनारस जाके वहाँ दिल्ली पहुंची और द अशोका में हम लोग वहाँ पे उतरे। और उनके यहाँ एक दिन पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज एक दिन पहले लिया गया, जिस दिन अवार्ड देना था उनके एक दिन पहले काफ़ी लोगों ने कवरेज किया वहाँ भी। और 22 अप्रैल का वो सुनहरा, मेरे लिए सुनहरा दिन था जबकि उनके यहाँ जाना था और हम लोग समय पे गए वहाँ जाना। राष्ट्रपति भवन में तो बाद में गए, जब राष्ट्रपति भवन की सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो वहीं से ऐसा लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के राजा महाराजा जैसे पहले होते थे, तो वो तो हमारे लिए राजा ही तो हैं। तो वो क्षण का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इतना सुंदर लगा, इतना मन में उमंग, उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे दो बेटे, दो लोग को अलाउ किया गया था, तो बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा विशाल, ये दोनों मेरे साथ थे और हम लोग साथ में गए। अपना एक निश्चित सीट था जहाँ हम लोग पहले से पता था, वहाँ हम लोग बैठे और वो राष्ट्रपति जी आई तो ऐसा जैसे बिगुल बजता है, जैसे पहले के राजा महाराजा आते थे तो वैसे ही हमारी रानी कहिए, राजा कहिए, उस तरह से उनका पदार्पण हुआ। और एक एक शरीर का रोया रोया जैसे कि रोमांचित हो गया। तो बिना मिले हमें इतनी खुशी हुई, उनको देख के इतनी खुशी हुई कि आज देखिए हमारी राष्ट्रपति महोदया कहाँ थी और क्या उनके अंदर कितनी बड़ी टैलेंट थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से
1: एक रतन को चुन करके निकाल के सिंहासन पे बिठाए हैं
0: और इतने बड़े पद पे, इतने बड़े सिंहासन पे बैठी। तो पहले तो हम प्रणाम करते हैं उस देवी को कि उनकी तो जर्नी आप लोग को मालूम है, हम क्या बताएं कि कितने कठिनाइयों से गुजरते हुए उनकी
1: जी
0: जिंदगी बीती। और वो पल था जबकि बारी बारी से बुलाया गया और जब मेरा नंबर आया तो हम भी अपने जगह से जब गए तो आपको पता ही है सब आगे सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे थे, हमारे मोदी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जयशंकर जी जो विदेश मंत्री वो, और सारे मंत्री लोग बैठे थे, बहुत को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, सभी लोग बैठे थे। और हाँ, उस समय का एक हम आपको वाकया बताते हैं।
1: हाँ जी जरूर।
0: हमने अभी उनके जन्मदिन पर ये बात शेयर की थी, हमने फेसबुक पे साझा किया था कि जब हमने ऐसे नमस्ते भाई सबको सबने नमस्ते किया, हमने नमस्ते किया और हाथ भी नमस्ते करने के बाद हाथ तो जनरली नीचे ही चला आता था ना, मेरा हाथ नीचे आया, मेरा क्या और सारे मंत्रियों का आ गया नीचे। और आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताएं, मेरे मोदी जी का हाथ, वो हाथ जुड़ा का जुड़ा रहा, इस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा था, जो उन्होंने नमस्ते के लिए जो जुड़ा हुआ था हाथ, वो इतने आदर भाव से उनका हाथ जुड़ा ही रहा। मैं उनके पास से पूरे पास से ऐसे गुजरती चली गई, सबके हाथ नीचे, मेरे भी हाथ नीचे चले आए, लेकिन मोदी जी का हाथ नीचे नहीं आया। मैं आपको भी तस्वीर दिखाऊंगी। और उसके बाद से उनके तरफ से पीठ होते हुए तब हम राष्ट्रपति के तरफ बढ़े हैं, तो उनका हाथ नीचे आया होगा, हमने नहीं देखा। तो वो क्षण हम तो भूल नहीं सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पहुंचने के पहले जो हमें ये बहुत सुंदर सा एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, मेरा मन बिल्कुल रोमांच से भर गया। फिर मैं आगे बढ़ी और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास मैं खड़ी रही। मैं तो एक पल तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही में खड़ी हूँ लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ा कि मेरे सामने वो थी। मैंने नमस्कार किया, उन्होंने किया, बधाई दिया, कुछ और भी शब्द बोले लेकिन वो शब्द मेरे कान में सुनाई नहीं पड़ा। खुशी के मारे, खुशी और रोमांच के मारे उन्होंने कुछ और कहा जरूर लेकिन हमने सुना नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहले एक, आपने देखा हुआ पद्म का एक बहुत बड़ा सा जो है
1: मेडल,
0: मेडल उन्होंने पहनाया। और उसके बाद
1: एक जो प्रशस्ति पत्र,
0: हाँ, प्रशस्ति पत्र, वो जो बहुत लोग पूछते हैं कि उस गोले में क्या है, तो हम आपको बता दें, और लोग भी सुन रहे हैं, आपको जी, तो मालूम है लेकिन बहुत लोग को जिज्ञासा होती है कि ये जो गोला है उसमें क्या, तो उसमें वो जो प्रशस्ति पत्र रहता है, उसको जैसे बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस तरह से एक प्रमाण पत्र पद्मश्री का उसमें रोल करके उसी में रखा रहता है। ये प्रश्न बहुत लोगों ने हमसे पूछा था तो हमने सोचा कि आज आपसे भी साझा करें। तो वो उसमें रखा जाता है
1: जी।
0: और आपको एक और छोटी सी बात साझा करूं, राष्ट्रपति जी को मैं ऐसे देखती रही, निहारती रही, उनका चेहरा ऐसे ऊपर हमने देखा, तो वो कहती है धीरे से, सामने देखो, सामने फोटो खींच रही है। अरे बापरे, क्या क्या सादगी थी, इतना महान व्यक्तित्व, और वो कह रहा है सामने देखिए फोटो, मतलब कि उनको लग रहा है ऐसा ना कि इसकी फोटो मिस हो जाए तो जिंदगी भर इस पर। तो ये बात एक लाइन है लेकिन आप इसमें भाव सोचिए कि उनका कितना बड़ा वो था कि मैं उनको देख रही थी, उन्होंने अपने को कहा कि वही सामने देखो। तो ये जो महान व्यक्ति है ऐसे महान नहीं बनता है
1: जी।
0: वो गुणों की खान, अपने कर्मों से, अपने गुणों की खान से होता है। तो ये है तो बड़ी छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात है, मेरे पूरे जीवन में अगर मैं उधर ना देखती तो मेरी फोटो जो लोग देख रहे हैं शायद ना आती। तो आप को ये बताए कि जितने महान लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो कौन सी छोटी सी बात आपको जो है परोस देते हैं पता नहीं चलता है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पल था। हम बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके रेडियो के माध्यम से जो मधुबन रेडियो है, अब तो 57 साल से रेडियो में गा रहे हैं, और लेकिन गाने का हमारा रेडियो है, इस तरह से हम स्टूडियो में आके शायद मेरा पहला ही इंटरव्यू होगा, ऐसे तो इंटरव्यू बहुत होते हैं लेकिन आपके मधुबन रेडियो में आके हमने ये हमारा जो आपके साथ
1: जीवन की यात्रा का
0: साझा किया है, ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है। और धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, धन्यवाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति को और भी सारे लोग। हाँ, ये तो हमने बताया नहीं कि वहाँ से निकल के हम रात का जो रात्रि भोज था वो हमारे अमित शाह जी किया था, हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने एक एक लोगों को, मतलब जब हम लोग यहाँ से अवार्ड पाने के बाद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे जितने परिवार वाले थे, मतलब अवार्डीज के परिवार वाले थे, सबसे सब लोग मिले ऐसे लाइन से, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही उनके पास थे, सबसे मिले। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग सीधे अमित शाह जी के घर गए, उनके यहाँ हम लोग का रात्रि भोज था और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अंदर हाथ जोड़ के बधाई दिया और अंदर जाने दिया, फिर हम लोग अंदर गए। तो ये पल जो है हमारे साथ, जो राष्ट्रपति भवन में से गृह मंत्री से लेके सारी चीजें रही, वो मेरे दिल दिमाग आत्मा अमित शाह छोड़ दिया। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मिर्जापुर जनपद, मेरे और भी साथी लोग, सब लोग इससे बहुत ही गर्वान्वित हैं। और एक बार पुनः हम सबको धन्यवाद देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को जो हमें जो है यहाँ पे,
1: धन्यवाद तो हम आगे करेंगे। लास्ट में हमारे बहुत ही क्विक सवाल है, एक रैपिड राउंड हम खेलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि कजरी क्या है, एक लाइन या एक शब्द में आप इसका जवाब दे।
0: एक शब्द में कजरी का अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे, सावन भादो के महीने में बारिश का मौसम जो होता है, कजरारे बादल छाए रहते हैं, उसमें जो उमंग उठती है प्रकृति में और इंसान में सब में, तो उस उमंग को हमें अपने दिल से निकालना है, तो वो किस रूप में निकलता है, वो हमारी कजरी के रूप में निकलता है। कजरी जो गीत है, कजरी जो बोल है, इसको ढुनमुनिया कजरी भी बोलते हैं, तो इस रूप में निकलता है। हम अगर अगर कहा जाए तो यही है
1: जी। भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत तो लोग कहते हैं भारत देश महान ना, तो महान तो महानता में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये जैसे एक एक ये छोटा सा वो है, ऐसे आपका खेल है, कृषि है, और सारी जगह के फोक डांस है, फोक गाने हैं, सबके अपने आंचलिक भाषाएं हैं, आंचलिक लोक गीत है, तो सबको मिला के कोई एक से हमारा भारत नहीं। बच्चा से लेके बूढ़ा तक का पूरा जो उसकी जर्नी है, युवा वर्ग, प्रौढ़ता, फिर ये हम क्या बताएं, कितनी चीजों में ये सारी, चाहे इंडस्ट्री है, हमारे उद्योग है, हमारे और भी छोटे छोटे हाथ करघे वाले हैं, मिट्टी का काम है, तो कुछ भी मतलब क्या बताएं, इतना बृहत है सारे चीज को मिला के
1: भारत।
0: मेरा भारत है, मेरा भारत महान, बहुत बहुत हमें गर्व है कि हम भारत देश जैसे देश में, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है।
1: सुंदर मंत्र। आखिरी में उर्मिला श्रीवास्तव जी कौन है?
0: उर्मिला श्रीवास्तव जी को कौन है ये तो आप ही बताएंगे। बस मैं एक बहुत छोटी सी एक छोटी सी कलाकार हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, अध्यापिका हूँ, और सबके समय पड़े तो सबके सेवा करने के लिए जो हमसे हो सकता है, मतलब तन मन और धन जो भी हमारे पास है उससे सबके लिए समर्पित, यही उर्मिला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप मधुबन रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत प्यार स्नेह और दुलार सहित धन्यवाद। नमस्कार।
1: Thank you.

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना,

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता।

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाऊंगा। साथियों, आज हम लोग विशेष इस एपिसोड के अंतर्गत खास बातें आपसे शेयर करेंगे, जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग करते आ रहे हैं कि नेचुरोपैथी या फिर हमारे डाइट, हमारे लाइफस्टाइल को लेकर हम लोग कितना अवेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोग जागरूक होंगे, वैसे हमारी सारी चीज़ें जो है बनती जाएगी और जागरूक होने से ही हम बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कितने नॉलेज अपने पास रखते हैं। जितना नॉलेज आपके पास होगा, उतना आप जो है खुद को समृद्ध, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। तो जब भी दुख है, दुख का कारण यही है कि ज्ञान की कमी। जब ज्ञान बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा आपके पास और आप उसे अपने अंतर्करण से स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव या ज्ञान को अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक सुकून जो है आपको मिलने लगेगा और अंतर आत्मा भी संतुष्टता फील करेंगे। तो इसीलिए ज्ञान की ज्योति को हमेशा बढ़ाते जाना है, ज्ञान का आलाक जगाते जाना है। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का स्वागत है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का काम करते हैं। और आज हम लोग नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है, जो पिछले कुछ एपिसोड में हमने उनके साथ बातें की, आपको जो गर्मियों के समय में जो विशेष शरबत बनाने की बात बताई थी गुड़ और इमली का, ये जो आपको रिफ्रेशमेंट भी देता है और लू लगने से भी बचाता है। तो इस तरह के बहुत घरेलू जो टिप्स है वो आपको देते हैं। आज हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि हल्दी भी अलग अलग प्रकार की है, काली हल्दी के बारे में आज जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ हमारा जो डायबिटीज़ है या कैंसर है, इनको कैसे हम लोग मैनेज करें, क्या इसके लिए हमें एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना ही होता है या हम लोग इसको पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे
1: जी, नमस्कार,
0: हैं आप?
1: नमस्कार,
0: जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस है उसमें, और ख़ास करके डायबिटीज़ है या फिर कैंसर है, और कैंसर को हमेशा देखा गया है कि वो दूसरे तीसरे चौथे स्टेज पे पता चल जाता है, शुरू शुरू में तो मालूम ही नहीं कुछ सिम्टम्स उसके होते हैं। और डायबिटीज़ भी जब पूरा आगे बढ़ जाता है तब जाके हमको पता चलता है कि ये डायबिटीज़ है। तो ऐसे में हमें अपने जीवन में इनको समझने के लिए प्राइमरी स्टेज पे क्या इसको पकड़ सकते हैं हमें?
1: जी
0: जी,

0: पेन की बात कर लेते हैं या कमर के दर्द की बात कर लेते हैं, गर्दन के दर्द है ये चलो, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं
1: जी,
0: लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में व्यक्ति को जब कब जब पता चलता है, मतलब पहले तो सांस नहीं फूल रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, अब उसको जिस दिन पता चला तो उस दिन एंजियोग्राफी कराने पे ब्लॉकेज कितना मिलते हैं है ना, 70%, 80%, 90%, 100% तक के ब्लॉकेज मिलते हैं। मतलब प्रकृति ने बॉडी के ऑर्गन्स को जो है इतनी ताकत दे रखा है कि एटलीस्ट 50% तक की जब तक उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते,
1: नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो इसलिए अरे लास्ट ईयर तो हम वैष्णो देवी जाके पहाड़ी चढ़ के आए थे, कोई सिम्टम नहीं था, आज कैसे छाती में दर्द होना शुरू हो गया
1: जी,
0: क्योंकि वो ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है और 50% तक डेवलप हो चुका है और उसके बावजूद भी प्रकृति क्या करते हैं, हमारे कोलेट्रल्स खोल देती है, माना जो मेन हार्ट की नली है उसके बाजू में से जो साइड की छोटे छोटे कोलेट्रल्स नलियां जो है, छोटे छोटे नसों में से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। वो जब स्ट्रेस फैक्टर आती है, डाइट में गलती वाला फैक्टर आता है और साइड की नसें बंद होती है, मेन नस तो पहले से बंद था लेकिन साइड की नसों का जब ब्लड फ्लो जिस दिन कम होता है उस दिन छाती में दर्द शुरू होता है और हमें पता चलता है कि मेन नस तो जो है पहले से ही ब्लॉक है, 100% ब्लॉक तो कितने साल से हो पता है कि नहीं है। तो इसी तरह से बॉडी के हर ऑर्गन्स पे हैं। एंड अभी जो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आम व्यक्ति में जो है कैंसर कहीं ना कहीं जो है देखने के लिए जो है, मतलब जो है डायग्नोसिस में आ रही है, बहुत ज्यादा डायग्नोसिस में आ रही है। एंड डायबिटिक भी जो है हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें जब पता है लाइफस्टाइल डिजीज बुला हुआ है कि परिवार में अगर किसी को डायबिटिक है तो उनको होने की, बच्चों को होने की संभावना जो है बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे सोसाइटी में जिन माँ बाप का ऑलरेडी डायग्नोस है, उनके बच्चे क्या उसके प्रति या उनके माँ बाप उनके बच्चों को केयर लेने के लिए कभी जो है अवेयरनेस है क्या?
1: हाँ, वो भी नहीं है,
0: वो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है कि हम हाँ कोई रिस्क फैक्टर है या रिस्क फैक्टर को जो है आगे चल के 30-40 साल की एज में उनकी ना हो तो हमें 30-40 साल समय मिलता है, या चलो बच्चा बड़ा होने के बाद भी 18-20 साल होने के बाद भी जो 10 साल मिलता है उसके लाइफस्टाइल को भी हम अच्छा बना दें। तो ये अवेयरनेस जो है ये जब तक समझ नहीं होगी, और हमने डायबिटिक के लिए नया रिस्क फैक्टर्स जो है हमने जो है और कैंसर के लिए जो नया रिस्क फैक्टर्स हमने जो प्रकृति के नियमों पर आधारित रोग मुक्त दवा मुक्त जीवन जो हमने जिसके बारे में बेस जो उसके प्रिंसिपल्स है उसको लेके हमने जो बार बार डिस्कशंस जो किया है कि घर का खाया हुआ खाना, चबा के खाया हुआ खाना किन गलतियों से जाके पेट में सड़ता है, और उसमें हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को रेज किया जो कि लोग जो है कंसर्न नहीं है कि अगर भोजन खाना चबा के नहीं खाते तो खाना पचने में नहीं जाएगा। लेकिन आज के अगर बच्चों को देखते हैं, न्यू जनरेशन के जो है साल डेढ़ साल दो साल के बच्चे हैं, जब तक मोबाइल में वीडियो चला के उनके हाथ में ना दे दो तो आज वो कोई भी जनरेशन का, मतलब आज की जनरेशन का बच्चा जो है खाना खाने के लिए नहीं बैठेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बड़ों में भी खाना खाने के ऊपर, मतलब हमारे अपने इष्ट को याद करके शांति से बैठ के मन को शांत करके एक खाना खाने की एक विधि थी।
1: बिल्कुल,
0: आज जो टीवी देख रहे हैं, बड़े हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अन सिस्टम से कर रहे हैं। पहले तो खाना चबा के नहीं खाएंगे तो कितना भी अच्छा खाना खा लो पचने में तो नहीं जाएगा। और दूसरा हमने जो सबसे ज्यादा पॉइंट को जो हमने किया कि आम व्यक्ति जो गलती करते हैं, प्रकृति की जो भोजन पाचन व्यवस्था है, अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट माना रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें, चाहे उसमें पोहा आ गया, उपमा आ गया, चाहे ब्रेड आ गया, जो भी, मतलब रोटी चावल आलू से बनी हुई चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बोलते हैं, उसको अगर चबा के नहीं खाते हैं या उसके साथ दही छाछ टमाटर इमली अचार कोई भी खटाई नींबू आदि खटाई खाते हैं तो वो खाना जो है चबा के खाने पर भी ढंग से पचने में नहीं जाएगा। इसके बारे में हमने बार बार डिस्कशंस किए हुए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्ते, कैसे हो सर?
1: बढ़िया बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं?
2: बस हमारे नल सर को भी हमारी तरफ से नमस्ते।
0: जी नमस्ते,
2: और आप आते हैं तो हमको एक खुशी रहती है कि आप जो बताते हैं ये एकदम स्पष्ट बताते हैं, तो इससे सबको सबको समझ में आ जाता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो एक आपके जो हमको बहुत खुशी रहती है, आपकी बातें हमको अच्छा लगता है, हम ये कोई भी घरेलू इलाज जो इलाज होता है हम अच्छी तरह से कर पाते हैं।
1: क्या बात
2: है, ये आपने जो बहुत अच्छी बात बताई सर।

0: आज बिल्कुल सही बात है, आज लोग खाते खाते चल मोबाइल ही में ध्यान रखते हैं, खाना में तक ध्यान नहीं रखते बिल्कुल, कुछ कुछ अंदर खा जाए तो उसको भी पता नहीं चलता मैंने क्या खाया है। तो आज मोबाइल में ज्यादा ध्यान है, इसलिए सर खाना पचता नहीं है, खाना अच्छी तरह से खाते ही नहीं है, और खाने में जो मोबाइल में जो मन होता है तो खाने में कुछ स्वाद नहीं होता सर, खाना खाया नहीं खाया सब रबर है। शुरू से आज ऐसा हो गया, देखो बच्चों को भी मोबाइल शुरू करते हैं, बाद में बच्चे खाना खाते हैं, तो आज बच्चों को भी लत लग गई है, बड़े तो लगती है लेकिन छोटों को भी लग गई है, तो ऐसा नहीं करना है सर। और मैं एक मेरी बात बताऊँ सर, कि मैं 4-5 दिन पहले थोड़ा सा मैं गिर गया था, तो जो घुटन में मुझे घुटन में लगी है थोड़ी, तो क्या है मैंने एक्सरे तो पढ़वाया लेकिन एक्सरे कुछ आया नहीं है, कि कोई क्रैक क्रैक नहीं है लेकिन दर्द बढ़ जाता है कभी कभी, ना बैठा तो वो खड़े होते ही बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए डॉक्टर ने दवाई भी दी है और वो ट्यूब लगाने के लिए मालिश करने की, लेकिन 4-5 दिन हो गया कोई फर्क कभी थोड़ा कम पड़ा है।
1: अच्छा, तो जी आप क्या करें, जो भी तेल है तेल की मसाज करें या ऑइंटमेंट्स लगाएं, तो उसके ऊपर पतला कपड़ा डाल के जो मोटा नमक होता है ना अपना घर में खाने वाला, या खाने वाला नमक हो या मोटा नमक हो या नमक की डली हो, उसको कपड़े में बांध के उसको गर्म करें, या नमक को गर्म करके पोटली में बांधे और उसको उसकी सिकाई करें बाद में
0: जी।
1: तो नमक का जो गुण होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, क्योंकि नमक गर्म होता है ना तो गहराई से उसकी जो गर्मी है ना वो गर्मी बॉडी के गहराई तक पहुंचती है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चालू करता है, और नमक की टेंडेंसी होती है वहाँ का नेगेटिव एनर्जी को भी खींच के बाहर निकालने की कैपेसिटी, और कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसको भी निकालने की कैपेसिटी है, और दूसरा जो खून का थकाव जो जमावट होती है, जैसे बोलते हैं ना चोट लगे तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया है, जमा है, तो आप क्या करें, फिटकरी को जो फुला के प्यूरिफिकेशन करने का तरीका हमने बताया हुआ है, फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए, गर्म तवा पे रख दीजिए, तो वो 5-10 मिनट में जैसे मोम पिघलता है ऐसे पूरा पिघलेगा, और उसके पानी जो है एवापोरेटर के पूरा जो है ड्राई पाउडर बन जाएगा, उसको 15-20 मिनट लगते हैं, और बाद में जब पानी पूरा खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दीजिए और उस फिटकरी का फिर पाउडर बना लीजिए, और इसका आप आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम जो है इसका जो है पानी के साथ आप फांकी मार लें। तो फिटकरी क्या करती ना, शरीर में कहीं भी जमा हुआ नस नाड़ी में जो खून का फ्लो है ना, उस ब्लड क्लॉट को जो खोलने की कैपेसिटी जो फिटकरी में है, ठीक है ना। तो फिटकरी का पाउडर को खाने में प्रयोग करें, आपके जो भी ऑइंटमेंट मसाज जो भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो है नमक का प्रयोग करें, और दूसरा जो है सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, एक टाइम का अगर भोजन आप त्याग देते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर अपनी सब पूरी की पूरी ऊर्जा कहाँ पर फोकस करेगी, शरीर में जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी अपनी ऊर्जा को इन्वॉल्व करती है। इसके बारे में मैंने पहले बताया होता तो एक बार जो है मेरा एक खुद का जो है, मैं खुद कार ड्राइविंग कर रहा था और किसी गलती के कारण जो है गाड़ी जो है 2 राउंड पलटी मार के जो है एक्सीडेंट हो गई थी, बड़ा बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऐसे परमात्मा के छत्रा छाया था कि किसी को जो है मतलब खरोच तक नहीं आई थी। हाईवे में 70-80 की स्पीड में गाड़ी दाहिने तरफ पे 2 राउंड लेके पलट जाना, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे जो मेरे को जो दर्द था तो मैंने जैसे ही प्रकृति के नियम के ऊपर जैसे मैंने स्टडी कर रहा था, तो मैंने क्या किया ना उसी टाइम पे से जो है उसको खाना का जो है मैंने खाना को त्याग दिया, जैसे कुछ भी अनाज का सेवन नहीं किया, सिर्फ पानी और अपना जो दर्द कम करने के लिए काढ़ा होता है ना जो हम बुखार के लिए भी यूज करने के लिए बोलते हैं, दालचीनी पुदीना जीरा लौंग अदरक या अपना सौंठ है, तो ये सब को लेकर जो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना के जैसे उसमें एक आधा नीम का पत्ता थोड़ा हल्दी भी डाल दिया और अनाज नहीं खाया 24 घंटे के लिए, तो मेरा दर्द जो है अगले दिन जो है वो अगले दिन ठीक हो गया था। तुम बोलने का भाव है कि अगर उसी टाइम पे अगर हम फास्टिंग का भी प्रयोग करते हैं, उपवास का प्रयोग करते हैं, एक दिन जैसे हम पानी पर उपवास करते हैं, तो बॉडी की टोटल एनर्जी पाचन से जो ऊर्जा बचता है वो ऊर्जा बॉडी के वहाँ के डेड सेल्स को रिपेयरिंग करके वहाँ का पेन मैनेजमेंट है उसकी रिपेयरिंग के काम में फोकस करती है, लॉ ऑफ नेचर है। हम तीनों टाइम खाना खाते हुए दर्द कम करने की गोली खाते हुए जो फायदा नहीं मिलता है उसमें से अगर 1-2 दिन का हम उपवास कर लें या अनाज या के बदले में सब्जियों पे रह जाते हैं और उसको हीलिंग करने के लिए प्रकृति का सपोर्ट देते हैं, तो कैसे भी पुराने से पुराना दर्द है कम से कम समय में ठीक होने की जो संभावना बढ़ जाती है। आप समझ पा रहे हैं?
0: समझ
1: हाँ, तो अभी आपको मैंने दो तीन टिप्स दिए भोजन के साथ खटाई को
0: चलने में कोई दिक्कत नहीं। जब मैं
1: बोला ना लोकल एरिया में चोट लगी है, हड्डी में चोट लगी है तो उस दर्द को जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ इससे आपको 5-7 दिन में जो है 60-70-80% तक फायदा हो जाएगा, समझ गए?
0: नमक वाला मैं कर सकता हूँ आराम से।
1: जी जी जी जी
0: जी
1: ओके।
0: शायद एक बार बता देना, मैं टेलीफोन रख के एक बार और बता देना सर, वो नमक वाला मैं समझ पाऊँ।
1: हाँ, आप जब फोन नंबर नोट कर लीजिए, किसी को अगर कुछ कुछ समझने में दिक्कत हो तो बाद में आप फोन से भी पूछ सकते हैं।
2: 9
1: आप रिपीट कर दो।
2: 9 9 2 8 2 8 4 0 4 0 9 1 9 1 9 7 9 7। तो ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपका स्वास्थ्य आपके आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 9:22 हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को हम लोग जो बातें कर रहे हैं, सुरेश जी ने भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया। जब कार्यक्रम करते हैं तो नरेश जी अपनी भावनाएं विचार जो है बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताते हैं, कोई मेडिकल टर्म उसमें होती नहीं है। घरेलू हिसाब से आप घर में जिस तरह से बातें करते हैं, अच्छी आपको समझ में आ जाता है। तो आप सभी को ये कार्यक्रम इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि आपको अपनी बातें समझ में आ जाता है और आप भी अपनी भावनाओं को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छी तरह से पूछ लेते हैं। तो ये एक अच्छा शो है जहाँ पर आप अपनी बातों के साथ जो है अपने सेहत के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग शुरू में मैंने कहा था काली हल्दी के बारे में बात करेंगे। काली हल्दी तो नाम भी पहली बार सुना मैंने, हल्दी पीली होती है ये तो हमको पता है। तो ये काली हल्दी का क्या रहस्य है और आयुर्वेद में इसको क्या इम्पोर्टेंस दिया है और ये कैंसर जैसे बीमारी पर भी कैसे काम करता है? जी
3: जी, तो काली हल्दी पे भी मैं डिस्कशंस करूंगा, लेकिन जो है अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है ना। अब हाँ। इसके बाद जो है अब पूरा का पूरा टाइम में से अब ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला है ना। और दूसरा क्या होता है, जैसे माइंड का कनेक्शन जैसे हमारा होता है ना, तो जैसे आजकल जैसे यूट्यूब है, आप जैसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो देखते हैं, और लगातार देखने के बाद हमने क्या किया, एक एक मिनट में जो है हमने मान लो कि 30-40-50 वीडियो देख लिए। अब 50 इनपुट तो हमने डाल दिए, लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे? उसमें मान लो कि कोई काम की भी बात मिली, लेकिन नेक्स्ट सेकंड पे नेक्स्ट मिनट पे आप जो दूसरी वीडियो देख रहे हो, तीसरी देख रहे हो, अब जो लास्ट में 50-100 वीडियोस देख लिए, अब उसके बाद अमल आप किस काम पे ऊपर करने वाले हो? दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। और आज की डेट में यही हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस दिखाते हैं और ये जो दिमाग में जो है कोई डिसीजन लेना या काम करने की जो कैपेसिटी या वर्कआउट करने की जो क्रिएटिविटी की कैपेसिटी जो है ये खत्म कर रहा है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो आज की डेट में जो है बच्चे अभी छुट्टी है, तो जो समय क्योंकि कल से सब छुट्टियां डिक्लेरेशन के 1.5 से 2 महीना है, तो बच्चों को कैसे क्रिएटिविटी काम में लगाएं।
2: सही बात है।
3: स्क्रीन टाइम पे अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि ये अभी जैसे छुट्टियां हो गई तो बच्चों का एक रूटीन था या दूसरों का भी है, तो जो रात को 10 बजे के बाद अगर हम सोएंगे तो बॉडी की ऊर्जा रीजेनरेट कैसे होगी, क्योंकि जो स्लीप साइकिल है 10 से 12 और 12 से 2, ये जो 4 घंटे का नींद में जो है डेल्टा स्लीप में जो है दिमाग जो है 10-10 मिनट के लिए, ये साइकिल में भी 10-10 मिनट के लिए डेल्टा रिदम का स्लीप जाता है, और जो कि हमारे शरीर की जो अगले दिन काम करने की जो तरोताजगी या जो ऊर्जा जो देना है ना, शारीरिक ऊर्जा या दिमागी ऊर्जा जो देता है वो 10-10 मिनट का नींद और पहले 2 साइकिल 10 से 12 और 12 से 2, क्योंकि सूरज के साथ अर्थ के रोटेशन के साथ ये साइकिल चलता है। हम चाहेंगे कि हम 12 से 2, 2 से 4 सो जाए तो साइकिल एक साइकिल तो मिस कर चुके हैं और 12 बजे नींद क्वालिटी आएगी नहीं।
2: सही बात।
3: तो ये एनर्जी जो हम डेप्लीसिएशंस कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का काम कौन करती है? प्रकृति की दी हुई जो ऊर्जा जो है, जब तक वो चालू है तब तक हम स्वस्थ हैं। अगर ये ऊर्जा को हम खत्म कर रहे हैं, और खत्म किससे कर रहे हैं, हमारे दिमागी जो थॉट्स है नेगेटिव है, वेस्ट है, या आज की डेट में जो है इंटरनेट मोबाइल के थ्रू जो जितना ज्यादा हमारे दिमाग की ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं। और दूसरा जो खाना खा रहे हैं, वो खाना हम कितना पेट में सड़ा रहे हैं, जो पच रहा है वो तो हमें ऊर्जा देगा, लेकिन पचाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्चा करने के बाद खाना अगर जाके पेट में सड़ रहा है तो जाके शराब बन रहा है और जहरीला एसिड बन रहा है, और उस जहरीले एसिड को दुष्प्रभाव को संभालने के लिए बॉडी की 300% ऊर्जा उसमें वेस्ट जा रही है। अगर उस ऊर्जा को वेस्ट जाने से हम बचा ले तो जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं, बाकी अदरवाइज सिंगल सिंगल बीमारी के लिए हम जो है कोई हेल्दी या कोई बीमारी ट्रीटमेंट करने के सोचे तो फिर उसका प्रिवेंशन संभव नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस पे जो है अभी जैसे आम का सीजन आया, हमने बताया कि खाना पेट में सड़ने का, जैसे हमने बताया कि जो है एक तो हो गया कि खाना चबा के खाने की आदत को पक्का करो, अगर घर में एक संस्कार लाना है, बच्चों में कोई डिसिप्लिन लानी है, कुछ करनी है, तो उस टाइम पे टीवी देखना, मोबाइल देखना, कार्टून देखना, ये करना सारा करके जो खाना चबा के खाना जो है बहुत ही मना पहला ही स्टेप है कि माइंड को स्टेबलाइज करना और घर में कोई संस्कार लाने की अगर आदत का पहला सीढ़ी है तो खाना बैठ के शांति से बैठ के चबा के खाना सिखाओ। चाहे इसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे 5 से 8 के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, शांति से बैठ के खिलाने के लिए 5 से 6 महीने को पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे कोई एक दिन में परिवर्तन होने वाला आदत नहीं, खुद की आदत बदले और घर में बच्चों को जो है शांति से बैठ के खाना खिलाना सिखाने के लिए चाहे अपना टाइम देना पड़ेगा। एंड इस बात को बिल्कुल पक्का करें और जो है ये डिसिप्लिन को घर में लाने का करें, क्योंकि कोई भी संस्कार धारण करना है, कोई भी बच्चों में जो अच्छाई धारण करना है, तो पहला कि माइंड स्टेबल हो, मेडिटेशन दूसरा चीज सिखाएं, ये टाइम के जो है क्रिएटिविटी कराएं बच्चों से। जो है ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में बच्चों के लिए भी समर कैंप चलते हैं, अपने अपने ब्रांचेस में भी चलते हैं, हेडक्वार्टर में भी बच्चों का प्रोग्राम्स होता है, तो इस टाइम पे उनको जो है आध्यात्मिकता की तरफ जो है उस चीज के ऊपर और कुछ अच्छी चीजें सीखने की तरफ भी उनके माइंड डाइवर्ट करने की जो है जरूरत
2: है,
3: ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आम का सीजन आ गया, फल का सीजन। अब फल को खाने के साथ खाएंगे या अलग से खाना चाहिए?
2: फल को अलग से खाना चाहिए, लेकिन
3: क्योंकि
2: खाने
3: फल
2: के साथ
3: जो है फल पचने के लिए, अगर खाली पेट में फल खा रहे तो 20 मिनट के लिए पेट में प्रोसेसिंग होता है, अगर अनाज खाते हो तो उसका रस बनने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम में 3 से 4 घंटा है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, लेकिन फल अगर खाली पेट में खाएंगे तो कैसे पचेगा? उसको मिनिमम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिनिमम डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, और सेल्फ पचा पचा होता है, 20 मिनट में उसका रस जो पेट में तैयार हो सकता है, और बाद में सीधे छोटे आंत में पहुंच के 1 से 2 घंटे में उसके मिनरल से, फाइबर से, न्यूट्रिशन से सीधे खून में मिलके शरीर को फायदा करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अनाज के साथ मिला के फल खाएंगे तो क्या होगा?
2: सड़ जाएगा।
3: तो जब तक अनाज का पाचन नहीं होगा, फल को भी 3 घंटे से 4 घंटे तक पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सारे अनाज के साथ पड़ा रहना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
3: और पड़ा रहेगा तो अनाज की पाचन व्यवस्था अलग है, फल की पाचन व्यवस्था अलग है, दोनों की टाइमिंग्स अलग है, और दोनों साथ में खाएंगे तो जाके पेट में सड़ना की गारंटी है। सिर्फ आम पेट में सड़ेगा, पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ा देगा,
2: खराब हो गया।
3: तो इसलिए मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप जो है आम का अगर सेवन करते हैं, दूसरे भी फल का सेवन करते हैं, तो आप भोजन से 2 घंटा पहले या भोजन से 4-5 घंटे बाद ही उसका सेवन करें, माना नाश्ता ही आम का कर लें, शाम को 5-6 बजे खा लें, और फल को दूध के साथ ना मिलाएं। आयुर्वेद कहता है ये जहर है, दूध का पाचन व्यवस्था अलग है, उसके साथ 1 कटोरी बर्फ डाल दिया, 1 कटोरी दूध डाल दिया और उसको जो है कबाड़ बना दिया, ठीक है ना, टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, कम क्वांटिटी में महीने में 1 बार या 2 बार ले लिए वो बात अलग है, बच्चे हैं, इच्छा होती है, पीते आए हैं, लेकिन हर रोज हम दूध में फल मिलाएंगे, एक कटोरी बर्फ मिलाएंगे, 1 कटोरी खाएंगे और उसको भी जो है अनाज के साथ खाएंगे, तो डबल डबल गलतियां करते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि तरबूज है, खरबूज है, जो भी फल आ रहा है, एक तो पहले उसको जो है पानी में डालें, उसकी गर्मी निकलने दे, ठंडा हो, और उसके बाद जो है उसको सेपरेटली खाएं, उसको खाने के साथ मिला के या दूध के साथ मिला के खाने की गलतियां ना करें, नहीं तो पूरा का पूरा भोजन पेट में सड़ता है, शराब बनता है और जहरीला एसिड बनता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस बात पे खास ध्यान दें। दूसरा जो है आज की डेट में जो प्रॉब्लम जो कर रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक। मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर को हमने प्लास्टिक के बोतल में डाल के रखा है, कार में है, कार में जो है अगर 2 दिन से ज्यादा वो प्लास्टिक के बोतल में अगर पड़ा हुआ है तो पानी क्या होगा? जब डीमिनरलाइज वाटर है तो एक्सीलरेट होके वो पानी को जो है पानी में से प्लास्टिक को जो है ऑब्जर्व करता है, टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करता है। तो जैसे एक मैं पॉइंट्स को अगर रेज कराऊं, जैसे अच्छे घर हैं, बड़े घर हैं, तो फर्नीचर जो बनाएंगे कौन से लकड़ी से बनाएंगे? जो कि टर्माइट प्रूफ,
2: बिल्कुल
3: वाटर प्रूफ। तो टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ करने के लिए उस लकड़ी को किस में प्रोसेस किया गया है? केमिकल में प्रोसेस किया गया है। तो वो फर्नीचर अपने घर में पड़ा है, अब उस फर्नीचर में से वो जो गैस है, वो गैस जो है उसकी केमिकल की जो है कुछ रिलीज करता रहेगा जिंदगी भर।
2: बिल्कुल।
3: और उस केमिकल को इनहेल कौन करेगा? मतलब हमारे कैंसर के जो कारण है, जो बीमारी के कारण है, माना इतने छोटे छोटे लेवल पे जो माइक्रोप्लास्टिक की बात की, अटेंशन तो है ही नहीं
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है ना। और ऐसे जो ऐसे अच्छे घर है, अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू से भी केमिकल्स की जो है रिलीज हो रही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग खिलौना बनाने के लिए फाइबर यूज करते हैं।
3: हाँ,
2: वो सारी चीजें गंद दो दिन तक ऐसे मतलब बंद, जो है बंद
3: तो, मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि, लेकिन मैं भी उसमें से जो आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप भोजन सड़ाने से अगर आप रोक लेते हैं, आपकी जो है 75% एनर्जी जो आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है, जो खाना खा रहे, घर का खाया हुआ खाना, चबा के खाया हुआ खाना किन गलती से पेट में सड़ता है, वहां पर हमारी बॉडी की 75% एनर्जी खाना सड़ने के बाद वेस्ट जा रहा है। आप उस वेस्ट को जाने से बचाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इसलिए खाना चबा के खाना, और भोजन के साथ जैसे अंकुरित खा रहे हैं आप, उसमें नींबू और टमाटर डाल के खाओ, प्रोटीन रिच डाइट है, पचने में मदद करेगा। लेकिन आप रोटी चावल आलू के साथ आप दही खाओगे, छाछ खाएंगे, इमली अचार खाएंगे, नींबू खाएंगे, खटाई खाएंगे, तो चबा के खाने पर भी खाना पचने में नहीं जाएगा। क्योंकि गर्मी का दिन आया है, लोगों की टेंडेंसी है कि दही और छाछ का जो भरपूर यूज करेंगे, लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि दही की तासीर जो है गर्म होती है, गर्मी के दिन में खाना नहीं चाहिए। और खट्टी चीज को जो है दही की तासीर, चाहे मीठी दही है, ताजा दही है, अरे मीठा दही बोलते हैं, लेकिन उसकी तासीर तो हमेशा खट्टी ही।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप दही और छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो छाछ तो बिलोने वाला छाछ होता है, बिलोने वाला छाछ तो है नहीं, और खट्टा छाछ पैकेट वाला छाछ पी के जो है मैंने देखा है कि यंग बच्चों को जॉइंट पेन हो जाते हैं। तो फिर भी आपको जो भी छाछ मिल रही है, आप खाने से जो है गर्मी से बचना चाहते हैं, छाछ अच्छी चीज है, लेकिन आप खाने से घंटे पहले या दो घंटे बाद यूज करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और दही का भी इस्तेमाल करना है तो सेपरेट करें, दही के साथ सुबह में पराठा खाएंगे, दही के साथ रोटी खाएंगे, दोपहर को दही के साथ चावल खाएंगे, खाने के साथ एक कटोरी दही ले लेंगे, दही हेल्दी होता है समझ के, वो एक्चुअली जाके शरीर में एसिड बना रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, आपको जो पेट में और छाती में हल्की सी जलन की महसूसता होती है, लेकिन वो गलत खाने के सिस्टम के कारण हो रही है, आपको पता नहीं और आप समझ नहीं पाते।
2: सही बात।
3: आप सिर्फ सिस्टम चेंज करके देखिए, उस एक कटोरी दही को जो है आप अलग से सेपरेट खा लीजिए, खाने के साथ ना खाएं, और आप देखिए आपका जो हल्का सा जो जलन होने का जो टेंडेंसी है ना,
2: वो खत्म
3: बिल्कुल होती है, हर एक को होती है, लेकिन किसी को पता नहीं है, कि समझ नहीं कि वो जो है प्रकृति के भोजन पाचन व्यवस्था के विपरीत हम खाने के कारण वो जो है वो खाना पेट में सड़ने के कारण छाती में जलन हो रही है।
2: जी जी जी।
3: तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को बचाइए, और सबसे ज्यादा आपको जो हेल्दी रहना है, शरीर के सब टॉक्सिन्स को मैनेज करना है, सबसे अच्छी बीमारी से करनी है, कैंसर को प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक प्रिवेंशन करनी है, तो हफ्ते में एक दिन का उपवास करिए। महीने में चलो एक दिन का नहीं कर पाते हैं, तो महीने में एक दिन का करिए।
2: सही बात।
3: साल में 3 दिन का उपवास एक बार कर लीजिए।
2: तो आपको समझ में आ गया होगा उपवास कितना जरूरी है।
3: उपवास कैसे करना है वो भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं डिटेल्स में।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही है। निश्चित तौर पे खाने का मैकेनिज्म पेट में जाकर कैसे काम करता है ये आपने समझ लिया। अब इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, साल में 3-4 उपवास कर लेंगे और एक अच्छी बात यह है कि आप खाना चबा चबा के खाइएगा और उसे सड़ने ना दे, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और वेल्दी रहेंगे। आइए बात करते हैं आगे। जी
1: जी, अगर कैंसर को प्रिवेंशन करना है
0: जी,
1: तो सबसे बेस्ट उपाय है, और डायबिटीज को भी अगर प्रिवेंट करना है, जिनको घर में डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, डायबिटीज के आगे ना बढ़े, तो उनको उपवास लंघनम परम औषधम, एक शॉर्ट टर्म का फास्टिंग, अनाज नहीं खाना, प्रकृति की पाचन तंत्र से जो बचा हुआ ऊर्जा जो पाचन के कार्य में इन्वॉल्व होती है, वो ऊर्जा जब डाइवर्ट होके दवाई के साथ या सिस्टम के साथ जब जाती है, तो सूक्ष्म नस नाड़ी में जो रिपेयरिंग करने का काम है या टॉक्सिन हटाने का काम जो है प्रकृति करती है, जिसके ऊपर के हमारे जो है ऑटोफेजी बोलते हैं, जो जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, कि शरीर अपने टॉक्सिन्स को, अपने कचड़े को, अपने कैंसर सेल्स को जो है, अगर 17 घंटा से लंबा फास्टिंग हम कर लेते हैं तो वहां पर ऑटोफेजी शुरू होता है। जैसे हमने उपवास के ऊपर कितने घंटे में क्या फायदा होता है, तो अगर उसको अगर आप समझ ले तो आपका उपवास के महत्व को जो है उसको जो है और समझने में, जो डीप समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम 8 घंटे तक लगातार हम ग्लूकोज नहीं खाते, मतलब कोई भी अनाज या खाना हम सिस्टम को नहीं देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है ना, ब्लड शुगर का लेवल जो है कम होना शुरू करता है। और जैसे ब्लड शुगर का लेवल कम होना शुरू करता है, उसके साथ क्या होता है, हमारे थॉट्स की जो स्पीड है वो बढ़ती है घटती है, हमारे दिमाग के थॉट्स की स्पीड भी जो घटनी शुरू हो जाती है, और बॉडी में कीटोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और एक बार तो जो है 3-4 घंटे तक भूख की फीलिंग तेज आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे 10-11 घंटे हो जाते हैं तो भूख की फीलिंग जो है न्यूट्रल हो जाती है, और भूख की फीलिंग हमें तंग नहीं करती है। उसके बाद जैसे फास्टिंग 12 घंटे तक जैसे हमें एक्सटेंड कर लेते हैं, तो बॉडी के जो फैट सेल्स है, फैट सेल्स जलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब 15 घंटे तक, जब 17 घंटे तक हम उसको फास्टिंग को कर लेते हैं, तो 15 घंटे पे क्या होता है, बॉडी के जो इंटरनल CRP लेवल है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, तो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स में सूजन पैदा करता है, वो लेवल कम होना शुरू कर देता है। अगर 17 घंटे का तक लगातार हमने उपवास करते हैं, तो 17 घंटे के बाद क्या करते हैं ना, शरीर के जो कैंसर सेल्स है, जो ऑटोफेजी हम बात कर रहे थे, तो ये बॉडी के जो टॉक्सिन्स को जो है, बॉडी की ऊर्जा, उसको खाना जब पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो टॉक्सिन्स को पहला रूप में जो है भोजन के रूप में करके या डेड सेल्स को हटाने का काम जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, कैंसर सेल को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है। अगर 24 घंटे तक हम लगातार उपवास करते हैं, तो जो गट लाइन है हमारे स्टोमा का, जो इनर लाइनिंग्स है, वो गट लाइनिंग्स की रिपेयरिंग होती है। अगर 36 घंटे तक का हम लगातार उपवास करते हैं, तो जिनको बोलते हैं ना कि हमारा चर्बी जलता नहीं, पेट की एरिया की चर्बी है, दूसरे एरिया की चर्बी है, तो उस एरिया की चर्बी अगर किसको जलाना है, तो उसको 36 घंटे तक का उपवास और हर महीने एक बार तो उसको जो है कम से कम करना पड़ेगा। अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं, तो ये हमारा डोपामाइन लेवल, माना जो ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर लेवल का जो है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना एंड उसको जो है रेगुलराइज करने का काम करता है। माना जिनको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, उनको कंसंट्रेशन माइंड नहीं हो रही है, या तो फिर दूसरे सारे साइकोलॉजिकल जो हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स है, वो अगर हर 3 महीने में अगर 48 घंटे का उपवास करते हैं, तो उनको उन सब के मेडिकेशन से जो प्रॉब्लम है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन रहता है, इरिटेशन रहता है, वो सारे समस्याएं से लेके इवन के साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है, तो उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। अगर 72 घंटे तक के हम फास्टिंग कर लेते हैं, तो बॉडी की टोटल इम्यूनो सिस्टम जो है, लिम्फाटिक सिस्टम से लेके इम्यूनो सिस्टम से लेके बॉडी के हर सेल्स को जो है उसको रीसेट करने की कैपेसिटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उपवास जो काम कर सकता है, जो शरीर में रिपेयरिंग कर सकता है, जो बेनिफिट्स दे सकता है, दुनिया की कोई भी मेडिकेशन सिस्टम्स नहीं दे सकते। अगर इस बात को आप गहराई से समझ जाए, तो इस बात को कौन प्रमोट करेगा, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी क्या? उनको तो कोई प्रोडक्ट बना के बेचने में फायदा है, तो ये इस बात को अगर लोगों को अवेयर कर दे, अगर लोगों के मन से डर निकल जाए और बीमारी होने की बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी होने की समस्याएं अगर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 80-90-100% अगर
0: कम हो जाए, एलिब्रेट हो जाए,
1: मतलब जो व्यक्ति जैसे भोजन में खाना पेट में सड़ने की दो तीन बातों के ऊपर हमने ध्यान दिलाया, अटेंशन दिलाया, अगर अपने जीवन में गलतियां भी कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उपवास का तरीका कर लेता है, तो मैं गारंटी करता हूं कि उसके जीवन में कोई मेडिकल फाइल नहीं खुलेगी।
0: बिल्कुल,
1: माना फाइल खुलने के रिस्क फैक्टर 80-100% तक उसकी जो है एलिमिनेट होगी।
0: सही बात,
1: तो कैंसर भी बचेगा, होने की संभावना है तो जो करेगी, और कैंसर है या कोई भी ट्रीटमेंट करा लिया है, कोई भी थेरापी लिया हुआ है, फिर भी अगर इन प्रिंसिपल्स को बाद में भी अप्लाई करते हैं तो भी उनको आगे चल के री कैंसर, री प्रॉब्लम होना, या डायबिटिक है तो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना, और सब में जो है प्रिवेंशन का काम कौन करेगा या हेल्प कौन करेगा, दवाई से ज्यादा मदद जो है उपवास, और दूसरा जो है यंग और हेल्दी रहने के लिए मैं और एक बात बोलता हूँ कि सलाद खाने के नियम को कंपल्सरी करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है।
1: अच्छा तो मैं जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कशंस कर रहे थे बहुत अच्छे से जो है ब्लड प्रेशर को प्रिवेंशन भी करेगा और ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट भी करेगा।
0: अच्छा, ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं? उसका दूसरा नाम हाइपरटेंशन दिया।
1: जी जी, उसको जो है मतलब जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो स्ट्रेस बढ़ने से जैसे क्या बोलते हैं कि जो है हाइपर हो गया स्ट्रेस, तो जैसे वो हाइपर माना बढ़ना,
0: बढ़ना,
1: जैसे हम थायराइड के लिए बोलते हैं हाइपर और हाइपो, तो हाइपर माना जो है हमारा थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपो में कम होता है, तो उसके लिए दूसरी मेडिकेशन लगता है, तो हाइपर माना हाई जा रहा है, माना जो है लेवल से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हाइपर टेंशन, ठीक है ना। तो तो दूसरा जो है अभी जैसे मतलब कि सलाद खाने के नियम को अगर कंपल्सन्स करते हैं,
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: जो नेचुरल फॉर्म ऑफ सलाद है, और सलाद को क्वांटिटी में खाएं, क्वांटिटी में खाएं मतलब एक्चुअल जो हमारा जो है सलाद को अगर हम मेडिसिन के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो अगर 60 किलो का व्यक्ति है, 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, 300 ग्राम,
0: 300 ग्राम,
1: तो 300 ग्राम के सलाद जो है एक प्लेट सलाद खाने की जो है एक बार मेजर कर ले कि 300 ग्राम खीरा कितना होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे खीरा खाएं, गाजर खाएं, चाहे
0: कुछ भी खाएं, पर 300
1: ग्राम जो भी सलाद खाएं,
0: 300 ग्राम
1: मतलब कोशिश करें जिनको एक्चुअली डिजीज प्रिवेंशन के लिए काम में लेना है।
0: जी जी जी जी,
1: तो एक बार में नहीं खाए तो दो बार में खाए, मना नहीं है। लेकिन 300 ग्राम के सलाद जो दवाई का, ये नहीं कि 300 ग्राम सलाद खाएंगे उनके खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उनको भूख अच्छे से लगेगी और नॉर्मल खाना खा पाएंगे और उनको सेटिस्फेक्शन भी अच्छी लगेगी।
0: बिल्कुल,
1: और सलाद खाना अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है, मैं जो खाना चबा के खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि सलाद को निगल तो नहीं सकते हो,
0: इसको भी चबाना पड़ेगा,
1: अंकुरित खाओगे तो अंकुरित को निगल तो नहीं सकता, उसको तो चबाना पड़ेगा ना, कंपल्सरी उसको चबाना पड़ेगा, तो वो पेशेंस हमारे पास नहीं है। माइंड मतलब हमारा इतना आउट ऑफ कंसंट्रेशन, इतना भटक रहा है कि हम माइंड को स्टेबलाइज करना या खाने के टाइम पे उसको जो है उसको स्टेबल करना, इवन कि नींद के टाइम पे भी जीरो हमारा थॉट्स होगा तब तो नींद आएगी, इसलिए क्वालिटी नींद नहीं होना।
0: बिल्कुल,
1: वरना आज की डेट में विचारधारा को थोड़ा कम करके माइंड को कंसंट्रेट करना और एक ही बात में फोकस करके रखना जो है आज की डेट में ये जो है ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम जो बोलते हैं ना माइंड हमारे कनेक्टेड है, तो कोई भी चीज लर्निंग हो, कुछ हो, जैसे गुरुकुल है आज भी, कुछ स्कूल से दूसरे जगह है, इवन के स्टाफ को भी मोबाइल यूज करना मना है। ऐसे भी स्कूल्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी, और वहां के बच्चों के जो ग्रोथ है, जो विजडम है, उनका जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ये है वो डिफरेंट ही है, और वातावरण में एक मोबाइल यूज नहीं करने वाला एक वातावरण में ऐसे जाओ कि उसके वाइब्रेशन से अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इवन की अगर मैं लौकिक में बोलूं तो राजस्थान में एक मंदिर है, वो मौनी मंदिर कुछ समथिंग कुछ बोलते हैं, मतलब वहां पर जो गुरु थे वो संपूर्ण मौन में कई साल जो है उन्होंने जो है साधना की हुई थी।
0: बिल्कुल,
1: और वहां पर कोई भी जाए तो उस हॉल के अंदर, उस वातावरण के अंदर जो है आपको बोलने की जो है बोलने का जो है अलाउड नहीं है, व्हिस्पर करने का भी अलाउड नहीं है, पर उसका वाइब्रेशन इतना तेज है, अगर छोटे बच्चे गोद में होते हैं तो कोई भी जगह पे क्या होता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता, और उस वातावरण में जाने के बाद बच्चे को भी जो है बच्चे भी नहीं रोते। उसका इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेडिटेशन रूम में आओ, मेडिटेशन रूम में जाओ, मंदिर में जाओ। घर में भी तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो वातावरण है, उस मेडिटेशन रूम में जो हजारों व्यक्ति जाके, चाहे हमारे सेंटर्स के वातावरण में, चाहे हेडक्वार्टर के वातावरण में आते हैं, कदम रखते हैं, बोलते हैं कि अलग से शांति की महसूसता होती है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो है, एक तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना अपने बच्चों में जो है, उस नियम को आप लेके आओ। ये छुट्टियां हो तो उनको मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की लर्निंग करने के लिए लाओ, और खुद के लिए जो है जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, मोबाइल और फास्ट लाइफ में जो है, सबसे पहले अगर हेल्दी रहना है तो अपना माइंड को कम से कम स्टेबल करने का रीजन तो समझो। हार्मोनल सिक्रेशन भी कब ठीक होगा?
0: वेलकम,
1: जब सुबह उठेंगे। तो अपना डाइट को समझना, प्रकृति का जो उपवास का जो है, रोग निवारण का जो नियम है, सिर्फ दिन भर हम फल खाएं, सलाद खाएं, फिर भी उपवास करना जरूरी है। तो भी एक बार पाचन तंत्र तो आपको आराम देना पड़ेगा, तो ही गट लाइन को रीसेट होगी। हमारे हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा जो बोल रहे हैं कि ये कांजी पियो, वो पियो, तरह तरह के उपाय बताते हैं। मैं बताता हूँ कि आप खाना सड़ने के से ये गलतियां को कम करो, और जो है अपना वीकली वंस या मंथली वंस या साल में एक बार 3 दिन का उपवास,
0: साल में एक बार 3 दिन का उपवास
1: करने के बाद जो वो एक्चुअली 72 आवर्स तक का आपके एक बार टारगेट दोगे, तो बॉडी जो 17 घंटे में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हुआ है, आप 17 घंटे के बाद 20 घंटे में बंद कर दोगे क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो 3 घंटे में बॉडी की क्लीनिंग होगी क्या?
0: नहीं होगी।
1: तो साल में मैं 3 दिन का एक बार टारगेट दे रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो 72 घंटे के 17 घंटे में शुरू हुई प्रोसेस को आप 72 घंटे तक एक्सटेंड करेंगे, तब तो बॉडी की क्लीनिंग होगी। और महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जो है 24 घंटे का उपवास कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष
1: काली हल्दी का बताया,
0: काली हल्दी ये इस पे बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर और ये डायबिटीज के बारे में बातें की, और बॉडी का क्लींजिंग या हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक सिंपल तरीका है कि आप उपवास करते ही चीज़ें सेट होने शुरू हो जाएगी। तो अब काली हल्दी के बारे में बताइए
1: जी। जैसे वैरायटी ऑफ हल्दी आती है, अपने खाने वाली हल्दी तो है ही, और उसमें भी हल्दी अगर यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिले तो उसका जो है औषधीय मूल्य जो है अपने आप ही एक
0: अलग ही है,
1: ठीक है ना। तो हम तेल के बारे में जो होता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं, तेल हमारा प्रॉब्लम करता है। तेल खाने के लिए कम करने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया है, तो अच्छी बात है। रिफाइंड तेल से अपने घाणी से निकाल के तेल यूज करें। और हल्दी में भी जैसे दारू हल्दी आती है ना, जंगली हल्दी आती है, और ये अंबा हल्दी आती है, खाने वाली हल्दी आती है, ऐसे एक हल्दी की वेराइटी काली हल्दी, तो वो ब्लैक कलर ही होता है, अंदर से जो होता है ना पर्पल कलर, ब्लैक कलर होता है। अच्छा, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और भारत में अलग अलग जगह में होना शुरू हो गया है, लेकिन खास तौर पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, उस साइड में जो है
0: ये काली हल्दी का
1: फार्मिंग जो है उसकी की जाती है। और इस हल्दी को ग्रो करने के लिए 8 महीना समय लगता है, जैसे दूसरी हल्दी मान लो कि 4 महीने में हो जाती है,
0: इसको
1: 8 महीना समय लगता है। और ये अंदर से पर्पल कलर की होती है, और उसका जो पाउडर होता है एक थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। लेकिन इसकी जो है कैंसर प्रिवेंशन की जो कैपेसिटी है, जॉइंट पेन ठीक करना हो, चाहे कैंसर को प्रिवेंशन करना हो, या कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, या तो फिर डायबिटीज का प्रिवेंशन करना हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसमें काली हल्दी जो है बहुत ही, इसकी जो है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, जो ओराक वैल्यू बोलते हैं, या तो फिर इसकी जो करकुमिन की जो क्वालिटी है,
0: क्वालिटी है ज्यादा,
1: हाँ, और दूसरे जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिशन है वो आम हल्दी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो इसको काली हल्दी हल्का कड़वा होता है, तो इसको शहद के साथ जो है आधा चम्मच पौना चम्मच की मात्रा जो है हम इसको ले सकते हैं, या पानी के साथ भी फांकी मार सकते हैं। और ये ऑनलाइन से ये सब में अवेलेबल है, नॉर्मली दुकानों में वो सब में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी
0: नहीं,
1: कॉमन अवेलेबिलिटी शुरू नहीं हुई है, तो आप इसके बारे में जरूर से जो है ज्यादा पढ़ें। एंड ये अपने आप में जो है अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और अच्छी चीज है, दवाइयों में हजारों रुपया खर्चा करने से तो जो है 300-400 रुपया अगर हम इस काली हल्दी का यूज, या ऑर्गेनिक हल्दी, खाने वाली हल्दी भी हो जाए ना, ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी अगर आपको सोर्स मिलती है, तो सामान्य सी मार्केट से 100-150 रुपया एक्स्ट्रा किलो की हल्दी का प्राइस देकर वो चीज अवेलेबल हो सकती है। तो आप उसकी भी अगर फांकी मारते हैं, अगर आपको काली हल्दी नहीं मिलता है, तो जिनको भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, जॉइंट पेन को मैनेज करने के लिए है, अंदर की सूजन कम करेगा, है ना, इंटरनल, क्योंकि उसके एंटीऑक्सीडेंट और ओरक वैल्यू से। तो आप नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का हल्दी है तो आप उसको भी आप यूज करिए, आंवले का यूज करिए। कैंसर प्रिवेंशन करना है, डायबिटिक ठीक करना है, तो सुबह में आंवला लेना चालू करो ना, कंपलसरी करो ना, डेली आंवला लेना, ठीक है ना। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, आंवला कर सकता है, लौंग कर सकता है, पालक कर सकता है, टमाटर को सेपरेट खाए तो कैंसर प्रिवेंशन कर सकता है, डायबिटिक ठीक कर सकता है। उसी टमाटर को खाने में, सब्जी में, दाल में नहीं डाल के आप सलाद में खा लीजिए, अलग से खा लीजिए
0: जी,
1: ठीक है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आज हल्दी के जो प्रकार है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, और काली हल्दी किस तरह से कैंसर प्रिवेंशन करता है, डायबिटीज और ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बस उसको जो है आप ऑनलाइन मंगा के यूज़ कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे आपको जो उपवास के बारे में नरेश जी ने बताया है इसका प्रयोग ज़रूर करके देखिए आप, तो जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे, एक बार करके देखिए, है ना। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। और आज हाइपर टेंशन डे है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनको तो रेगुलर गोली खानी पड़ती है, बिना गोली के उनका कंट्रोल हो सकता है क्या?
1: जी, हमने जो सिस्टम्स बताए उसको करें, और उसको कंट्रोल आने के साथ दवाई की मात्रा अपने डॉक्टर के सलाह से कम करें। बिल्कुल जो है, आप अगर इन उपायों को अगर करते हैं, लिवर क्लीन थेरापी है करते हैं, और आप एक टारगेट ले लेते कि मुझे बीपी की जो है बीपी से मुक्त होना है, जब कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, डायबिटिक रिवर्स हो सकती है, तो बीपी ठीक नहीं हो सकती, बीपी ठीक होती है, या तो फिर आपके जो है कम से कम दवाई में या तो सम आमला आयुर्वेदिक चीजों से भी मैनेज हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैनेज करने के बाद अपनी दवाई का डोज कम करें, एंड एक लक्ष्य ले लें, अगर 6 महीने डाइट को मैनेज करना, फास्टिंग करना, दूसरे उपाय को करेंगे, तो उनकी बीपी की मेडिसिन जो है नए हैं तो उनका तो जो जल्दी से जो है विड्रॉल हो सकता है, और जिनका पुराना है उनका आधे से कम दवाइयां हो सकती है। लेकिन चेकिंग करा के अपने डॉक्टर के सलाह से दवाई कम करेंगे, बल्कि बिल्कुल उनसे जो है दवाई से बीपी के प्रॉब्लम से जो है विड्रॉ अपना कर सकते हैं, संभव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है। और आज के दिन इसका उद्देश्य है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के बारे में बताया जाए और इसे कंट्रोल करने के ठीक तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम भी नो योर नंबर्स है, यानी आपका ब्लड प्रेशर कितनी मात्रा में है और कैसे बढ़ रहा है इसको समझें, और फिर इसके लिए आप अलग अलग तरीके अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, नमस्ते, नमस्ते।

0: किताबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है, जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
1: बस मजे में।
0: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
1: मेरा बचपन गुजरात में।
0: गुजरात में कहाँ पर?
1: पालनपुर।
0: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
1: गुजराती छो।
0: सु बात छे। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
1: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
0: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
1: मेरे तीन भाई थे और पांच बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही वहीं बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
0: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप आठ भाई बहनों।
1: आठ भाई।
0: आपका नंबर कौन सा बनता है?
1: मैं तो लास्ट में हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हो, तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
1: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। तीन बहनें बड़ी थी हमारे से।
0: अच्छा तो आपका नंबर सातवें नंबर पर, आठ भाई बहनों में आपका सातवां नंबर।
1: सातवां नंबर। हाँ तीन भाई ऑफ हो गए मेरे
0: बचपन में ही।
1: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे हैं इनके, अटक आ गए।
0: सॉरी, बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
1: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
0: आप आठ भाई बहन में आपका सातवां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
1: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
0: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
1: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे, ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को भी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
0: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
1: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी,
0: क्योंकि आठ भाई बहन है इसलिए।
1: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
0: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
1: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
0: सर्विस किस में करते थे?
1: ये चपरासी की।
0: स्कूल में?
1: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
0: अच्छा तो आप आठ भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, कि भाई नहीं पीना चाहिए?
1: छोटे छोटे थे, क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
0: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
1: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बिचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
0: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
1: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
0: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
1: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
0: नहीं जैसे आपके भाई बहन, ऐसे बड़े भाई बहन?
1: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
0: पिताजी तो व्यसनी थे, लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने? आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
1: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने हम पांच बहने थी, तीन भाई थे, तो फिर शादी शुदा हो गया, तो फिर ये इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी, तो मम्मी इन सबका टेका लेके, सहारा लेके हमारे को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
0: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
1: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी। हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए, कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
0: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
1: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा। हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला, फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल बेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने, फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
0: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते हैं?
1: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां ने एक लड़का।
0: जल के मर गए?
1: तो फिर
0: कुछ हादसा हुआ क्या?
1: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गया। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभियां नहीं संभालती, हमारी छोटी वाली संभालती है।
0: अच्छा, बहुत देखो, कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
1: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
1: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही नहीं भावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
0: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
1: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको। घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी मिल रहा है।
0: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
1: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारा मम्मी पापा यही है बोले।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे। तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
2: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
1: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहे, बड़े होवे ही नहीं।
2: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
1: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके, तो और भी आपके

0: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
1: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर कर के, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
0: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
1: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को काम।

0: ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था। तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
1: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
0: 15-16 साल की थी।
1: 15-16 साल के एज में आपकी शादी करवा दी।
0: तो
1: शादी करके आप सीधे आबू आए?
0: सीधे आबू आए।
1: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
0: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
1: मतलब कैसे? जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
0: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा। मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
1: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
0: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
1: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
0: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, पर मैंने भी डट के सामना करा।
1: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
0: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जी थी मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
1: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
0: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलो। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झीला है।
1: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
0: नहीं देखा था, इन्होंने देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी कि मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे, करते थे।
1: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननंद देर सास ससुर सभी?
0: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला नहीं सारा करा।
1: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
0: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवा में किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके सोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
1: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
0: मैंने 5-6 साल बाद।
1: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया। तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
0: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
1: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोज ही। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
0: हाँ, होता था, बहुत होता था, कोई सगे वाले आते थे करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी, फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
1: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपये लिए मंथली?
0: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
1: ये कितने साल पहले की बात होगी?
0: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के।
1: तो 250 रुपए में सारा ही काम?
0: फिर 550 रुपए ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे, बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
1: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
0: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती। 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती। तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते, बंद करके मैं काम करके आती।
1: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद दियर, फिर इनको कौन संभाल?
0: तो शादी हो गई थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे, इसके आदमी तकलीफें देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको, जेब जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको, कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं ही संभालती हूँ दोनों बहनों को।
1: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: मैं हूं वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
2: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
1: जी जी, अब तो इतने साल हो गए। जो
2: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते हैं हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
1: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी? क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
2: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी सरफ बरफ पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे। आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे पांच लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जानता दे दी थी बेटियों को। देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
1: जी जी, हाँ सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
2: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
1: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
2: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
1: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
2: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
1: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
2: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको। दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
1: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
2: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
1: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
2: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
1: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
2: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
1: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
2: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
1: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
2: एक दो तीन बज जाते थे सोते करते, सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के, फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती है।
1: सुबह 9 बजे?
2: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
1: बहुत काम करते थे, तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
2: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती ही नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
1: खुददारी से जीवन जिया,
2: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
1: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है, काम करना गुनाह नहीं है लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
2: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
1: जी जी, तो आपके जैसे बेटियां भी है तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटियां पढ़ रही है?
2: नहीं, मेरी दो बेटियां ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
1: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
2: एक सातवीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
1: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
2: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे तो फिर इन्होंने बिचारियों ने काम करा दोनों बहनों ने।
1: देखिए पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
2: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
1: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
2: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। छोटी वाली थी, इसने आठवीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई आठवीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
2: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
2: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे, बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
2: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल, तो प्रवीणा जी और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
3: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संघट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। और काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है काम।
2: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
3: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते है। तो ऐसे कुछ मांगते है तो दे देते है, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छोकरते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने। मैंने शान से जी, उन शान से ही वही रहना है मेरे को। इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा अब मत काम करो।
2: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
3: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ, सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुशी थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी, पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी।
2: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटी वाली को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
3: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे कैसे करे अभी सोच रहे, इसकी फीस बीस जमा करनी है और सोच रहे वहाँ तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको चुप्त कर देंगे।
2: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
3: बहुत अफसोस होता है, बहुत कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने।
2: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
3: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
2: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
3: हाँ अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ, मैं मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
2: बच्चे आपका कहना मानते?
3: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे दे, दे एक रोटी दे दे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
2: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
3: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
2: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
2: जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है। जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानते हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इनवाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो। हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से ही आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी, एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने लिखा था।
0: पता नहीं, अब ये तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई। तो मेरी काफ़ी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले, तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा। एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले, तो
0: अच्छा,
1: हाँ बिल्कुल दिल वालों की दिल्ली बन गई।
0: दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: यस टोटली।
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: Sure. So, I come from a business family, and मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो यूएस में सेटल्ड है. तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन, एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा
1: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मेरे को चेक भी कराया था, और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद एमडी है. लेकिन जब सेकंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज़ तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज़ ही ज्यादा समझ
0: एग्जैक्टली
1: आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था, क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्केरी थी, और मेडिकल रूम के होती आई गेस. एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना, तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: और उनको पता
1: कैसे.
0: भी नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, नहीं दे पा रहा है,
1: राइट
0: तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ,
0: नॉलेज नहीं होता।
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जानबूझ के तंग करने के लिए. बट तो यही सिलसिला चला, और

0: हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे। तो जब मैं 9 ईयर्स की थी तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही। तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी उनको ही वापस दिखाया, तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है। फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है। तो तब हम लोग का वहाँ से शुरू हुआ, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से। एंड तकलीफें बहुत रही क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा रही, टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभालें, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी। तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी।
1: नहीं थी।
0: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ। तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, पहले इतना दिक्कत था नहीं। एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था। एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था। एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें थोड़ी छूट गई।
1: टूट गई।
0: राइट। एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफ़ी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया, क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर और ये सब अवेलेबल है। और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
1: अच्छा
0: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
1: वर्किंग थी
0: उसने
1: राइट।
0: मेरा तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी। तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई। अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा।
1: अच्छा
0: इसी वजह से क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी। और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था, उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं।
1: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया ये कब की बात रही होगी?
0: 2010 की
1: 2010 की। बताइए मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए वहीं पे प्रॉब्लम हो गई।
0: बिल्कुल। एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल में कितने
1: बहुत
0: छोटे छोटे होते हैं, फिर भी
1: छोटे
0: सबने इतना सपोर्ट किया। और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं जाके। तो
1: एग्जैक्टली।
0: वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोपा भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी।
1: अरे वाह।
0: राइट, मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मज़े आते थे मुझे।
1: उस समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
0: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से मेरा शुरू, और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
1: क्या बात है।
0: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमीजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा पुश किया टू डू मोर।
1: बेसिकली वो 5 से 5 6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
0: नहीं,
1: आपका
0: क्रिएटिव फील्ड से
1: क्रिएटिविटी
0: मैं,
1: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
0: राइट, मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
1: हाँ तो पता
0: कुछ
1: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बट हाँ, लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है। तो मैंने बस सोचा, वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया, फिर एक विजन एड करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया। एंड देन आई वॉज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 ईयर्स, और उसके साथ साथ मैं काफ़ी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए। और एज आई सेड इट, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है, तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का काफ़ी शौक है। लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था। सबसे पहले हमारी
1: क्या
0: बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ के ऊपर शुरू
1: बात है।
0: हुई थी।
1: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और
0: राइट।
1: मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
0: राइट, यस। तो आई थिंक
1: तो
0: लास्ट, आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
1: हाँ जी,
0: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, सो ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे एंड वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
1: ठीक से कर रहे हो
0: सर्विस
1: कि नहीं कर रहे हो।
0: ये तो हाँ पूछना बनता है। बट
1: ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
0: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से। सो ही हैज इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स। एंड
1: अच्छा।
0: हमारे काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस। तब हम दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए,
1: काम करना चाहिए। बहुत सही।
0: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ। एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल, एंड मेन स्ट्रीम के तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें। तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या
0: यस।
1: बात है। और अभी कुछ आपको है आई साइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
0: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है, जैसे सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता,
1: ओके ओके
0: थोड़ी
1: ओके ओके
0: बहुत लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस।
1: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
0: यस।
1: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर। पीयूष जी,
2: हाँ जी,
1: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी। तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था। सिमिलर स्टोरी है घर में, जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए, तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था, थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम। तो
1: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा, फिर डॉक्टर, कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया, तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन, पहली डायग्नोसिस थी उस समय। और
1: अच्छा
2: उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था, तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था। इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया, फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली
1: अच्छा
2: क्या होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता, एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको भी नहीं समझ आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड,

0: टिल सिक्स
1: अच्छा
0: स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो बेसिकली, उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट तक सिक्स स्टैंडर्ड तक। फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ। तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा। तो वो बोले दूसरी तरीका का कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है। तो
1: अच्छा
0: फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने। मतलब
1: बताइए,
0: कितनी
1: हद है,
0: कितनी
1: मतलब
0: इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट
1: बताइए,
0: के लिए।
1: मतलब कोई, हाँ, मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम, चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने सेवेंथ स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज कराया। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाने। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
1: अच्छा,
0: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
1: क्या बात है।
0: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ सेवन्थ स्टैंडर्ड में, और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में। तो पहले दो तीन साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
1: आगे
0: तो
1: बढ़ाएं जी।
0: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
1: जी
0: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाएं। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे, 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
1: वाह, क्या
0: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया, फिर
1: बात।
0: ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने
1: अच्छा,
0: एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टालनी या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी आईआईएम रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
1: डेफिनेटली
0: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला।

0: स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
1: कौन से ईयर में आपने IIM किया पीयूजी?
0: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
1: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
0: हाँ, पर आप ये
1: तो
0: नहीं, मतलब
1: वहां का
0: ऐसा,
1: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
0: बिल्कुल
1: IIM का?
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हर कोई जा नहीं पाता IIM, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
0: हाँ
1: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
0: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था। पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड इस टाइम से मेरे मन में हमेशा था कि मुझे MBA करना है। पता, मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि MBA करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू IIM रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, डे वन से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ, सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट आप, मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप लोग समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी
1: क्या
0: यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
1: क्या बात है।
0: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए नहीं वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
1: ट्रस्ट
0: वापस दे तो
1: मतलब
0: दे देगा ना।
1: उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई, और मैंने उनको बहुत, मैं दो, क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट, मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
1: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका, या कुछ था आई साइड
0: मतलब
1: आपको?
0: आप समझ लो 5%, 4-5% कुछ
1: और
0: साइट बची
1: अभी
0: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
1: अच्छा,
0: मेरा है।
1: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं। अच्छा, फिर ये वहां से IIM से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
0: हाँ,
1: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
0: ये मैंने एक्चुअली सोचा IIM करते हुए ही, जब
1: अच्छा,
0: मैं IIM में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था, तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो, और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में, तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं। पहले तो उनको पता, आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था, मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है, स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था, और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को, तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है, तो वही मेरा एक्चुअली, मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
1: वाह,
0: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने एमबीए फिनिश की। एमबीए के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने। वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर IIM रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो 3 महीना
1: वाह
0: हमने वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं जब वापस आया, 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, या अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा। एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ। मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं। और
1: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
0: जॉब अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में। अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से। पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
1: वेरी गुड, चलो करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास। जब चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमरा ही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
2: ये हम आज ही दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
2: सो
1: कहाँ से हुई मिलने की?
2: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी। इवन इन 2024 तक यही सच था। व्हाट्सएप
1: अच्छा,
2: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट,
1: नाइस।
2: बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे। आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम यू नो यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
1: सही है।
2: मिलता है ना। तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना NGO है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में। तो उन्हें बोला कि यू नो आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं जो दोनों
1: अच्छा।
2: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है, अच्छे से इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे। तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था।
1: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
2: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
1: अच्छा,
2: इम्पेयर्ड ही थे।
1: ओ
2: और वो मेरे नहीं, अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना, यहाँ वैसे भी US में है, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे अकेले
1: जरूरी
2: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता।
1: है, निकलता बिल्कुल सही
2: हाँ,
1: है।
2: और अब जॉब भी कर रहे हो, तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग।
1: कहाँ का ट्रिप था वो मेगा जी?
2: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक, हाँ जी,
1: ओके
2: गुड़गांव में एक होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं, तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन. तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
1: हाँ
2: को
1: वही,
2: बोल
1: मैं भी मन में वही सोच
2: के
1: रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
2: देखो, चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है. प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
1: आपकी
2: अच्छी
1: तो कहानी
2: फैमिलीज
1: सिमरन से बहुत मिलती जुलती है। हाँ
2: हाँ, तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया
1: राज
2: था
1: पता नहीं राखे जा जरूर आ गया।
2: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना. बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ. तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी,
1: अच्छा
2: तो हाँ, और ये भी वहाँ सबको जानता था, तो ये भी इनवाइटेड था. तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया वहाँ पे, एकदम एंट्री मारी.
1: ओहो
2: एंड हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है.
1: मतलब कुछ तो
2: हाँ
1: है
2: ये पीयूष
1: कुछ
2: को
1: है
2: ज्यादा
1: तो कुछ
2: लगा था वैसे, आप इससे पूछना जब
1: है।
2: इसकी बारी आएगी. एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक
1: लेकिन आपको तो
2: दूसरे
1: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको। लेकिन
2: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे. एंड
1: अच्छा मतलब
2: हाँ
1: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के।
2: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई, ये चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
1: अच्छा
2: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है,
1: बहुत शौक है राइट।
2: तो आई वाज लाइक एक वी आई कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, दो तीन चार चीजें,
1: और आपने
2: तो
1: सोचा होगा यार यूट्यूब पे जिसको देखा वो यही मिल गया।
2: हाँ बिल्कुल. मैं कहा ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे. तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
1: कहीं
2: तो
1: जाऊंगी।
2: वो क्वेश्चन ही नहीं था कभी. बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई, और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच, एंड फिर बस चीजें बदलती गई, तो दिस इज हाउ वी मेट. एंड
1: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
2: यस
1: जी
0: हाँ
1: आपको
0: जी,
1: भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था। अच्छा
0: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
1: अरे भाई
2: बाय
1: साहब
2: साइड
1: ये
2: बैठ के.
1: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा। गेट
2: हाँ वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा.
1: टुगेदर जो है सफल हो गया।
2: बिल्कुल. नहीं मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानता था, फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में. हाँ
1: उसी ट्रिप में
0: नहीं
2: नहीं
0: उससे
2: नहीं
0: नहीं, ये
2: उससे
0: थोड़ी
2: पहले
0: थोड़ी
2: पर्पल
0: पुरानी, उससे आई थिंक,
2: फेस्ट
1: अच्छा
2: के टाइम ना,
0: उससे
1: उससे
0: दो
1: पहले की,
0: साल
1: अच्छा
0: मतलब हम मिले 2024, ये दो 2022 की बात है।
1: की बात है, ओके.
0: 2022 में हम मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ। फिर जॉर्ज के साथ तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है। फिर उन्होंने मुझे एक बार ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में,
1: जी
0: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
2: हाँ,
0: हुआ
2: सेम
0: था।
2: योर. हाँ.
0: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर। तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस, तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा। और गोवा में ही, आई थिंक गोवा में जब हम मैं गया था तभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिला। और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीज़ें डिस्कस कर सको। तो वहाँ पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले और वहाँ से फिर मेरा काफ़ी इस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान लोगों से हुआ। और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से। और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई।
2: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया आई थिंक. ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था. सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे
1: बताइए
2: ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
1: कहाँ,
2: फेस्ट पे मिला.
1: दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
2: सही
1: गुड़गांव.
2: में. सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता
1: हाँ, तो हम थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के,
0: है. हाँ.
1: और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा.
0: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देखिए, हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती. पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं और शादी की सोचें. हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं.
1: अरे
0: आप
1: भाई
0: समझ लो
1: साहब,
0: ऐसे,
1: इसने
0: या आप समझ लो नवंबर,
2: डिसाइड किया था,
0: चलो इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने
1: अच्छा.
0: डिसाइड कर लिया, ठीक है. तो मतलब
1: हाँ, नहीं,
0: आप
1: मैं
0: समझ
1: वही
0: लो
1: पूछ
0: दो
1: रहा हूँ.
0: महीने
1: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले.
2: इसने
0: प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है.
1: नहीं कि
2: एंड आई
1: मुझे
2: थिंक
1: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है.
2: नहीं, सही बात है. आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो, एक होता है आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता. एंड ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो
1: हाँ
2: इसको यू नो किसी चीज में कन्वर्ट करा जा सकता है. बट आई
1: यार,
2: थिंक
1: मेघा जी, मैं पूछने वाला था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी का नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
2: बिल्कुल, आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है, हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा.

0: लगा ना 15 days बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
1: थोड़ा टाइम तो लगता है अब एक्चुअली जैसे
0: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे।
1: हाँ वो तो था ही ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता. जब हम मीटिंग हमारी हुई हमने काफी बात की तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है. जैसे आपने पूछा भी था ना सेट की तब वहां सब सिंगल ही थे. बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है. तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही. फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हैं यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा.
0: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना
1: हाँ
0: पड़े।
1: तो देखो लाइक
0: अपना काम
1: लाइक हाँ जी
0: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
1: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो खत्म. तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली. एंड जब इनने प्रपोज किया ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप. पहले शादी का था माइंड में बट पहले देखा था कि ठीक है अभी तक मिले एक ही बारी है मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है. इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली मम्मी पापा से मिला. इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं इसके भैया तो उनसे मैं मिली एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है शादी कर सकते हो इससे.
0: ओके वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई।
1: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
0: तो नवंबर से अप्रैल तक मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
2: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था. तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ. तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो दो VI की शादी तो बहुत मुश्किल है. ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा. इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बट ऐसे फिर और VI कपल जो है एक और VI कपल से विजुअली इम्पेयर्ड कपल से मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कितने खुश हैं और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है. और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिलके कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं. तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था. फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए. तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया. जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था. उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया. बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे. और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है. तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले. हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे. सब मिले और फिर वहीं ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया. आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर ली और फिर मई में शादी.
0: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले क्योंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
2: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी इतना मैंने सोचा नहीं कभी. लेट 20s में ही मैं रियलाइज़ करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं. और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे साइटेड ही देख रहे थे वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे. बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था. और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है बोले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना. मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा. जबकि लव मैरिज अगर नहीं है अरेंज मैरिज है तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता. तो वो एक फेज था जिसमें ये था. बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए मैं ओपन हूँ. मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू या
0: कोई दिक्कत
2: प्रॉब्लम नहीं
0: नहीं।
2: है, और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई

0: लोगों से मिला, समझा कि काफी अच्छे से सब अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, खुश है और काफी चीजों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
2: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों वी आई हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
0: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीजों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट। अगर इसको देखोगे आप, हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट। और मिल के बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको, कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलकर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
2: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है, उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है। आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते। आप ना ये सोचते हो कि ठीक है, हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर। बट वो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज है, और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है। तो जब मैं पीयूष से मिली तो मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
2: हाँ जी
1: और लेकिन हो सकता है 1000 में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को, यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे, उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में, तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
2: आई डोंट थिंक, मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे। एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो, तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज्यादा लगता है फील, क्योंकि एक चीज करते करते एकदम से उस चीज को नहीं कर पाना और उस वजह से काफी चीजों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस। बट आई से हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं, तो हमें वो ही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज, और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ कि जैसे
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए व्हेन इट कम्स टू व्हाइट केन। जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज करने के लिए, क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है। बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ व्हाइट केन।
1: व्हाइट कैन।
2: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के ये नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है, और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, व्हाइट केन यूज करो कितना आसान हो जाएगा। बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट। तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना, एंड अब बल्कि हम दोनों, ऑनेस्टली बताऊँ तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं. हम डिनर्स, लंचेस, शो सब जाते हैं अकेले, और हम व्हाइट केन लेके जाते हैं. एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ, व्हाइट केन तो यूज करना ही, और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जी।
2: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल, जैसे पीयूष भी, आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से, हमें दिल्ली से हो, तो दोनों को खाने का शौक बहुत है.
1: शौक है ही बिल्कुल।
2: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा, आप
2: ऐसे
1: दोनों
2: होते
1: के
2: हैं.
1: बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इशू तो नहीं आया?
2: नहीं, हम दोनों
1: क्योंकि
2: वेजिटेरियन
1: अच्छा
2: हैं.
1: फिर ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉन वेज थोड़ा ज्यादा चलता है।
0: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही, मेरे बर्थ के पहले यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में, तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
1: वेरी
0: और
1: नाइस।
0: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं, या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीज़ें जो आपको पसंद है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर होगी. और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है, एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है, और ऐसे कई चीज़ें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज़ नहीं है. बट जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो, तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं, और उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है.
2: मतलब ये, मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक्साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वही, एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है. आई फील एज ए सेक लाइक माइंडेडनेस, कंपैटिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है. अब चाहे विजुअली
1: बहुत
2: इम्पेयर्ड हो,
1: बढ़िया,
2: साइटेड हो, डजेंट मैटर.
1: काफी सीरियस बातें हो गई। जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
2: बिल्कुल किया. एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था. एंड
1: ओ
2: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया. हमने सोचा इंडिया में ही पहले कहीं सोचा चले जाए, क्योंकि इजी रहेगा, राइट? इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है. बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार, बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे. कहीं नहीं जाएंगे, बट
1: सही
2: ट्राई
1: है।
2: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं. तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है, बाली चलते हैं, क्लोज है, अगर कुछ हुआ भी
1: इंडोनेशिया।
2: तो. हाँ जी, यही सोचा, क्लोज है, कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं. एंड यू नो, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटनरी सेट की.
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा ही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेगा राखेजा के साथ, लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
2: ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते.
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, 9414151415 पर। और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष।
2: थैंक
1: थैंक
2: यू.
0: यू।

0: कोई कहता है कि माँ की तस्वीर दिखाओ, वो गोरी है, सावली है, लंबी है या नाटी है। मैं कहता हूँ उसका रंग माँ है, उसका कद भी माँ है, उसका पहनावा, उसका स्वभाव, उसकी आवाज, बस माँ जैसी है। आखिर उसने अपनी पहचान इस शब्द में ही तो समेटी है आज तक। उसकी व्याख्या कैसे करूं, शब्द समेट नहीं सकते उसकी ख्याति, वो मेरी माँ है। कहते हैं हर माँ एक जैसी होती है। अपनी माँ तो हम सब जानते हैं, और अपनी माँ और पापा की माँ से भी पहचान है हमारी, यानी कि हमारी दादी, हमारी नानी। पर क्या आप अपनी दादी और नानी की माँ को जानते हैं? वो कैसे रहती थी, क्या करती थी, स्ट्रिक्ट थी या नरम? उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, ना ही इंटरनेट। तो इस बार मदर्स डे पर हमने अपनी दादी और नानी से पूछा कि आपकी माँ कैसी थी। सुनेंगे उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं।
1: हमारे जमाने में वो टाइम मदर डेज नहीं था, फिर भी मेरे को मालूम है न्यूली अभी जो चल रहा है, हमारे जमाने में मम्मी ऐसे स्ट्रिक्ट और ऐसे लिनियन भी बहुत थी, लेकिन पापा की प्यारी थी और सबसे बड़ी थी भाई बहन में, तो ज्यादा मेरा चलता था। और पापा जो भी कुछ चाहिए वो पापा के थ्रू मैं मम्मी को बोलती थी, बहुत लाडली थी। उन्होंने पूरा खानदान में चाचा बुआ सबकी लाडली थी, क्यों पहले ही घर में मैं आई थी, और वो टाइम बहुत अच्छी से मेरे को पालना भी सबसे अच्छी मिली है। मेरी मम्मी का पूरन पोली और उंधिया सब भाजी में बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा करके बीमार नहीं हुई, लेकिन वो तो है कि वो जमाने में बच्चे लोग के बहुत ख्याल करते थे, तो मम्मी दवाई दे देती थी। वो टाइम बोली हूँ ना, स्ट्रिक्ट भी बहुत थी और लिनियन भी थी, टाइम टू टाइम उसको सब चाहिए करके, ये टाइम में घर आ जाने का, ये टाइम में खाने का, ये टाइम में उठ जाने का, ये सब ऐसा स्ट्रिक्टनेस थी। बाकी पापा के साथ हम लोग खेलते थे, करते थे सब कुछ पहले से, और आज हैबिट हम लोग को वही पड़ा कि टाइम टू टाइम सब करना। बहुत अच्छी सुंदर। अभी मेरी एज 80 है। बिफोर ये जो जमाना था ना, वो टाइम बच्चे लोग माँ बाप का सुनते थे, आजकल के बच्चे लोग माँ बाप का सुनते नहीं है, इसलिए झगड़ा झगड़ी होती है। वो टाइम में नहीं था, पहले तो बच्चे लोग ने मम्मी के लिए इतनी अच्छी से जो माँ बोलती है वही करना है, लेकिन आजकल के बच्चे वो करते नहीं है, वो समझते कि हम लोग जो बोले वो पापा मम्मी करें। माँ बाप का सुनने का वो पहला है, और दूसरा है कि जो भी अपने कुछ भी गलती हुई, क्या माँ बाप की भी कुछ है, तो उसको समझा के माँ बाप को भी अंडरस्टैंड करने का। पहले जैसे माँ बाप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, वही करने का। लेकिन बच्चे लोग ने समझना चाहिए कि जो माँ बाप बोलते हैं वो सही है, वो बाद में उसको मालूम पड़ता है, जब भी एक्सपीरियंस होता है तभी, तो बिफोर माँ बाप को भी सुने, और ऐसा लगे तो प्यार से उसको समझावे कि देखो ये ऐसी बात नहीं, ऐसी ठीक करके, और आराम से।

मेरी मम्मी तो बहुत सीधी थी, बहुत मेहनती थी और हार्ड वर्कर थी, बहुत सहनशील भी थी। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में लोगों का सहनी किया, किसी का किसी बात का जवाब नहीं देती थी। और बहुत ही वो परिवार में भी बहुत वो अच्छी मानी जाती थी। कि जब मेरे पापा मुझे डांटते थे ना, तो मुझे लेकर के भागती थी कि कहीं पापा मार ना दे इसको, क्योंकि मैं अकेली बेटी थी ना माँ की, इसलिए हमेशा मेरी माँ मेरी मतलब किसी की पिटाई ना लगे इसलिए हमेशा मुझे बचाती रहती थी। मेरी मम्मी जब मैं बीमार होती थी तो वो मेरे को पैसे से बहुत ये प्यार था, तो इतना सारा जो कॉइन होता था ना वो ला के मेरे पास रख देती थी, और जब उसमें बिजी होती थी फिर वो नहाने खाने जाती थी, क्योंकि उनको छोड़ती नहीं थी ना, तो वो चली जाती थी पैसे दे करके, फिर वो जाती थी तो नहाना खाना करके फिर आती थी मेरे पास। वो बीमार होती थी तो उनको मैं अपने घर बुला लेती थी। उनको चाय बहुत पसंद था, अगर अभी वो चाय पिए घंटे के बाद फिर कोई आया चाय बनाया तो अगर पूछते थे मम्मी चाय पीना है तो हाँ, चाय बहुत उनको प्रिय था। और खाना उनको जो भी चाहिए गरम गरम चाहिए, तो ये जब मेरे घर आती थी तो मैं उनको पूरा ध्यान रखती थी। आज के समय के अनुसार जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का ध्यान रखना, जहाँ तक हो उनके अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जब आप बड़े हो जाएं तब भी उनका ध्यान रखना। जो आजकल देखते हैं लड़के शादी करके माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है कि माँ बाप को अंत तक उनका ध्यान रखना। माँ एक बहुत बड़ी सहारा होती है बच्चे के लिए, अगर माँ ध्यान ना दे तो बच्चे पता नहीं कैसे हो जाए, लेकिन कितना अपना एक एक क्षण अपने बच्चों के लिए वो लगाती है और बच्चों का ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे बच्चे स्वस्थ हों, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, उनका जीवन अच्छा बने, उनकी खुशी के लिए ही सारा समय वो देती है माँ। मेरी मम्मी बताए ना कि वो तो एक आदर्श माँ थी, वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि किसी भी बच्चे को अगर देखती थी उसको ज़रूरत है तो एक माँ की तरह उनकी पालना करती थी, और हमेशा उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरी दादी है ये मेरी नानी है, ऐसा नहीं लगा, एक माँ की तरह ही हर बच्चे को संभालती थी।

पहले जमाने में ऐसा था कि बहुत अन्य लड़कियों को तो बहुत कंट्रोल में रखते थे। पहले मैं अपने बताती कि मैं कभी पिक्चर विक्चर भी नहीं देखती थी पहले, और हमारे जैसे मम्मी बोलती थी यहाँ बैठना तो यहीं बैठे रहते थे। लेकिन अभी नहीं है, अभी वो समय नहीं है। अभी तो जैसे लड़के लोग अभी तो अपने मम्मी पापा का कहना भी नहीं सुनते हैं, और हम लोग तो बहुत अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते थे बहुत पहले। पहले का समय था कि ये पिक्चर फिल्म आदि सब नहीं होते थे, ना मेकअप करते थे ना कुछ नहीं, सिंपल रहते थे। डिसिप्लिन पे बहुत था, हम लोग डिसिप्लिन में पले हैं, और अभी डिसिप्लिन तो पूरा खत्म हो चुका है, अभी नहीं है वर्तमान में, पहले बहुत था। हाँ ऐसे तो होता था, मम्मी डांटती थी कुछ भी थोड़ा सा गलती होती थी, लेकिन पापा मना करते थे कि नहीं बेटी लोग को नहीं डांटना है नहीं बोलना है, कि उन लोग तो पढ़ाई घर की है। ऐसे तो खाना सभी अच्छा रहता था, सभी अच्छा बनाती थी, वही मैंने सीखा है अभी। मम्मी क्या जो खाना अच्छा बनाती थी वही मैंने अभी सीखा है, तो मैं घर पे वही बनाती हूँ अभी। ऐसे मम्मी तो ठीक थी, हम लोग को पाल पोस के जैसे भी बड़ा किया। ऐसे गरीबी रेखा में ऐसी थी, ऐसे फिर भी माँ बाप ने हमारे, हम लोग सात बहन भाई थे, उन्होंने पाल पोस के ऐसे बड़ा किया हम लोग को। आप लोग मम्मी पापा जो बोलते हैं, अभी जो डिसिप्लिन में चलना चाहिए अभी के बच्चों को, तो वही बेटर रहेगा। जो मम्मी पापा कहें वही पढ़ाई करो या कुछ भी कहो, उनके बोलेंगे वही में, उसी में चलना चाहिए डिसिप्लिन।

मेरी माताजी बहुत अच्छी थी, मेहनतू थी, होशियार भी थी। हम तीन छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतने बच्चों के साथ रखते भी उसने सिलाई काम 4 साल किया, डिप्लोमा किया और गवर्नमेंट एग्जाम भी दी। घर में बैठे भी सिलाई काम करती थी और अपना खर्चा आनंद से हम लोग को चला के आनंद से रखती थी। हमारी शादी वादी सब उसने ऐसे ही किया उसमें ही, और पिताजी भी सर्विस करते थे लेकिन इतना पहुँचता नहीं था, तो ये भी हमारा काम हो जाता था। बहुत बिजी थी मेरी माता जी, सब सुबह काम करके खाना पका के सब काम निपटा के क्लास में जाती थी, सिलाई क्लास में। शाम को आते आते सब्जी लेके आती थी और शाम को फिर खाना पका के हमें खिलाती थी। फिर रात को 10 बजे या 10:30 बजे तक वो मशीन का काम करती थी, फिर बंद करके सोती थी। घर का काम के लिए हमें सर्वेंट रखा था वहाँ, तो घर का काम बर्तन है, फिर झाड़ू है, वो तो कर लेते थे। छोटे छोटे मम्मी में थे तो कर लेते थे, लेकिन बर्तन के लिए और कपड़ा सुखाने के लिए सर्वेंट था, वो करता था। सुबह सुबह 5 बजे माँ कपड़ा धो लेती थी हमें। टाइम तो थोड़ा थोड़ा अपना काम करते करते, सिलाई काम करते करते टाइम देती थी, बात करती थी हमारे साथ, कुछ सिखाती थी, कुछ बताती थी। बहुत अच्छे अच्छे मेरे लिए फ्रॉक भी तैयार करती थी सिलाई काम सीखते सीखते। बहुत अच्छे आता था उसको, होशियार भी बहुत अच्छी से, 7 भी पढ़ी हुई थी, 5 तक पढ़ी थी लेकिन 7 का सर्टिफिकेट लेके गवर्नमेंट एग्जाम दी थी उसने। तब तो मदर्स डे का इतना फेमस भी नहीं था, अभी फेमस हुआ। तब तो हम छोटे थे, तो आज मैं वो भी 74 ईयर्स की, तब मदर्स डे कहाँ कोई सेलिब्रेशन करता था। छुट्टियों में स्कूल में जाती थी, जब छुट्टी होती थी तो मैं खाना में ही बनाती थी, और शाम के टाइम भी कुछ चाय पानी बनाना है वो बना तो मैं सब कर देती थी मम्मी को। मम्मी मशीन का काम करती थी, मैं उसके लिए थोड़ा कुछ जरूर पड़ेगा काम बताती थी। हाँ मनाती थी, बच्चे है वो है, मैं उसको समझा दूंगी ऐसे पापा को बोल देती। और मम्मी काम करते करते भी मेरा ख्याल भी रखती थी, मुझे जो कुछ अभी मुँह खराब हो जाता है, बुखार आता है, तो कुछ भाता नहीं था तो कुछ भी बना के खिलाती थी। मेरी फूफी भी हमारे साथ थी, फूफी भी मेरा ख्याल रखती थी। हम लोग पहले बा बोलते थे, मम्मी नहीं बोलते थे, बा बोलते थे। हम 6:30 बजे स्कूल से आते थे ना, तो हम भूखे हो जाते थे, तो तैयार रखती थी हमारे लिए खाना, और घर में केला भी रखती थी क्योंकि सुबह को नाश्ता नहीं करते थे हम लोग, 2 केला खा लेते थे, तो केला ला के रखती थी। 10 बजे खाना खा लेते थे, खाना खा के फिर तैयार होकर स्कूल में जाते थे। मैं शादीशुदा थी और डिलीवरी हो गई थी, छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चे के लिए मेरे को प्रॉब्लम होता था, लेकिन माँ समझा बुझा के मेरे को बहुत अच्छी तरह से बच्चे को संभालने के लिए बताती थी, और मेरा ख्याल भी रखती थी समय समय पर, और अपना काम भी करती थी, सब कुछ करते भी संभालते भी अपना काम भी कर लेती। मैं अपनी मम्मी के लिए यही कहूँगी कि मेरी मम्मी बिजी थी हर घर काम में, बाहर का काम में, मेरे पिताजी को, बच्चे को, सबको हाथ बटाती थी। तो ऐसे ही हमें मौज शौक तो सब करते ही है, लेकिन मौज शौक में हमें इतना कुछ मिलता नहीं है, लेकिन दूसरे को खुशी रहने में जो मिलता है ये बहुत बड़ी बात है, कि बच्चों को, पति को, घर वाले को, दूसरे को खुशी देती है वो बहुत बड़ी बात है। हमारी मम्मी के लिए हमें यही करना चाहिए कि मम्मी जो चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे बने वैसे बने, वैसे हमें ही बनना है। मम्मी में सहन शक्ति बहुत थी, हमारी फूफी, मेरी दादी सब साथ में रहते थे। पहले तो बड़ों का स्वभाव बहुत कड़क होता था, तो भी मेरी माँ सहन करती थी, वैसे हमें ये सिखाया भी, बेटा सहन करना है सबका, सहन करेंगे रहेंगे तो आगे और अच्छा होता है।

0: बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आज से समझ लो 50-60 साल पहले की बात बताती हूँ। मेरी मम्मी बहुत मुझे साधारण रूप में दिखाई दी, बहुत खूबसूरत, नाटी, 5 फुट की और देखने में सुंदर, गोरी और गाना वाना भी गुनगुनाती रहती थी, काम करती रहती थी। और शौक उनको बहुत था, बहुत बड़ा घर था और उनको तरह तरह के शौक, घर को सजाने का शौक और उससे भी ज्यादा बाहर का जो एरिया था उनको सजाने का बहुत शौक था। माली को रखा तरह तरह के, हर वैरायटी के पेड़ लगाना, गार्डन को सुंदर सजा के रखना, और अकेली ही करवाती रहती थी काम। उनको देख देख के मेरे अंदर ये सारे शौक अपने आप ही पैदा हो गए। और हमारे पापा हमारे संग नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, 6 महीने में कभी आते थे, कुछ दिन रह के फिर अपने काम पे चले जाते थे। और हम 3 बच्चे और मम्मी, हम ही लोग सारे घर को चलाते रहते थे नौकर चाकर के साथ में। और मैंने मम्मी को कभी किसी को डांटते हुए नहीं सुना और ना ही आस पड़ोस में कभी भी किसी के अपनी सहेलियों के साथ में बैठ के अपने घर की बातें या उनके घर की बातें पूछना या सुनना, ये कभी नहीं सुना मैंने। मम्मी बहुत ही भोली भाली, अपने माँ बाप की पहला बच्चा था, कभी किसी को डांटना नहीं और बोलती थी कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। इतना भी कि एक दिन मैंने बोला घर में हमारे हल्दी नहीं है तो मम्मी मैं सामने नानी का घर है उनसे लेके आऊं, बोलती इससे तो तू मर जा तो ज्यादा अच्छा है, यानी मांगने से तो मरना ही भला। ये मुझे मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे से सिखा दिया। मम्मी को अच्छी अच्छी पिक्चर देखने का भी शौक था, लेकिन साधारण सुंदर सीधी सादी पिक्चर देखने का। और गाना वाना भी कभी कभी गुनगुनाती थी। और उनको सिलाई बुनाई का भी बहुत शौक था, खाना बनाने का भी बहुत शौक था और अपने आप को ठीक ठाक रखने का भी बहुत शौक था। एक उनकी बहुत अच्छी मुझे क्वालिटी याद आती है, कभी भी हम बोलते थे ना कि ये मम्मी आपकी चीज है ये वो, तो बोलती थी नहीं मेरा कुछ भी नहीं है। हम कहते थे आपने अलमारी में बंद करके रखा है, कहती ध्यान से देखो मैंने कुछ बंद नहीं करा हुआ, अलमारी खाली बंद है और उसमें ताला नहीं लगा हुआ, चाबी नहीं लगी हुई, देखो सुबह स्कूल जाते हो आके अपना काम करो, थोड़ी देर किसी को मिलना है अपनी फ्रेंड को जाओ, लेकिन याद रखना मेरी बच्चियों जब शाम को लाइट जलेगी तो घर आ जाना, लाइट घर में आके तुमने ही जलानी है, अंधेरा पड़ते हुए जैसे अंधेरा होता है तो जहाँ पर भी हो तो एकदम घर में आ जाओ। रात का खाना सब एक साथ खाते थे, दिन में तो स्कूल जाना। और मम्मी पापा को मैंने देखा सुबह सबसे पहले उठते थे मम्मी, हम लोग चाहे जल्दी खा के चले जाएं या बाद में जाएं लेकिन मम्मी पापा नाश्ता एक साथ, जब पापा वहाँ होते थे तो एक साथ नाश्ता खाते थे। कभी उनकी लड़ाई नहीं मैंने सुनी जिंदगी में, कभी पापा जी मम्मी के ऊपर नहीं चिल्लाए और कभी मम्मी ने आगे से जवाब नहीं दिया। अगर कभी पापा नौकर चाकर को कुछ बोल देते तो मम्मी को लगता था ये अच्छा नहीं, ये डर जैसे उनको लगता था कि ये जोर से बोल रहे हैं, तो इशारा करती थी भाई धीरे बोलो। फोटो होती थी लगी हुई ड्राइंग रूम में गांधी जी की और स्वामी दयानंद की और विवेकानंद की, इसके अलावा हमने और अपने रिश्तेदारों की या इधर उधर कोई फोटो नहीं रखी। और मेरी मम्मी कभी अपने उनके चार उनके देवर जेठ वगैरह थे और उनकी 3 नंदें थी, यानी 3 हमारी बुआ और 4 हमारे चाचा और 1 हमारे पिताजी, और सब कभी नहीं देखा कि मम्मी किसी के सामने ऊंची आवाज में बोले, जबकि हमारी मम्मी अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा रईस फैमिली की थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वो बहुत रिच हैं या उनके पास बहुत बहुत कुछ है उनको मिला हुआ और इतने बड़े घर में हैं। एकदम साधारण रीति से रहती थी और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत डिसेंट, हर तरह का उनका खाने पीने बनाने में अच्छे से अच्छा खाना बनाना, अच्छी से अच्छी वो मिठाइयाँ भी बहुत सुंदर सुंदर बनाती। अपनी माँ के साथ भी ज्यादा वो बात नहीं करती थी, यानी हमारी नानी के साथ वो ऐसी बातें नहीं करती थी, कि मेरे भाई ये बच्चे बड़े गंदे हैं या ये लोग ये नहीं करते वहाँ पढ़ते नहीं या मेरी बात नहीं सुनते या ऐसी बातें कभी नहीं करती थी। बस वो कहती थी देखो वो माली आया है मैंने वो देखो वहाँ पौधा वो लगवाया है मैंने उस क्यारी में वो फूल लगवाए हैं और आज गाय ने देखो गाय के उसने इतना दूध दिया है अभी मैं मक्खन बनाना है मक्खन बना के फिर मैं घी बनाऊंगी और फिर मैं इसको ऐसे खाऊंगी पंजीरी कैसे बनाते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें किया करती थी। कभी हमने सुना ही नहीं कि वो पड़ोसियों की बुराई कर रही हूँ या किसी की भी बुराई कर रही हूँ। कभी चांटा तो किसी को उन्होंने मारा ही नहीं होगा। मेरा भाई जैसे शैतानी कर रहा पढ़ नहीं रहा पढ़ने में वो कुछ उसको ज़्यादा उसका आउटडोर में बहुत शौक था साइकिलिंग करना इधर उधर वो सारे ऐसी चीज़ें पढ़ाई में ज़्यादा नहीं था। लेकिन मम्मी ने कभी नहीं डांटा। आएंगे ना तेरे पापा जी तो मैं उनको बताऊंगी कि तू पढ़ता नहीं है ठीक से।
1: कमाल है ना, न पड़ोसियों से बैठकर बातें करना, नियमों की पक्की कर्मठ और सुपर टैलेंटेड थी दादी नानी की माँ। वैसे माँ किसी भी शताब्दी किसी भी युग की हो एक बात कॉमन है, जानते हैं क्या? उसका प्यार, बेहिसाब प्यार, जिसे सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन सलाम करते हैं हम। और जो प्यार दे या हम पर ममता बरसाए फिर चाहे जो भी रिश्ता कहलाता हो वो माँ का दर्पण है। इसीलिए हम सब के पास माँ है, किसी के पास माँ के रूप में तो किसी के पास पापा दादी नानी दोस्त या चाची मासी किसी भी रिश्ते के रूप में। मजा आया ना आज अपनी दादी नानी की माँ को जानकर। कभी कभी अपनी दादी नानी से भी पूछ लिया करिए उनके बचपन की कहानी, जानने को बहुत कुछ मिलता है और सीखने को भी। आखिर माँ हर रूप में खुशियों का खजाना है। तो दोस्तों आप सभी की जो माँ है या माँ का फर्ज किसी और रिश्ते के रूप में अदा करते हैं तो उन सभी को रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: आज मदर्स डे है जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं, तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और माँ हमारे लिए अपने सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती है, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती, और इसलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था, तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की, तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल, नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया, और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं, मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे करके मदर्स डे ना मनाएं, है ना, फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, इस तरह से मनाने का दिन नहीं है, लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं, तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए, यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार माने। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।

0: बुआ ऑल ओवर सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा। जू जू जू जू जू जू जू जू जू।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 18 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है फैमिली। बाबा कहे, तुम बच्चे एक ईश्वरीय परिवार के हो, फिर सतयुग में जाएंगे तो दैवी परिवार के होंगे और कलयुग में सभी आसुरी परिवार के हैं। जब ईश्वरीय परिवार के हैं, उसी के लिए भक्ति में गाया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई। परंतु वह अर्थ नहीं समझते हैं और अभी तुम बच्चे वास्तविक अर्थ को समझते हुए एक मात पिता के बच्चे बनते हो। साथ ही बाबा कहे, एक की श्रीमत पर चलते हो और उस दैवी दुनिया के योग्य बनते हो। तो इसलिए बच्चों को हमेशा ये नशा रहना चाहिए कि हम किस फैमिली के हैं। हमारी फैमिली बहुत बेहद की फैमिली है। ऐसी बेहद की फैमिली आज की दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। जब दैवी परिवार में होंगे तभी भी बहुत छोटा परिवार होगा, और आसुरी परिवार में तो हर एक की अपनी अपनी फैमिली है। लेकिन ये ईश्वरीय फैमिली में तुम सब आत्मा आत्मा भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते भाई बहन है, तो आपस में तुम्हारा बहुत प्यार होना चाहिए। परंतु बाबा कहे, दैहिक प्यार न हो नहीं तो बुद्धि भटकेगी। आत्मिक प्यार जितना होगा उतना एक दूसरे के साथ मिल करके उन्नति करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है। बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे, हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। दुनिया के अंदर है छोटे छोटे जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में मां बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यो तो बच्चे उनकी क्रिएशन है परंतु जानते नहीं है। यो तो सारी दुनिया उस परमात्मा की क्रिएशन है परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर। क्या जानते हैं? बरोबर, बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए ही गाया है, इस बेहद की फैमिली के लिए ही गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली,
गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, इसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा, जो बाबा को याद करेंगे उनको इस फैमिली का नशा रहेगा। बे अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है, ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते लेकिन देह अभिमान में आ गए तो नशा उतर जाएगा। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहां है दैवी फैमिली, वो है आसुरी फैमिली, और यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई है, बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दैवी राज्य स्थापन करें। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे, जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। 4 बजे अधिकतर सब सोए होते हैं, उस समय बाबा कहे तुम जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। जो भी बाबा की श्रीमत मिलती है उस पर चलने से तुमको बहुत खुशी होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है, फिर पुरानी से दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे तो नया चोला पहनेंगे, ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो, वहां ये बातें याद नहीं रहती। बाबा कहते सतयुग में जाने के बाद ये बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना रहे, वहां तो सुख फिर भासना आएगी नहीं। इसीलिए बाबा कहे अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है, ऊंच ते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इतना गुप्त नशा है, ऊंच ते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा
अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। बाबा ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता है। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। बल दुनिया में त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सीजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना। दिखाते भी बुरा है, ब्रह्मा को दिखाते भी बुरा है। ये 84 जन्म का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा में। बाबा कहे इस समय तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास दुनिया आम, तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। तो नटशेल में समझाया जाता है बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहां की बातें कहां ले जाते हैं। बाबा कहे तुम साक्षी होकर के देखते हो खेल को, कहां की बातें कहां ले जाते हैं। कलयुग के अंदर बापू गांधी ने कहा इसको राम राज्य बनाओ, तो कैसे बना सकेंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, वह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। वह किसका बच्चा, बाबा कहते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। शिव बाबा वह किसका बच्चा, तो ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। कितना सुंदर संगम युग की न्यारी निराली बातें हैं। तो शिव बाबा के लिए माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। यह है शिव बाबा का खेलपाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। इतने समय पहले बाबा ने हमारे ध्यान खिंचवाया था कि अगर कोई कहता भी है कि हमारे में शिव बाबा आते हैं, तो बाबा ने कहा ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें।
ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपने खुश खैराफत का समाचार लिखे। बेहद के बाप को चिट्ठी में अपने खुश खैराफत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम ही फिट जाता है। क्या हुआ, क्यों नहीं आई। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, इतना तो जरूर लिखे। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा कहे जब समाचार लिखेंगे अपनी सेवा का, और अगर ये भी बताएंगे कि इसकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है, तो बाबा ये भी समझाएंगे इस रीति से समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। और बाप तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। ये जो परिवर्तन है ये सिवाय बाप के कोई कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव

राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है, तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फान नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, इतने विकल्प बाबा के ज्ञान मार्ग में आएंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करे। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो, शिव बाबा को शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है, बाबा कहे आधा कल्प का लवर है। द्वापर कलयुग में कितना भक्ति में याद किया है, प्यार किया है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहां ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहां आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहां तो गंध की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, इसलिए बाबा कहे भले आपस में बातचीत करो खेलो हंसो, लेकिन यार एक बाबा से हो, किसी आत्मा से नहीं, नहीं तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। लौकिकता से देह भान से भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो और सतयुग में बैठे हो, कहां बैठे हो? तो बच्चों ने कहा घर में, बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है, जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहां बहुत अच्छा नशा रहेगा, मधुबन बेहद का घर है, बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे, यहां मधुबन में बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है, पुरानी दुनिया में भेदभाव आदि और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है, फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, देहभान से भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है।
बाप को अपना सच्चा सच्चा

का समाचार देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोल बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को सरल चित बना देते हैं। आज का स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। ये जो कुछ देखते हो ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थिरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति न हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। अच्छा,